की शुरुआत शांति और ऊर्जा के साथ करने की, तो चलिए एक गहरी सांस लीजिए, मन को हल्का कीजिए और हमारे साथ इस सुंदर सुबह की यात्रा शुरू कीजिए। और आज हमारे साथ एक प्रबुद्ध मेहमान मौजूद हैं, जिनसे हम बातचीत करेंगे आध्यात्म के बारे में, धर्म के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं दिव्य दर्शन।

0: नमः।
1: आइए दोस्तों, दिव्य दर्शन के इस बहुत ही सौंधे सौंधे से, मासूम, पवित्र और सीधे सीधे सच्चाई से भरे हुए प्रोग्राम में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज जो मेहमान हमारे साथ हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे आध्यात्म के बारे में, धर्म के बारे में और बहुत सारे अलग अलग विषय होंगे जिससे हम अपने जीवन को और खूबसूरत बना पाए। तो हमारे साथ है महुआ चक्रवर्ती जी, बाकी मैं उन्हीं से रिक्वेस्ट करूंगा। यूं तो मैं भी उनको उनके बारे में बता सकता हूं, लेकिन मुझे लगता है कि आप खुद बताएंगे महुआ जी, तो हमारे सुनने वालों को ज्यादा कनेक्शन लगेगा आपसे। तो आपका स्वागत है, प्लीज अपने बारे में बताइए ना, आप कहाँ हैं, क्या करती हैं, कौन हैं आप?
2: जी समीर जी, सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद मुझे इस प्रोग्राम में आमंत्रित करने के लिए, दिव्य दर्शन और आप ये अपॉर्चुनिटी दिए हैं मुझे, उसके लिए भी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जी, जैसे आपने बताया, महुआ चक्रवर्ती तो मेरा नाम है, बंगाली हूँ, बट मेरा जो जन्म हुआ है वो उड़ीसा के एक टाउन में, राउरकेला नामक टाउन में हुआ है। और मेरी जो एजुकेशन है, बैकग्राउंड, वो है इंजीनियरिंग की, और फिर उसके बाद करीब 24 साल मैं आईटी इंडस्ट्री में थी। बट जिंदगी में शायद शुरुआत से ही जिंदगी ने कुछ सिखाना चाहा और मैं सीखते चली गई, जीवन चेंज होते होने लगा। और अभी मैं, जैसे लास्ट ईयर ही नवंबर में मैंने रिजाइन किया स्वेच्छा से, वॉलंटरीली, ताकि मैं फुल फ्लेजेड जो है किसी पर्पस लेड काम के लिए अपना जिंदगी का वो कर सकूं, उस पे ध्यान दे सकूं। क्योंकि 12 साल से, पिछले 12 साल से, करीब 2013 से मैं बहुत कुछ अलग भी कर रही हूँ। जिंदगी में कुछ चेंजेस आए, कुछ क्राइसिस सिचुएशंस थे, यू नो, मेरे मेरे एक जो छोटा भाई था, उसका अचानक से डेथ होने पे, और फिर उसके लेस देन अ ईयर फिर मेरे पापा का चले जाने से, तो बहुत जीवन पे एक भारी प्रभाव पड़ा। क्योंकि मैं बड़ी बेटी थी घर की और जिम्मेदारी बहुत थी, और फिर उससे भी ज्यादा बड़ा था कि लाइफ को और गहराई से समझना। तो ये चलता रहा सिलसिला, तो तब से मेरी जो खोज थी वो स्टार्ट हो गई थी डीपर सेंस में, कि जिंदगी में एक्चुअली क्या होता है और सिर्फ लाइफ टू डेथ ही जिंदगी नहीं होती। तो उस पे मैं कुछ काम कर रही थी लोगों के साथ, एंड इन द स्पेस ऑफ हिप्नोथेरेपी, इन द स्पेस ऑफ न्यूरोसाइंस, साइकोलॉजी, ये सब चीजों पे, और काउंसलिंग थेरेपी, एंड तो वो मैं जो है मैं अपना साइड में करती थी, बैंडविड्थ ज्यादा नहीं थी। लेकिन जो 2-3 साल से कॉलिंग बहुत स्ट्रांग होने लग गई, तो फिर मैंने सोचा कि नहीं, इट वाज अ बिग डिसीजन ऑफ माय लाइफ, क्योंकि इतना भरा पूरा जो है जॉब छोड़ना इतना इजी डिसीजन नहीं होता है। बट फिर मैंने सोचा कि नहीं, अगर मेरा लाइफ का पर्पस ये है तो लेट मी गिव इट अ ट्राई। तो अभी मैं महुआ लाइफ साइंसेस जो है मेरी संस्था, उसकी फाउंडर हूँ, जो कि ह्यूमन कॉन्शियसनेस को एलिवेट करने का काम करती है। इट्स एन एमलगेशन ऑफ बोथ स्पिरिचुअलिटी एज वेल एज साइंस।
1: वाओ, दिस इज वन बिग टास्क जो आप कैरी कर रही हैं, वेरी वेरी सिंसियर, एंड ऑफ कोर्स उसके पीछे जो रीजन आपने मुझे बताया वो भी बहुत ज्यादा सेंसिटिव है, आई परफेक्टली अंडरस्टैंड। ठीक है महुआ जी, तो थैंक यू सो मच, हमें पता लगा कि आप कौन हैं, कहाँ हैं। तो अगर हम इस प्रोग्राम के बारे में आपसे बातचीत करें, इस पॉडकास्ट के बारे में बातचीत करें, तो जैसा आपने अभी अभी अपने परिचय में बताया, ह्यूमन लाइव्स, ह्यूमन वैल्यूज, किस तरीके से हम अपने को कनेक्ट कर सकते हैं टू अ हायर पावर।

0: पावर, अपने अंदर के अपने सोए हुए जो विचार हैं शायद उनको हिप्नोटिज्म के थ्रू हम बाहर निकालें, रिजॉल्व करें। सो स्पिरिचुअलिटी के बारे में, यानी कि आध्यात्म के बारे में, जिसके बारे में ये प्रोग्राम है, आपको कब सुनने में आया, कब आपको पता चला या किसने बताया, व्हेन?
1: देखिए, स्पिरिचुअलिटी के बारे में मुझे किसी ने बताया नहीं। अगर मैं अपना हिस्ट्री में देखूं, इट वाज परहैप्स कहीं पे इनग्रेन्ड था शायद। और अभी मैं जब सोचती हूँ ना, तो मुझे लगता है कि देखिए, मेरे जो जो हमारे जो फॉर्मेटिव एज से हम गुजरे हैं, मुझे लगता है कहीं पे ये 1900 का दशक में ना स्पिरिचुअलिटी का जो दौर था वो थोड़ा सा धीमा पड़ गया था। अब मैं जब सोचती हूँ तो मुझे लगता है जैसे मेरे दादाजी उससे पहले जो थे, परहैप्स 1800s, लेट 1800s में, तब वो बहुत ज्यादा मतलब स्पिरिचुअलिटी का प्रभाव था। बट आई थिंक 1900 से लेकर 2000 के बीच ये थोड़ा सा ये जो सारे रिवोल्यूशन हुए ना हमारे, आफ्टर द फ्रीडम, आवर फ्रीडम स्ट्रगल और एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन, वो सब के चक्कर में पीपल वेंट इनटू अ सर्वाइवल मोड, जो कि तब वो सर्वाइवल एंड जॉब एंड एजुकेशन पे बहुत ज्यादा ध्यान आने लग गया। तो मैं अगर अपना अपना खास करके अपना बचपन देखूं, हमारे घर में पूजा पाठ बहुत कुछ होता था। हम जाते थे रामकृष्ण मिशन, हमारे घर में दुर्गाष्टमी का पूजा होता था, तो वो सब तो होता था। बट आई कंसिडर देम एज वेरी रिचुअलिस्टिक। मुझे किसी ने नहीं बताया कि मेडिटेशन करना चाहिए, साधना करना चाहिए, या इससे ऐसा होता है, ये कनेक्शन बन सकता है, ये मुझे किसी ने सिखाया नहीं कभी। ये तो मेरे ख्याल से मैंने थ्रू दिस ट्रांसफॉर्मेटिव ईयर्स ही सीखा है। और जैसे मैंने आपको बताया 2013 में, लाइफ उससे पहले बहुत अलग थी, लेकिन 2013 से बहुत ट्रांसफॉर्मेशन आया मेरे अंदर। एंड आई थिंक तभी से मुझे ये इसका आभास हुआ स्पिरिचुअलिटी का, क्योंकि मैंने मैंने वो खुद फील किया, एक्सपीरियंस किया। तो मेरे मेरे लिए तो मेरे ख्याल से तभी से ये बहुत ज्यादा डेप्थ पकड़ा।
0: ऑलराइट, आई गेट इट मैम। बिल्कुल फ्लो है जिंदगी का, जो हमें डिफरेंट डिफरेंट पाथ्स पे या सही पाथ पे लेके जाता है। और ठीक है ना, वैसे भी अगर हम कनेक्ट करें अपने आप को, और फिर जिस तरह क्वांटम मैकेनिक्स एंड क्वांटम फिजिक्स की बात आप जो कर रही हैं, उसमें वी ऑल टेक बर्थ ऑन दिस अर्थ विद ऑल दैट काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन। कोई जरूरी नहीं है कि कोई हमें बताए ही, हम रियलाइज भी कर लेते हैं उसको। तो चलिए, मुझे फिर स्पिरिचुअलिटी का थोड़ा सा मतलब समझाइए ना, अध्यात्म का मतलब समझाइए। क्या समझूं मैं अध्यात्म से?
1: देखिए समीर जी, मेरे लिए जो है ना, स्पिरिचुअलिटी का मतलब है द प्रोसेस ऑफ सीकिंग द ट्रुथ, द मोस्ट ऑथेंटिक ट्रुथ। और हमें वो ट्रुथ कहाँ मिलेगा? वो ट्रुथ हमें बाहर की दुनिया में नहीं मिल सकता है, बिकॉज इट्स ऑल माया, जैसे हम जानते हैं। तो हमें वो इल्यूजन से दूर होके हमें वो ट्रुथ को सीख करना है। तो उसके लिए हमें, ऑफ कोर्स, मुझे लगता है हमें जो है अपनी अंदरूनी जो हमारी जो जर्नी है उसे शुरू करना बहुत जरूरी है। तो हमें इनवर्ड फेस करना पड़ेगा पहले। हम जो है बाहर मुखी होके हैं, अभी सारा दुनिया को देख रहे हैं, बट द मोमेंट वी टर्न इनवर्ड्स एंड मूव इनसाइड अस, तब जो है हम अपने अपने आप को ढूंढ पाएंगे। एंड फॉर मी जो है ना, स्पिरिचुअलिटी का मतलब होता है नोइंग योर स्पिरिट, और स्पिरिट तो सोल ही है, हमारी आत्मा ही है। तो अपने जो असली स्वरूप से जुड़ना, उसी को मुझे लगता है, मेरे हिसाब से वही स्पिरिचुअलिटी है। इट इज बेसिकली, क्योंकि देखिए, जैसे बाहर जो होता है ना, वो आपके भीतर का ही एक रिफ्लेक्शन है जो आप बाहर देखते हैं। जैसे हम बोलते हैं यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, इसका मतलब है कि माइक्रोकॉजम जो है वो वही मैक्रोकॉजम हमें दिखाता है। मैक्रोकॉजम इज द यूनिवर्स एंड माइक्रोकॉजम इज व्हाट इज हैपनिंग इनसाइड अस, इनसाइड आवर बॉडी। तो ये जो पूरी यूनिवर्स है, यही समाई हुई है हमारे अंदर भी, वही वही सारे स्ट्रक्चर्स, वही सारे एलिमेंट्स, वही सारे तत्व सब हमारे अंदर ही हैं। तो जिस वक्त हम जो है कि जगत को जानने का कोशिश करेंगे, वो हमारे लिए बहुत ओवरवेलमिंग लगने लगेगा। तो अच्छा यही है कि पहले हम अपने आप से शुरू करें। तो मुझे मुझे ये भी लगता है कि जैसे ही हम अपने आप को जानना स्टार्ट करेंगे ना, हमारे अंदर एक अजीब सी क्लैरिटी आने लगेगी, क्योंकि हम अवेयर होते रहेंगे कि हम, सपोज कोई इंसान जो है ना, बहुत, सपोज लेट्स से बहुत एंग्री काइंड ऑफ पर्सन है, तो उसे क्या दिखेगा दुनिया में? उसे हर चीज में गुस्सा ही आएगा, हर इंसान के ऊपर उसको एंगर ही आएगा, क्योंकि वो अंदर से बहुत टूटा हुआ होगा। हो सकता है कोई पास्ट अनहील्ड, उसका कोई ट्रॉमेटिक इंसिडेंट उसके साथ हुआ है जो अनहील्ड है, या किसी वजह से वो अपने आप से कभी प्यार ही नहीं किया, तो वो इंसान जो है वो हमेशा गुस्सा करेगा। हम क्या सोचते हैं जनरली कि अरे ये तो इतना गुस्सा है इंसान है, इससे बात ही मत करो, इसको अवॉइड करो, इसको ऐसे करो, बट कोई जानने का कोशिश नहीं करता है कि हर इंसान का अपना पास्ट होता है और उसका जो प्रेजेंट होता है वो बहुत प्रभावित होता है उसके पास्ट से। तो मैं मतलब अपने तरफ से बोलूँ ना समीर जी, तो मुझे हमेशा, मैं किसी को भी पहले देखती हूँ, मैं उसे जज नहीं करती हूँ, क्योंकि हर इंसान जो है ना अपना वो पास्ट लेके आया है, एंड दैट इटसेल्फ इज व्हाट आई फील इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ स्पिरिचुअलिटी, कि आप एकदम न्यूट्रल हो जाइए। आप बहुत ज्यादा अपना जो परसेप्शन है, क्योंकि हमारा परसेप्शन, हमारा बिलीव्स, वैल्यूज, जैसे आप बता रहे थे ना कि वैल्यू सिस्टम से, बिलीव से हमारे जो थॉट्स हैं उसी से बनते हैं, और उसी को अगर हम थोड़ा सा नलिफाई कर देते हैं तो हमारा जो है वो न्यूट्रल पर्सपेक्टिव बन जाता है, तो हम बेहतर समझ सकेंगे किसी और को। सो ये इनर अलाइनमेंट बहुत जरूरी है, जब आपका मन, आपकी जो आपकी आत्मा, आपका जो डायरेक्शन जो भी है आप ले रहे हैं जिंदगी का, वो सारी चीज जो अलाइन हो, तभी आपका जो रिलेशन है अपने साथ वो बहुत ज्यादा फर्म बनते जाएगा, एंड इट विल बिकम डिवाइन इन इटसेल्फ, बिकॉज यू आर देन बिकमिंग प्योर, राइट? एक एक लेयर आपका निकलते जा रहा है, एंड यू आर बिकमिंग ग्रॉस से सटल की तरफ आप जा रहे हो, आप प्योर बनते जा रहे हो, अपने आप यू नो थिंग्स फॉल इन प्लेस, एंड दैट इज वॉट स्पिरिचुअलिटी मीन्स टू मी।
0: राइट, एब्सोल्युटली राइट। अब आपने बिल्कुल सही सही बहुत मतलब नॉर्मल रूटीन लैंग्वेज में ही क्लियर बताया है। अब इम्पॉर्टेंट ये हो जाता है कि मैं कोशिश कर रहा हूं, हम लोग कोशिश कर रहे हैं, आप कोशिश कर रही हैं कि किस तरीके से सभी के लिए। तो अगर हम आज की डेट में हैं तो हम ट्राई करते हैं जो हमारी अगली जनरेशन आ रही है उनके लिए हम थोड़ी चीजें क्लियर करें, क्योंकि बहुत साफ बात है इतना एक्सपीरियंस उन लोगों को अभी नहीं होगा कि वो इतनी गहराई में जाएं इन चीजों की। तो आपको क्या लगता है जो आपने डेफिनेशन अभी दी या एक्सप्लेन किया, यूथ को अगर इसको समझाएं, आज की जनरेशन को इसको समझाएं कि भला देखिए स्पिरिचुअलिटी क्या है, और वो अच्छा मोर ओवर इंपॉर्टेंट चीज ये हो जाती कि यूथ आज की डेट में या कहें तो कभी का भी इस चीज में इंटरेस्टेड होता है कि भाई ये चीज मैं प्रैक्टिस करूं मैम तो मेरे लिए क्या फायदेमंद है। तो हाउ वुड वी एक्सप्लेन दिस टू द जनरेशन, द यंग जनरेशन, कि स्पिरिचुअलिटी ये है और ये आपके लिए ये इसलिए इंपॉर्टेंट है सो दैट यू कैन लिव योर लाइफ पीसफुली। सो हाउ वुड यू एक्सप्लेन दिस टू देम?
1: या मुझे लगता है देखिए आज का जो जनरेशन है वो बहुत इंटेलिजेंट भी है, एंड वी कैन नॉट नेगेट दिस फैक्ट समीर जी। मुझे लगता है बहुत ट्रांसफॉर्मेशन आ चुकी है वर्ल्ड में ऑलरेडी, दे आर वेरी अवेयर। ये बहुत मतलब दिस इज समथिंग विच आई रियली रिस्पेक्ट आज के जनरेशन में। हाँ, दो तरह की चीजें होती है यहाँ पे, बट मुझे लगता है जो इनर सीकिंग है ना, मतलब टू लीड अ पर्पसफुल लाइफ, जो आपने बताया कि हमें क्या मिलेगा इससे, ये जो क्वेश्चनिंग ऑफ द नॉर्म है, नॉट नॉट एक्सेप्टिंग थिंग्स एज इट इज, किसी ने बोला, हमारी मम्मी ने बोला, पापा ने बोला, या वो कर रहे थे इसलिए हमें भी करना है, इट्स नॉट लाइक दैट, एंड इट इज नॉट इन अ, इसका मतलब ये भी नहीं कि वो लोग रिवोल्ट कर रहे हैं इसके अगेंस्ट में, या डिसेंट कर रहे हैं, या वो हमें कन्फ्रंट कर रहे हैं, वो बड़े रिस्पेक्ट के साथ हमें पूछ रहे हैं। एंड आई आई रियली मेरे भी दो बच्चे हैं समीर जी, मेरा बेटा जो है 15 साल का है, बेटी 11 साल की है, तो जब वो, मेरा बेटा ऐसा ही है कि वो हर चीज को ना एक्सेप्ट नहीं करता है नॉर्म को, वो मुझे क्वेश्चन करता है, मम्मा ऐसे क्यों करना है मुझे? और माई माई पॉइंट इज वेरी सिंपल, इट इज नॉट नेसेसरी दैट बिकॉज दिस इज माई पॉइंट ऑफ व्यू आपको ये एज इज एक्सेप्ट कर लेना है। इट इज लाइक आइदर आई कन्विंस यू और यू नो कन्विंस मी, एंड हूएवर कन्विंसेस ईच अदर इज व्हाट वी नीड टू काइंड ऑफ एक्सेप्ट एंड मूव ऑन, राइट. ये जबरदस्ती नहीं है, एनफोर्समेंट नहीं है. तो जैसे मैं बता रही थी, तो एक इनर सीकिंग जो है ना आज के जेनरेशन में कुछ लोगों में ऑलरेडी ये चीज है. अब ये बात अलग है कि देखिए, यंग जब होते हैं बच्चे या एडोलेसेंस या टीनेजर्स में, वो तो हमें सभी लोग वी हैव ऑल्सो गॉन थ्रू, और हमें पता है कि देर इज एन हार्मोनल सर्ज, और थोड़ा सा वो लोग बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस, इंप्रेशनेबल माइंड्स होते हैं उनका, वो लोग इन्फ्लुएंस जल्दी हो जाते हैं बाहर की चीजों से, तो इस वजह से थोड़ा उनका अप डाउन होता है. बट द गुड थिंग इज कि दे सीक, दे आर क्वेश्चनिंग ओल्ड सिस्टम. वो लोग जो है मीनिंग खोज रहे हैं, वो लोग इमोशनल सेफ्टी खोज रहे हैं, पर्पज खोज रहे हैं अपने काम से. तो ये बहुत पॉजिटिव एक इंडिकेशन है. एट द सेम टाइम जो एक चीज जो है ना, कि स्पिरिचुअलिटी का एक ट्रेंड भी बन गया है. ये मैं पर्टिकुलरली यंग जनरेशन को नहीं बोल रही हूँ, दे आर ओनली कंज्यूमिंग, राइट, दे आर सीइंग व्हाट इज बीइंग प्रोजेक्टेड टू देम. बट ये जो ट्रेंड है ना, दिस इज समथिंग दैट आई एम नॉट वेरी कंफर्टेबल विथ. जो आजकल बहुत सारे ऐसे यू नो कुछ भी रील्स बन जाते हैं मैनिफेस्टेशन को लेके, लॉ ऑफ अट्रैक्शन को लेके, सी दीज आर वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग एंड वेरी डीप सब्जेक्ट्स, राइट. स्पिरिचुअलिटी इज अ वेरी वेरी डीप थिंग, इट इज अ वेरी पर्सनल जर्नी किसी की, इट इज नॉट आउट इन द ओपन. हाँ, आप बता सकते हैं, आप अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं कुछ लोगों के साथ जो लोग लाइक माइंडेड है, जो लोग जानना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, सिखाना चाहते हैं, बट इट इज नॉट फॉर एवरीवन इज व्हाट आई फील. क्योंकि बहुत लोग आएंगे, कुछ समझेंगे, कुछ नहीं समझेंगे, एंड यू नो उसको मजाक में उड़ा के चले जाएंगे, विच पेन्स मी ऑनेस्टली. मुझे बहुत ये पेन करता है, क्योंकि आई एम अ स्पिरिचुअल पर्सन इज व्हाट आई फील. एंड अभी यू नो इसको क्या है ना, कि अभी अपियरेंस को भी इसके साथ क्या बोलूं मैं आपको, इसको मिला दिए हैं. लाइक ऐसा दिखना चाहिए, अगर कोई स्पिरिचुअल है तो उसे तिलक लगाना चाहिए, उसको धोती कुर्ता पहनना चाहिए. ऐसा नहीं होता है. स्पिरिचुअलिटी, लाइक आई सेड, इज अ वेरी पर्सनल थिंग, इट्स अ इनवर्ड जर्नी. आप कितना सिंपल इंसान है वो डिपिक्ट करता है, यू नो मन से आप कितना डीप है, कितना डिसिप्लिन्ड है, कितना हम्बल है, कितनी रेजिलियंट है, वो डिपिक्ट करता है आपका स्पिरिचुअल डेप्थ को. और ये जो ट्रेंड वाला चीज है ना, वो मुझे नहीं पसंद है ऑनेस्टली, बिकॉज दिस इज समथिंग. आपको मैं एग्जांपल देती हूँ. इस बार जो ये जो आपका कुंभ मेला जो हुआ था लास्ट हमारा
0: जी,
1: इसमें आप देखिए, आई थिंक फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री 60-70 crore पीपल वेंट देयर. And I have seen, मैंने मेरे कितने जान पहचान के लोग, आप विश्वास नहीं करेंगे समीर जी, they went in the last leg, like last one week, वो फेब्रुअरी का थर्ड वीक, सेकेंड वीक, 20-22 तारीख को वो लोग मतलब टू जस्ट एंश्योर कि दे डोंट मिस अपॉन एनीथिंग, मतलब ताकि वो आके इंस्टा में अपना पोस्ट दे सके. दिस रियली हर्ट मी, बिकॉज आई नो पर्सनली कि दे हैव नो अंडरस्टैंडिंग ऑफ कुंभ. एंड यू नो This is something that I feel is not okay. और ये जो बहुत सारे जो you know just to catch up with the trend जो करते हैं ना, वो नहीं मुझे, I think that is not okay. But otherwise, wherever people are doing with the right intent, नहीं जानना एक चीज है, which is absolutely fine. हर किसी को हर चीज नहीं पता होता है, and वही सीखने का तरीका है. But ये जो है ना कि थोड़ा बहुत वो जो ट्रेंड फॉलो करना जस्ट टू कीप योरसेल्फ अपडेटेड एंड डूइंग इट फॉर द सेक ऑफ ओनली दैट इज समथिंग दैट आई थिंक इज समवेयर दिस जनरेशन नीड्स टू अंडरस्टैंड एंड काइंड ऑफ यू नो टेक अ बैक सीट ऑन. क्योंकि स्पिरिचुअल ये आप देखिए, ट्रू स्पिरिचुअल जो आदमी होगा ना, वो बहुत सॉफ्ट एंड हम्बल होगा अंदर से. ये आपको ऑटोमेटिकली आपको हम्बल बना देगा. दैट डजेंट मीन दैट यू आर वीक. वो आपको बहुत स्ट्रांग भी बनाएगा, बहुत स्ट्रांग, ताकि आप एकदम सेंटर्ड रह सके, आप मोर रिस्पॉन्सिबल हो सके. लेकिन आप परफॉर्मेंस के लिए कुछ नहीं करेंगे, आप दूसरों के एक्सटर्नल वैलिडेशन के लिए नहीं करेंगे, यू विल बी विद इन योर सेल्फ.
0: आई गेट इट. ये सारी चीजें बहुत ज्यादा जरूरी हैं. ट्रेंडिंग होना, फोमो कि को भी वही करना है जो सारी दुनिया कर रही है, अदरवाइज पीपल विल कॉल मी स्टूपिड फूल. ये एक बहुत बड़ा वायरस है जो हम लोगों के अंदर भरा हुआ है, कुछ नहीं कर सकते इसमें. युवाओं की बात हो रही थी, बात हो रही थी कि हम किस तरीके से अपने युवाओं को ये चीज सिखाएं।

0: यस मैम, ऑफ कोर्स। अब बात यह हो गई कि हम लोग इसी दुनिया में हैं, मैं हुई, आप भी, और हम स्पिरिचुअलिटी की सीरियसनेस को या इसकी क्वालिटी को समझ पा रहे हैं। हम ये भी समझ रहे हैं, जैसा आपने अभी अभी बताया, कि यूथ के लिए या जनरेशन के लिए जो कि बहुत ज्यादा एंक्शस है जानने के लिए, वो क्वेश्चन पूछती है, तो उनको भी हमें समझाना है, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है। अब आज के जमाने में, और फिर आपने तो बताया कि आप आईटी प्रोफेशनल रहे 2 decades, 20 years, मोर देन 20 years, तो जो आज की डेट में टूल्स अवेलेबल है, दैट इज सोशल मीडिया। आज के वक्त में सबके हाथ में फोन है और हर वक्त ही सोशल मीडिया में डूबा हुआ है, तो क्यों ना इसका इस्तेमाल कर लिया जाए। मैम, जो लोग समझ पा रहे हैं सोशल मीडिया को इस्तेमाल करते हुए स्पिरिचुअलिटी को अच्छी तरीके से सही रूप में, उसके ट्रू एसेंस में, उसकी आत्मा के तरीके से इनको कैसे समझाया जाए, तो सोशल मीडिया का यूज करें तो हाउ वुड वी डू दैट, क्योंकि तो आप तो आईटी प्रोफेशनल रहे इसलिए पूछ रहा हूं।
1: देखिए, टेक्नोलॉजी का जो है ना बहुत महत्व है समीर जी, हमें सिर्फ उसका यूसेज का ध्यान रखना है। एंड जैसे मैं आपको बता रही थी ना, ये सारी चीजें जो है ये कंटेंट कंजम्पशन रूट में ना चले जाए, ये हमें ध्यान रखना है। इट इज खाली कंज्यूम ना करे, बट टेक्नोलॉजी का बहुत ज्यादा अभी रोल है। एंड स्पेशली सोशल मीडिया जो आपने पूछा ना, वो बहुत एक्सेसिबल कर दिया है, उसने कर दिया है स्पिरिचुअलिटी को, विच इज वेरी गुड। आपको मैं एग्जांपल दे रही हूँ, जैसे पहले मेरी मम्मी इज लाइक 72 years एंड शी इज अगेन अ वेरी रिलीजियस एंड स्पिरिचुअल वुमन, तो उन्हें वो संस्कार चैनल, वो सब जो भी है ना आपका, वो सारे चैनल्स देखना उनको बहुत पसंद है। Now every time she stays some days with me, I mean few months with me and few months with my sister, तो वो जो है जब ही आती है तो, क्योंकि मेरे घर में टीवी देखने का मुझे टाइम ही नहीं है ऑनेस्टली, तो बाकी बच्चे जो देखते हैं अपना, एंड तो मैं जनरली वो चैनल्स एक्टिवेटेड नहीं रखती हूँ। तो जब भी मेरी मम्मी आती थी पहले, तो वो हमेशा बोलती थी कि बेटा मैं तुम मेरे लिए वो चैनल्स वापस से एक्टिवेट करा दो, तो मैं जैसे ही वो आती थी तो मैं उसको वापस से कर देती थी। She used to enjoy all her whatever she watches. Now, अभी जब से वो स्मार्टफोन उनके पास आया है, she doesn't depend on me and those TV channels. क्योंकि she is now self-sufficient. I said कि मम्मी क्या चैनल, बोले कि नहीं टीवी में ठीक है जो है ठीक है, बट जनरली वो सुबह वगैरह वो जब उठ जाती है, वो तो 4 बजे उठती है अपना, एंड वो अपना उठ के गीता पाठ वो सब अपना खुद ही लगा लेती है। मतलब इवन टीवी में भी विदाउट द डिश टीवी शी हैज दिस, वी हैव इंटरनेट राइट, सो यूट्यूब में अपना हरे कृष्णा टीवी जो भी अपना देखना होता है उनको आराम से लगा लेती है एंड बैठ के देखती है वो। और घर में भी कुछ कुछ चलते रहता है मंत्र पाठ वगैरह, तो एक वाइब्रेशन भी बना रहता है अच्छा सा। सो ये बहुत अच्छी बात है। जैसे मैं भी खुद जब ड्राइव, मतलब ऑफिस जाना होता है, कहीं लॉन्ग ड्राइव में मैं जाती हूँ 1 घंटा का, बैंगलोर का ट्रैफिक आपको पता ही है, तो मैं जो है मैं कुछ तो लगा देती हूँ अपना, मतलब यू नो, सो दैट आई एम आइदर आई डू अ गीता सारांश, या फिर मैं सुनते रहती हूँ स्वामी अवधेशानंद स्वामी जी का, उनका अपना देखते रहती हूँ। मैं खुद क्रिया योग में इनिशिएटेड हूँ, तो मैं उसके ऊपर कुछ अपना देखने लगती हूँ। तो जो भी मेरा अपना चॉइस है, या आई लुक फॉर, आई मीन आई हियर फॉर सम लीडर्स का अपना, उनका कुछ सुनते रहती हूँ। सो आई ट्राई टू यूज, तो आप देखिए कितना वो एडवांटेज बन गया हमारा कि सोशल मीडिया है या आपका जो भी टेक्नोलॉजी है उसका हम लोग अगर सदुपयोग कर सके तो उसको हम लोग कितना अच्छे से यूज कर सकते हैं। बट एट द सेम टाइम जैसे ही वो डूम स्क्रोलिंग में आ जाता है, या आप जो बोलते हैं ना बिंज वॉचिंग में आ जाता है कि एवरी सेकेंड यू आर जस्ट स्क्रोलिंग इट विदाउट स्टॉपिंग, तो वो चीज जो है देन इट इज कंज्यूमिंग यू देन राइट, इट इज नॉट हेल्पिंग यू। आपका जो टाइम, आपका जो पूरा दिन, वो जो है हम अपना बेकार कर देते हैं। सो ये इंफॉर्मेशन को लेके जब तक हम अपना पर्सनल डेवलपमेंट में या खुद के ट्रांसफॉर्मेशन के लिए कुछ यूज कर सके, आई थिंक इट इज अ बून, बड़ा ब्लेसिंग है हमारे ऊपर। बट अगर वो ना हो सके देन दैट बिकम्स अ लिटिल चैलेंज। तो और एक चीज
0: जी, जी, जी.
1: या और एक चीज जो मैं थोड़ा सा इस पे बोलना चाहती हूँ कि कभी कभी जो मैं सोशल मीडिया में

0: इंस्टाग्राम एंड वो सब में ना आप देखेंगे कि काफी लोग जो है ना जो इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं वो रेलेवेंस कितना है उनका, जो भी नॉलेज लेवल या अपना लाइफ एक्सपीरियंस से या जो भी है वो लेके बोल रहे हैं विद दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी, या दे आर जस्ट कंटेंट मेकिंग मशीन्स कि जो भी जो भी आज किसी ने किया तो उसको कॉपी करके 4 वायरल, 10 15 20 वायरल वही टॉपिक पे वही चीज पे, चाहे रेवेडी हो चाहे कुछ हो, तो कुछ हो, अब कोई नहीं देख रहा है कि देखो इसका रेलेवेंस क्या है, इसमें सही है कि नहीं है। पीपल कंज्यूम कर रहे हैं ना, बहुत लोग क्या होता है ना जो नहीं डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं ये ओरिजिनल क्या है या ऑथेंटिक कंटेंट क्या है एंड ये सारे जो कुछ फेक भी होते हैं वो सब क्या है, तो उन वो लोग क्या होते हैं ना इन्फ्लुएंस्ड हो जाते हैं। मुझे उसी चीज से थोड़ा सा घबराहट होती है कि मैं बोलती भी हूँ लोगों को एंड समटाइम्स स्कूल्स का भी कभी कभी मुझे बुलाते हैं फॉर सम टॉपिक्स, पर्सनल डेवलपमेंट टॉपिक्स के लिए, बच्चों को बात करने के लिए। तो मैं वही बोलती हूँ बेटा देखो यू हैव टू वॉच थिंग्स फ्रॉम एन ऑथेंटिक सोर्स, किसी का भी कुछ भी नहीं सुन लो, आप थोड़ा सा देख लो एंड देन यू कंज्यूम एंड डोंट टेक एवरीथिंग ऑन इट्स फेस वैल्यू। थोड़ा सा यू रिसर्च, यू स्टडी, यू अंडरस्टैंड एंड देन सी इफ इट इज रियली रेजोनेटिंग आपके साथ, वो बैठ रहा है कि नहीं, ये इंपॉर्टेंट होता है।
1: आई गेट इट मैम, आई गेट इट, दिस इज एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। अब भी जब आप बता रहे थे ना, तो फिर आई रियलाइज्ड वन थिंग विच इज एक्चुअली प्रॉपिंग अप इन माई माइंड राइट नाउ। लेकिन बस मैं आई जस्ट टेक ए स्मॉल पॉज, एक प्यारा सा भजन यहाँ पर पेश करके मैं वापस आता हूँ आपके पास।

0: तो मैम, जैसे आपने अपने इंट्रोडक्शन में भी बताया था, आई गॉट इंट्रीग्ड अबाउट दिस न्यूरो साइंस ग्राउंडेड ट्रांसफॉर्मेशन. तो अभी आपने जैसे सोशल मीडिया के बारे में, उसको यूज करते हुए हम किसे स्पिरिचुअल हो सकते हैं, बताया मुझे. तो आपका जो ये एक्सपर्टीज है न्यूरो साइंस ग्राउंडेड ट्रांसफॉर्मेशन, पहली बात तो मैम इसको थोड़ा सा मुझे समझाइए, और फिर ये बताइए कि इस चीज को कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं विद द अमलगमेशन ऑफ सोशल मीडिया टू गिव अ राइट मैसेज टू टुडेज वर्ल्ड.
1: देखिए, जैसे मैं बता रही थी ना कि 2013 से जब से ये इंसिडेंट्स मेरे लाइफ में हुए, तो आई वाज अ वेरी साइंस ओरिएंटेड पर्सन, रैशनल माइंड, लॉजिकल थिंकिंग, जैसे हमारा होता है ना. बट क्या हुआ ना, जब जब व्हेन आई लॉस्ट माय ब्रदर, आई वाज इन अ कंप्लीट डिनायल मोड. आई डिड नॉट एक्सेप्ट इट फॉर एटलीस्ट 2-3 मंथ्स, एंड इट वाज अ वेरी सडन थिंग विच हैपेंड. एंड तब ना मेरे को ऐसा एहसास हुआ कि लाइफ इज मोर देन व्हाट वी सी विथ आर फिजिकल आईज, विच इज लाइक फ्रॉम बर्थ टू डेथ. देर हैज टू बी समथिंग विच इज बियॉन्ड दीज टू विंडोज, एंड दैट इज वेयर माई ओन क्वेस्ट, मेरा जो क्वेस्ट स्पिरिचुअलिटी का, वो स्टार्ट हुआ. और फिर मैं बहुत सारे बुक्स पढ़ने लगी, अध्ययन करने लग गई. मैं सीखना चाह रही थी, मैं डेस्परेटली गुरु खोज रही थी कि कोई मुझे बताए कि क्या होता है. एंड तब, समीर जी, आप विश्वास नहीं करेंगे, कुछ कुछ मेरे साथ मेटाफिजिकल थिंग्स भी हुए, जो शायद लोगों को, अभी मैं सोचूं तो अभी तो समझ में आता है, तब मेरे लिए भी थोड़ा सा डिफिकल्ट था. एंड देन आई अंडरस्टूड कि नो, दिस इज सो. तब से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई, तो आई स्टार्टेड विथ रेकी हीलिंग. उसके बाद मैंने आकाशिक रिकॉर्ड्स रीडिंग जो होता है ना, कि आप यू नो, आप यू कैन रीड, यू जोन इन टू अ थिंग, हाउ यू सेंटर योर सेल्फ. फिर उसके बाद आप उस पर मेडिटेट करके आप कैसे किसी के रिकॉर्ड्स रीड कर सकते हो, हाउ यू कैन अलाइन योर सोल, व्हाट, हाउ यू कैन नो कि आपका पर्पस ऑफ लाइफ क्या है. तो बहुत डीप वो होने लगा. एंड जब जब मैं बात करने लगी लोगों के साथ, तो फिर जब मैं उनको रीडिंग्स बताती थी, तो वो बहुत उनके लिए भी बहुत हैरत वाले चीज होते थे, क्योंकि उनको भी कभी बहुत कभी उनको ऐसा वो लोग कभी सोचे ही नहीं. बट जैसे जैसे मैं बताती गई, तो उनको फील होने लगा कि हाँ, ऐसा तो है, ऐसा तो है. एंड तब से मुझे और ज्यादा इंट्रीग करने लगा ये. तो मैं फिर ह्यूमन बिहेवियर और न्यूरो साइंस पे बहुत अध्ययन की, स्टडी की. एंड देन आई ऑल्सो डिड माई 5 लेवल्स ऑफ क्लिनिकल एंड स्पिरिचुअल हिप्नोथेरेपी, जहां पे आपका जो है सारा क्लिनिकल, जो भी हिप्नोथेरेपी आप जैसे जानते ही हैं, इट इज वर्ल्ड्स वन ऑफ द वेरी रिनाउंड पॉपुलर बिहेवियरल चेंज टूल, राइट. तो इट इज नॉट स्टेज हिप्नोसिस. बहुत लोगों का मिथ भी है कि स्टेज हिप्नोसिस जैसे किसी को वशीकरण कर लिया, इट इज एब्सोल्युटली कॉन्ट्ररी टू दैट. दिस इज अ थेरापेटिक मोडालिटी. और जैसे आप जानते हैं कि ये जो सारे बड़े बड़े लीडर्स हैं ना, इंक्लूडिंग हमारे जो ओबामा है, या विराट कोहली बोल लीजिए, ऋतिक रोशन, ऋतिक रोशन का जो ब्रेन सर्जरी हुआ था, दैट वॉज अंडर हिप्नो एनेस्थेशिया. माने बिकॉज बिकॉज ही सी इन यूएस एंड अदर प्लेसेस दे गिव अ लॉट ऑफ इम्फेसिस ऑन ह्यूमन राइट्स, राइट, एंड ह्यूमन व्हाट डू यू से, ह्यूमन राइट्स एंड नीड्स. तो वो लोग हर चीज केमिकल इससे नहीं इंड्यूस करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, ही जैसे दिया जाता है वहां पे, चॉइस भी दिया जाता है, फॉर एनी सर्जरी यू वॉन्ट हिप्नो एनेस्थेशिया और रेगुलर एनेस्थेशिया, केमिकल एनेस्थेशिया. सो देर आर मोडालिटी. सो उस पर मैंने बहुत अध्ययन किया, मैंने अपना स्टडीज किया पास्ट लाइफ रिग्रेशन में, सेम लाइफ रिग्रेशन इन बिटवीन, सो लाइफ बिटवीन लाइफ्स में. सो वो सब फिर मेरे न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग में, ये सब जैसे मैंने जैसे जैसे करते गई ना, तो बहुत चीजें ना क्लैरिटी, ये एक तरफ से हो रहा था जहां पे मैं सीख रही थी फ्रॉम डिफरेंट डिफरेंट मेंटोर्स, और दूसरी तरफ से मेरा अपना स्पिरिचुअल प्रोग्रेशन जो हो रहा था अंदरूनी, जिससे मैं अपना साधना कर रही थी. तो पहले तो मैंने इनर इंजीनियरिंग किया, फिर मैं 2018 में, जब मैं बहुत ज्यादा मतलब डेस्परेट थी गुरु के तलाश में, एक बार मैं स्वामी योगानंदा का, मैंने वो द ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी पढ़ा था बहुत पहले, तब तो कुछ नहीं हुआ, बट उसके बाद मुझे एक अजीब सा खिंचाव होने लगा कि जहां पे मुझे कोई तो बता रहा है, कुछ तो हो रहा है, जहां पे मुझे ये पता चला कि देर इज समथिंग दैट आई हैव टू कंप्लीट, आई मीन आई हैव टू रीस्टार्ट फ्रॉम दिस लाइफ, मतलब जो कि मैं पास्ट लाइफ में अधूरा छोड़ी हुई थी. एंड दैट केम टू मी एज क्रिया योग. तो मैं तब बहुत डेस्परेटली, अभी तो गुरु भी आपको पता है कि थिंग्स आर समटाइम्स लिटिल कमर्शलाइज्ड एंड यू नो यू डोंट नो, यही मैं आपको समझा रही थी कि ऑथेंटिक और बहुत अच्छे लोग हैं और हमारी संस्कृति जो है एंड वर्ल्ड में भी आई थिंक एवरी रिलीजन एवरी कंट्री हैज यू नो दीज जेम्स, बट दे आर ऑल हिडन. वी इट इज डिफिकल्ट, इट्स अ डिफिकल्ट पाथ कि हम उन तक पहुंच सके. तो बट आई एम बहुत ग्रेटफुल हूँ और बहुत फॉर्चुनेट हूँ मैं कि मुझे एक लिविंग मास्टर से इनिशिएशन हुआ क्रिया योग का. तो तब मेरा अपना वो भी रूट चल रहा था एंड तो मैं ये दोनों का मिला के, मतलब स्पिरिचुअल और ये जो यू नो द साइंस न्यूरो साइंस पर्सपेक्टिव की व्हाट हैपेंस इन द ब्रेन, सो एक एक लोब्स का क्या होता है, कैसे अमिगडाला सर्वाइवल को वो करता है, कैसे हम यू नो बिहेव, क्यों हम बिहेव करते जो हम करते हैं एट सम पॉइंट इन टाइम, क्यों कोई लोग इस तरह करते हैं, सेम सेम ट्रिगर पॉइंट में एक आदमी किसी तरह बिहेव कर रहा है, दूसरा आदमी अलग तरह से बिहेव कर रहा है, व्हाई डज दिस हैपन. तो ये सारी चीजें, और जब आई स्टार्टेड वर्किंग विथ क्लाइंट्स तो ये बहुत ज्यादा यू नो और रिवील होने लगा एक एक लेयर एज इफ. एंड वही चीज मुझे ना आगे और उस पे रिसर्च करने स्टडी करने के लिए हेल्प करते रहा. आज जो मैं करती हूँ कि अभी बिकॉज आई हैव डन यू नो आई वर्क विथ मेनी पीपल ये 13-12-13 साल में, तो अभी और एक जो वो तो मैं करती हूँ थेरापेटिक प्रैक्टिस, बट उससे भी जो अभी लास्ट 7-8 साल से जो मैंने रिसर्च करके एक बहुत इम्पॉर्टेंट मेरे लिए, मतलब मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट जो चीज है, एक प्रोग्राम है जिसमें मैं प्रेग्नेंट वुमेन के साथ काम करती हूँ, उसका नाम है मातृत्व, जिसमें हम जो है ना गर्भ संस्कार जो हमारे जो अभिमन्यु एंड प्रहलाद के टाइम के जो चीजें हैं या गर्भ उपनिषद में जो लिखा गया है, जो जो हमारे वेदाज में लिखा गया है, उसका जो वो 9 महीने कैसे एक इंसान का एक लाइफ टाइम डिसाइड करता है, दोज 9 months डिसाइड 90 years ऑफ लाइफ, कैसे वो होता है और कैसे वो 9 महीना गर्भ का इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस होल्ड करता है फॉर नॉट ओनली द सोल दैट इज कमिंग एंड इवन प्री कॉन्सेप्शन, कि माँ बाप क्या कर सकते हैं टू इनवाइट यू नो अ पर्टिकुलर काइंड ऑफ सोल, अ प्योर सोल इनटू देयर लाइव्स, उसकी क्या क्या वो है, वो सब के ऊपर मैं यू नो पोस्ट बनाती हूँ सोशल मीडिया में, पोस्ट करती हूँ एंड आई आई डू क्लासेस ऑल्सो, आई टेक ऑनलाइन क्लासेस ऑन दोज ऑल्सो. एक जर्नी है. तो एंड देन ये जो आप सोशल मीडिया के थ्रू से इसका अवेयरनेस स्प्रेड करने का बात कर रहे हैं, ये तो ब्लॉग से या आपके जो पॉडकास्ट से या फिर सोच लीजिए आपका जो भी यू नो डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स में, चाहे थॉट लीडरशिप हो, चाहे आपका यूट्यूब वीडियोस हो, फेसबुक वीडियोस हो, ये जितना हो सके, मतलब डिपेंडिंग ऑन माय बैंडविड्थ मैं करते रहती हूँ ताकि ये अवेयरनेस बढ़ते रहे. तो या इसी पे काम चल रहा है समीर जी.
0: ओके, ऑलराइट, दैट एक्सप्लेन्स अ लॉट ऑफ कोर्स, कि किस तरीके से आपने ये सब चीज़ों को डेवलप किया और किस तरीके से उसका यूटिलाइजेशन आज की जनरेशन के लिए, या आज की जनरेशन छोड़िए आज के वक्त के लिए किया जा रहा है. बहुत सिंपल, बहुत बढ़िया. तो चलिए, विल जस्ट टेक अ पॉज फॉर अ भजन, निर्गुण भजन, जिससे कि हम लोग थोड़ा सा सोच सकें, विचार कर सकें जो कुछ भी आपने अभी तक बताया हमें.

0: बहुत बढ़िया, अमेजिंगली ब्यूटिफुल मैम. बस चलते चलते मुझे ये बताइए, आपको क्या लगता है, वो डू यू थिंक, बिकॉज आप न्यूरोसाइंसेज में भी हैं, आज के जमाने में हैं, डीप स्टडी की है, तो आई सिंसियरली अप्रिशिएट दिस फैक्ट दैट यू माइट बी एबल टू एक्सपेक्ट व्हाट इज गोइंग टू कम इन नियर फ्यूचर और मे बी इन फार फ्यूचर. क्या लगता है आपको, आध्यात्म, स्पिरिचुअलिटी, क्या ये और पावरफुल होगी, लोगों के पास जाएगी या लोग इसको एक्सेप्ट करेंगे एंड मे बी जिंदगी, लोगों की जिंदगी और बहुत खूबसूरत हो जाए. सो व्हाट इज द फ्यूचर ऑफ स्पिरिचुअलिटी, कैन यू पॉसिबली सी?
1: मुझे लगता है बहुत पॉजिटिव फ्यूचर है समीर जी, बहुत ब्राइट है स्पिरिचुअलिटी का, क्योंकि सबसे बड़ी बात जो है ना, अभी बहुत अवेयरनेस आने लगी है लोगों को. लोग अभी जिंदगी ऐसे नहीं जीते हैं, जैसे मैं आपको बताई ना, अभी ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम चल रहा है. मैं भी कभी बचपन में आई हैव नॉट सीन यू नो लिटरल सेंस में स्पिरिचुअल प्रैक्टिस मैंने अपने घर में नहीं देखा. हो सकता है बहुत सारे घर में हो. यस, देयर हैज बीन रिचुअल्स, मंदिर जाना, टेंपल जाना, वो अलग चीज होता है. बट ये जो अपने लिए, बिकॉज एक तरफ देखिए आप, बाहरी दुनिया में ना स्ट्रेस इतना ज्यादा हो गया है, दुनिया इतनी कॉम्प्लिकेटेड होते जा रही है एवरी डे, बिकॉज आप देर इज यू नो टेक्नोलॉजी नाउ AI, देर इज सो मच स्पीड एंड कॉम्पिटिशन, और अनसर्टिनिटी भी बढ़ते जा रही है. इस वजह से जो है ना,

0: ह्यूमन का जो बेसिक नीड है, कोर जो हमारी जो जरूरतें होती हैं, जो कि लाइफ में मीनिंग लाने का, एक ग्राउंडेड रहने का, एक जो इमोशनल सेफ्टी, जो कनेक्शन, जो बॉन्डिंग, जो रिलेशनशिप का जो डेप्थ, अपने अंदर का जो हमारे जो क्या बोलते हैं स्ट्रेंथ, उसको स्ट्रेंथ कनेक्शन को स्ट्रॉन्ग करने का वो जो चाव है वो और ज्यादा बढ़ते जा रहा है। पहले शायद थी, बट अभी मुझे लगता है और ज्यादा होते जा रही है क्योंकि ऑफ द कॉम्प्लेक्सिटी दैट इज हैपनिंग इन द आउटर वर्ल्ड। तो इस वजह से स्पिरिचुअलिटी पे बहुत लोग लीन करने लगे हैं, बिकॉज वो लोग देख रहे हैं कि इससे उनको बहुत फायदा भी मिल रहा है। तो आउटर इंटेलिजेंस तो बढ़ेगी, लेकिन इनर विजडम के बिना जो है वो लाइफ फ्रेगमेंटेड फील होता है लोगों को, और इस वजह से वो लोग जुड़ने लगे हैं। अभी आप देखिए बहुत सारे कल्ट या बहुत सारे जो चीजें हैं, लोग मेंटोर्स गुरुज के पास, एंड एवरी एस्पेक्ट आप देखिए, लीडरशिप में भी, हमारी ऑफिस में, कंपनीज में, एट एवरी लेवल, सीईओ लेवल में भी पीपल आर गोइंग बैक। अभी एक लीडरशिप ट्रेनिंग, अगर मैं आपको बताऊं कि सपोज सीएक्सओ का ट्रेनिंग हो रहा है, इट इज नॉट ऑन टेक्नोलॉजी, उसका जो कोचिंग हो रहा है, बिकॉज आई डू कोचिंग ऑल्सो, वो कोचिंग जो है ना, इट हैज टू बी 360 डिग्री, कि कोई इंसान जो है उसका लाइफ इज लाइक अ पाई, यू नो पिज्जा का जो वो होता है ना, एक एक एक एक स्लाइस जो है एक एस्पेक्ट ऑफ लाइफ डिपिक्ट करता है, उसमें करियर या वर्क या जो भी है वो एक स्लाइस है, उसके साथ उसका रिलेशनशिप, उसका जो फैमिली, उसका जो पैशन एंड उसका अपना जो हॉबीज, फ्रेंड्स, वो सब चीज मिला के उसकी जिंदगी है। तो अगर हम सिर्फ एक ही चीज में फोकस करेंगे तो दैट विल नॉट यील्ड अप, हेल्थ उसमें सफर करेगा या रिलेशनशिप सफर करेगा, या हो सकता है पैसे बहुत कमा रहे हैं लेकिन आपकी बॉन्डिंग ही नहीं है अपनी फैमिली के साथ, बच्चों के साथ, तो एक कोई फुलफिलमेंट नहीं फील होगा। सो इस फुलफिलमेंट को फील करने के लिए ये जो लाइफ में एक बैलेंस होना बहुत जरूरी है, और ये हमें देता है स्पिरिचुअलिटी। ये लोग समझने लगे हैं कि हमें सेंटर्ड रहना है, हमें कॉन्शियस रहना है, इमोशनली कैसे हम रेगुलेटेड रह सकते हैं, और पर्पस ड्रिवन लाइफ लीड करना है। हम 80 साल में पहले क्या था कि रिटायरमेंट तक कर लिया, फिर घर बना लिया, बच्चे बड़े हो गए, ग्रैंड चिल्ड्रन हो गए, वो देख के हम खुश होके हमारी जिंदगी, क्योंकि लाइफ इजी था, लाइफ वॉज सिंपल दैट टाइम, तो उनको दैट वॉज वॉट दे सीक्ड। बट आज की जिंदगी में लाइफ इतना कॉम्प्लिकेटेड हो चुका है कि फाइनली वी हैव टू सोचना पड़ता है कि फुलफिलमेंट कैसे फील होगा। हर हर स्टेप में हमें ये फील होने लगा है। तो मुझे लगता है कि कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ रही है, तो मुझे लगता है अभी हमें और ज्यादा डीपली रूटेड होना पड़ेगा ये ह्यूमन नीड्स के ऊपर, स्पिरिचुअलिटी के ऊपर, एंड जो हो रहा है, एंड इट विल ओनली इंक्रीज।
1: जी बिल्कुल सही बात है। आगे फ्यूचर में यूं तो हम भविष्यवेत्ता नहीं हैं, बट स्टिल वी कैन एक्सपेक्ट थिंग्स टू टर्न अराउंड एंड अच्छी तरीके से हमारी जिंदगी को इन्फ्लुएंशियली अच्छा बनाने की कोशिश हो रही है। बहुत बहुत बढ़िया। तो महुआ मैम, बस चलते चलते मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, जो भी आज इस प्रोग्राम को सुन रहे हैं, आपके थॉट्स जो हैं स्पिरिचुअलिटी को लेकर, उनको क्या कहना चाहोगे आप? गिव अ मैसेज टू देम सो दैट दे कैन टेक इट होम, थिंक ओवर इट एंड स्टार्ट प्रैक्टिसिंग।
0: देखिए सिंपल सा मैसेज यही है कि लाइफ को सिंपली लीड करिए, कोई जरूरत नहीं है कॉम्प्लिकेशंस का, डजेंट मैटर एक्सटर्नल वैलिडेशन का, वो थोड़ा सा पॉज करिए। मुझे पता है आंख जैसे ही बंद करते लगता है सारा दुनिया छूट जा रहा है हमसे, हम पीछे रह गए हैं। ये सबसे बड़ा डर होता है हमारा लाइफ का, बट हर मूवमेंट प्रोग्रेस नहीं होता है। आप मूवमेंट तो किसी भी डायरेक्शन में कर सकते हैं, बट प्रोग्रेस नहीं है वो, प्रोग्रेस तो है जो आप अपना गोल की तरफ कर रहे हैं। तो इसलिए जो है ना, थोड़ा सा मुझे लगता है पॉज करना जरूरी है, थोड़ा सा रुक रुक के, एक एक फेज में, साल में एक बार, 5-6 दिन का, 4 दिन का, आप रुक के ना थोड़ा सेल्फ रेट्रोस्पेक्शन करिए अपना लाइफ का, कि मैं सही भी जा रहा हूँ, कि मुझे रास्ता थोड़ा कोर्स करेक्शन करना है। बस ऐसे आप करते रहोगे ना तो जिंदगी एकदम, आप कहीं गलती का गुंजाइश नहीं है, क्योंकि गलती करेंगे भी तो यू हैव टाइम, यू हैव देन पॉज टू रियलाइज इट एंड मेक करेक्शंस। सिंपल सा है।
1: राइट, अमेजिंग। सो दोस्तों, टेक होम मैसेज जो एटलीस्ट पूरे बातचीत में मवा मैडम से मुझे मिला है, वो इमीडिएटली तो यही है, जस्ट गो स्लो, द म्यूजिक वॉन्ट लास्ट बट योर लाइफ शुड बी, सो टेक इट ईजी, इतनी तेज तेज भागने की जरूरत नहीं है. टेक अ पॉज, टेक अ ब्रेक, थिंक, अपने आप के साथ वक्त गुजारने की कोशिश कीजिए. मामा मैम ने कहा ना, सुबह सुबह एक थोड़ा सा मेडिटेशन, जर्नलिंग, ये सब क्या है, ये वक्त अपने साथ गुजारने की बात है. बहुत खूब मौवा मैम, थैंक यू सो वेरी मच फॉर अ वेरी वेरी एनरिचिंग एक्सपीरियंस वी हैड टुडे. बहुत सारी बातें अभी सोचने की हैं. ऑफ कोर्स आई वुड लाइक, आई डू मेडिटेशन, बट आज की रात में मेडिटेशन का यही टॉपिक होने वाला है मेरे लिए. लेट मी जस्ट थिंक, आपने जो कुछ भी कहा है, तो थैंक यू सो मच मौवा मैम, आपका बहुत बहुत आभार है. I would like to sincerely convey my regards to you and thanks to you. Thank you, ma'am.
0: Thank you so much, Sameer ji. It was so nice. बहुत interesting बातें की आपने आज, और privilege है. मैं भी बहुत आभार व्यक्त करती हूँ आपका और आपके चैनल का, और आशा करती हूँ कि जो भी हमारे ऑडियंस हमें सुन रहे हैं उनके लिए थोड़ा सा भी कुछ भी थोड़ा वैल्यू एड हो पाएगा. With that, thank you so much.
2: भास्कराय नमः.
1: दोस्तों, इसी संदेश के साथ आज के कार्यक्रम दिव्य दर्शन को यहीं विराम देते हैं. आशा है कि ये कुछ पल आपके मन को सुकून और दिन को सकारात्मक दिशा देंगे. मुस्कान के साथ दिन की शुरुआत करें, अच्छे विचारों को साथ रखें और शांति को अपने जीवन का हिस्सा बनाएं. मैं हूं आपका रेडियो दोस्त समीर.

0: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं हमारा खास रेडियो प्रोग्राम, जहां हम बात करते हैं हमारे घर में ही मौजूद हमारे उन प्यारे प्यारे बेजुबान साथियों की, जो हमें सेल्फलेसली बिना किसी इच्छा और चाहत के हमसे मोहब्बत करते हैं, प्यार करते हैं। फिर वो चाहे प्यारे प्यारे कुत्ते हों, बिल्लियां हों या छोटे छोटे नन्हे साथी, यहां आपको मिलेंगी उनकी देखभाल, प्यार और मजेदार किस्सों से जुड़ी हुई बातें। तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि आज का एपिसोड है बेहद खास।
1: तो बिंदु जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे आज के जिंदगी के रंग पेट्स के संग पर। कैसा महसूस कर रहे हैं आप?
2: मैं तो अच्छी हूँ, यहाँ पर तो दिन है, आई एम इन यूएसए इन ह्यूस्टन, सो इट्स द मॉर्निंग
1: जी,
2: और बहुत गर्मी भी है पर मौसम अच्छा है।
1: क्या बात है, क्या बात है।
2: आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमको इनवाइट करने का अपने प्रोग्राम में। एक्चुअली तो बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ आपकी कि आपने मुझे इस प्लेटफॉर्म पे भी इनवाइट किया है।
1: हम भी बहुत एक्साइटेड है मैम, और हम आपका बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं कि आप वहां से समय निकाल के हमारे साथ कनेक्ट हुए आज इतनी प्यारी बातें साझा करने के लिए आपके प्यारे से पेट बेंजी के बारे में। आई कांट वेट टू स्टार्ट दिस एपिसोड।
2: सो डू आई, बहुत बेंजी की बहुत याद आ रही है।
1: I'm sure.
2: जी,
1: तो जैसे कि मैंने इंट्रोडक्शन में बताया, बेंजी एक कॉकस पैनल था और 1990 से 10 इयर्स तक वो आपके फैमिली का एक हिस्सा था, बहुत ही एक क्रूशियल हिस्सा था, एक फैमिली मेंबर जैसा था। तो सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगी कि पेट रखने का जो डिसीजन था, बेंजी को आपके जीवन में अपनी फैमिली में इंक्लूड करने का जो डिसीजन था, वो आपने कैसे लिया और किस तरह से वो जर्नी रही?
2: वो ऐसा हुआ कि जब हम बचपन में इंडिया में ग्रो अप कर रहे थे ना, तो डॉग्स हमारी फैमिलीज के बहुत ही अहम मेंबर्स भी हुआ करते थे
1: जी।
2: तो डिफरेंट ब्रीड्स थे ऑफ एंड ऑन, डिफरेंट साइजेस भी थे, क्योंकि डिफरेंट ब्रीड्स की अपनी अपनी पर्सनालिटी भी होती है। बट तो मोस्टली हम तो छोटे थे तब, और इंडिया में क्या था कि जो पेट्स हम रखते थे बेसिकली वो खेलने के लिए होते थे, उसका मकसद ही ये होता था कि हम भी या फिर गार्ड डॉग्स होते थे, सेफ्टी के लिए भी लोग रखा करते थे। तो हमारे पास कुछ बड़े भी थे लाइक जर्मन शेपर्ड या कुछ, और फिर छोटा मेरे पास एक वो भी था, रशियन सेमोइड भी थे। रशियन सेमोइड जो था वो मोर लाइक कंपेनियन, डेकोरेटिव, इनडोर इस तरह का था
1: जी।
2: और जर्मन शेपर्ड जो था वो थोड़ा बाहर का आउटडोर डॉग था, वो बहुत रखवाली करता था हमारी
1: जी जी,
2: तो कंपेनियनशिप भी हो जाती थी
1: सरे।
2: और फैमिली को एनिमल से बहुत लगाव था
1: जी,
2: तो जिनके होते खुशी और प्यार में बहुत महसूस होता था आसपास।
1: बिल्कुल बिल्कुल, मैं इमेजिन कर सकती हूँ मैम। आप जब बेंजी को अपने जीवन में लाए तो बहुत सारी चेंजेस आपको लाने पड़े होंगे अपनी जिंदगी में, अपने लाइफस्टाइल में, घर के माहौल में। तो क्या प्रेपरेशंस आपको करनी पड़ी? जैसे आपने बताया कि आपके पास हमेशा पेट्स रहे हैं, पर जब आप यूएस में थे तो वहां के हिसाब से क्या कुछ स्पेशल प्रेपरेशंस थी? किस तरह से आप चेंजेस लाए, और बेंजी ये क्यूट सा नाम किसने डिसाइड किया?
2: तो बेंजी जो था एक्चुअली जो यूएसए में एक सेलिब्रिटी टेलीविजन डॉग हुआ करता था, एकदम जैसे हमारे बेंजी की जो वही उसका शक्ल भी वैसी और उसका जो कलर था वो भी एग्जैक्टली सेम था, तो तभी शायद उसका नाम भी बेंजी पड़ा जिन्होंने भी उसको पहले लिया था
1: जी।
2: तो 70s में क्या था कि बेंजी यूज टू बी एक प्रॉपर सीरीज हुआ करती थी टेलीविजन की,
1: राइट?
2: तो तब बेंजी का नाम भी वैसे ही पड़ा, और चेंजेस जो थे काफी आए हमारी लाइफ में। और जैसे आपको पहले बताया कि इंडिया में काफी हेल्प होती थी, डोमेस्टिक हेल्प होती थी ना, तो उनको जो खाना सही टाइम पे मिले या उनको बाहर घुमाने को जाना है तो ये सब होता था। पर जब हम यूएसए में आए तब हमारे पास ये हेल्प तो नहीं थी,
1: करेक्ट?
2: और कुछ तो वो चेंजेस हमको जरूर करने पड़े थे अपनी लाइफ में यहाँ पे, क्योंकि बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है एक पेट को रखना, खासकर एक जैसे कुत्ते को रखना. एक ऐसा टाइम भी था जब मेरे पास एक बिल्ली भी हुआ करती थी जब हमारे बच्चे नहीं थे. तो कुत्ता और बिल्ली दोनों जैसे इकट्ठे भाई बहन की तरह ही होते थे, तो मस्ती बहुत करते थे, बहुत
1: क्यूट.
2: अगर टाइम बचेगा बाद में तो मैं आपको उनकी भी कहानियां सुना सकती हूँ, पर अभी हम लेट्स जस्ट स्टिक टू आपका जो फॉर्मेट है ना.
1: जी, इसी के साथ अगर मैं आगे इस क्वेश्चन को बढ़ाना चाहूं और यहीं पे आपको इलैबोरेट करने का एक छोटा सा मौका दूं कि आपका बेंजी के साथ बिताया हुआ सबसे क्यूट मोमेंट जो आपको आज भी याद आता है तो हंसते हंसते आंसू निकल आते हैं, तो वो कौन सा होगा?
2: पता है मोमेंट्स तो बहुत थे तनुषा, क्योंकि और जैसे मैंने उसकी प्रोफाइल में शेयर किया था आपसे कि वो जो लम्हा था ना जब वो हम उसको लेने गए और हमने अपनी वैन का साइड डोर खोला, मेरा बेटा पीछे बैठा हुआ था, तो वो दरवाजा तो खुला रखने के लिए और ये दौड़ के आके हमारी बस वैन के अंदर घुस गया और बैक सीट के ऊपर बैठ गया
1: जब आप उसे लेने गए थे उस टाइम.
2: हक के साथ, एकदम हक से और एकदम डट के, और बिल्कुल जैसे हम उसको देख रहे हैं कि ये कौन है डॉगी, इतना सुंदर कुत्ता है और ये तो नहीं हो सकता, बिकॉज व्हाई वुड एनीबॉडी वांट टू पार्ट विद सच अ ब्यूटीफुल क्रिएचर, यू नो, इस तरह से हमको लगा. तो ये बेंजी आके हमारे बैठ के आके पास में और कभी कभी लगता है, और वो उठ ही नहीं रहा था वहां से, बट समझ में आया बाद में कि यही वो था जिसको हम लेने आए थे और उसका उतरना है. तो मुझे ऐसे लगता है कि इंस्टिंक्टिवली कि जानवर हमें हमसे ज्यादा जांच लेते हैं, जैसे कौन उनसे प्यार करेगा या कौन प्यार करता है, whether we are animal lovers or not. तो you know, इस तरह से हमें लगा. तो अब वो हिले ही ना वहां से, तो अब वो हमारा ही हो गया. तो एक बहुत ही मेमोरेबल मोमेंट हमें मेरी मेमोरी में रहता है कि वो जो लम्हा था ना उसने हमको चूज किया, हमने उसको नहीं चूज किया, यू नो,
1: जिस तरह से यू नो हम अपने फ्रेंड्स चूज करते हैं उसी तरह से कहीं कई बार पेट्स हम पेट्स को नहीं, पेट्स हमें चूज करते हैं. और जैसे आपने बहुत राइटली पॉइंट आउट किया कि वो इंस्टिंक्टिवली समझ जाते हैं कि कौन उन्हें किस तरह का प्यार दे सकता है, केयर दे सकता है, तो बहुत इंस्टिंक्टिव होते हैं स्पेशली डॉग्स. तो उसमें आई थिंक दे एस एट इट. एंड आई कैन इमेजिन आपने कितने खूबसूरत लम्हे बेंजी के साथ बिताए होंगे उन 10 सालों में. इसी गहरी बात के साथ, इन्हीं प्यार भरी बातों में हम एक पहला गीत सुनेंगे हमारा आज का. मैम अगर आपकी कोई फरमाइश हो तो आप बताएं.
2: नहीं, कुछ ऐसा नहीं है, आप अपनी फरमाइश बताइए और बाद में अगर आपको टाइम हो बाद में तो मैं कुछ और भी लम्हे शेयर करूंगी आपके साथ.
1: बिल्कुल मैम, समय ही समय है आज तो हमारे पास, बहुत सारी बातें करेंगे आगे. अभी चलिए एक खूबसूरत सा गीत सुनते हैं, आओ मनाएं जश्न-ए-मोहब्बत, फिल्म दूसरा आदमी.

0: खूबसूरत गीत है ये। आगे चलते हैं मैम, आपके हिसाब से, बिकॉज आपने अगेन आई वुड लाइक टू पॉइंट आउट अगेन कि आपके पास पेट्स एनिमल्स हमेशा रहे, यू ऑलवेज बिन अ पेट ओनर अ पेट पेरेंट, तो आप बिकॉज आपके पास इतना एक्सपीरियंस है, उस एक्सपीरियंस के हिसाब से अगर आप हमारे श्रोताओं के साथ साझा करना चाहें कि पेट केयर में सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या होती है।
1: मेरे हिसाब से सबसे ज्यादा तो पेट्स प्यार मांगते हैं और उसके साथ साथ जस्ट लाइक फैमिली मेंबर्स की तरह और उसके साथ जो सही वक्त पर और सही किस्म का खाना हो उनको घुमाना है, पर उनकी रेगुलर फिजिकल एक्सरसाइज भी बहुत इम्पोर्टेंट है, उनकी मेडिकल केयर, उनके वैक्सीनेशंस के साथ अपडेटेड रहना हो, तो ये सब चीजें बहुत ज्यादा मतलब पेट केयर में शामिल होती हैं। उसके बगैर जैसे अपनी फैमिली के लिए बच्चों के लिए आप केयर करते हैं उसी तरह इनके साथ भी पेश आना चाहिए, बहुत इम्पोर्टेंट मुझे लगता है। और मैं आपको इसके साथ

0: बताती चलूं कि हमारा बेंजी एक एपिलेप्टिक था.
1: हाँ,
0: उसको एक मेडिकल कंडीशन थी जो जब वो हमारे घर पे आ गया उसके दो तीन दिन के बाद हमने नोट किया कि फ्राइडे शाम की बात कर रही हूँ और फ्राइडे थी और सडनली मैंने देखा बेंजी को सीजर्स हो रहे हैं. तो मैंने तो कभी ना सोचा था ना कभी सुना था कि डॉग्स को भी
1: एपिलेप्सी होती है.
0: हो सकती है. तो आई टोटली फ्रीक्ड आउट. को समझ में नहीं आया ये क्या हो रहा है इसको. और फ्राइडे नाइट थी, सब कुछ बंद था, कोई वेटनेरियन नहीं था कोई, और हम लोग इस शहर में भी थोड़े बहुत नए थे तो कुछ ज्यादा जानकारी नहीं थी मुझे कोई पेट हॉस्पिटल है पास है कुछ. तो जब तक हमको उन दिनों में टेलीफोन डायरेक्टरीज भी हुआ करती थी ऑनलाइन तो कुछ नहीं. अब ना मैं आपको 90s की बात कर रही हूँ. तो वो क्या हुआ, जब तक मुझे एक फोन नंबर मिला एक एनिमल हॉस्पिटल का तब तक बेंजी का सीजर खत्म हो गया. ओके. और फिर जब मेरी बात हुई जिन्होंने भी फोन उठाया दूसरी तरफ से तो उन्होंने सबसे पहले मुझसे पूछा कि कौन सी ब्रीड है आपकी. कॉकर स्पैनियल है. तो वो बोले कि कॉकर स्पैनियल्स में सबसे ज्यादा ससेप्टिबिलिटी होती है फॉर सीजर्स. जो मुझे बिल्कुल मालूम नहीं थी क्योंकि कभी कॉकर स्पैनियल तो ये फर्स्ट टाइम ही हमारे घर आया था. तो उससे बहुत ज्यादा जानकारी बढ़ी हमारी. और फिर उसके बाद एनीवे जब मंडे आया तो हम उसको अपने वेटनेरियन के पास ले गए यहाँ पे. तो देन ही वाज प्लेस्ड ऑन फिनोबार्बिटॉल जो एंटी सीजर मेडिकेशन होती है ना. तो वो बेंजी को दिन में दो बार ही मिला करती थी. और तो उसकी सेफ्टी के लिए और मतलब वो उसको हम एक ब्रेड के उसके अंदर डाल के ऊपर से फेंकते थे तो वो एकदम मुंह से कैच करता था और खा जाता था. तो नहीं तो इट्स नॉट ए वेरी टेस्टी. हाँ. और फिर उसके लिए हमने एक पोर्टेबल डॉग कैरियर भी लेके रखा हुआ था घर पे क्योंकि जब भी हम घर छोड़ के जाते थे अगर उसको सीजर होता है तो ही वॉज इन साइड अ कंटेन्ड स्पेस और उसको इंजरी होने से बचाता था वो. हाँ
1: करेक्ट. कि वो खुद को भी हार्म नहीं करे एंड सराउंडिंग्स को भी हार्म ना कर पाए ऐसी सिचुएशन में. बहुत ही डिफिकल्ट रहा होगा मैम ऐसी सिचुएशन में उसको. आई एम श्योर एक्स्ट्रा केयर एक्स्ट्रा प्यार भी देना पड़ा होगा. और जैसे आपने बहुत सरलता और सुंदरता से बताया कि सबसे पहली चीज तो प्यार है और फिर उसके बाद बाकी सभी चीजें आती हैं. जैसे आपके डॉग को स्पेशल कंडीशन थी तो आई एम श्योर स्पेशल केयर स्पेशल लव सभी चीजें एक्स्ट्रा आपको ध्यान देना पड़ा होगा उन 10 सालों में जब आपके पास बेंजी था. तो बहुत ही जी. क्या इससे आपके घर में आपके जो बच्चे थे आई एम श्योर आपके बच्चों के ऊपर भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आई होंगी उनने भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज शेयर की होंगी. तो क्या आपको लगता है कि पेट्स घर में लाना बच्चों के लिए बेनिफिशियल होता है, किस तरह से वो उन्हें शेप करता है?
0: मेरे ख्याल में तो इसका आंसर मैं यस बोलूंगी एंड आई कैन ओनली स्पीक अपने एक्सपीरियंस के साथ कि हमारे बच्चों ने भी बेंजी की प्रेजेंस से बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी सीखी काइंडनेस सीखी एम्पथी सीखी और कैसे एनिमल्स की तरफ प्यार दिखाना और उनकी रिस्पेक्ट करना जस्ट लाइक अ फैमिली मेंबर क्योंकि अब वो तो हमारा फैमिली मेंबर ही हो गया था ना. तो बच्चों को भी बहुत मतलब सेंसिटिविटी रही इस कंडीशन से जो बेंजी थी क्योंकि फिनोबार्बिटॉल के साथ क्या होता है कि एंटी सीजर मेडिसिन होती है तो उसके साथ थोड़ी सेडेशन भी आ जाती है ना. बेंजी बहुत एक्टिव नहीं तो होता क्या था कि नॉर्मली डॉग्स के साथ बच्चे खेलते हैं कूदते हैं खूब करते हैं और बेंजी भी करता था जब अपने मूड में होता था तो. पर बिकॉज उसकी मेडिकल कंडीशन इस तरह की थी तो उसका थोड़ा सा यू नो सेडेशन इफेक्ट भी होता था.
1: राइट. बहुत एक्टिव नहीं रहता था. जी. बिल्कुल. जैसे घर में एक छोटा बच्चा जब बीमार होता है तो हम सब उसकी एक्स्ट्रा केयर करते हैं एक्स्ट्रा प्यार करते हैं. तो ये तो बेजुबान जानवर है. तो आई कैन इमेजिन एंड दिस इज वेरी सैड टू नो दैट ही हैड दिस कंडीशन. हाउएवर आई एम वेरी प्राउड कि आपने उसे 10 साल अपने साथ रखा और इतनी केयर और इतना प्यार दिया. बहुत ही खूबसूरत बात है मैम ये. इसी के साथ क्या ऐसे भी मोमेंट्स होते थे जब आप लो फील कर रहे हैं, घर का माहौल थोड़ा सा लो है, तो बेंजी के कुछ रिएक्शंस ऐसे हों जो आपको चीयर अप करने की कोशिश करता हो, क्या ऐसे कभी एक्सपीरियंसेस हुए?
0: ऑफ कोर्स बहुत ज्यादा एक्सपीरियंसेस हुए. मैंने कहा ना, एनिमल्स ये इंस्टिंक्टिवली समझ जाते हैं जब आप उदास हो या आप लो फील कर रहे हो.
1: हाँ जी.
0: और ये तो कभी कभी ह्यूमंस भी नहीं फील करते कभी कभी बहुत.
1: नहीं, देखते हुए भी अनजान बनते
0: तो
1: हैं हम, साथ रहते हुए भी.
0: हाँ, और ये एनिमल्स में एक खासी जैसे होता है, इट्स अनदर सेंस. तो जब मेरा बेंजी मुझे इस तरह कभी देखता था या फिर बच्चों को भी इस तरह होता था, तो बहुत प्यार से जाके पास में बैठ के अपना एक पॉ उनकी गोद में रखता था, मेरी गोद में रखता था के, और जैसे ट्राइंग टू टेल मी कि कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा, इस तरह से. जस्ट
1: अडोरेबल.
0: जस्ट रीअश्योरिंग दैट मैं हूं ना, सब ठीक हो जाएगा, जो रीअश्योर कराता था मुझे.
1: अडोरेबल.
0: इस तरह वो फीलिंग आती थी मुझे. और मैं संगीत में काफी इन्वॉल्व रहती हूँ, तो मैं जब भी रियाज करती थी तो ऑफ कोर्स मेरे मुंह पे तो खुशी आती ही थी, बट बेंजी को भी लगता था कि ये म्यूजिक कीप्स मी वेरी वेरी हैप्पी, और वो मेरी बेस्ट ऑडियंस भी होता था. वो इतने प्यार से आके के सुनता था. ठीक कह रही हूँ, कभी कभी धीरे धीरे उसके मुंह से हमको हमिंग भी सुनाई देती थी.
1: वाओ.
0: आई एम टेलिंग यू, इट वॉज सच अ मेमोरेबल यादगार है.
1: एंड सो यूनिक.
0: बहुत यूनिक था, क्योंकि कभी कभी अगर घर के आसपास से एम्बुलेंस भी जा रही है ना, सायरन बजता था,
1: जी.
0: तो ये सायरन की आवाज निकालने की कोशिश भी करता था.
1: ओह, सच अ म्यूजिकल पेट. आई
0: बता रही
1: थिंक द
0: हूँ.
1: पेट पेरेंट ग्रू ऑन बेंजी. आपकी जो आपका जो मेलोडी है दैट ग्रू ऑन हिम एंड ही बिकेम एज मेलोडियस एज यू. अब आपने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात हमारे साथ साझा कर दी है कि आप म्यूजिक में बहुत इन्वेस्टेड और इंटरेस्टेड हैं, जो मैं वैसे तो जानती हूँ, बट हमारे श्रोताओं के लिए भी बता दूं कि बिंदु मैम बहुत खूबसूरत गायकी करती हैं. तो एंड में आप हमें एक गीत तो जरूर सुनाएंगे बेंजी के नाम.
0: बेन जी के नाम से, ओ माय गुडनेस, ये तो यू आर कैचिंग मी टोटली अनअवेयर, बट
1: आप कोई सा भी गीत,
0: सोचना पड़ेगा
1: एनीथिंग
0: थोड़ा.
1: एनीथिंग एनीथिंग दैट कम्स टू यू नेचुरली, बट वो डेडिकेटेड होगा बेंजी को.
0: जरूर जरूर कोशिश करूंगी, जो मेरे बच्चे भी गाया करते थे उसके लिए. मैं भी गाती थी
1: जी
0: कभी कभी, तो हाँ,
1: जी
0: तो मैं आपको बता रही हूँ. तो कभी कभी वो जैसे बोला ना, अपना एक पॉ रखता था मेरे ऊपर और जस्ट रीअश्योर कराने के लिए. फिर कभी कभी जाके मेरी म्यूजिक इक्विपमेंट के पास या मेरे माइक के पास बैठ जाता था कि मैं वेट कर रहा हूँ, अभी तुम गाओ. वेरी वेरी अच्छा, बहुत ही अच्छे
1: वेरी
0: मोमेंट्स रहे वो
1: मेमोरेबल.
0: मेरे साथ.
1: या वेरी मेमोरेबल. चलिए, इन्हीं प्यारी बातों, इन्हीं सुरीली बातों के बीच में हम एक और गीत सुनेंगे. आती रहेंगी बहारें, जाती रहेंगी बहारें, फिल्म कस्मे वादे.
0: श्योर.

0: वेलकम बैक बिंदु मैम। गीत से पहले हम बहुत सारी गीतों भरी बातें कर रहे थे, कैसे बेंजी भी एक म्यूजिकल डॉग था और आपके म्यूजिक लेसन्स में, आपकी म्यूजिक लर्निंग में आपका साथ देता था, आपकी ऑडियंस बनता था और खुद भी गाने की कोशिश करता था। तो ये तो हुई मैम मजे की बातें। अब बिकॉज हम एक शो कर रहे हैं जिसमें हम चाहते हैं कि पेट्स की तरफ जो अवेयरनेस है, जो नए पेट पेरेंट्स बन रहे हैं, अडॉप्शन के लिए जा रहे हैं, बहुत सारे लोग सेंसिटिव हुए हैं इन द लास्ट वन डेकेड आई थिंक। तो आपकी तरफ से, बिकॉज यू सच एन एक्सपीरियंस्ड पेट ओनर एंड पेट पेरेंट, कोई एडवाइस अगर आप देना चाहें तो वो क्या होगा?
1: तनुषा, ऐसा है कि पेट्स को लेने से पहले बहुत सारी मैं इंडिया की बात भी कर रही हूँ कि लोग रखते हैं जस्ट फॉर लाइक अ स्टेटस सिंबल या फिर अ प्ले थिंग या फिर सुंदर लगता है तो उसको रख लो घर में। तो सबसे पहले तो मैं ये कहूंगी कि आप रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो है ना, जो पेट्स के साथ एसोसिएटेड रहती हैं, आप उनको पहले समझिए एंड डोंट गेट पेट्स इफ यू आर अनेबल टू टेक केयर ऑफ।

0: हमको हल मिल जाते हैं जो दिमाग में चल रहे हैं. तो हमारी मम्मी बहुत ही पर्टिकुलर थी कि इनको सही तरीके से इनकी देखभाल की जाए, पेट लेने से पहले समझ लो कि ये सब चीजें आपको करनी पड़ेंगी. और फिर डिसिप्लिनिंग द पेट्स इज ऑल्सो वेरी वेरी इम्पोर्टेंट.
1: एब्सोल्युटली.
0: क्योंकि यू नो कई पेट्स को आप अगर ठीक से नहीं डिसिप्लिन करेंगे या उनकी ट्रेनिंग नहीं करेंगे थोड़ी बहुत, तो कभी कभी बहुत एम्बेरसिंग मोमेंट्स भी आपको देखने पड़ेंगे. फिर फिर वो किसी को जाके बाइट कर लें, कुछ ऐसा कर लें, तो वो भी अभी जरूर इंडिया में बात अलग है, पर यूएसए में क्या होता है कि इफ यू आर नॉट अ रिस्पॉन्सिबल पेट ओनर तो पीपल कैन फाइल अ लॉ सूट. आपके किसी को काट लिया जाके, आपने अगर लीश पे नहीं रखा है डॉग को, आप अगर घुमाने जा रहे हैं, तो देयर इज अ प्रॉपर लीश लॉ.
1: राइट, इट्स अ टॉट.
0: यस, दैट इज वेरी वेरी इम्पोर्टेंट. अभी मुझे मालूम नहीं, बहुत अरसा हो गया है इंडिया को छोड़े मुझे, तो मुझे पता नहीं शायद वहाँ पे भी कुछ तब्दीली होगी, पर यहाँ पे तो ये जबरदस्त है. और इसका भी मैं आपको एक किस्सा सुनाऊंगी टाइम परमिट.
1: बिल्कुल.
0: वो बहुत मेमोरेबल है मेरे लिए. मेरे डॉग के साथ नहीं हुआ, पर मैंने किसी और डॉग को रिसासिटेट करके जान बचाई थी. तो इस तरह से मैं आपको वो भी बता दूंगी बाद में अगर.
1: नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल मैम, यू कैन शेयर इट राइट अवे. बिल्कुल टाइम है जी.
0: तो वो ऐसा था कि हमारी नेबरहुड में एक डॉग ओनर थे, हमको जानते भी थे, हमारे देसी थे, सिंधी लोग थे. उनका एक छोटा सा डॉग था, शिवावा था. अब शिवावा को आपने देखा है कि वो इतना छोटा होता है कि आपके पॉकेट में भी आ सकता है.
1: यस,
0: इट्स अ वेरी स्मॉल डॉग. तो मैं अपनी नेबरहुड में मम्मी कहीं पे मुझे विजिट कर रही थी और किसी के घर पे थी, उनको लेने जा रही थी, कोई इमरजेंसी हो गई थी. तो रेजिडेंशियल एरिया में तो जगह जगह पे वो भी होते हैं ना, आपके स्पीड ब्रेकर्स होते हैं, तो थोड़ी थोड़ी सो यू कैन नॉट इवन ड्राइव वेरी फास्ट, यू नो 10 या 15 मील की स्पीड के ऊपर आप चला रहे हैं. सडनली मैंने देखा, दोपहर का टाइम था, इट वॉज आफ्टरनून, और लोगों के घर भी बड़े बड़े हैं, लॉन्स हैं यहाँ पे, तो किसी का स्प्रिंकलर भी चल रहा था. और ये जो अपने डॉग को घुमा रहे थे, ये सड़क के एक तरफ चल रहे थे और जो इनका डॉग था वो सड़क के दूसरी तरफ चल रहा था, साइड वॉक पे. अभी सडनली मुझे ऐसा लगा कि मेरी कार में कुछ अटका जैसे. तो हाँ, और मैंने अपनी रियर व्यू से, अपनी कार की रियर व्यू मिरर से देखा, तो देखा कि ये जनाब जो इनके ओनर थे, वो आके उन्होंने कोई चीज अपने हाथ में उठाई, छोटी सी तो थे वो द डॉग. तो मेरे से रहा नहीं गया, मुझे ऐसे लगा बहुत. हालांकि मेरी अपनी फैमिली में इमरजेंसी थी, मम्मी को लेने जा रही थी, बट आई टर्न माई कार अराउंड और तो लगा कि अरे मुझे तो ऐसे लगता है मैंने किसी का पेट को हिट किया है. तो मैंने अपनी गाड़ी रोकी और मैं जाती हूँ, उसको शिवावा को अपने हाथ में उठाया, एंड आप मानेंगे नहीं, उसकी जीभ बाहर निकली हुई थी, उसकी आंखें एकदम खुली थी और डायलेटेड थे उसके. और बिकॉज मैं हेल्थ केयर प्रोफेशनल टू, तो ये चीजों पे गौर भी करती हूँ मैं. तो एकदम नेचुरल आता है मेरे संग. देखा कि दिस डॉग प्रैक्टिकली डेड.
1: ओह माय,
0: यू नो. हाँ, तो मैंने उसको कुत्ते को हाथ में उठाया एंड द फर्स्ट, और मैं सीपीआर इंस्ट्रक्टर भी हूँ
1: जी जी,
0: हेल्थ केयर फैसिलिटी में. तो वो एकदम जैसे इंस्टिंक्टिवली मुझे लगा कि ये तो कुत्ता ब्रीथ नहीं कर रहा है.
1: right.
0: और मैं उसको माउथ टू माउथ तो नहीं देना चाह रही थी, पर मैंने अपने हम के साथ ना, जैसे बेबीज को हम रिससिटेट करते हैं, न्यूबॉर्न्स को, तो हमने उसके आई स्टार्टेड गिविंग हिम लाइक थंब के साथ उसको कंप्रेशन के हार्ट के. मैंने कहा इतनी कहीं, अभी मैं कुत्ते का एनाटॉमी नहीं जानती,
1: बट
0: ये कहा कि छोटा सा है, यहीं कहीं इसका दिल भी होगा,
1: दिल है. राइट.
0: तो मैंने उसको अपने थंब के साथ, एक हाथ के साथ उसको कंप्रेशन देने शुरू करे. अंदर से मैंने आई वॉज प्रेइंग कि ये भगवान इस कुत्ते को बचा लो.
1: बिल्कुल.
0: जिस तरह से, और क्योंकि वो जो थे उनके ओनर थे, वो भी आए ऊंची ऊंची रो रहे हैं. उस कुत्ते का नाम था गोंजो.
1: राइट.
0: तो वो मैं भी आज तक भूली हूँ, इस बात को बहुत अरसा हो गया है.

0: गॉन्जो डोंट गो, डोंट गो गॉन्जो डोंट गो, इस तरह से वो मुझे चीख रहे थे. और विद इन 5 to 7 minutes की जब मैंने कंप्रेशन करी उसको, तो सडनली उसने अपनी आंख को झपका.
1: ओह माय.
0: हाँ, उसकी आंखें एकदम खुली थी ना, बताया एकदम डायलेटेड वगैरह. तो उसने अपनी आंख को झपका, तो मैंने थोड़ी सी दिल में उम्मीद आ गई कि ये
1: बच सकता है,
0: इज कमिंग बैक टू लाइफ. और जिस घर के बाहर ये सब हो रहा था, ये उनका घर भी नहीं था, ये तो उनके घर से काफी दूर था. बट उनका लॉन स्प्रिंकलर चल रहा था वहां पे. तो मैंने उसकी डॉग की तो जो जीप थी वो तो ऑलरेडी बाहर लटक रही थी. तो हमने थोड़ा सा पानी लेके उसकी जीप के ऊपर रखा, तो उसने उसको पी भी लिया. सो यू नो दिस डॉग एक्चुअली केम बैक टू लाइफ.
1: ओह माय गॉड.
0: और तो फिर अभी मुझे आगे जाना था, अपनी मम्मी को पिकअप करना था कहीं से, तो थोड़ा इमरजेंसी था मेरे लिए. तो मैंने इनको बोला आप ऐसा कीजिए कि आप इसको अपने वेट के पास ले जाइए और इसको चेकअप करा लें, अभी मुझे आगे जाना है. तो बोले कि हमारा तो वेट ही नहीं है.
1: बताएं.
0: तो मुझे अंदर से गुस्सा, हाँ मुझे इतना अंदर से गुस्सा आया. आई टेल यू, तो वही मिला नेबरहुड के बाहर ही एक शॉपिंग स्ट्रिप थी, वहाँ पे उनका हॉस्पिटल था, तो अपने डॉग को वहाँ ले जाती थी. अभी इतना महंगा कुत्ता आपने रखा है, शिवावा रखा है, और आपके पास इसका
1: वेट नहीं है.
0: हाँ, तो इसकी भी प्रॉपर केयर आप कराइए तो सही. तो मैंने उनको बोला लीजिए मेरी चाबी पकड़िए, आप मेरी कार चलाइए और मैं आपके कुत्ते को ऑब्जर्व करती रहूंगी, एंड आई विल गाइड यू, आप हमारे वेट के पास मैं आपको ले चलती हूँ.
1: राइट. इमेजिन.
0: मैंने ऐसे ही किया. हाँ, तो मैं उसको ले गई. वहाँ पे मेरी मम्मी वेट कर रही है कि देर हो गई अभी. एनीवे, मुझे जैसे लगा ना किसी जैसे ह्यूमन की लाइफ हम बचा रहे हैं, वेरी इम्पोर्टेंट कि इसको फॉलो अप भी करना है. तो मैं अपने वेट के पास इनको ले गई, और उनका नाम डॉक्टर कीडो था
1: जी,
0: और अभी भी है उनका पेट हॉस्पिटल वहीं पे
1: जी.
0: तो एनीवे, उनको हमने बताया पूरा किस्सा. मैंने कहा आप नाउ दिस डॉग इज योर्स, और मेरे को जाना है आगे, तो आप उसको प्लीज रखिए. अभी वहां से मैं निकली बाहर, और मम्मी को मैंने वही नेबरहुड में से लिया और मम्मी को पूरा किस्सा सुनाया. तो अब मम्मी भी तो डॉग लवर है, तो उनको एकदम इतनी कंसर्न हो गई कि ओए वो कुत्ता, वो कुत्ता, वो पंजाबी हम लोग हैं, वो कुत्ता बेचारा.
1: आई कैन इमेजिन मैम. जी जी.
0: तो ये सब हुआ. अच्छा, उसके बाद वापसी पे हम मम्मी को जहाँ भी ले जाना था मैं लेके गई. वापसी पे मम्मी ने कहा नहीं वेट के पास चलो, वेट के पास चलो. हम गए तो पूछे, तो डॉक्टर टोल्ड मी कि मिसेस मल्होत्रा व्हाटएवर यू डिड दिस डॉग एक्चुअली केम बैक टू लाइफ बिकॉज ये मर गया था.
1: राइट राइट.
0: इसके ऊपर एक हल्का सा थोड़ा सॉफ्ट स्पॉट हो गया था.
1: राइट.
0: तो वो बोला कि हमने इसको ओवरनाइट रखेंगे, वी विल ऑब्जर्व है. तो इस तरह से उसको उन्होंने ओवरनाइट रखा, और वो कुत्ता उसके बाद काफी साल जिया. पर उसके जो ओनर थे वो मुझे आज तक भी फॉरगिव नहीं कर पाए कि तुमने हमारे कुत्ते को हिट किया.
1: बताएं, जबकि आप ही ने सेव किया.
0: हाँ, तो उसके दिन रात को पता क्या हुआ, जब हमने रात को उनको फोन किया, उनको मैं जानती थी, हमारे इंडियन लोग ही थे
1: जी.
0: तो आपको पूछा, वो तो मेरे ऊपर एकदम गुस्से हो गए कि कॉस्टिंग मनी पता नहीं $120 थे या कुछ ऐसा था. तो बोले कि इट्स कॉस्टिंग अस सो मच एंड यू नीड टू पे फॉर इट.
1: ऑफ कोर्स दे वर थिंकिंग इट इज एन अपॉर्चुनिटी फॉर देम इंस्टेड ऑफ टेकिंग केयर ऑफ द पेट. यस.
0: यू नो लाइक टेल मी हाउ मेनी पीपल वुड. हम तो अपना निकल ही जाते
1: हैं. नहीं, रुकते भी नहीं है मैम. यस यस, पीपल डोंट स्टॉप.
0: नहीं, सो व्हाट आई डिड एक्चुअली, उसी हमारे को हमारे फ्रेंड्स के बेटी और उनका जो हस्बैंड थे वो अटॉर्नीज हैं. मैंने उनको फोन किया, देखिए आप मुझे बताइए ये ऐसा किस्सा हुआ, और इज देयर माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, अगर है तो मैं उनको पे कर दूंगी जाके. गाड़ी से तो मेरी टकरा है. बट एनी वे, उन्होंने पूरी कहानी सुनी, तो उन्होंने बोला आंटी यू डोंट ओ देम एनीथिंग एट ऑल, बट इफ एनीथिंग दे ब्रोक द लीश लॉ.
1: राइट.
0: ओके. कुत्ते लीश पे नहीं था,
1: नहीं
0: और
1: था.
0: आपने तो सुंदर की जान बचाई है.
1: यस.
0: यू नो
1: इवन यू ड्रोव इट टू द वेट.
0: विल डू व्हाट यू डिड.
1: यस. Yes.
0: So anyway, तो उसने बोला, but हमारे जो local newspaper था ना,
1: Houston
0: Chronicle,
1: जी जी,
0: नाम है. So बोले, but auntie, this will make a great story for the Houston
1: Chronicle. Yeah, indeed.
0: So
1: indeed,
0: I'm telling you, so this also happened in my life, and I always, you know, share. कंप्रेशन जरूर कीजिए, बिकॉज हार्ट को वापस लाना बहुत क्रूशल रहता है. और चाहे वो जानवर हो चाहे वो ह्यूमंस हो, तो ये चीज मेरे बड़ा रेयर एक्सपीरियंस होता है किसी को भी इस तरह का.
1: एब्सोल्युटली, वेरी रेयर एंड या वेरी लाइक यू नो सिग्निफिकेंट इन योर जर्नी, वेर इन कई लोग सच में मतलब ऐसी चीजों को भी अपॉर्चुनिटी समझ के उसको मिंट करने की कोशिश करते हैं, जबकि गलती उन्हीं की होती है और उनके पास वेट भी नहीं है, विच इज अमेजिंग फॉर मी. आई मीन, एंड यू पेटिंग अ डॉग दैट इज यू नो एज एक्सपेंसिव लाइक यू मेंशन्ड एंड एज यू नो हाई मेंटेनेंस, एंड उसके बाद भी आप सामने वाले के ऊपर, जबकि सामने वाला इज द पर्सन हु इज एक्चुअली टेकन केयर ऑफ योर पेट एंड ड्रोव यू टू द वेट ऑल्सो. सो हाउएवर, It's amazing that, you know, the way you handle the situation, and I'm so happy that the pet survived. You know, sabse badi baat ki the pet survived. Gonzo, right? Yeah, beautiful. So,
0: that's
1: beautiful.
0: Significant in my life too.
1: Yeah.
0: I to share kar deti.
1: Bilkul, ma'am, bilkul. Chaliye. इन्हीं खूबसूरत बातों के बीच, इन्हीं गहरी बातों के बीच, इन्हीं जीवन के एक्सपीरियंसेस के बीच, हम एक और गीत का ब्रेक लेंगे जो जीवन से ही जुड़ा हुआ है, जीवन का ही फलसफा है. जीवन के दिन छोटे सही, हम भी बड़े दिल वाले. फिल्म बड़े दिल वाले.

0: आगे चलते हैं मैम। अब मैं आपसे पूछना चाहूंगी, क्या आप अपना जीवन पेट्स के बिना इमेजिन कर सकते हैं? क्योंकि आपने इतनी लंबी जीवन जो जर्नी आपकी रही है, उसमें पेट्स आपकी जीवन का एक बहुत इंटीग्रल पार्ट रहे हैं। तो क्या आपका जीवन पेट्स के बिना आज वैसा ही है? क्या आपने कभी सोचा था कि आपका जीवन पेट्स के बिना होगा, और किस तरह का वो एक्सपीरियंस है? और इसी के साथ मैं आपसे ये भी पूछना चाहूंगी कि आपने जो लाइफ लेसन अगर कुछ सीखा हो अपने पेट्स से, तो वो क्या होगा?
1: ऐसा है कि पेट्स के साथ एक तो अनकंडीशनल लव, यू नो, और लॉयल्टी एंड टू बी लिविंग इन द प्रेजेंट,
0: यू नो, ये
1: चीजें बहुत अहम रहती हैं। क्योंकि जब हम अपने पेट्स को डिसिप्लिन करते हैं, उन्होंने कुछ गलती कर दी या कुछ उनको मना किया कि कारपेट पे नहीं जाना है, और वो कभी कभी मुझे ट्राई करता था जरूर, यू नो, कि माँ देख तो नहीं रही है तो मैं जा रहा हूँ, बैठूंगा जाके या कुछ करूंगा। और खासकर जब घर में ऐसे होते हैं, कोई आ गया घर में, तो देन दे थिंक जस्ट लाइक चिल्ड्रन की, ओह आई कैन गेट अवे विद दिस,
0: मैं
1: करता हूँ, है ना? तो इस तरह से होता था। पर फिर उनको डिसिप्लिन करने के लिए थोड़ा न्यूज़पेपर को रोल करके, जो मम्मी ने सिखाया था मुझे, कि उन्होंने शायद पढ़ा था या फिर जब पेट केयर का, तो कि आप एक न्यूज़पेपर को जैसे रोल करके ना उसको करें, तो उससे चोट नहीं लगती है एनिमल को, पर उसकी जो आवाज होती है उससे से वो चौंक जाते हैं, उनको पता है कि मैंने कुछ गलत किया, और फिर वो आगे से नहीं करेंगे। तो वो एज पार्ट ऑफ ट्रेनिंग अ डॉग स्पेशली, ये बहुत इम्पोर्टेंट था। ऑफकोर्स लॉयल्टी तो मैंने बोला कि वो भी उन्हीं से सीखी, और लिविंग इन द प्रेजेंट, कि हम अपने पास्ट में नहीं चले गए, फ्यूचर का सोचना बंद कर दिया, तो एंजॉय द मोमेंट, उसी मोमेंट में रहे, तो वो ठीक था। और दूसरा सवाल, वो मैंने कहा कि बहुत सालों से अब मेरे पास कोई पेट नहीं है, क्योंकि मैं उसको पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके लिए मैं फुलफिल नहीं कर पाती हूँ। हमारे हस्बैंड जो है वो एक्सटेंसिव पीरियड्स के लिए ट्रैवल करते हैं, बच्चे भी बड़े हो गए हैं अपने अपने घरों में, और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज उनकी हैं, और मैं भी मेरी भी जॉब है जो आई कंटिन्यू टू वर्क, तो बहुत ही मुझे लगता है कि क्रूअल होगा कि अगर कुत्ते को हम पालेंगे तो हम वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं फुलफिल कर पाते हैं।
0: ब्यूटीफुल, यस,
1: क्योंकि अभी मेरे पास नहीं है कोई भी पेट।
0: करेक्ट करेक्ट, बट डू यू फील अ डिफरेंस लाइक अ वैक्यूम जब आपके पास पेट था, और जब यू नो अब यू डोंट हैव अ कंपेनियन, एंड अब बच्चे भी बाहर हैं, डू यू फील दैट वैक्यूम, और डू यू एवर थिंक कि नहीं शायद ले आऊं या कुछ कोई एक छोटा सा पेट रख लूं, ऐसा कभी कुछ मन में आता है मैम?
1: मन में आता जरूर है, और रख भी सकूं तो नहीं रख पाऊंगी, क्योंकि बहुत सेवा करनी पड़ती है जैसे बोला। और देख रही थी टीवी पे आजकल एक वुफी करके एक डॉग है, हु इज लाइक एन एआई जनरेटेड डॉग, और वो एकदम और वो क्या है कि एकदम रियल डॉग की तरह है, जो आपके आसपास घूमता है, आपकी कमांड्स भी फॉलो करता है, आप उसको वॉक के लिए भी ले जा सकती हैं। तो मेरी बहुत ख्वाहिश है कि मैं जाके एक वुफी ले आऊं अपने लिए।
0: बिल्कुल बिल्कुल, एआई का जमाना है तो उसका पूरा फायदा उठाया जाए। और बहुत ही खूबसूरत बातचीत रही मैम आपसे, बहुत ही सरल और सटीक तरीके से आपने अपनी बातें साझा की। अब अंत में, जैसे मैंने कहा था, बिकॉज अब गाती हैं और बहुत सुंदर गाती हैं, तो हमारे लिए कुछ गुनगुना दें जो हम बेंजी को डेडिकेट करना चाहते हैं।
1: बेंजी को डेडिकेट करती हूँ एक सॉन्ग, मेरे बच्चे और मैं, बच्चे भी छोटे थे तब, तो हमें गाना इंग्लिश में है, गाया करते थे
0: जी।
1: और तो वो उसकी दो लाइनें सुना सकती हूँ आपको।
0: बिल्कुल।
1: सो इट गोज लाइक दिस, यू आर माई सनशाइन,

0: love you. Keep my Please don't take my sunshine away.
1: Yeah, this is a beautiful song.
0: I'm sorry,
1: very beautiful song. Yeah, it's a very sunny and lovely song. I've heard it before. It's a beautiful song. And I hope ye song aapki feelings, hamari feelings, puri SN family ki feelings, Benji tak heavens mein zarur pahunchi hongi. Aaj humne Benji ko yaad kiya aur usse ye geet dedicate kiya, ye episode dedicate kiya. So I hope Benji is smiling at us from the heavens above. Thank you so much,
0: Bindu
1: ma'am.
0: Thank you, dear, for the opportunity, Tanusha. God bless you.
1: Thank you so much aaj hamare saath judne ke liye aur itni achhi baatein saajha karne ke liye.
0: Sure, it was a pleasure.
1: Ji. Bindu ji aur Benji ki kahani waqai dil ko chhu lene wali hai. बेंजी की पहली मुलाकात बिंदु जी के परिवार से ऐसी थी जैसे उसने पहली ही मुलाकात में सबको अपना बना लिया और फिर 10 सालों तक प्यार और वफादारी के साथ उस रिश्ते को निभाया और बहुत खास बनाया. बिंदु जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद है कि आपने आज हमारे साथ इतनी प्यारी बातें, इतनी प्यारी यादें साझा की और हम सब ये एपिसोड बेंजी को डेडिकेट करते हैं. दोस्तों, मैं हूं आरजे तनुषा, आपके तरानों की हमसफर, और आप सुन रहे थे जिंदगी के रंग पेट्स के संग सिर्फ एसएन रेडियो पर. याद रखिए, पेट्स हमारी जिंदगी का एक हिस्सा बनते हैं लेकिन अपनी यादों से हमारी जिंदगी भर मुस्कुराने की वजह दे जाते हैं. नमस्कार.
2: तो दोस्तों, आज के एपिसोड में बस इतना ही. उम्मीद है आपको हमारे इन प्यारे साथियों से जुड़ी हुई ये बातें पसंद आई होंगी. अगर आपको हमारा प्रोग्राम अच्छा लगा तो इसे जरूर शेयर करें और अगली बार फिर मिलेंगे एक और नए और दिलचस्प हमारे साथी के साथ जो हमसे बेहद प्यार करता है. तब तक अपने इन खास साथियों का ख्याल रखें और खुश रहें. नमस्कार.

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद के केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा प्रस्तुत है नन्हे मुन्नों के लिए कार्यक्रम बाल गीत। सबसे पहले सुनिए ये गीत।

0: बाल गीत। अभी आप सुन रहे थे ये कार्यक्रम। लेखक प्रोफेसर के जी रस्तोगी, ध्वन्यांकन सतीश लाड़े और दीपक पांडे, निर्माण सहयोग दाऊदयाल चतुर्वेदी, कार्यक्रम निर्माण वंदना अरिमर्दन। ये बाल गीत राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद द्वारा प्रस्तुत किए गए।
1: मेरा एक जिद्दी पड़ोसी है, पूरी कॉलोनी ने सोलर पैनल लगवा लिए हैं, पर वो मानने को तैयार ही नहीं था कि सच में बिल जीरो आ सकता है। मैंने कहा, बेटा नाम ही है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। फिर एक एक करके सबका बिजली बिल जीरो आने लगा, तब बोला अब लगवा ही लेता हूँ। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
2: हर घर सूर्य घर।
3: दोस्तों, एक नए दिन की शुरुआत के लिए जोशो खरोश से भरे हुए मैं और आप ये दिन शुरुआत करने के लिए तैयार हैं। आइए, आपका स्वागत है इस प्रोग्राम में। बहुत सारी कहानियां, बहुत सारे ऐसे लोगों के बारे में भी हम जानेंगे जिन्होंने अपनी जिंदगी को अपने तरीके से जिया और दूसरों के लिए उन्होंने मिसालें कायम की। इन्हीं लोगों से प्रेरणा लेते हैं और ऐसे बहुत सारे गीत सुनते हैं जो हमें बस खुश कर देंगे, पूरे दिन के लिए तैयार कर देंगे, जोश से भर देंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं इस प्रोग्राम को जोशो खरोश के साथ। दोस्तों, हमें अपनी जिंदगी में बहुत सारे लोग मिलते हैं, बहुत सारे लोगों के बारे में जानते हैं हम। हम उनमें से उन लोगों को चुनते हैं जो या तो बहुत प्रतिभावान होते हैं, अपनी जिंदगी में बहुत सक्सेसफुल होते हैं, या जिन्होंने बहुत सारे अनुभव बटोरे हुए होते हैं। क्योंकि जाहिर सी बात है, वो फेल हुए होंगे, पास हुए होंगे, गिरे होंगे, उठे होंगे। तो आइए दोस्तों, आपको आज बता रहा हूं एक ऐसे ही व्यक्ति के बारे में जिसके बारे में आपने जरूर सुना हुआ होगा। इनका नाम है लियोनार्डो दा विंची। जी हां, ये वही इटली के महान कलाकार थे। बड़ी मजेदार बात यह है कि इनके अंदर क्या क्या काबिलियत नहीं थी दोस्तों, वो सुनिए। ये वास्तुशिल्पी थे, ये इंजीनियर थे, एक बहुत ही शानदार आर्किटेक्ट थे, साइंटिस्ट थे। तो चलिए मान लिया कि टेक्निकली यानी कि तकनीकी तौर पर बहुत प्रभुत्व थे। साथ ही साथ ये कविता बहुत अच्छी लिखते थे, ये गाना बहुत अच्छा गाते थे, ये संगीत बहुत अच्छा बनाते थे, ये पेंटिंग बहुत अच्छी करते थे, ये मूर्तियां बहुत अच्छी गढ़ते थे, ये बहुत ही अच्छे खानसामा थे, बहुत ही बढ़िया खाना बनाते थे। तो मजेदार वाली बात यह है कि एक ही व्यक्ति के अंदर इतनी प्रतिभाएं बिल्कुल होती हैं दोस्तों। कभी आप अपने अंदर की प्रतिभा को भी जरा खोज के तो देखिए। तो इन्होंने कहा था, जो भी व्यक्ति काम करने के तरीके या उसकी थ्योरी को समझे बिना ही बस शुरू हो जाता है, काम को करने लगता है, उसकी स्थिति ऐसी होती है जैसे नाविक जिसे मालूम ही नहीं कि जाना किस दिशा में है और बस नाव लेके चल दे। लियोनार्डो दा विंची का कहना है कि यदि आप पूरे दिन में 24 घंटे में कुछ नया सीख रहे हैं तो भी दिमाग को थकान नहीं होगी, यानी कि आपका दिमाग तरोताजा रहेगा जब तक आप कुछ नया सीख रहे हैं। और ये बात तो है दोस्तों, हम लोग अक्सर कुछ भी सीखना बंद कर देते हैं, हमें लगने लगता है हमें तो सब कुछ आता है। असली खुशी का अनुभव करने के लिए चीजों को अगर हम समझना शुरू कर दें तो मजा आ जाए। इंसान को सबसे बड़ा धोखा अपने गलत विचारों से मिलता है, किसी और से नहीं। एक समझदार व्यक्ति सिर्फ ज्ञान की ही ख्वाहिश रखता है और किसी चीज की नहीं, क्योंकि अगर ज्ञान मिल जाए तो सब चीजें अपने आप चली आती हैं। सिर्फ जानकारी होना जरूरी नहीं है, उसे काम में लाना भी सीखें। इसी तरह से काम करने की इच्छा शक्ति होना भी काफी नहीं है, काम करके दिखाइए भी तो। एक अच्छी तरह से बिताया हुआ दिन सुखद नींद लेकर आता है। अगर आपने कुछ ना कुछ किसी दिन सीखा है तो जाहिर से बात है आपका दिमाग बहुत संतुष्ट होगा और आपको नींद अच्छी आएगी। जो गुणों के बीज बोता है वही जीवन में आगे चलकर सम्मान की फसल काटता है। सबसे बड़ी खुशी समझने की खुशी होती है। अंत की तुलना में शुरुआत में विरोध करना बहुत आसान होता है। आप किसी चीज के आखिरी में पहुंच जाए और फिर उसकी तुलना करें, ऐसा हो नहीं पाता दोस्तों। तो जो आप नहीं समझते हैं यदि उसकी प्रशंसा करते हैं तो बुरा करते हैं, लेकिन अगर निंदा करते हैं तो और भी ज्यादा बुरा करते हैं, क्योंकि आप उस चीज को जानते ही नहीं तो प्रशंसा आप भी नहीं कर सकते और बुराई भी नहीं कर सकते दोस्तों।

रेडियो टांटिया भील, आपके झाबुआ की आवाज। दोस्तों, रेडियो सुनना इतना जरूरी क्यों है, आइयो बताता हूं। प्रकृति ने हमें बनाया ही ऐसा है। जब हम कुछ सुनते हैं तो उसकी छवि, उसकी पिक्चर अपने दिमाग में बनाते हैं। तो रेडियो सुनने से हम तमाम क्रिएटिविटी को, अपनी रचनात्मकता को मजबूत करते हैं, अपने दिमाग में पिक्चर्स बनाते हैं, छवियां बनाते हैं और खुश होते हैं। तो इसलिए दोस्तों, रेडियो सुनते रहिए।

0: चलो दोस्तों, अब हो गया है हमारे हंसने का समय, तो चलते हैं आरजे समीर के पास।
1: डॉक्टर ने पूछा, तुम रोज सुबह क्लिनिक के बाहर खड़े होकर औरतों को क्यों घूरते हो बे? गप्पू ने कहा, डॉक्टर साहब आप ही ने तो लिख रखा है, औरतों को देखने का समय सुबह 9 बजे से 11 बजे तक। What?

दोस्तों, जिस तरह हमारे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए अच्छे भोजन की जरूरत होती है, अच्छे पौष्टिक तत्वों की जरूरत होती है, उसी तरह से हमारे दिमाग को, हमारे मस्तिष्क को स्वस्थ रखने के लिए अच्छे विचारों की जरूरत होती है। इसलिए कहा भी गया है कि लगातार अच्छे विचारों को, अच्छे संगीत को सुनते रहिए, और जब आप सुनेंगे तो उनकी अच्छी पॉजिटिव सकारात्मक छवियां बनाएंगे अपने दिमाग में। तो दिमाग मेहनत करेगा, दिमाग की एक्सरसाइज होगी, व्यायाम होगा, और वो स्वस्थ रहेगा। इसलिए दोस्तों, रेडियो सुनते रहिए, ये चीज आपको किसी और माध्यम में नहीं मिलेगी।

देखिए भाई, माफ करने से गुस्से, दर्द और दुख की वो श्रृंखला, वो सीरीज टूट जाती है जो हमारी डेवलपमेंट में, हमारे विकास में बाधक बनी हुई होती है। माफ कर दीजिए, हमें जिंदगी की ओर ले चलिए। माफ करने से ना हम आजाद हो जाते हैं, अच्छा महसूस करने लगते हैं और आगे के लिए बेहतर चुनाव कर पाते हैं। इसलिए हम गुस्से और बदलाव की भावना से सुलगते रहते हैं लेकिन दूसरों को माफ नहीं करते। भाई, दूसरों को माफ कर देना अपने आप को आजाद करना होता है। इससे दूसरा आजाद नहीं होता, हम मुक्त हो जाते हैं। कई बार कमजोर और फीका तो कई दफा मजबूत और रोशनी से लबालब चांद समझता है मनुष्य होने का मतलब। जीवन यात्रा में आए दिन तमाम तरह की उठापटक होती ही रहती है, या कुछ समय के लिए कदम पीछे कर लेना हमेशा मंजिल से दूर नहीं करता हमें। लंबी यात्राओं में देखिए, हर पड़ाव जरूरी होता है। गति का महत्व है तो ठहराव का भी उतना ही महत्व है। इसलिए रुकिए, सोच लीजिए, उसके बाद कदम उठाइए। सपनों के सच होने की संभावना ही जीवन को इंटरेस्टिंग बनाती है। इसलिए उम्मीदों का होना, जिंदगी की धूप में घनी छाया का होना, जिसके साए में बढ़ते रहना आसान होता है। अगर कुछ देखिए होने की, बदलने की उम्मीद ही ना हो तो कोई कुछ करेगा ही नहीं। कुछ करने का जज्बा उम्मीद के सहारे ही जोर पकड़ता है। हमारा भविष्य हमारी उम्मीदों से आकार लेता है। इसलिए उम्मीद हमेशा बनाए रखें, लेकिन ख्याल रखें, उम्मीदों से बंधना भी बहुत खतरनाक होता है।

0: याद
1: पुस्तकें, संसार की सारी पुस्तकें नहीं देती तुम्हें कोई खुशी, लेकिन वो सिखाती हैं रहस्य खुद में लौट जाने का। वहां है वो सब जो तुम्हें चाहिए, सूरज, तारे और चांद, क्योंकि प्रकाश जो तुम मांगते हो वो तुम्हारे अंदर बसता है। बुद्धि, जिसे तुम बहुत समय से ढूंढ रहे हो पुस्तकालयों में, आभा जो हर पन्ने से निकलती है, अभी के लिए वो तुम्हारी ही है।

0: चलो दोस्तों, अब हो गया है हमारे हंसने का समय, तो चलते हैं आरजे समीर के पास।
1: वीरू बोला, भैया सुना है शादियां आसमान में तय होती हैं।
2: जय ने कहा, बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये भी याद रखना कि तूफान और बिजली भी आसमान से ही कड़कती है।
3: अच्छा तो हम चलते हैं। अच्छा।

दोस्तों, रेडियो सुनने का एक और फायदा बताता हूं। रेडियो अच्छे सकारात्मक गीत संगीत और विचारों के साथ आपके दिमाग की आपके मस्तिष्क की व्यायाम शाला है। आप रेडियो बिना उसकी तरफ देखे हुए सुन सकते हैं। अपने काम करते रहिए और रेडियो सुनते रहिए, है ना मजेदार। रेडियो के साथ सफर में धूप तो होगी, सफर में धूप तो होगी, जो तुम चल सको तो चलो। सभी हैं भीड़ में, जो तुम चल सको तो चलो। इधर उधर हैं कई मंजिलें, इधर उधर हैं कई मंजिलें, जो तुम चल सको तो चलो। बने बनाए हैं सांचे, जो तुम ढल सको हाँ तो चलो। सफर में धूप तो होगी, जो तुम चल सको तो चलो। किसी के वास्ते कहां बदलती है जिंदगी, जो तुम खुद को बदल सको तो चलो। सफर में धूप तो होगी, जो तुम चल सको तो चलो। यही है जिंदगी, कुछ ख्वाब चंद उम्मीदें, इन्हीं खिलौनों से बहल सको तो चलो। सफर में धूप तो होगी, जो तुम चल सको तो चलो। कहीं नहीं कोई सूरज, कहीं नहीं कोई सूरज, धुआं धुआं है फिजा, खुद अपने आप से बाहर निकल सको तो चलो। सफर में धूप तो होगी, जो चल सको तो चलो। यहां कोई किसी को नहीं देता रास्ता, जो मुझे गिरा कर चल सको तो चलो। सफर में धूप तो होगी, जो तुम चल सको तो चलो।

रेडियो टांटिया भील आपके झाबुआ की आवाज। थका मैं, हारा मैं, गिरा मैं, कदमों की आदत ये कब रही, इस तरह काटे रास्ते मैंने, मंजिलों की मेरी तलब रही। तुम्हें तो सिर्फ वो काला लैपटॉप का बैग नजर आता है, वो कंधों पे रोज न जाने क्या क्या दफ्तर ले जाता है। हर शख्स शहर में यहां अजनबी सा लगे, और मेरे गांव का वो बूढ़ा पेड़ भी मेरे यार सा है।

0: चलो दोस्तों, अब हो गया है हमारे हंसने का समय, तो चलते हैं आरजे समीर के पास।
1: भैया, सफलता की चाबी सवेरे उठने में है, और अगर चाबी ना मिले तो फिर सो जाओ।

0: तो दोस्तों, इस जोश को, इस उत्साह को, इस खुशी को बनाए रखिएगा पूरे दिन। कल सुबह हम लोग फिर मुलाकात करेंगे एक नए जोश के साथ, नए उत्साह के साथ जिंदगी को जीने के लिए। मैं आपका दोस्त हूं समीर, कल मिलते हैं।
1: बेटा, मैं कल अपने भतीजे के घर होके आया। मैं देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर एसी चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? जीरो। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी सब ऊपर वाले की दया है। मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
2: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
3: हर घर सूर्य घर।
4: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मेरी दुनिया, रेडियो 90.8 FM झाबुआ की आवाज।
5: अजय मुक्केबाज, MC मेरी कॉम।
6: भारत की MC मेरी कॉम ने 5वीं अंतर्राष्ट्रीय महिला मुक्केबाजी प्रतियोगिता का स्वर्ण पदक जीत लिया है। उन्होंने रोमानिया की स्वेलुटा कुटा को 7-1 से हराया।
7: अरे भाई कमाल हो गया, लगातार चौथी बार गोल्ड मेडल, कुल 5 प्रतियोगिताओं में 4 बार गोल्ड मेडल।
8: वो छोटी सी बामुश्किल 5 फुट ऊंचाई वाली मैरी कॉम,
7: हाँ?
8: अरे उसने तो अभी सितंबर 2007 में प्यारे से जुड़वा बेटों को जन्म दिया था।
7: हाँ, तो
8: 27 साल की उम्र में 1 साल के 2-2 बच्चों के साथ लगातार चौथी बार, अरे वो कमाल है, मैरी कॉम कमाल है।
9: नवंबर 2008 के आखिरी सप्ताह में जब पूरी दुनिया मुंबई में आतंकवादी हमलों को लेकर भारत के प्रति दुख और चिंता व्यक्त कर रही थी, तभी देश के सुदूर उत्तर पूर्वी राज्य मणिपुर की एक छोटे से कद की छरहरी महिला ने दुनिया को भारत की ताकत की वानगी पेश कर दी।
10: 2 साल तक घर गृहस्थी में व्यस्त रहने के कारण, मुक्केबाजी से दूर रहने और महज 4 महीने के अभ्यास के बाद MC मैरी कॉम ने 46 किलो संवर्ग में एक बार फिर अपना लोहा मनवा लिया। चीन की मिंगबो सिटी में संपन्न प्रतियोगिता में मैरी कॉम के मुक्कों के आगे कोई नहीं टिक पाया।
9: आश्चर्य की बात है कि मैरी कॉम पहले 400 मीटर दौड़ और भाला फेंक में हिस्सा लेती थी और राज्य की चैंपियन भी थी। 1999 के बैंकॉक एशियाई खेलों में मणिपुर के डिंको सिंह ने भारत के लिए स्वर्ण पदक जीता था और उसी से प्रेरित होकर मैरी कॉम ने मुक्केबाजी सीखने का फैसला किया। लेकिन ये राह आसान नहीं थी। मैरी कॉम मुक्केबाजी सीख रही है, ये बात जब पिता को मालूम हुई तो।
11: बेटा मैरी, मैं ये क्या सुन रहा हूँ? तुम्हारा दिमाग तो ठिकाने है ना?
12: पापा, मैंने, मुझसे कोई गलती हो गई क्या? मैंने क्या किया है?
11: अरे गांव वाले कह रहे थे कि तुम स्कूल में मुक्केबाजी सीख रही हो। ये मारा पीटी लड़कों के खेल है बेटा, तुम्हें उसमें कूदने की कोई जरूरत नहीं है।
12: पापा, मेरे प्यारे पापा, ऐसा कहाँ लिखा हुआ है कि ये खेल लड़कों का और ये लड़कियों का है? पापू, ये कोई मारा पीटी थोड़ा ही है, खास तो अपना बचाव है, सब कुछ कायदे कानून में होता है।
11: अरे बेटा, कहीं किसी के घूंसे से तुम्हारी नाक टूट गई या तुम्हारा जबड़ा टूट गया तो फिर टूटी नाक वाली लड़की से कौन शादी करेगा?
12: पापा, आप चिंता ना करें, मैं जो करूंगी उससे आपका नाम ऊंचा ही होगा।
11: मेरा नाम ऊंचा होगा? क्या कह रही है ये?
10: और हुआ भी ऐसा ही। सन 2000 में ही पहली राज्य स्तरीय मुक्केबाजी प्रतियोगिता में मैरी कॉम ने स्वर्ण पदक जीत लिया। मैरी कॉम ने भाला फेंकने की अपनी ताकत और दौड़ने के अपने कौशल को अपनी मुक्केबाजी में शामिल कर लिया था।
9: ये खबर अखबारों में छपी, मैरी का फोटो भी था और घर वालों को एहसास होने लगा कि उनकी बेटी अपने परिवार, अपने गांव और अपने राज्य और देश का नाम रोशन करने की राह पर बढ़ रही है। मणिपुर, सात बहनें कहलाने वाले राज्यों में से एक सुंदर पहाड़ी राज्य। राज्य की राजधानी से सटा चूड़ा चंद्रपुर जिले का गांव कंगहुई। एम टोनिया कॉम मेहनत मजदूरी करने वाले एक गरीब व्यक्ति। घर के चूल्हे चौके में दिन भर खटती उनकी पत्नी एम अका कॉम और उनकी बेटी मैरी कॉम। दौड़ती खेलती दुनिया की दिक्कतों के बावजूद
10: सामाजिक संस्थाएं बच्चों को स्कूल के प्रति आकर्षित करने के इरादे से उनके परिवारों को कुछ आर्थिक मदद दिया करती थीं।
9: और इसी प्रक्रिया में मेनगेट चंग नेजंग मैरीकॉम यानी एमसी मैरीकॉम पहले लोकतक क्रिश्चियन मॉडल स्कूल और फिर सेंट जेवियर मोरांग में पढ़ाई करने लगी।
10: पढ़ाई से अधिक वो खेल कूद में आगे रहती। आदिम जाति लई स्कूल इम्फाल में वो हाई स्कूल की परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं हो सकी, लेकिन मैरीकॉम के खिलाड़ी मन ने हार नहीं मानी और ओपन स्कूल के माध्यम से वो परीक्षा में फिर बैठी।
9: गरीब परिवार होने के कारण मैरीकॉम को समुचित पौष्टिक आहार नहीं मिल पाता था, लेकिन मैरी का खेलों के प्रति समर्पण इतना गहरा था कि उन्होंने महज 14 दिनों में मुक्केबाजी के आधारभूत गुर सीख लिए थे। उनके मुक्के में इतना दम था कि कई सालों से बॉक्सिंग सीख रही लड़कियां उनके शुरुआती दिनों में भी उनके सामने नहीं टिक पाईं। गरीबी ने उनके आत्मसम्मान को सदैव ताकत दी।
10: ये घटना उनके स्कूली दिनों की है जब वो स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया की कॉलोनी से बाहर निकली।

0: अरे लगता है कोई सवारी आ रही है।
1: रिक्शे वाले भैया, एमबीसी चर्च चलोगे?
0: अरे आपको ले जाने से कौन मना कर सकता है। बैठिए बैठिए बैठिए।
1: पैसे कितने लोगे?
0: अरे मैडम जी जो देना हो दे देना, आपको तो रेट मालूम ही है ना।
1: ठीक है चलो फिर।
0: आओ मैडम जी एक बात बोलूं आपसे?
1: बोलो।
0: अगर आप लाल रंग पहने तो बहुत सुंदर लगेगी।
1: सुनो ज्यादा बकबक नहीं, अपने काम से काम रखो।
0: बात क्या है कि आप तो दिखती ही ऐसी हैं, कुछ बोले बिना मन नहीं मानता ना।
1: जरा रोको रिक्शा। अरे रिक्शा रोको, सुन रहे हो तुम?
0: अरे गुस्सा क्यों हो रही है? रोकता हूँ रोकता हूँ।
1: आइंदा किसी लड़की को अकेला देखकर कमजोर मत समझ लेना, समझे?
2: विषम परिस्थितियों में संयम से काम लेना, उनसे डटकर मुकाबला करना एक अच्छे खिलाड़ी का गुण होता है। इन्हीं गुणों के कारण एमसी मैरीकॉम सन 2000 से 2005 तक लगातार 5 बार महिला हॉकी की राष्ट्रीय चैंपियन रही। ऐसा नहीं है कि मैरीकॉम के साथ प्रत्येक कदम पर सफलताएं ही थीं।
3: उन्हें बैंकॉक में होने वाली थाईलैंड एशियाई बॉक्सिंग चैंपियनशिप के सिलेक्शन कैंप में शामिल होने के लिए जाना था। सफर के दौरान ट्रेन में उनका पूरा सामान चोरी हो गया। उसमें उनके कपड़े, दस्ताने, पैसे, यहाँ तक के पासपोर्ट भी था।
2: इतने नाजुक हालात का मैरीकॉम ने डटकर मुकाबला किया। उनके एक परिचित अंकल ने भरोसा दिया कि यदि मैरी का सिलेक्शन हो जाता है तो वो सारी व्यवस्थाएं कर देंगे।
3: उन हालात में मैरीकॉम ने अपनी पहली अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता की टीम में अपना स्थान बना लिया, लेकिन इस बार मैरी को खाली हाथ वापस आना पड़ा।
2: लेकिन मैरीकॉम ने हार नहीं मानी। अमेरिका में आयोजित पहली अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी प्रतियोगिता में मैरी को रजत पदक से संतोष करना पड़ा। सन 2002 में तुर्की में उन्होंने द्वितीय महिला विश्व स्तरीय मुक्केबाजी प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता। एशियाई प्रतियोगिताएं तो लगातार मैरीकॉम के नाम रही हैं।
3: लेकिन इतने सारे सोने के तमगे मैरीकॉम के घर का चूल्हा जलाने और लगातार प्रशिक्षण व पौष्टिक आहार के लिए पैसा नहीं जुटा पा रहे थे। सन 2005 तक उनके पास न तो नौकरी थी और न ही कोई स्पॉन्सर।
2: शादी के बाद जब मैरी गर्भवती हुई तो लोगों को लगा कि अब इस चमत्कारी मुक्केबाज का करियर खत्म हो गया, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। गर्भ के 7वें महीने तक मैरीकॉम मुक्केबाजी की रिंग में जाती रही। वो अपने पास पड़ोस के बच्चों को मुक्केबाजी का प्रशिक्षण देने लगी। इससे उनका अभ्यास बरकरार रहा।
3: 2 साल तक बॉक्सिंग रिंग से दूर रहने के बाद जब मैरीकॉम ने फिर से मुक्केबाजी के ग्लव्स पहने तो एक नया संकट उनके सामने था।
1: कोच सर, मैं फिर से रिंग में आना चाहती हूँ।
4: फिर से जी। देखो मैरी, तुमने खेल को बहुत कुछ दिया, लेकिन अब तुम्हारी हालत ऐसी नहीं लगती कि फिर से।
1: कोच सर, मेरा शरीर जब तक चलेगा तब तक मैं खेलूंगी। अब बताइए मेरी फिटनेस में क्या कमी है?
4: मैरी, तुम खेलती हो 46 किलोग्राम में, ठीक है ना?
1: जी सर।
4: जब तुम गर्भवती थी तब तुम्हारा वजन क्या था?
1: 67 किलो।
4: और अब?
1: 61 किलोग्राम।
4: देखो मेरी, 61 किलो वजन में तो कोई जगह खाली है ही नहीं। अब तुम 46 किलो कैसे बनोगी? यानी समझ गई ना?
1: कोई बात नहीं सर, मैं आपसे कुछ दिनों बाद मिलती हूँ।
4: कुछ दिनों बाद मिलती हूँ।
2: वजन कम करने की चुनौती को मैरीकॉम ने सहर्ष स्वीकार किया। उनके पति के ऑनलर ने इस घड़ी में उनका साथ दिया। ऑनलर मोटरसाइकिल पर होते और मैरीकॉम दौड़ लगाती। 15 किलो वजन कम करना लेकिन अपनी ऊर्जा को बचाए रखना कोई साधारण काम नहीं था। साथ में दो बच्चों को भी पालना था। बच्चे केवल 2 महीने के थे और मैरी कॉम को गुवाहाटी में हुई एशियाई चैंपियनशिप के लिए कैंप में जाना पड़ा।
3: उनकी गैर मौजूदगी में उनके दोनों बच्चों की देखभाल उनके पति ने की।
2: तभी तो जब चीन में संपन्न 5वीं महिला अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी प्रतियोगिता में मैरी कॉम को गोल्ड मेडल मिला तो उन्होंने इस पदक को अपने पति और बच्चों को समर्पित किया। अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति, कठिन परिश्रम और आत्मविश्वास से वो यहाँ तक पहुंची थी। अपने बच्चों के प्रति भावुक पलों में उन्होंने कहा,
1: उन्हें छोड़कर आना बहुत मुश्किल था। वो अभी बोलते नहीं लेकिन रवानगी के समय मुझे हैरानी से देख रहे थे कि मम्मी उन्हें छोड़कर कहाँ जा रही हैं। उनसे दूर रहना मुश्किल था लेकिन मैं मुक्केबाजी को उतना ही प्यार करती हूँ।
2: मैरी कॉम को पद्मश्री, अर्जुन पुरस्कार सहित कई सम्मानों से अलंकृत किया जा चुका है। इम्फाल के खेल गांव की ओर जाने वाली सड़क का नाम MC मैरी कॉम मार्ग रखकर मणिपुर सरकार ने इस जीवट वाली मुक्केबाज महिला

0: किसी ने पूछा, यदि आप मुक्केबाज नहीं होती तो?
1: तो मैं गायिका होती, मुझे गाना बहुत अच्छा लगता है।
0: अब मैरी कॉम का लक्ष्य है ओलंपिक में हिस्सा लेना।
1: मेरा सबसे बड़ा सपना है ओलंपिक खेलों में देश का प्रतिनिधित्व करना, और उम्मीद करती हूँ कि सन 2012 में लंदन ओलंपिक में मेरा ये सपना जरूर पूरा होगा।
2: खेल जिंदगी को मैरी कॉम की तरह एक ऊंचे मकाम तक पहुंचा सकते हैं, बशर्ते इसके प्रति लोगों का नजरिया बदले।
3: एक अजय मुक्केबाज, अभी आपने सुना ये कार्यक्रम।
4: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मेरी दुनिया, रेडियो टंट्या भील 90.8 FM झाबुआ की आवाज।
5: मेरा प्यारा दोस्त,
6: ये कहानी है पूर्वोत्तर भारत के एक राज्य मेघालय की। लेकिन कहानी सुनने से पहले आइए लेते हैं मेघालय राज्य की थोड़ी जानकारी। मेघालय शब्द दो शब्दों के मेल या संधि से बना है, मेघ और आलय।
7: मेघ यानी बादल और आलय यानी घर, तो मेघालय का अर्थ हुआ बादलों का घर। साथियों, प्राकृतिक सुंदरता में मेघालय का कोई सानी नहीं है।
6: जी हाँ साथियों, यहाँ जब तब अनायास ही उमड़ते बादल, ऊंचे ऊंचे पर्वत, कल कल करती नदियाँ, हरे भरे जंगल पर्यटकों का मन मोह लेते हैं। गारो, खासी और जयंतिया यहाँ की मुख्य जनजातियाँ हैं।
7: मेघालय की राजधानी है शिलांग। ये कहानी शिलांग की है।
6: यूजीन लगभग 15 वर्ष का एक किशोर है। आज शिलांग शहर के पुराने बाजार में यूजीन चला जा रहा था। उसकी आंखें लगातार दुकानों के साइन बोर्ड्स पर ही टिक रही थीं। ऐसा लग रहा था मानो वो कोई खास दुकान खोज रहा हो।
8: यही कहीं तो थी वो दुकान, कहाँ है वो? अब ये तो रही वो फूल वालों की दुकान, उसके बाद हाँ वो रही।
6: उसे वो दुकान मिल गई थी। साइन बोर्ड पर एक पिल्ले की सुंदर सी तस्वीर थी और उसके नीचे लिखा था, पपीज फॉर सेल।
7: आइए खरीदिए, हमारे यहाँ हर नस्ल के पिल्ले उपलब्ध हैं।
6: यूजीन थोड़ा झिझका, कुछ पल बाहर खड़ा रहा।
7: यूजीन को कुत्तों से बहुत लगाव था। उसकी बहुत इच्छा थी कि वो भी एक प्यारा सा कुत्ता पाले जो उसका दोस्त बन सके और उसके साथ खेल सके।
6: बात वास्तव में ये थी कि स्कूल में सहपाठी यूजीन के साथ रहने और खेलने से थोड़ा कतराते थे। कोई उसे अपने साथ खिलाना ही नहीं चाहता था।
7: यूजीन बार बार दुखी होता और उपेक्षित अनुभव करता था, इसीलिए खेल का मैदान हो या कक्षा, अक्सर वो स्कूल में सबके बीच अकेला सा हो जाता था। कुछ सोचकर वो दुकान में दाखिल हुआ।
8: हाँ, यहां से अंदर चलता हूं। अरे वाह, कितनी सुंदर दुकान है, और ले प्यारे प्यारे पपीस भी हैं। आजा आजा।
6: उस उसने कई बार अपने घर में कहा था कि वो एक प्यारा सा पिल्ला पालना चाहता है, लेकिन उसकी सुनी नहीं गई थी। किसी पशु को पालना काफी जिम्मेदारी का काम होता है। एक पिल्ले को पालने के लिए यूजीन के माता पिता तैयार नहीं थे।
7: लेकिन अब यूजीन बड़ा हो गया है, अब वो खुद पिल्ले का ध्यान रख सकता है, इसीलिए आखिरकार वो मान ही गए। और आज
6: यूजीन पिल्ला खरीद सकता है अपनी पसंद का। यूजीन सीधा काउंटर पर दुकानदार के पास चला गया और बोला,
8: नमस्ते मैडम।
9: नमस्ते बेटा।
8: मेरा नाम यूजीन है, मैं एक पिल्ला खरीदना चाहता हूँ। क्या आप मुझे उसका दाम बताएंगी?
9: देखो बेटा यूजीन, हमारे पास तो ढेर सारे पपीज हैं, सभी नस्ल के।
8: ओह।
9: लेकिन बेटा ये बताओ, क्या तुम सच में खरीदना चाहते हो?
8: जी बिल्कुल, पर आप ऐसा क्यों पूछ रही हैं?
9: बेटा बात ये है कि तुम्हारे साथ कोई बड़ा तो है नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम बस देखो और चले जाओ?
8: नहीं,
9: क्योंकि यहाँ बहुत से ऐसे बच्चे आते हैं, देखने की जिद करते हैं, सारे बिल्ले देखते हैं और अंत में लिए बिना ही चले जाते हैं। इससे हमारा समय बर्बाद होता है ना, तो।
8: नहीं ऐसा नहीं है, मैं उन बच्चों की तरह नहीं हूँ, मैं सच में खरीदूंगा, आप उनके दाम बताइए तो सही।
9: यूजीन देखो बेटा, सबसे कम दाम के हमारे पास लगभग 2,000 रुपए के पिल्ले हैं, फिर 3,000 और ऐसे ही। मेरा मतलब नस्ल के हिसाब से और भी महंगे हैं।
8: अच्छा,
9: क्या तुम इतना पैसा दे पाओगे?
8: ओहो, अभी इस समय तो मेरे पास 1,500 रुपए ही हैं। अब ये तो मैं आपको अभी तुरंत दे सकता हूँ, बाकी पैसे आपको कल दे सकता हूँ। मैं पापा से बात कर चुका हूँ, वो मुझे मेरी पसंद का पिल्ला लेने के लिए कह रहे थे, आप मुझसे कल तक ले लीजिए।
9: बेटा ऐसे तो बात नहीं बनेगी ना, समझो मेरी बात। वो क्या है कि अगर अभी तुम्हें पपी चाहिए तो तुम्हें पूरा पैसा भी अभी ही चुकाना होगा, समझे ना?
8: ठीक है मैडम, पर आप मुझे पपी दिखाइए तो सही, मैं आपको इसका मूल्य चुका दूंगा आज ही शाम तक। अब आया हूं तो पसंद करके ही जाऊंगा, अभी 1,500 दूंगा और जब बाकी पैसे लाऊंगा तब मैं आपसे पिल्ला ले लूंगा।
9: ठीक है। शेल्बिलिन, शेल्बिलिन, अरे कहाँ हो भाई?
10: हाँ जी बताइए।
9: देखो सारे पपीज ले आओ, ग्राहक कब से खड़े हैं, ध्यान रखा करो।
10: हाँ हाँ अभी लाता है, बस एक मिनट।
7: थोड़ी ही देर में सामने एक छोटा सा दरवाजा खुला और 5-6 प्यारे प्यारे पिल्ले कू कू करते हुए सामने आए। वो ऐसे लग रहे थे मानो ऊन के गोले हों। कोई लगभग दौड़ता हुआ आया तो कोई उछलता कूदता हुआ, कोई छोटी छोटी छलांगे मारता हुआ आया तो कोई गोल गोल घूमता सा। सब के सब बहुत ही प्यारे लग रहे थे।
6: यूजीन ने देखा कि उनमें एक पिल्ला था जो उछल कूद नहीं मचा रहा था। उसके सामने के दोनों पांव तो काम कर रहे थे, लेकिन पीछे के दोनों पांव घिसट रहे थे। वो धीरे धीरे घिसटता हुआ सबसे पीछे पीछे आ रहा था।
9: अरे शेल्बिलिन, तुमसे कितनी बार कहा है इसे मत लाया करो, तुम्हें ये छोटी सी बात समझ नहीं आती क्या? तुम फिर से इस पिल्ले को ले आए, हटाओ इसे।
10: ये तो बहुत शैतान है, पीछे पीछे आ ही जाता है, अभी ले जाता हूँ इसे, चलो शाबाश वापिस चलो।
8: एक मिनट, अब इसे क्या हुआ, ये ऐसे क्यों चल रहा है? आजा आजा इधर आ।
9: ये जन से ऐसा ही पैदा हुआ है, सही होता तो इसकी बहुत कीमत होती, अब तो बोझ ही है हमारे लिए।
8: ओ, मैं इसे खरीदना चाहता हूँ। कितनी कीमत होगी इसकी?
9: हैं? अब अच्छा, समझ गई बेटा, समझ गई। मुझसे मजाक कर रहे हो ना? अरे ये देखो, ये वाला कितना सुंदर है। महंगा तो है, लेकिन दूर दूर से लोग आते हैं इस वाले पिल्ले को खरीदने के लिए।
8: नहीं, ये नहीं चाहिए मुझे। वो वाला कितने का है?
9: अरे बेटा, कैसी बातें करते हो, ये बेकार है। अरे बिन पैर का पिल्ला। बहुत से लोग आते हैं इस दुकान में, हम तो इसे छुपाई देते हैं।
8: क्या?
9: लेकिन ये भी ऐसा शैतान है कि पहला मौका मिलते ही बाहर खुली हवा में भागता है। अरे इसे खरीदने की बात तो आज तक किसी ने नहीं की। वैसे भी ये भला किस काम का, कौन खरीदेगा इसे?
8: मैडम, मैं खरीदूंगा इसे, मैं इसे ही खरीदूंगा।
9: मगर क्यों? तुम्हें पता है ये तुम्हारे साथ खेल नहीं पाएगा, उछल कूद नहीं कर पाएगा, ये तुम्हारे साथ दौड़ भी नहीं पाएगा। तुम आखिर इसे क्यों खरीदना चाहते हो? मुझे तो ऐसा लग रहा है कि तुम अभी तक मुझसे मजाक ही कर रहे हो।
8: नहीं, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मुझे यही चाहिए।
9: देखो बेटा, मुझे अच्छी तरह पता है कि तुम अभी जोश जोश में ऐसा कह रहे हो। शायद इसकी हालत पर तुम्हें दया आ रही होगी, है ना?
8: नहीं।
9: लेकिन सोचो, कुछ ही दिनों में अगर ये बीमार हो गया तो तुम इसे सड़कों पर या कहीं और छोड़ दोगे। और देखो, अगर ऐसा हुआ तो ये बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा।
8: जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा इसके साथ। मैं इसके साथ कुछ नहीं होने दूंगा। ये अपने इन्हीं कमजोर पैरों पर चलेगा, चलेगा ना मेरे साथ, बनेगा ना मेरा दोस्त। अल्ले।
9: अच्छा ठीक है, अगर ऐसी ही बात है तो फिर इसे यूं ही ले जाओ।
8: यूं ही?
9: हाँ, अब इसकी भला क्या कीमत?
8: क्या मतलब? अगर इसकी टांगे खराब हैं, तो क्या इसकी कोई कीमत नहीं है?
9: अच्छा अच्छा, समझी। स्वाभिमानी हो, मुफ्त में कुछ नहीं लोगे, अच्छी बात है। तो ऐसा करो, इसके तुम बस 50 रुपए दे दो, खुश?
8: 50 रुपए क्यों? ये तो इसका अपमान हुआ ना। इस नस्ल के दूसरे पिल्लों की जितनी कीमत है वो ही इसकी भी है। मैं आपको इसके पूरे पैसे दूंगा।
9: पर बेटा ये तो
8: बताइए ना, इसकी नस्ल की कितनी कीमत है?
9: बहुत महंगी है, अब 2000 रुपए। मेरा मतलब है कि
8: तो यही इसकी कीमत भी है। इसकी खराब टांगे इसे किसी से कम तो नहीं कर देती। आप निश्चिंत रहिए, बाकी पैसे आपको आज शाम तक मिल जाएंगे। अब ये रहे 1500 रुपए।
9: अब
8: और अब ये मेरा हुआ, मेरा दोस्त है ना मेरा दोस्त, तू यूजीन का दोस्त। तुम्हें शाम तक ले जाऊंगा दोस्त।
9: देखो बेटा, मैं तुम्हारी भावनाओं और जानवरों के लिए तुम्हारे इस प्यार का बहुत सम्मान करती हूँ, लेकिन बेटा क्या मैं जान सकती हूँ कि आखिर तुमने इस पपी में ऐसा क्या देखा कि तुमने इसको ही चुना, वो भी इतनी कीमत देकर? आखिर क्यों बेटा?
8: आप पूछते हैं क्यों? ये देखिए मैडम, ये देखिए।
7: यूजीन नीचे झुका और उसने धीरे धीरे अपनी पैंट ऊपर उठाई। दुकानदार ने देखा यूजीन का बायां पांव घुटने से कटा हुआ था, नीचे का आधा पैर कृत्रिम था, वहां धातु का पांव लगा हुआ था जिसके सहारे वो थोड़ा मुश्किल से लेकिन बिना सहारे के चल सकता था।
9: अरे बेटा, ये तुम्हारा?
8: जी मैडम, आधा पैर नहीं है मेरा। अब बताएं मेरी क्या कीमत है आप जैसे?

0: देखो, हम तुम हम सभी बराबर हैं बेटा, हम सभी बराबर हैं।
1: नहीं मैडम, लगता है ये बस कहने की बात रह गई है, क्योंकि ये बात कितनी बार झुठलाई गई है ये मैं ही जानता हूं, और 5 साल की उम्र से जानता हूं। मेरे साथ कोई नहीं खेलता, ये सब मैं जानता हूं, ये सब मुझे पता है
0: बेटा।
1: इसलिए मुझे लगता है कि ये पापी मुझे मेरी कटी टांग से नहीं पहचानेगा, मुझे मेरी दोस्ती और मेरे प्यार से पहचानेगा। मैं नहीं चाहता ये अभी से मेरी तरह आजादी को, प्यार को तरसे। आज से, अभी से ये मेरा हुआ। आजा मेरा दोस्त, आजा।
0: यूजीन बेटा, इस पपी को तुमसे बेहतर भला कौन समझेगा, और शायद ये किसी और के साथ उतना प्यार भी ना पा सके जो इसका अधिकार है। इसे तुम्हें सौंपकर मैं भी निश्चिंत रहूंगी। ये लो, ये अब तुम्हारा हुआ। लो।
1: आजा। अरे, आजा, आजा।
2: दुकानदार ने देखा वो नन्हा सा प्यारा सा पपी यूजीन की गोद में कुंकू करता हुआ अपनी पूंछ हिला रहा था। मानो यूजीन की गोद ही वो जगह है जहां उसे बेशर्त प्यार की नायाब ऊष्मा मिल सकती है।
3: वो ऊष्मा जो सभी खामियों को नजरअंदाज करती हुई समानता का एहसास दिलाती है, और ये एहसास ही वो भावना है जो मानवता के आकाश में ऊपर है, सबसे ऊपर।
4: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मेरी दुनिया, रेडियो टंट्या भील 90.8 FM झाबुआ की आवाज।
5: इंसुलिन की कहानी भाग 2।
6: बेंटिंग और बेस्ट की ये जोड़ी अपने शोध प्रयासों से खुश थी। संयोग से परिणाम भी अच्छे आ रहे थे, पर वो एक जैसे नहीं थे। कभी ये अर्क सफल रहता था तो कभी असफल। शोध के नतीजे इतने मिले जुले होने लगे कि उन्हें लगा कि खोज को दूसरी दिशा दी जाए। उनकी तलाश उन्हें स्थानीय बूचड़ खानों में ले गई, जहां मांस को डिब्बों में बंद करने का काम होता था। कई मुश्किल प्रयासों के बाद इन जानवरों के अग्नाशयों से इंसुलिन प्राप्त करने की विधि उनके हाथ लगी।
7: 9 अगस्त सन 1921 को बेंटिंग और बेस्ट ने जब प्रयोग के नतीजों को मैकलियॉट के सामने रखा तो वो इससे बहुत प्रभावित हुए, पर वो चाहते थे कि और प्रयोग किए जाएं ताकि ये साबित किया जा सके कि अग्नाशय का सार वास्तव में असरदार है।
8: प्रोफेसर मैकलियॉट, मुझे पता ही नहीं चल रहा कि कहां से शुरू करें।
9: डॉक्टर बेंटिंग, आप अपना प्रयास जारी रखिए और आगे बढ़िए।
8: जी सर। सर, जिस अर्क का हमने इंजेक्शन दिया है उससे डायबिटीज वाले कुत्ते की हालत में बेहतरी तो हुई है, उसके रक्त और पेशाब में शक्कर की मात्रा में कमी भी आई है।
9: वेरी गुड।
8: पर प्रोफेसर साहब, एक समस्या है।
9: कौन सी समस्या?
8: हमें इंसुलिन के रासायनिक गुणों का पता लगाना चाहिए।
9: डॉक्टर बेंटिंग, पतझड़ का मौसम आते आते हमारे शोध दल में एक तीसरा सदस्य भी शामिल होने वाला है।
8: अच्छा, वो कौन है सर?
9: जेम्स बर्ट्रम कॉलिप। वो टोरंटो से हैं। वो हमारे विश्वविद्यालय में सेबेटिकल के तौर पर आ रहे हैं।
8: अच्छा।
9: वो एक निपुण रसायन शास्त्री हैं। उनके पास जीव रसायन विज्ञान में PhD की डिग्री के साथ तंतुओं से सार निकालने का अच्छा खासा अनुभव भी है।
8: अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है सर। सर, क्या वो अपना शोध भी हमारी प्रयोगशाला में ही करेंगे?
9: कोलिप मेरे साथ मेरी प्रयोगशाला में काम करेंगे।
8: जी सर।

0: उनका शोध कार्य होगा। रक्त और पेशाब में शक्कर की मात्रा कैसे बढ़ती है और उससे अम्ल क्षार के संतुलन में कैसे बदलाव आता है, इस बारे में।
1: जी सर।
0: और ये जहां कुत्ते रखे गए हैं, इससे कई ब्लॉक दूर पैथोलॉजी की इमारत में वो अपनी अलग प्रयोगशाला बनाएंगे।
1: जी। अब सर, हमारी शोध की प्रगति का क्या होगा?
0: मुझे उम्मीद है डॉक्टर बेंटिंग कि आप दोनों कुछ बड़ा और महत्वपूर्ण कर सकते हैं।
1: जरूर।
0: अब तक आपने जो किया है उससे भी अधिक महत्वपूर्ण।
1: बिल्कुल सर।
0: मैं आपके लिए और धनराशि का इंतजाम करूंगा।
1: धन्यवाद।
0: आप दोनों जल्दी ही सभी सुविधाओं से सजी बेहतर प्रयोगशाला में अपना शोध कार्य करने के लिए जा सकेंगे।
1: आपका आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच।
0: थैंक यू डॉक्टर बेंटिंग।
2: बेंटिंग और बेस्ट की शोध के परिणाम जर्नल ऑफ लेबोरेटरी एंड क्लिनिकल मेडिसिन के सन 1921 के नवंबर अंक में छपी। इसका शीर्षक था द इंटरनल सेक्रेशन ऑफ द पैनक्रियाज।
3: एक बार फिर भाग्य उन पर मेहरबान हुआ। अब काम तेजी से होने लगा। सवाल ये था कि मानव प्रयोग के लिए पहले कौन सी प्रयोगशाला सफल होगी। जेबी कॉलिप अल्कोहल का इस्तेमाल कर निथारने वाली विधि से इंसुलिन विशुद्ध करने में लगे हुए थे। और फिर एक रात की बात है,
4: मैंने कर दिखाया।
1: कॉलिप, शाबाश।
4: थैंक यू।
1: मुबारक हो। ये जरूर एक यादगार लम्हा होगा।
4: हाँ दोस्त बेंटिंग, ये एक जादुई क्षण था।
1: लेकिन आखिर तुमने ये किया कैसे? हमें भी तो बताओ वो तरीका। मेरा मतलब विशुद्धिकरण के चरण।
4: मुझे नहीं लगता कि मैं ये सब आपको बता सकता हूँ, क्योंकि मैकलियोड ने खासकर इस बात का किसी से भी जिक्र करने से मना किया है। अब मैं आगे इंजेक्शन की सही सही खुराक का पता लगाने का प्रयास करूंगा।
1: हाँ हाँ, जरूर। आप सफल हो, भगवान आपकी मदद करें।
4: जी जी, शुक्रिया।
2: बेंटिंग और बेस्ट की टीम अब मनुष्य पर अपना प्रयोग दोहराना चाहते थे, पर ये करें तो किस पर? अचानक दिसंबर के तीसरे सप्ताह उन्हें ये पता चला कि पाचन ग्रंथि का अर्क का कोई नमूना असर नहीं दिखा रहा था। इसी दौरान उन्होंने अर्क के इंजेक्शन को अपने पर आजमाने का इरादा किया। इंजेक्शन के बाद उन्हें कमजोरी और सिर में चक्कर महसूस जरूर हुए, पर कोई खास नुकसान नहीं हुआ।
3: सन 1921 के क्रिसमस से 5 दिन पहले फ्रेडरिक बेंटिंग के यहाँ एक मेहमान आया।

0: अंदर आ जाइए।
1: फ्रेडरिक बेंटिंग के उम्र के तकरीबन बराबर एक लंबे कद का शख्स जिसका नाम जोसेफ गिलक्रिस्ट था अंदर आया। कमजोर और दुबला वो शख्स टेबल की दूसरी तरफ रखी कुर्सी पर जाकर बैठ गया।
2: बेंटिंग,
3: अरे तुम जोसेफ कितने कमजोर हो गए हो। अरे तुम्हें हो क्या गया है जोसेफ? पिछली बार जब हम मिले थे तब के बजाय तुम्हारा वजन कितना घट गया है।
2: बेंटिंग, मुझे डायबिटीज हो गया है, शक्कर की वजह से मैं मर रहा हूँ। और अब तो ये स्थिति है कि शक्कर मेरे लिए जहर बन चुकी है।
3: जोसेफ हिम्मत मत हारो, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा।
1: डॉक्टर बेंटिंग के लिए ये कबूल करना मुश्किल हो रहा था कि डॉक्टर गिलक्रिस्ट को मधुमेह है। दोनों 5 वर्ष पहले फौज में कैप्टन थे और दोनों ने एक ही तरह से एक ही वर्ष डॉक्टरी की पढ़ाई पूरी की और एक ही पेशे को चुना। वो स्कूल के दिनों से बहुत अच्छे मित्र थे, एक साथ ही स्कूल की रेस में दौड़े थे, खुशी के कई घंटे गुजारे थे, साइकिल मुकाबले में एक दूसरे को मात दी थी। उन्होंने जिंदगी के 25 वर्ष जी भर कर जिए थे।
3: जोसेफ, हौसला रखो, हम डायबिटीज का इलाज जरूर ढूंढ निकालेंगे।
2: बेंटिंग, इससे पहले कि मैं इस बीमारी की वजह से दुनिया छोड़ दूं, क्या तुम्हें लगता है कि कुछ चमत्कार होने वाला है?
3: जोसेफ, चमत्कार भी होते हैं। याद है तुम्हें, मैंने डॉक्टर की राय मानने से इनकार कर दिया था जब उन्होंने मेरे हाथ काटने की बात कही थी, और देखो मैं बच गया।
2: बेंटिंग, तुम्हारे बचने की कम ही सही, लेकिन उम्मीद थी।
3: हाँ।
2: पर मेरे बचने की कोई उम्मीद ही नहीं है।
3: क्या तुम्हें ऐसा लगता है? नहीं नहीं जोसेफ, नहीं, यहां पर तुम गलत हो। देखना, मैं इलाज का जरूर पता लगाऊंगा, जरूर लगाऊंगा, बस ईश्वर मेरी मदद करे।
2: क्यों बचकाना बातें कर रहे हो?
3: नहीं,
2: इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है।
3: नहीं जोसेफ, नहीं, बुजदिलों वाली बातें मत करो, तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगे, बिल्कुल ठीक हो जाओगे।
1: हाँ। 11 जनवरी सन 1922 को डायबिटीज के एक मानव मरीज पर इस हार्मोन को आजमाने का पहला मौका सामने तब आया जब लियोनार्ड थॉमसन नामक के 14 वर्ष का एक लड़का पहला ऐसा डायबिटीज का मरीज जिसे इंसुलिन के इंजेक्शन के लिए चुना गया।

0: डॉक्टर जेफरी?
1: यस।
0: वार्ड एच का वो लड़का जो यूनिवर्सिटी के प्रशिक्षण अस्पताल में दाखिल है, उसका क्या हुआ?
1: आपका मतलब है लियोनार्ड थॉमसन?
0: हाँ वही।
1: उसकी हालत तो बहुत गंभीर है।
0: हाँ?
1: वो अर्धमूर्छित अवस्था में है, वो रोग के आखिरी दौर में है।
0: अब डॉक्टर जेफरी, क्या एंटी डायबिटिक का अर्क हम उस पर आजमाएं?
1: जरूर।
0: तो ठीक है, आइए मेरे साथ। ये लीजिए, ये रहा इंजेक्शन, इसमें अर्क का 15 मिलीलीटर है।
1: ठीक है, तो चलिए मरीज के पास चलते हैं।
0: ठीक है, आइए।
2: डॉक्टर जेफरी ने मटमैले रंग के डायबिटीज के विरुद्ध काम करने वाले अर्क का इंजेक्शन उसके कूल्हे में लगा दिया। 12 रोज बाद 23 जनवरी को लियोनार्डो को पाचन ग्रंथि के अर्क का दूसरा इंजेक्शन दिया गया।
1: डॉक्टर बेंटिंग!
0: अरे डॉक्टर जेफरी, आइए ना।
1: डॉक्टर बेंटिंग, इंजेक्शन ने तो काम कर दिया। लियोनार्डो पहले से बहुत चंगा है।
0: अरे वाह!
1: उसकी भूख लौट आई है, वो देखने में भी अब तंदुरुस्त नजर आ रहा है। वो बताता है कि वो पहले से अब बहुत बेहतर और मजबूत महसूस कर रहा है। अब ये देखिए।
0: हाँ।
1: ये रिपोर्ट
0: लाइए।
1: ये लीजिए।
0: अरे वाह, उसके रक्त में शक्कर की मात्रा अब सामान्य है, पेशाब में भी अब करीब करीब गायब है
1: जी,
0: कीटोन भी गायब हो गए हैं। अरे वाह, ये तो सचमुच बड़ी अच्छी खबर है
1: जी।
2: एक मधुमेह के रोगी बच्चे के पहली बार स्वस्थ होने के इस ऐतिहासिक प्रकरण के एक महीने बाद अगला सवाल ये था कि हार्मोन के इंजेक्शन के इस प्रयोग के लिए दूसरा मानव कौन होगा। 11 फरवरी सन 1922 को डॉक्टर बेंटिंग ने निश्चय किया कि वो अपने मित्र जोसेफ पर ये प्रयोग करेंगे। बिना इलाज के जोसेफ वैसे भी मौत की ओर बढ़ रहे थे, अगर हार्मोन इंसुलिन काम कर गया तो वो बच भी जाएंगे और जी भी पाएंगे। उन्होंने जोसेफ के लिए संदेश भेजा, उसमें बता दिया था कि उनके दिमाग में क्या था।
3: डॉक्टर बेंटिंग।
0: हाँ जोसेफ।
3: आगे बढ़ो और इंसुलिन का इंजेक्शन लगा दो। ये बीमारी मुझे धीरे धीरे मार रही है, इससे ज्यादा और क्या बुरा हो सकता है। अगर इंसुलिन काम कर जाता है तो हम जश्न मना सकेंगे, और अगर नहीं तो भी मेरी और ज्यादा क्या दुर्गति हो सकती है।
0: जोसेफ, मैं उम्मीद करता हूं कि इंसुलिन शरीर में जाकर अपना काम जरूर करेगा।
3: मेरे दोस्त, तुम्हारी इसी उम्मीद में मेरी जिंदगी के बचने की उम्मीद है,
0: और ये उम्मीद जरूर कामयाब होगी।
3: लगा दो इंजेक्शन।
0: बस हो गया।
2: मानव हृदय में कुछ न कुछ आशा हमेशा बनी रहती है, और यही हालत थी फ्रेडरिक जोसेफ और चार्ल्स की। फ्रेडरिक की सारी उम्मीद इंसुलिन पर टिकी थी, कोई वजह नहीं थी कि इसका कोई असर नहीं होगा। इसके बावजूद 2 घंटों तक जोसेफ की हालत में तब्दीली नहीं हुई। उनका चेहरा फीका पड़ रहा था, उनकी सांसें रुक रही थी, फ्रेडरिक को सूझ नहीं रहा था कि वो क्या करें, और इसलिए वो विचलित थे।
3: बेंटिंग।
0: हाँ जोसेफ।
3: तुमने कोशिश की मेरे दोस्त, तुमने कोशिश की।
0: शुक्रिया।
3: जो भी मुमकिन था तुमने किया, और इन सब के लिए मैं तुम्हें धन्यवाद कहना चाहता हूं।
0: अरे इसमें धन्यवाद कैसा, तुम देखना जोसेफ, दवा जरूर असर करेगी। हाँ, हो सकता है कि मानव शरीर में कुत्ते के मुकाबले दवा को असर करने में कुछ ज्यादा समय लगे, लेकिन दवा अपना असर जरूर दिखाएगी।
3: कोई बात नहीं दोस्त,
0: बस तुम यही रुके रहो, बेस्ट आता ही होगा।
1: डॉक्टर बेंटिंग,
0: अरे अरे आओ बेस्ट।
1: मैंने लेबोरेटरी में जाकर पेशाब का टेस्ट किया है।
0: अच्छा, तो पेशाब के टेस्ट में क्या नतीजा आया है?
1: डॉक्टर बेंटिंग, इसमें शक्कर की कोई मात्रा नहीं आई है।
0: अरे वाह, ये तो सचमुच बड़ी अच्छी खबर है।
1: जी, मैं उम्मीद करता हूँ कि इंजेक्शन से आखिर में जोसेफ की स्थिति में सुधार होगा।
0: जरूर होगा। मैंने अपने लोगों को बताया है कि मैं आज ऑन्टारियो में पहुंच रहा हूँ, पर मैं तुम्हारे संपर्क में जरूर रहूंगा।
1: जी,
0: अपना ख्याल।

0: डॉक्टर बेंटिंग रेलगाड़ी पर रवाना हो गए और उनका ध्यान अभी भी चिंता मुक्त नहीं था। उन्होंने अपने को इतनी दयनीय अवस्था में इससे पहले कभी नहीं पाया था। उन्हें पूरा यकीन था कि इंसुलिन से जोसेफ अपनी समस्या से निजात पा लेगा। जब वो घर पहुंचे तो उन्हें बताया गया कि जोसेफ उनसे टेलीफोन से संपर्क करने का प्रयास कर रहा था। वो जोसेफ को टेलीफोन करने ही वाले थे कि टेलीफोन की घंटी बजी।
1: हेलो
2: हेलो बेंटिंग।
1: हाँ, मैं डॉक्टर बेंटिंग बोल रहा हूँ।
2: बेंटिंग, मैं जोसेफ।
1: अरे जोसेफ, कैसे हो तुम?
2: बेंटिंग, जैसे ही तुम अस्पताल से बाहर निकले मेरी सांसें सहज हो गई।
1: क्या?
2: मेरी थकान गायब हो गई। मेरा दिमाग शांत हो गया।
1: सच्चो सर।
2: और जानते हो बेंटिंग,
1: हाँ?
2: मेरी भूख वापस लौट आई।
1: थैंक गॉड।
2: एक लंबे अरसे के बाद मैंने भर पेट खाना खाया। मैं तो जैसे एक तरह से खाने का स्वाद बिल्कुल भूल सा गया था।
1: ओ जोसेफ, जोसेफ, मैं सचमुच बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। ईश्वर का लाख लाख शुक्र है, मेरे सिर से बोझ उतर गया जोसेफ।
2: बेंटिंग, तुमने मुझे जीवन का अमृत दिया है। बहुत बहुत शुक्रिया बेंटिंग।
1: अरे नहीं नहीं, दोस्ती में शुक्रिया कैसा। जोसेफ, याद रखो ये स्थायी निदान नहीं है, तुम्हें हर रोज इंसुलिन का एक टीका लगवाना पड़ेगा। अगर तुम ऐसा करोगे ना तो तुम और भी लंबी उम्र जी पाओगे। हाँ
2: बेंटिंग, मैं तुम्हारा शुक्रगुजार रहूंगा।
1: अरे नहीं,
2: मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं तुम्हारा शुक्रिया कैसे अदा करूं।
1: नहीं जोसेफ, नहीं।
2: कैसे करूं?
1: अरे नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं तुमसे जल्दी मिलूंगा, ठीक है?
2: हाँ। अच्छा, मैं भी बेचैन हूँ तुमसे मिलने के।
1: हाँ, जरूर मिलूंगा।
3: और उस दिन के बाद इंसुलिन की हर नई खोज किसी दूसरे मरीज पर आजमाने से पहले जोसेफ पर टेस्ट की गई। इंसुलिन के अनेक प्रयोगों के दौरान अपनी नसों से रक्त के जो नमूने वो आजमाने के लिए देते थे और उनकी प्रतिक्रिया का सच्चा और सटीक ब्यौरा जो उन्होंने दिया है, उससे चिकित्सा विज्ञान में एक नया अध्याय लिखा गया है।
0: दिसंबर सन 1922 को प्रोफेसर मैकलियोड ने शोध कार्य के परिणामों को प्रस्तुत करने के लिए बेंटिंग को येल यूनिवर्सिटी में आयोजित अमेरिकन फिजियोलॉजिकल सोसाइटी कॉन्फ्रेंस भेजा। उनके व्याख्यान का शीर्षक था द बेनिफिशियल इन्फ्लुएंसेस ऑफ सर्टन पैनक्रियाटिक एक्सट्रैक्ट। 18 महीने से भी कम समय के इन चार शोधकर्ताओं के संयुक्त प्रयास ने विश्व को मधुमेह का कारगर इलाज दिया। ये और बात है कि वो अपने काम के दौरान एक दूसरे से लड़ते रहते थे और 26 अक्टूबर सन 1923 को नोबेल कमेटी ने फ्रेडरिक जी बेंटिंग और जॉन जी मैकलियोड को उनके इंसुलिन के आविष्कार के लिए चिकित्सा विज्ञान का नोबेल पुरस्कार देने का निर्णय लिया। बेंटिंग न तो व्यक्तिगत तौर पर और न ही पेशे से इसके लिए तैयार थे, पर ये खबर मिली जुली खुशी ले आई। इससे उनकी ईमानदारी को आघात पहुंचा, क्योंकि उन्होंने महसूस किया ये पुरस्कार उनके और उनके सहयोगी चार्ल्स बेस्ट में बटना चाहिए था, न कि उनके और मैकलियोड के बीच। अब जब वो अपने मकसद में कामयाब हो चुके थे, बेस्ट को भुला दिया गया था।
1: सर, मैं इस बड़े अन्याय के विरोध में नोबेल पुरस्कार लेने से इनकार कर दूंगा।
4: डॉक्टर बेंटिंग, मैं टोरंटो विश्वविद्यालय के डीन की हैसियत से ही नहीं बल्कि एक कनाडा निवासी की हैसियत से ये कहना चाहूंगा कि नोबेल पुरस्कार जीतना हमारे लिए एक गौरव की बात है।
1: जानता हूँ सर, जानता हूँ, लेकिन ये बेस्ट थे जो गर्मियों के मौसम में छोटी सी प्रयोगशाला में पसीने में तर लगे रहते थे मेरे साथ, ना कि मैकलियोड। ये बेस्ट थे जो बुनसेन बर्नर की लौ पर बनाए थोड़े से भोजन को मेरे साथ बांट कर खाते थे। और ये बेस्टी थे सर, जो मेरे साथ रातों को कुत्तों की तलाश में लगे रहते थे। शहरों की गलियों में उन लोगों को ढूंढते रहते थे जो कुत्ते बेचने को तैयार होते थे।
4: डॉक्टर बेंटिंक, आप हमारे राष्ट्रीय नायक हैं। आपका कीर्तिमान कनाडा के दूसरे नौजवानों को विज्ञान शोध में जाने के लिए प्रेरित करेगा।
1: सर, मैं आशा करता हूँ कि मैं कभी भी इतना खुदगर्ज, इतना स्वार्थी ना बन जाऊं कि मैं ये भूल जाऊं कि मैं सबसे पहले एक डॉक्टर हूं। मैं रोगियों का इलाज करना चाहता हूं सर, सिर्फ उन्हें आराम पहुंचाने तक अपने को सीमित नहीं रखना चाहता, नहीं रखना चाहता।
0: बेंटिंक पर उनकी देशभक्ति और अपने कर्तव्य के प्रति श्रद्धा उन पर हावी रही। बेस्ट को उनका हक मिले, इसलिए बेंटिंक ने तुरंत बोस्टन स्थित हार्वर्ड यूनिवर्सिटी मेडिकल स्कूल में टेलीग्राम का संदेश भिजवाया। उस टेलीग्राम में बेंटिंक ने ये लिखा था, आई एस्क्राइब टू बेस्ट इक्वल शेयर इन द डिस्कवरी, हर्ट दैट ही इज नॉट सो एक्नॉलेज्ड बाय नोबेल ट्रस्टीज। बेंटिंक की घोषणा के बाद प्रोफेसर जे जे मैक्लियोर ने भी अपने पुरस्कार की $40,000 की धनराशि डॉक्टर जे वी कॉलिप के साथ आधी आधी बांट ली।
3: कुल मिलाकर सन 1923 एक अत्यंत रोमांचकारी वर्ष था। कृतज्ञ कनाडा राष्ट्र की संसद ने बेंटिंक को $7,500 की सालाना आजीवन पेंशन देने की घोषणा की। उन्हें टोरंटो विश्वविद्यालय में

0: चिकित्सा शोध के लिए अध्यक्ष नियुक्त कर दिया गया। इस पद को नाम दिया गया बेंटिंग एंड बेस्ट चेयर ऑफ मेडिकल रिसर्च।
1: सन 1934 में ब्रिटिश साम्राज्य ने बेंटिंग को सर की उपाधि से सम्मानित किया। जब दूसरा विश्व युद्ध छिड़ा तो बेंटिंग ब्रिटिश और उत्तरी अमेरिका की डॉक्टरी सेवाओं के लिए संपर्क अधिकारी के रूप में कार्य कर रहे थे। वो उड़ान से संबंधित विमान चालकों के व्याप्त खतरनाक समस्या ब्लैकआउट का समाधान ढूंढना चाहते थे। ऐसी ही एक उड़ान T-9449 में अटलांटिक में सन 1941 को वो दुर्घटना का शिकार हो गए। उनकी उम्र केवल 50 वर्ष थी।

0: साथियों, मानवता इंसुलिन के इस अमूल्य योगदान हेतु उनका सदा आभारी रहेगी। 18 महीने के शोध से इंसुलिन का इजाद हुआ और ये ऐसी खोज थी कि जिसने मधुमेह की दुनिया ही बदल कर रख दी। आधुनिक चिकित्सा में ये एक अति महत्वपूर्ण उपलब्धि है और इसका चिकित्सा इतिहास में अनोखा स्थान है। इसने लाखों लोगों को जीवन दान देकर एक कर्मशील और सामान्य जीवन प्रदान किया है।
1: ये मेरा छोटा भाई है ना, बड़ा शरारती है। कॉलेज में मार्कशीट फोटोशॉप करके पापा को दिखाता था। कल मैंने लाइट बिल पर जीरो अमाउंट देखा तो सोचा इसने पक्का फोटोशॉप किया होगा, वरना जीरो बिजली बिल कैसे पॉसिबल है। पूछा तो बोलता है, भैया सब ऊपर वाले की दया है, सोलर पैनल है ना। मैंने कहा, ओ ये सही है बेटा।
2: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
3: हर घर सूर्य घर।
4: राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद के केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा प्रस्तुत है नन्हे मुन्नों के लिए कार्यक्रम बाल गीत। सबसे पहले सुनिए ये गीत, शीर्षक है पशु पक्षियों पर आधारित प्यारे प्यारे बाल गीत।

0: बाल गीत। अभी आप सुन रहे थे ये कार्यक्रम। लेखक प्रोफेसर के जी रस्तोगी, ध्वनिंकन सतीश लाड़े और दीपक पांडे, निर्माण सहयोग दाऊदयाल चतुर्वेदी, कार्यक्रम निर्माण रमेश रानी शर्मा। ये बाल गीत राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद द्वारा प्रस्तुत किए गए।
1: रेडियो स्टेशन 90.8 FM टांटिया भील, रोज हांजे 6-8 वागे आपड़ी समस्या अने आपड़ो समाधान। आपु रोज करहु वाते खेती ना बारा मा अने कमाई ना बारा मा, एत्रे हमलता रेजो टांटिया भील नो रेडियो स्टेशन। रेडियो स्टेशन 90.8 FM। किसान साथियों, आप सुन रहे हैं रेडियो टांटिया भील 90.8 FM झाबुआ की आवाज। खेती बाड़ी कार्यक्रम में एक बार पुनः बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका। किसान साथियों, आप खेती बाड़ी कार्यक्रम के माध्यम से अपनी आजीविका

0: ध्यान रखते हैं, और काफी किसान भाई ऐसे भी हैं जो कि खेत का जो बिल्कुल बेकार हिस्सा है उसको छोड़ देते हैं चारे के लिए। ऐसा नहीं करना चाहिए, हमें कुछ हिस्सा, अच्छा हिस्सा खेत का चारे के लिए पहले से तैयार करके रखना चाहिए, उसमें अच्छी सड़ी हुई गोबर की खाद वगैरह डाल के लगा के रखें। और अभी जो चारे हैं उसमें ज्वार सबसे मुख्य फसल है, और इसमें मल्टीकट ज्वार आती है, आपको बाजार में इसका अच्छा बीज भी मिल जाता है। इसके अलावा जहां पर थोड़ी पानी की कमी है वहां बाजरा लगा सकते हैं, और इसको संतुलित करने के लिए जैसे ये घास खुल के चारे हैं, और फिर आपका दलहनी चारे भी हैं जिसमें लोबिया मुख्य फसल एक है, तो ये दोनों अगर आप लगाते हैं तो जो पशु का जो एक प्रोटीन की जो आपूर्ति है वो भी सही ढंग से होने के लिए लोबिया जो दलहनी चारा है वो भी बहुत जरूरी है। तो हमें ज्वार भी लगाइए, और कुछ में आप लोबिया भी लगा सकते हैं, या दोनों के दो पंक्तियों के बीच में एक पंक्ति आप लोबिया की भी लगा सकते हैं, जिससे पशुओं को संतुलित आहार मिलेगा, उसका रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी अच्छा रहेगा और दूध उत्पादन भी उसका अच्छा होगा।
1: जी, तो चलिए देखते हैं जुड़े हमारी रिपोर्ट।
2: पशुओं का दूध बढ़ाने और वृद्धि दर को बनाए रखने के लिए चारा काफी जरूरी होता है। खासकर हरा चारा पोषक तत्वों का एक किफायती स्रोत है, साथ ही ये पचने में भी आसान होता है। चारे को ज्यादातर हरी अवस्था में पशुओं को खिलाया जाता है। कई बार जरूरत से ज्यादा चारे का उत्पादन हो जाता है, लेकिन वो इस्तेमाल ना होने पर खराब हो जाता है। ऐसे में चारे का प्रबंधन जरूरी है, जिससे पशुओं को साल भर चारा मिलता रहे। हरे चारे का संरक्षण और भंडारण अगर वैज्ञानिक पद्धति से किया जाए तो उनकी पौष्टिकता भी वैसे ही बनी रहती है। दरअसल साल के कुछ महीनों में चारे की ज्यादा उपलब्धता हो जाती है, जबकि कुछ महीनों में चारे की कमी हो जाती है, जिसके लिए चारा प्रबंधन काफी कारगर साबित होता है। इसके अलावा संरक्षित चारा खिलाने से पशु आहार में दाने की मात्रा कम करने में भी मदद मिलती है, और इस तरह पशुपालन में संपूर्ण आहार की लागत भी कम हो जाती है। चारा प्रबंधन करने से पूरे साल उच्च प्रोटीन और ऊर्जा मूल्यों के साथ उच्च सुपाच्य चारे की आपूर्ति उपलब्ध रहती है। हरे चारे के संरक्षण की मुख्यतः दो विधियां हैं। पहली हे बनाना और दूसरी साइलेज बनाना। हे बनाना विधि में घास को जानवरों के चारे के रूप में इस्तेमाल करने के लिए उसे काटा और सुखाया जाता है। सूखी हुई घास को हे कहते हैं। हे में पोषक तत्वों की मात्रा पैरा भूसी या तुड़ी की तुलना में ज्यादा होती है। वहीं उच्च नमी की मात्रा वाली फसल का नियंत्रित अवायवीय किण्वन करने के बाद बनाए हुए उत्पाद साइलेज कहलाते हैं। साइलेज बनाना चारा संरक्षण का एक प्रभावी और सामान्य तरीका है। साइलेज को साइलेज पिट में तैयार किया जाता है। ऐसी फसलें जिनके तने बहुत मोटे होते हैं और उन्हें सूखने में काफी समय लगता है, उन्हें हे बनाने के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, बल्कि इनका इस्तेमाल साइलेज बनाने के लिए किया जाता है। कुल मिलाकर साल भर चारे की आपूर्ति बनाए रखने के लिए चारा प्रबंधन काफी जरूरी है।
3: किसान साथियों, जैसे कि आपने इस रिपोर्ट में सुना, हमें हमारे पशुओं के लिए एक पौष्टिक चारे की बहुत आवश्यकता होती है। हमारे दुधारू पशुओं के लिए हरा चारा बहुत ही आवश्यक होता है। अगर आप दूध का उत्पादन कर रहे हैं तो हमें कोशिश करनी है कि हरा चारा हम हमारे पशुओं को हरा चारा दे। साथ ही किसान साथियों, अभी जो बरसात का मौसम चल रहा है, हमें अभी भरपूर मात्रा में हरा चारा मिल सकता है, लेकिन समय के साथ फिर ये चारा जो होता है फिर सूख जाता है, तो उस समय हमें बड़ी समस्या होती है हरे चारे को लेकर। इसके लिए हमें पुनः हमारे खेतों में हरे चारे के लिए फिर से हमें फसल का डालना पड़ेगा। लेकिन उससे पहले कि अगर अभी हम जो हमारे आसपास अभी बारिश के समय में जो हरा चारा जो पौष्टिक चारा जो अभी उग रहा है उसे हम उसका प्रबंधन कर ले, जैसे कि हमें इस रिपोर्ट में हमने सुना कैसे दो विधियों के माध्यम से हम चारे को उसका प्रबंधन कर सकते हैं वैज्ञानिक विधि के द्वारा, और यह इस चारे की जो गुणवत्ता है वो बनी रहेगी। ऐसा नहीं है कि हम उसको काटने के बाद इसकी जो गुणवत्ता है वो कम हो जाएगी, लेकिन अगर हम वैज्ञानिक विधि से इसकी कटाई करके उसको हम इसका प्रबंधन करते हैं तो ये इस चारे की जो पौष्टिकता है वो बनी रहेगी, साथ ही हमारे जो पशु है उनको भरपूर पोषण मिल पाएगा।
4: आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांडिया भील 90.8 FM। आपड़ो रेडियो आपड़ी बातें।
3: किसान साथियों, चलिए डालते हैं एक नजर।

0: बागवानी के ऊपर हमारा जो किसान है, बागवानी बहुत सारे किसान करते हैं, तो कैसे करना चाहिए, किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और कैसे बागवानी हमारे लिए एक फायदेमंद सौदा बन सकती है, आइए जानते हैं और लेते हैं एक्सपर्ट की राय।
1: नमस्कार किसान भाइयों, जैसा कि आपको पता है कि आजकल किसान भाई अपनी आमदनी बढ़ाने के लिए बागवानी को एक विकल्प के रूप में देख रहे हैं। और बागवानी का जब बगीचा आप लगाने जा रहे हैं तो किसान भाई क्या करते हैं कि जैसे ही बरसात होती है तो आनन फानन में जो पौधे लाते हैं और उनको लगा देते हैं। लेकिन क्योंकि बगीचा लगाना एक लंबे समय का निवेश है और इसमें आपको जो है अपनी लगन और निपुणता के साथ साथ इसमें जो है उन्नत किस्में और क्वालिटी प्लांटिंग मटेरियल लगाना बहुत नितांत आवश्यक है। तो जब आप बगीचा लगाने जा रहे हैं तो उनमें किन किन बातों का मुख्य रूप से ध्यान रखना चाहिए ये आपको जानना बहुत जरूरी है। तो जहां आप बगीचा लगाने जा रहे हैं वहां की जो है मृदा और जल वो कैसा है, क्योंकि इन दोनों के ऊपर बहुत कुछ डिपेंड होता है आपके बगीचे की स्थापना का। तो जैसे कि आपकी अगर मृदा का पीएच मान है, जैसे हम डॉक्टर्स के पास जाते हैं तो सबसे पहले वो हमारी ब्लड टेस्ट में हीमोग्लोबिन देखता है, तो उसी तरीके से किसान भाइयों को पीएच उसी के रूप में काम करता है। अगर आपका पीएच जो है 7 से ऊपर है तो उसमें जो है जो फल वृक्ष है उनका चुनाव अलग होगा, 8 है 9 है तो वो अलग होगा, उसकी विद्युत चालकता कितनी है जल की, उनका जो है उन कौन से फल वृक्ष उसके लिए सुटेबल होंगे वो उनका अलग अलग होगा। अब जैसे आप मान लीजिए कि 7 से 8 के बीच में है आपका पीएच, तो इनमें आप जा सकते हैं, आम हो गया, नींबू हो गया। लेकिन अगर आपका पीएच है मृदा का वो 8 से ऊपर भी जा रहा है तो उन क्षेत्रों पे हम किसान भाई जो है बेर, बेल, आंवला, उस तरीके के फल वृक्षों की स्थापना करेंगे तो उनको आमदनी में बढ़ोतरी होगी।
2: जी, तो चलिए देखते हैं इससे जुड़ी हमारी रिपोर्ट कि कैसे नए बागों की स्थापना की जाए, कैसे हमारे किसान की आय इससे बढ़ सके।
3: ये समय नए फल बाग लगाने के लिए एकदम सही है। ऐसा माना जाता है कि मानसून के मौसम में गर्मी के साथ नमी यानी उमस होती है जो पौधे की जड़ों को अच्छी तरह फैलने में मदद करती है। वैसे तो नए बाग लगाने की तैयारी जून महीने में की जाती है, लेकिन जो किसान उस समय तैयारी नहीं कर पाए वे इस समय सदाबहार फल वृक्षों के बाग लगा सकते हैं। किसान इस समय आम, नींबू वर्गीय फल और अमरूद लगा सकते हैं। किसान अपने इलाके को ध्यान में रखकर ही अच्छी किस्मों के पौधे लगाएं। बाग लगाने से पहले कुछ बातों का ध्यान रखना जरूरी है। किसान मिट्टी की जांच जरूर कराए, मिट्टी बलुई दोमट होनी चाहिए, साथ ही इसमें पानी नहीं रुकना चाहिए। ऐसी मिट्टी का चयन करें जिसकी जल धारण क्षमता अच्छी हो और जिसमें पानी लंबे समय तक नहीं रुकता हो। मिट्टी की जांच कराने के बाद आपको पता चल जाएगा कि आपकी जमीन बाग लगाने लायक है या नहीं। अच्छा बाग लगाने के लिए किसान फलों की उन्नत किस्मों का ही चयन करें। फलों के बाग लगाने के लिए स्वस्थ और बेहतर किस्म की रोपण सामग्री का इस्तेमाल करें। आम के नए बाग लगाने की तैयारी पहली बारिश से ही शुरू कर देनी चाहिए। आम की बागवानी हर तरह की मिट्टी में की जा सकती है। नए बाग तैयार करने के लिए आम की गुठलियों को जून जुलाई में बो दिया जाता है। वहीं अमरूद के बाग लगाने के लिए भी हर तरह की मिट्टी अच्छी होती है। इसके बाग लगाने के लिए कलम तैयार करने के लिए 1 महीने की आयु वाले इकहरे आरोह का चयन किया जाता है। मूल वृंद और कलम को 4 से 5 सेंटीमीटर लंबा काटकर दोनों को जोड़कर अलकाधीन की एक पट्टी से लपेट दिया जाता है। जब कलम से अंकुर निकलने लगे तो मूल वृंद से अलग करके उसे लगा दिया जाता है। इसके अलावा नर्सरी में तैयार पौधों को जुलाई अगस्त में रोपे। नए बागों में नमी बनाए रखने के लिए समय समय पर सिंचाई करें। किसान चाहे तो सिंचाई के लिए टपक विधि का इस्तेमाल भी कर सकते हैं।
0: किसान साथियों, जैसा कि इस रिपोर्ट में आपने सुना, हमें हमारी मृदा और पानी का परीक्षण करवाने की आवश्यकता है और हमें देखना है कि हमारी मृदा और पानी का जो पीएच मान है वो कितना है, उसके हिसाब से हमें हमारे खेतों में, हमारी जमीन में पौधों को लगाने की आवश्यकता है। किसान साथियों, जो पौधा अगर हम पीएच और हमारी मृदा का और पानी का जो पीएच लेवल है उसको अगर हम देख के हमारे खेतों में पौधों को लगाएंगे तो उनकी पैदावार, उनकी जो ग्रोथ है, उनकी जो बढ़वार है वो अच्छी होगी और साथ ही हमें जो फल है वो भी अच्छी मात्रा में फल मिल सकेंगे। साथ ही किसान साथियों, हमें यहाँ पर टपक विधि और सिंचाई के कौन कौन से साधन का इस्तेमाल करना चाहिए वो भी हमने, जैसे कि इस रिपोर्ट में सुना कि हमें टपक विधि का इस्तेमाल करना चाहिए क्योंकि हमारा जो पौधा होता है वो समय के साथ उसमें पानी की जो मात्रा है उसे हमें बढ़ाने की आवश्यकता है।
3: आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांडिया भील 90.8 FM। आपड़ो रेडियो आपड़ी बातें।
0: किसान साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि अभी जो हम सिंचाई पद्धति का इस्तेमाल कर रहे हैं वो हम हमारे कुओं से, नदी से या जल स्रोतों से, जहां से भी हम पानी अभी ले रहे हैं, मोटर के माध्यम से हम लेते हैं और सीधा हमारे खेतों में अनावश्यक रूप से उसको अनावश्यक रूप से वहां पर सिंचाई करना शुरू कर देते हैं। तो इससे कहीं ना कहीं हमारे जल स्रोतों का जो स्तर है, पानी का स्तर है, वो भी कम होता है और जितना अनावश्यक पानी खेतों से बाहर निकल के चला जाता है और यहाँ पर हमको पौधों को उपयुक्त समय पर पानी देने की आवश्यकता होती है, ना कि एक ही बार में ज़्यादा पानी हम डाल देते हैं और एक सप्ताह तक फिर हमें देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो यहाँ पर जो पौधा है उन्हें हमें हर दिन और जितना आवश्यकता अनुसार पानी देने की आवश्यकता होती है। इन्हीं सभी बातों का हमें ध्यान रखकर जो हमारे नए किसान है वो अपनी बागवानी को अच्छे से अच्छा बना सकते हैं। किसान साथियों, अभी आपने बागवानी से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण चीजों को जाना है, समझा है, सुना है, तो अभी आइए थोड़ा सा पुनः रुक करते हैं चारा प्रबंधन के ऊपर। कौन कौन सी फसलें हमें लगानी चाहिए चारे के लिए, कौन सी फसलें का हम इस्तेमाल कर सकते हैं, कौन सी ज़्यादा पौष्टिक वाली फसलें हैं जिनका हम इस्तेमाल करके उनको प्रबंधन के लिए रख सकते हैं, आदि बातों को आइए जानते हैं और लेते हैं यहाँ पर एक्सपर्ट की राय।
4: जैसे मैंने पहले ही बताया, जो हमारे खेती की जमीन है उसमें चारा फसलों में सीजन के हिसाब से अलग अलग फसलें हैं। जैसे खरीफ की बात करेंगे, जो अभी सीजन खरीफ का सीजन चल रहा है, बारिश का सीजन है अभी, इसमें ज्वार है, बाजरा है, मक्का है, ये फसलें आप चारा फसलों के अंदर ले सकते हैं। जैसे मैंने बताया कि जहाँ थोड़ा सा पानी की कमी हो वहाँ बाजरा की फसल लीजिए, और जहाँ भरपूर पानी है, पानी की अच्छी सुविधा है, वहाँ पर आप ज्वार की फसल लीजिए, क्योंकि उसमें आपको ज़्यादा उत्पादन मिलेगा। अब इसके अंदर जैसे घास कुल की फसलें हैं, जो ज्वार है, बाजरा है, मक्का है, ये घास कुल की फसलें हैं, लेकिन दलहनी चारों में हमारे को लोबिया की फसल इसमें लेनी है। और अगर रबी की बात करें, जब सर्दी का मौसम होता है तो उसके अंदर मुख्य फसल बरसीम है, और जहाँ ज़्यादा सर्दी पड़ती है वहाँ बरसीम की फसल ले सकते हैं, जैसे पंजाब है, हरियाणा है, उत्तर प्रदेश है, बिहार है, लेकिन जहाँ थोड़ा सा टेम्परेचर ज़्यादा रहता है, जैसे राजस्थान है, गुजरात है, आपका पश्चिमी राजस्थान का हिस्सा है, आप वहाँ रिजका की फसल ले सकते हैं, जो दलहनी चारे हैं, लेकिन वहाँ घास कुल में आप जई की फसल भी ले सकते हैं, जो कि काफ़ी तेज़ी से इसका एरिया बढ़ रहा है, क्योंकि आपको ज़्यादा मात्रा में चारा चाहिए तो जो रबी की फसल में आप जई की फसल लगा सकते हैं। भारतीय कृषि भारतीय चारागाह अनुसंधान संस्थान झांसी में है, काफ़ी अच्छी किस्में इन लोगों ने निकाली है। इसके अलावा जो हमारे कृषि विश्वविद्यालय हैं वहाँ से भी किस्में काफ़ी निकली हुई हैं। किसान भाई अपने नज़दीकी कृषि विज्ञान केंद्र में संपर्क करेंगे तो उनको अपने क्षेत्र के हिसाब से अच्छी किस्मों का बीज वहाँ से मिल जाएगा, और वो मेरी उनसे यही प्रार्थना है कि अपने खेत में कुछ हिस्सा, अच्छा हिस्सा चारे के लिए जरूर छोड़ें, क्योंकि जो पशु का स्वास्थ्य है वो हरे चारे पर बहुत ज़्यादा निर्भर करता है। ज़्यादातर किसान क्या करते हैं, जब पशु दूध नहीं देता है तो उसको हरा चारा खिलाना बंद कर देते हैं, वो बहुत गलत बात है, क्योंकि जब भी आगे गाय वापस से दूध देना चालू करेगी तो वो जो टाइम गैप होगा जब हरा चारा आपने नहीं खिलाया उसको, तो उसके अंदर आपका पशु का स्वास्थ्य भी बिगड़ेगा और दूध उत्पादन भी अच्छा नहीं होगा। तो उसे हमेशा ध्यान रखना है कि हरे चारे को बिल्कुल खिलाना बंद नहीं करना है, भले आप थोड़ा खिलाइए लेकिन आप पशु को चारा जरूर दीजिए, और दोनों सीजन में आप चारा फसल के लिए अपने खेत को तैयार कीजिए। इसके अलावा बहुवर्षीय घासें भी हैं, अभी काफी तेजी से इनका एरिया बढ़ रहा है, जिसमें हाइब्रिड नेपियर घास है, और आपका जहाँ सिंचित क्षेत्र है वहां पर अब बाजरा नेपियर हाइब्रिड घास का एरिया काफी तेजी से फैल रहा है पूरे देश।
3: आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांडिया भील 90.8 FM। आपड़ो रेडियो आपड़ी बातें।

0: समय है झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांडिया भील 90.8 FM। आपड़ो रेडियो आपड़ी बातें।
1: किसान साथियों, जैसा कि आप और हम में से काफी किसान ऐसे हैं जो फलों की खेती करते हैं और जिसमें अमरूद और पपीता काफी मुख्यतः अपने झाबुआ जिले में इसको किया जाता है, तो हम देखते हैं कि कहीं पर वो पिंकिश कलर का जो अमरूद आता है उसकी कौन सी किस्म है वो जानेंगे। साथ ही हम जानेंगे कि पपीते में कौन कौन सी किस्में आती है, कौन सी किस्म की पपीते हमें लगाने चाहिए। कभी कभी होता है हम आनंद फानंद में ले आते हैं बहुत सारे पौधे, लेकिन कुछ को पौधे खराब निकल जाते हैं, तो उसका चुनाव हमें कैसे करना चाहिए और कौन सी किस्मों के पौधों को हमें लेना चाहिए, कौन सी किस्में हैं, उनके नाम आदि सब कुछ जानेंगे और लेंगे यहाँ पर एक्सपर्ट की राय।
2: किस्मों के बारे में जानना चाहा तो अमरूद की जो किस्में हैं वो इलावा सफेदा है, सरदार है, श्वेता है, ललित है। ललित जो कि उसका पिंक फ्लैश होता है और ये श्वेता है उसका एकदम सफेद होता है, तो उस तरीके की किस्मों पे आप जा सकते हैं। और पपीता का रहा सवाल, तो पपीता की जो उन्नत किस्में हैं उसमें आप, क्योंकि पपीता नर और मादा पौधे हैं वो अलग अलग होते हैं
3: जी जी।
2: तो आपको जो है उभयलिंगी किस्मों का चुनाव करना बहुत अत्यंत आवश्यक हो जाता है। तो इसके लिए आप जैसे रेड लेडी हो गया, सिंटा, पूसा डिलीशियस, पूसा जायंट, इस तरह की किस्मों का चुनाव करेंगे तो आपको उस तरीके की समस्या नहीं होगी। नहीं तो क्या होता है कभी कभी, क्या किसान भाई बीज तो ले आते हैं और उसके बाद में वो कहते हैं कि इसमें तो हमारे पपीता ही नहीं आ रहे हैं, तो उसमें प्रॉब्लम हो जाती है कि वो नर पौधा है या मादा पौधा है। तो उसमें उभयलिंगी पौधा होगा तो इन किस्मों में जो उभयलिंगी किस्म के पौधे होते हैं जिससे कि उनका फलन और पुष्पन अच्छा होता है, तो इनको आप लगाएंगे तो ज्यादा अच्छा होगा। और पपीता के बारे में जैसे मैं अभी कहूंगा कि जैसे बरसात का मौसम आया हुआ है तो पपीता, अगर आपका क्षेत्र जैसे मध्य प्रदेश से बात कर रहे थे वहां तो पाले की समस्या नहीं होगी, लेकिन जहां जिस एरिया में पाले की समस्या है वहां पे जो है पपीता का आप चुनाव ना करें। और अभी भी बरसात के मौसम में थोड़ा सा रुकेंगे अगर आपके पास सिंचाई की सुविधा है तो, क्योंकि इसमें अभी जो डैम्पिंग ऑफ है, आद्र गलन वाला रोग होता है शुरू में, तो उससे बचाया जा सकता है आपको। तो अभी थोड़ा सा आप पपीता, अमरूद को तो आप सर्वोत्तम समय है लगाने का, लेकिन पपीता को थोड़ा सा और शिफ्ट करेंगे अगस्त की लास्ट में या सितंबर तक, तो ज्यादा अच्छा रहेगा आपके।
1: किसान साथियों, अभी आपने जाना कि जो अमरूद लगाने का ये सर्वोत्तम समय चल रहा है, यह सबसे उचित समय है कि जहां पर हम अपने अमरूद को लगा सकते हैं, और जो पपीते की फसल लेना चाहता है वो थोड़ा सा यहाँ पर उसे सब्र की आवश्यकता है, थोड़ा समय और उसको इंतजार की आवश्यकता है, उसके बाद वो भी हम पपीता लगा सकते हैं। तो किसान साथियों, इसी के साथ पुनः हम रुक करते हैं चारा प्रबंधन को लेके। चारा प्रबंधन को लेके हम कुछ महत्वपूर्ण जानकारियों को सुन रहे थे, आइए उसे जारी करते हैं।
4: फसलें हैं जो चारे की फसलें हैं, आप ज्वार लगा सकते हैं वहाँ। और सबसे ज्यादा जो अपने देश में अगर इसका ज्वार का बीज आता है तो हैदराबाद से ही आता है वो, या कहीं भी नजदीक में आपके जो भी कृषि विज्ञान केंद्र है वहां से भी मिल जाएगा। इस सीजन में आप ज्वार लगा सकते हैं, आप मल्टीकट ज्वार लगाइए जिसको कि आप एक बार से ज्यादा बार काट सकते हैं। और दूसरा, अगर आपके पास कोई ऐसी जमीन है जिसके अंदर कि आप अपने खेती के लिए, जो अच्छी जमीन है वो खेती के लिए काम में लेना चाहते हैं, लेकिन थोड़ा बंजर टाइप जमीन है, तो आप उसमें घासें भी लगा सकते हैं। तो घास वाली फसलों में आपका सेनक्रस एक ग्रास है जिसको हिंदी में अंजन बोलते हैं, और स्टाइलो एक घास है, दलहनी घास है। ये दोनों घास के बीज को आप जो थोड़ी बंजर टाइप जमीन है उसके अंदर लगा सकते हैं, तो वो आपके दोनों घास जो है बहुत साल तक चलती हैं, आपकी कम से कम 4-5 साल तक आपको चारा मिलता रहेगा। एक बार शुरू में आप 5-6 महीने तक उसको नहीं काटिए, लेकिन बाद में आप उसको जैसे ही बारिश होगी तो 30-40 दिन के एक अंतराल के बाद में गैप पर आप उसको काट सकते हैं। और अगर बहुत ज्यादा मात्रा में घास अगर हो गई है उसमें तो आप काट के सुखा भी सकते हैं, जैसे अभी चैनल में बताया गया, ज्यादा मात्रा में घास है तो आप काट के सुखा लीजिए, और जब आपके पास चारा नहीं है उसमें आप पशुओं को उसके अंदर दाना मिला के उसको खिला सकते हैं। तो इस तरह से आप जो अपनी अच्छी जमीन है उसका भी उपयोग कर सकते हैं, और थोड़ी बेकार जमीन है उसका उपयोग भी कर सकते हैं। ग्राम सभा में या हर गांव में कुछ ऐसी जमीनें भी होती हैं जो बंजर टाइप की होती हैं और चरागाह के लिए सरकार छोड़ती है, तो उन चरागाह की जमीनों का विकास ही बहुत जरूरी है। हमने ये पाया है कि जहां जागरूक किसान है और ग्राम सभा बहुत एक्टिव है, प्रधान बहुत एक्टिव है, तो आप लोग जागरूक रहिए, उन चरागाह की जमीनों में भी जो पेड़ लगे हुए हैं उसके बीच में जो मैंने घासें बताई आपकी अंजन घास है या स्टाइलो घास है, दक्षिण भारत में भी बहुत अच्छी तरह से होती हैं, वहां के लिए वैरायटीज हैं, इन घासों को लगाने पर आप जोड़ दीजिए और बारिश के सीजन में लगाइए, जिससे इनका बीज जम जाएगा और आपके पशु का काफी पशु ऐसे भी होते हैं जो चरागाह में चरने जाते हैं,

0: ज्यादा बाजरा नहीं फिर हाइब्रिड को लगाइए अगर आपके पास में पानी की सुविधा सिंचाई की है तो, क्योंकि क्या होता है जैसे बारिश के मौसम में तो ठीक है, बाद में सर्दियों के मौसम में थोड़ा इसका ग्रोथ कम होती है बाजरा नहीं फिर हाइब्रिड की, थोड़ा आपको संयम रखना पड़ेगा, नहीं तो आपको साल के 10 महीने तक अच्छा चारा इससे प्राप्त होगा। और थोड़ा अगर पानी का जैसे अरेंजमेंट आपका नहीं होता तो गिनी घास है, गिनी घास भी बाजरा नहीं फिर हाइब्रिड की तरह ही एक बहुवर्षीय घास है, ये आपका बीज से भी हो जाता है और इसकी जड़ें भी लगती हैं, तो आप इसमें 50x50 सेंटीमीटर या 2 फीट के गैप पर जो है खेत अच्छा तैयार करके उसमें आप ये घास की जड़ें लगा दीजिए, आपके कम से कम 30 से 35 हजार जड़ें 1 हेक्टेयर के अंदर लगेंगी और पूरे वर्ष आपको इसे चारा मिलेगा, पूरे वर्ष इसे चारा मिलेगा, आपको बार बार बीज की व्यवस्था करने की जरूरत नहीं है। और ये दोनों बहुवर्षीय घास मैंने बताई, सिंचित क्षेत्र में बाजरा नेपियर हाइब्रिड, और जहां थोड़ा सिंचाई की सुविधा नहीं है रेनफेड एरिया है तो गिनी घास, सुडान घास आपने बताया वो भी लगा सकते हैं, तो इससे आपको कम से कम नहीं तो 800 से 1000 क्विंटल चारा जो है पूरे वर्ष में आप इससे ले सकते हैं, 8 से 10 एक 30-40 दिन के गैप पर जो है आप जो है चारा काट सकते हैं।
1: आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांडिया भील 90.8 FM, आपड़ो रेडियो आपड़ी बातें।
0: तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा जैसे मैंने पहले किसान भाई को बताया आपके एरिया के अंदर जो बहुवर्षीय चारा जैसे मैंने बताया जो बाजरा नेपियर हाइब्रिड है ये काफी तेजी से वहां फैल रहा है, आप अपने एरिया को थोड़ा एरिया उसमें डेडिकेट कीजिए, आपके खेत का जो एरिया है उसके अंदर बहुवर्षीय चारा लगाइए बाजरा नेपियर हाइब्रिड, क्योंकि बारिश काफी अच्छी होती है आपके उधर, बारिश काफी अच्छी होती है, पानी कमी नहीं है वहां पर, तो आपको पूरे वर्ष बहुत अच्छा चारा प्राप्त होगा। इसके अलावा ज्वार अगर आप अपना खेत को पूरे हर सीजन के लिए एंगेज नहीं करना चाहते आप ज्वार लगाइए, उसमें एमपी चरी है, मल्टीकट ज्वार की काफी वैरायटीज हैं, उसको लगाइए, और सर्दी के मौसम में बरसीम लगाइए उसके अंदर दलहनी चारों के अंदर, और जई भी वहां अच्छा उत्पादन देती है। इस तरह से आप अपने खेत का हिस्सा बांट लीजिए, कितने हिस्से में आपको बहुवर्षीय चारे लगाने हैं और कितने हिस्से में आपको एक वर्षीय चारे लगाने हैं, क्योंकि कई बार समस्या क्या आती है कि जो खेत खाली होता है तो वहां पूरे गांव में जो जानवर छोड़ दिए जाते हैं, तो काफी किसान इंटरेस्ट नहीं लेते हैं कि हम बहुवर्षीय चारा नहीं लगाएंगे हमारा खेत नष्ट हो जाएगा, तो आप ज्वार लगाइए खरीफ के मौसम में और लोबिया लगाइए दलहनी चारे के रूप में, और रबी के मौसम में बरसीम लगाइए और जई लगाइए, लेकिन अगर आपका थोड़ा फेंसिंग वगैरह की व्यवस्था है तो आप बाजरा नेपियर हाइब्रिड भी लगा सकते हैं जो पूरे वर्ष आपको अच्छा चारा देगा, सिर्फ जब आपको पानी कमी होगी उस समय सिंचाई देने की सिंचाई की व्यवस्था करने की जरूरत है, नहीं तो आपका जो बारिश से जो पानी मिल रहा है उससे भी उससे काम चल जाए।
2: इसी से मिलता जुलता एक और सवाल हम यहाँ पर करना चाहेंगे कि जो पानी का जो पीएच लेवल है वो थोड़ा सा ज्यादा है, पानी थोड़ा सा खारा आ रहा है, तो यहाँ पर हमें कौन से चारे का इस्तेमाल करना चाहिए, कौन सा चारा हमें लगाने की आवश्यकता है?
0: देखिए आपके यहाँ जो पाली में पानी है थोड़ा पीएच ज्यादा है मेरे को मालूम है, सेलाइन वाटर वहां पर है, तो कुछ ग्रासेज हैं, घासें जैसे हैं जैसे अंजन घास है आप ये लगा सकते हैं। एक बार आप थोड़ा वहाँ काजरी एक संस्था है जो पाली में सेंटर भी इसका है वहां से थोड़ा संपर्क कीजिए, कुछ वैरायटी ऐसी हो जो वहां सस्टेन कर जाए, नहीं तो घास काफी अच्छी होती है सेलाइन वाटर के अंदर, एक समस्या आती है कि जर्मिनेशन में बहुत समस्या आती है, तो अंजन घास वहां काफी अच्छी होती है उसको आप वहां पर लगा सकते हैं, उससे भी आपको पूरे साल अच्छा चारा मिलेगा।
1: आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांडिया भील 90.8 FM, आपड़ो रेडियो आपड़ी बातें।
0: हाँ किसान भाइयों, अभी जैसे सरकार के काफी प्रोग्राम चल रहे हैं जिसमें हमारा काफी बड़ा क्षेत्र जो है उद्यान की फसलों में जा रहा है, तो इसमें एक समस्या आती है कि जो उद्यान की फसलें हैं जो पेड़ हैं वो काफी साल तक चलते हैं, आपका एक पेड़ लगा है 20-25-30 साल तक चलता है, अब एक समस्या आती है कि इस पेड़ों के बीच का जो गैप है कम से कम 10-12 फीट का एक गैप रहता है, इसमें हम क्या कर सकते हैं, कौन सी फसलें लगा सकते हैं? तो इसमें सबसे अच्छा मैं कहूंगा शुरुआत में जब पौधों की हाइट बहुत कम होती है उसमें आप जो चारे की फसलें जैसे मैंने बताई आपका ज्वार है या बाजरा है या बरसीम है या आपका सर्दी में रिज़का है, ये फसलें आप लगा सकते हैं। लेकिन क्या होता है जैसे जैसे पेड़ की हाइट बढ़ती जाती है उसकी छाया का प्रभाव पड़ता है तो फसलों के उत्पादन पर भी इसका असर आता है, तो उसमें हम ये कहेंगे जैसे पेड़ की हाइट ज्यादा है पुराने बगीचे हो गए हैं तो उसके बीच में आप गिनी घास जो शेड लविंग बोलते हैं जो छाया में भी अच्छा उत्पादन देती है आप गिनी घास लगा सकते हैं, जो भी पानी पेड़ों

0: मिल रहा है उसी पानी से वो हो जाएगी, बारिश के पानी से भी वो सर्वाइव कर जाती है। इसके अलावा आपका राजस्थान के अंदर जैसे फलों के बगीचे हैं तो आप सेंक्रस अंजन घास है वो लगा सकते हैं, स्टाइलो लगा सकते हैं, या दो तीन लाइन आपकी सेंक्रस की लगाइए, बीच में दो लाइन आप स्टाइलो के लगा दीजिए, तो इससे आपको दलहनी और जो घास कुल की दोनों घासें आपको मिलेंगी और पशुओं को बहुत अच्छा चारा आपको प्राप्त होगा। एक तरह से आप फलों से आपको आमदनी हो रही है और आपको बीच में जो घास है वो अतिरिक्त आमदनी प्राप्त होगी। न केवल आपका पशुओं का स्वास्थ्य ऐसे सुधरेगा, आपका जो पशुओं का जो बजट खर्चा है उसमें कमी आएगी, आप उसको बेच के अपना अतिरिक्त आमदनी भी कर सकते हैं इससे।
1: सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांडिया भील 90.8 FM, आपड़ो रेडियो आपड़ी बातें।
2: किसान साथियों, हम लगातार चारे को लेकर चर्चा कर रहे हैं। किसान साथियों, हम कौन सा चारा जो होता है जो 12 महीने हमको मिल सकता है, और हाँ बिल्कुल हमको चारे की बहुत ही आवश्यकता है। हमारे सभी के घरों में अधिकतर पशु मिलते हैं, दूध उत्पादन हम करते हैं, साथ ही उनके गोबर से जो हमारी मृदा है उसका संरक्षण होता है, उससे जो खाद बनाई जाती है उससे हमें जैविक खेती में प्राकृतिक खेती में बहुत ही उपयोगी साबित होता है। तो कहीं ना कहीं हमें पशुओं की बहुत आवश्यकता है, तो पशुओं के लिए चारे की हमें उतनी ही आवश्यकता पड़ती है। तो किसान साथियों, हम लगातार ये जान रहे हैं कि कौन सी जो घास है वो अति उत्तम होती है, कौन सी घास हमें कौन सी जमीन में हमें लगानी चाहिए, साथ ही कौन सी गुणवत्तापूर्ण घास होती है और इस घास का हम प्रबंधन कैसे कर सकते हैं। अभी जो मौसम चल रहा है, अभी ऑन सीजन है जहाँ पर हमें अधिकतर चारा मिल सकता है, लेकिन जब ऑफ सीजन होता है उस समय हमें घरे चारे की काफी दिक्कत होती है। जिसके पास मोटर है वह हरे चारे की फसल को डाल के वहां पर अपनी फसल को कर सकता है, लेकिन यहाँ पर जिन किसान भाइयों के पास फसल की पानी का जो प्रबंधन उतना अच्छा से नहीं है, वो किसान भाई कैसे इस समय में चारे का प्रबंधन कर सकते हैं और कैसे इस चारे को लंबे समय तक अपने संग्रहालय में रख सकते हैं ताकि समय आने पर हमारे पशुओं को एक उपयुक्त और पौष्टिक आहार हम दे सकें, इससे जुड़ी हुई और भी महत्वपूर्ण जानकारियों को जानेंगे। और आइए यहाँ पर हम लेते हैं कुछ एक्सपर्ट की राय कैसे हम हमारे चारे का और अच्छे से इसका प्रबंध कर सकें। आइए लेते हैं यहाँ पर एक्सपर्ट की राय।
0: हमारे देश में जो बहुवर्षीय चारा फसलों का प्रचलन है आजकल बहुत तेजी से बढ़ रहा है। इसका कारण ये है कि हर सीजन में एक तो बीज का अरेंजमेंट करना, अच्छे बीज का अरेंजमेंट करना किसान के लिए बहुत मुश्किल होता है, तो बहुवर्षीय चारों में सबसे ज्यादा जो प्रचलित चारा इसमें है वो बाजरा नेपियर हाइब्रिड है। नेपियर एक अफ्रीकन हम कह सकते हैं प्लांट टाइप है जिसकी हाइट, उसको हाथी घास भी बोलते हैं, वो हाथी भी उसमें छिप जाता है जाके, लेकिन उसकी पोषक तत्व तो ज्यादा नहीं थे, तो बाजरा के अंदर पोषक तत्व तो ज्यादा होते हैं। तो बाजरा और नेपियर का क्रॉस करा के वैज्ञानिकों ने एक नया प्लांट टाइप निकाला, बाजरा नेपियर हाइब्रिड, और पूरे भारतवर्ष में, उत्तर भारत में भी आपका जितनी भी कृषि विश्वविद्यालय है और दक्षिण भारत में भी अलग अलग वेराइटीज उन एरिया के हिसाब से निकाली जा चुकी है। कोयम्बटूर से भी अच्छी वैरायटी निकली है, हमारा चारागाह अनुसंधान संस्थान झांसी से भी निकली है, धारवाड़ से भी अच्छी वैरायटी निकली है, पंजाब हिसार से भी निकल चुकी है। अपने क्षेत्र के हिसाब से आप लोग वैरायटी का चयन करके और खेत का कुछ हिस्सा आप इसमें बहुवर्षीय चारों के लिए आप दे सकते हैं। इसके अलावा काफी ऐसे भी ट्रायल किए गए हैं जिसका जरूरी नहीं कि आप पूरा क्षेत्र अपना खेत का जो है बहुवर्षीय चारों में दे दीजिए, आप उसमें एक ट्रैक्टर क्रॉस कर जाए 10 फीट का गैप रख के आप कुछ पंक्तियां बहुवर्षीय चारों के लगा सकते हैं, और बीच में सीजन के हिसाब से जैसे आपका खरीफ में ज्वार लगा दीजिए, आप लोबिया लगा दीजिए, और रबी सीजन में बरसीम लगा दीजिए, या आप कुछ एरिया ऐसा भी है जहां ज्यादा ठंड नहीं पड़ती जैसे मैंने बताया राजस्थान या गुजरात का एरिया है, हमारे इसका भी लगा सकते हैं उसके बीच में आप जो है, इसके अलावा जई भी लगा सकते हैं, तो आप बहुवर्षीय चारों का फायदा भी उठा सकते हैं और जो एनुअल क्रॉप फोटो क्रॉप बोलते हैं, एक वर्षीय चारे बोलते हैं, उसका फायदा भी उठा सकते हैं। पूरे वर्ष भर आप ऐसा प्लान बना सकते हैं जिससे आपको हरा चारा मिलता रहेगा, पोषक तत्व तो मिलते रहेंगे। और एक बात और है कि अगर आपके यहाँ बहुवर्षीय चारों की फसल लगी हुई है तो आप अपनी लागत, जो दूध की लागत आती है जो उत्पादन की पशुओं
3: को भी घटा सकते
0: हैं, उसको भी आप घटा सकते हैं और पशु का स्वास्थ्य भी इससे काफी बेहतर होता है।
1: आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांडिया भील 90.8 FM। आपड़ो रेडियो आपड़ी बातें।
2: हमारा किसान जो है आम का बहुत ही बड़ा शौकीन है, तो आइए जानते हैं आम से जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण बातों को, कैसे और कहां से हमें पौधा लेना चाहिए और कौन सा पौधा अच्छी किस्म का होता है और किस पौधे से हमें ज्यादा से ज्यादा फल मिल सकते हैं, तो आइए जानते हैं और लेते हैं यहाँ पर एक्सपर्ट की राय।
4: आप बाग लगाना चाहते हैं तो वहाँ आप पहले, जैसे मैंने शुरुआत में कहा था, वहाँ की जो मिट्टी और जल का आप जो है परीक्षण करवा लें और उसके बाद में आप जाएं और उसमें जो उन्नत किस्में हैं वो, क्योंकि आम में अनियमित फलन और पुष्पन की समस्या होती है, जो नियमित फलन देती हैं वो जो हाइब्रिड किस्में हैं, जैसे आपकी आम्रपाली हो गई, मल्लिका, इस तरह की किस्मों का आप चुनाव करेंगे तो उसमें अच्छा होगा। और क्योंकि जो इनके जब वृक्षारोपण भी आप करने जा रहे हैं तो

0: तो उससे क्या होगा कि आपके ऊपर एकदम धनराशि का बोझ नहीं पड़ेगा, और जैसे ही आप बगीचा लगाएंगे तो आपका निश्चित रूप से आमदनी आगे बढ़ेगी।
1: आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांडिया भील 90.8 FM। आप रेडियो आपकी बातें।
0: में जो है आप ये CISH है जो सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ सब ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर, उसने आम की बहुत सारी किस्मों को निजात किया है और उनका क्षेत्रीय केंद्र भी है वहाँ मालदा, तो उसके पास से आप जो है उसकी उन्नत किस्में लेंगे और चाहे आप वहाँ कौन सा जो है प्लांटिंग मटेरियल उपलब्ध है। इसके अलावा नजदीकी जो कृषि विश्वविद्यालय है, कृषि विज्ञान केंद्र है, शाहूर में भी एक वहाँ केंद्र है और वहाँ एक सबसे पुराना कृषि विद्यालय जो आपकी राजेंद्र नगर में है, वहां से भी आप जो है इसके जो उन्नत किस्मों का प्लांटिंग मटेरियल ले सकते हैं और वो गड्ढों की साइज और स्पेसिंग है उनके लिए आप टेक्निकल जो है डिस्कशन कृषि विज्ञान केंद्र के उद्यान विशेषज्ञ से भी कर सकते हैं, और जो गड्ढे हैं वो किस्म के हिसाब से आप खोदें। जैसे कोई बोनी किस्म है और आप सघन बागवानी करना चाहते हैं तो जैसे आम्रपाली वगैरह है तो 2.5 x 2.5 meter पे आप उनकी जो है पौधारोपण करेंगे, और जो दूसरी ओजस्वी किस्म है जिनका जो है छतरक ज्यादा बड़ा होता है तो उनको आप 6 से 8 meter की दूरी पर स्थापित करें।
2: किसान साथियों, इसी के साथ यहाँ पर वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, बने रहिए हमारे साथ रेडियो टांडिया भील 90.8 FM के साथ। रेडियो स्टेशन 90.8 FM टांडिया भील रोज हांजे 6 થી 8 વાગે આપણી સમસ્યા અને આપણો સમાધાન આપુ રોજ કરું વાતે ખેતીના બારામાં અને કમાઈના બારામાં એત્રે હમળતા રહેજો ટાંટિયા ભીલનો રેડિયો સ્ટેશન 90.8 FM।

0: सुने हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांडिया भील 90.8 FM। आपड़ो रेडियो आपड़ी बातें।
1: किसान साथियों, आप सुन रहे हैं रेडियो टांडिया भील 90.8 FM झाबुआ की आवाज। किसान साथियों, खेती बाड़ी कार्यक्रम में आप अभी तक लगातार घास प्रबंधन को लेकर काफी चर्चा को आप सुन चुके हैं। साथ ही आपने उन्नत आम की उन्नत किस्मों के बारे में भी सुना। अब ये जो समय चल रहा है, यह बागवानी के लिए उत्तम समय है और जो भी किसान भाई बागवानी में रुचि रखता है उसके लिए ये बहुत ही उत्तम समय है। यहाँ पर आपने बहुत सी उन्नत किस्मों के आम के बारे में जाना है, तो आप आम लगा सकते हैं, साथ ही अमरूद भी आप लगा सकते हैं। तो किसान साथियों, आम और अमरूद के साथ ही साथ घास से संबंधी और कुछ और जानकारियों को जारी करते हैं और आइए सुनते हैं कुछ और एक्सपर्ट की राय।
2: की जो किस्में हैं, इसमें आप जो उन्नत किस्में हैं इलावा सफेदा, सरदार और जो नई किस्में हैं उनमें श्वेता और ललित है। तो ललित का जो है उसका जो पिंक फ्लैश होता है तो उसका प्रोसेसिंग क्वालिटी अलग है और उसकी डिमांड भी अलग है। तो इनका आप एक मिश्रण कर सकते हैं अपने जब पौधा रोपण कर रहे हैं। और इनकी पौध की सामग्री आपको कहाँ से मिलेगी इसके बारे में मैं आपको जानकारी देना चाह रहा हूँ कि जो CISH है आपके लखनऊ में, वहाँ पे ये पौधे तैयार किए जाते हैं। और इन पौधों के लिए आपको जैसे अभी आपने संपर्क कर लिया है तो अच्छा है, नहीं तो वहाँ के जो भी नर्सरी इंचार्ज होंगे उनसे आप फोन के माध्यम से या ईमेल के माध्यम से जुड़ के उनसे संपर्क करेंगे और उनका जो रिक्विजिशन लेटर है उस पे आप जो है लिखेंगे तो वहाँ से आपको पौधे की सामग्री जरूर मिलेगी। और क्योंकि मैंने शुरू में ही आपको फोकस किया है कि जो इनके जो लगाने की दूरी कितनी रखनी चाहिए, तो आप जो अमरूद को है 6x6 मीटर दूरी पे लगाएंगे। और अगर सघन बागवानी में जाना चाहते तो वो भी आप कर सकते हैं। तो आपकी पहले एक और बात की जो है कि अमरूद में जो समस्या आती है वो उखटा रोग जिसे विल्ट बोलते हैं, अगर आपके जो मृदा का पीएच है वो 8 से ऊपर है या 8 और 9 के लगभग है तो वहां जो ये फ्यूजेरियम एक फंगल होता है वो उसके मतलब इतनी चांस होती है कि वो पौधे के मरने की संभावना ज्यादा हो जाती है कि उस मृदा में जो है विल्ट की समस्या है या उखटा रोग है वो बहुत ही खतरनाक रोग है। तो अगर इस रेंज में है आपका पीएच तो इसमें जो है आप अमरूद ना लगाएं और इससे नीचे है तो आप अमरूद लगाएं। ये उन्नत किस्में आप जो है भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के जो CIH इंस्टीट्यूट है या जो मध्य प्रदेश में कृषि विश्वविद्यालय हैं या आपके पास में जो कृषि विज्ञान केंद्र है उनसे इन किस्मों के जो है चुनाव करके आप इनको लगाएं और 6x6 मीटर पे लगाएंगे तो अच्छा रहेगा आपके लिए।
1: हमारा झाबुआ का किसान जो है अधिकतर जंगल के पास का जो चारा होता है, जो जंगल में जो चारा होता है उसी से उसी चारे को काटकर उसका प्रबंधन करता है। तो क्या ये चारा हमारे गाय भैंसों के लिए गुणवत्तापूर्ण चारा है या नहीं, और इसका प्रबंधन अगर कोई करना चाहता है तो उसको कैसे करना चाहिए, आइए इसमें लेते हैं एक्सपर्ट की राय।
3: किसान भाइयों, जो हमारा जंगलात की जमीन है, फॉरेस्ट एरिया जो बोलते हैं, इसके आसपास भी काफी लोग निर्भर रहते हैं पशुओं के चराई के लिए। अभी काफी जो फॉरेस्ट एरिया के ऑफिसर्स हैं वो रिसर्च इंस्टीट्यूट से डिस्कस करते हैं चरागाह फसलों के बारे में, तो किसान भाई इसका फायदा उठा सकते हैं। वहां आपस में पार्टिसिपेटिव मेथड से जंगल के विभाग के साथ मिलके आप लोग उसका मैनेजमेंट अच्छा अगर करें, जिसमें आपका अंजन घास है जहां पर जो बारिश है 400 से 500 मिलीमीटर कम से कम बारिश होती है, अंजन घास आप लगा सकते हैं। लेकिन रेगिस्तान का एरिया है जहां पर बारिश बहुत कम होती है, जैसे बाड़मेर जैसलमेर का एरिया है, तो वहां पर आप सेवन घास जो होती है वो 200 मिलीमीटर की बारिश में भी अच्छी हो जाती है और काफी साल तक आपको 8 से 10 साल तक उसको अच्छा चारा मिलेगा। और सेवन घास के तो 50 साल तक की हमने देखे हैं कि पहले भी लगाई हुई घास है उसकी फुटान अच्छी होती है और वो काफी तेजी से उसके बीज फैलते हैं और काफी बड़े एरिया में फैल जाती है। तो जंगल विभाग के आसपास के एरिया या जंगल के अंदर के एरिया जहां तक पशु चरने के लिए जाते हैं उनको वहां से भी जो बीच का जो खाली स्पेस है पेड़ के बीच का वो एक चरागाह के रूप में विकसित किया जा सकता है, जिससे कि किसानों को जो चराई पर डिपेंड है, छोटे किसान है, भूमिहीन किसान है, उनको फायदा मिल सके।
1: किसान साथियों, आज के खेती बाड़ी कार्यक्रम में आपने बहुत सी महत्वपूर्ण जानकारियों को जाना, आपने चारा प्रबंधन से जुड़ी हुई बहुत सी महत्वपूर्ण जानकारियों और कौन सी किस्मों का चारा लगाना चाहिए और हमारे पशुओं को कौन सा चारा सबसे ज्यादा फायदेमंद होता है, कैसे पशुओं का देखरेख करना और हमारे चारे की उन्नत किस्में कौन कौन सी है, कौन सा चारा अच्छी किस्म का है आदि जानकारियों को आपने जाना। साथ ही आपने जो किसान बागवानी करना चाहता है वो अभी उनके लिए जो उपयुक्त समय चल रहा है और कौन से आम है, अमरूद है, इनके कौन से अच्छी किस्म के पौधे हैं आदि जानकारियों को आज के इस प्रोग्राम में आपने जाना। इसी के साथ किसान साथियों यहाँ पर वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। आपसे पुनः कल मुलाकात होगी इसी समय इसी वक्त। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ रेडियो टांटिया भील 90.8 FM के साथ। रेडियो स्टेशन 90.8 FM टांटिया भील रोज हांजे 6-8 वागे आपड़ी समस्या अने आपड़ो समाधान। आपु रोज करहूं वातें खेती ना बारा मा अने कमाई ना बारा मा एत्रे हमरता रेजो टांटिया भील नो रेडियो स्टेशन। रेडियो स्टेशन 90.8 FM।
4: घर खर्च के पैसे दो हस्बैंड जी,
5: ये राशन के 15,000, सब्जियों के 2,000
4: और लाइट बिल के
5: अब 0 रुपए कैसे दूं?
4: ओहो भूल ही गई थी, अब तो सोलर पैनल लग गए हैं ना, तो जो 4,000 बचे हैं उससे शॉपिंग हो जाए।
5: पक्का।
6: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर .gov.in।

0: जिंदगी के रंग गीतों के संग प्रोग्राम में दोस्तों आपका स्वागत है। आइए आपको मिलवाते हैं हमारे आपके जैसे सज्जनों और महिलाओं से, जिनकी बातें सुनकर, जिनसे बातचीत करके आपको बड़ा मजा आएगा और उन्हीं के पसंद के गीत भी हम इस प्रोग्राम में सुनेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस प्रोग्राम को।
1: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं SN रेडियो और मैं हूं आपकी होस्ट RJ तनुषा, आपके तरानों की हमसफर। लेकर आई हूं एक और दिलचस्प एपिसोड जिंदगी के रंग गीतों के संग का। आज हमारे साथ जुड़ी है एक ऐसी आवाज जो सिर्फ लिखती नहीं है, महसूस करवाती है। एक पोएट, एक स्टोरी टेलर, एक एजुकेटर, एक ऑल इंडिया रेडियो टॉकर और एक मल्टी अवार्ड विनिंग पर्सनालिटी, सोनल शर्मा जी। तो चलिए स्वागत करते हैं सोनल शर्मा जी का हमारे आज के जिंदगी के रंग गीतों के संग पर। तो सोनल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे आज के जिंदगी के रंग गीतों के संग पर। कैसा महसूस कर रहे हैं आप?
2: तो मैं बहुत बहुत खुश हूँ और मैं सौभाग्य मानती हूँ अपना कि आज मैं SN रेडियो पर हूँ। तो मेरी तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया SN रेडियो को कि मुझे ये अवसर देने के लिए कि मैं आपके समक्ष आज ये इंटरव्यू दे पाऊँ।
1: जी सोनल जी, हम बहुत एक्साइटेड हैं। जैसे मैंने अभी आपकी इंट्रोडक्शन में बताया, आप इतनी मल्टी फेसेटेड और मल्टी टैलेंटेड पर्सनालिटी हैं, इतना कुछ आप अपने करियर में अचीव कर चुकी हैं। तो शुरू करते हैं हमारे पहले सवाल से। मैम, आप एक एजुकेटर हैं, एक पोएट हैं, एक स्टोरी टेलर हैं, बट ये सफर शुरू कहाँ से हुआ? मतलब ये कौन सा बीज था, बचपन में डला ये बीज या ओवर द इयर्स जैसे आप बड़े होते गए उस तरह से आप डेवलप हुए? किस तरह से आपका ये सफर शुरू हुआ और ऐसा कौन सा वो पल था आपके जीवन में, कौन सा वो फर्स्ट मोमेंट था जब आपको लगा कि वर्ड्स मेरी पहचान है?
2: सो तनुषा, मैं सबसे पहले एक एजुकेटर ही थी। लाइक बिफोर माई मैरिज आई डिड टीचिंग फॉर 11 गुड ईयर्स। तो और मैं लिखा करती थी, पर मैं स्कूल टाइम में, कॉलेज टाइम पे लिखा करती थी। मेरी एक ब्लू डायरी हुआ करती थी, उसमें मैं कुछ कुछ लिखा करती थी, पर वो मेरे तक ही सीमित था। फिर मैं टीचर बन गई, मैंने 11 इयर्स तक मैंने टीचिंग की। एंड देन जब मेरी शादी हुई तो मैंने डिसाइड किया दैट आई विल क्विट माई जॉब, नॉट बिकॉज समबडी फोर्स्ड मी, बट वो मेरी चॉइस थी, क्योंकि मुझे ये जो न्यू फेज था मेरी जिंदगी का, उसे भरपूर उसका आनंद उठाना था। मुझे अपने परिवार को संभालना था, एक यू नो माँ बनकर मदरहुड को एंजॉय करना था, और वो मैंने किया भी
1: जी।
2: तो इस तरह से बहुत साल निकल गए, बच्चे थोड़े बड़े हुए, तो एक वो हॉलोनेस फील होने लगी जिंदगी में। लगा कि अब कुछ कुछ समय निकल रहा है, तो अब क्या करना है, कोई ना कोई पर्पस तो ढूंढना है जिंदगी में। तो ये तो तय था कि मुझे एजुकेटर फिर से नहीं बनना था, क्योंकि शायद मुझे लगता है टीचिंग ने मुझे बच्चों से प्यार करना सिखाया, पर जब मैं जो स्कूल में लिखती थी, जो कॉलेज में लिखती थी, शब्दों ने मुझसे खुद से प्यार करना सिखाया। तो मुझे लगा कि वो एक कॉलिंग की तरह आया मेरे जहन में, और मुझे लगा कि अगर वो शब्द मुझे खुद से प्यार करा सकते हैं, तो वो शब्द कितनी सकारात्मकता, कितनी ऊर्जा दुनिया में फैला सकते हैं। तो इस तरह से 2016 में मॉम्स प्रेसो प्लेटफॉर्म पर मैंने मेरा पहला ब्लॉग लिखा मदरहुड के बारे में, और सिलसिला चलता रहा। और इस तरह से मैंने उस पर कोट्स, 100 बर्थ स्टोरीज, और इस तरह से 2000 ब्लॉग्स लिख दिए। काफी ब्लॉग्स मेरे वायरल भी हुए, काफी शॉर्ट स्टोरीज मेरी वायरल भी हुई। और फिर शुरू हुआ मेरा स्टोरी टेलिंग का सफर टेल टेल्स पर। कोविड टाइम्स था, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म था, तो स्टोरी टेलिंग शुरू हुई, और फिर शुरू हुई मेरी पोइट्री। और इस तरह से मुझे मेरा पर्पस मिला, और 10 साल हो गए इस बात को, 10 साल से मैं लिख रही हूँ कंसिस्टेंटली, और आज मैं आपके सामने हूँ।
1: हाउ ब्यूटिफुल मैम, और ये कितनी सिरेंडिपिटस बात है, कितनी कोइंसिडेंटल बात है कि आई डोंट नो ये डेस्टिनी का इशारा है या बस हमें आज ही कनेक्ट होना था, कि आपका पहला जो पीस ऑफ राइटिंग था वो मदरहुड के ऊपर था
2: पे।
1: और आज हम मदर्स डे पे प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो आई थिंक इट्स अ डिवाइन इंटरवेंशन। एंड बहुत ही ब्यूटिफुली आपने अपनी जर्नी को एक्सप्लेन किया, एक्सप्रेस किया, और सच में वर्ड्स में वो ऊर्जा होती है, वो सकारात्मक एक शक्ति होती है जो हमें खुद से तो मिलवाती है, बट हमारे शब्द लोगों तक जब पहुंचते हैं तो वो कितनी सारी जीवन, कितनी सारी यू नो ड्रीम्स को चेंज कर सकते हैं, उनको इफेक्ट कर सकते हैं, उनको एक लॉन्ग टर्म एक पर्पस दे सकते हैं आपके वर्ड्स। तो आई एम श्योर आपने जी आपने 2016 से आज तक 10 सालों में बहुत लोगों के लाइफ्स को इम्पैक्ट किया होगा। 11 साल आपने टीचिंग भी की है जैसे आपने बताया, तो एक टीचर होने के नाते आपको आई एम श्योर आप जब बच्चों को पढ़ाते होंगे तो उसमें भी स्टोरी टेलिंग का जो एक एक एलिमेंट है वो सामने आता होगा। तो किस तरह से उस स्टोरी टेलिंग ने, उस क्लासरूम टीचिंग ने आपकी राइटिंग को एक शेप दिया?
2: आई थिंक इट हैज प्लेड अ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट रोल इन माई लाइफ इन शेपिंग माई राइटिंग। क्योंकि क्लासरूम में जब मैं होती थी और मैं इंग्लिश और सोशल साइंस की टीचर हुआ करती थी, तो इंग्लिश में जैसा कि आप जानते हैं पोइट्री होती है, प्रोज होता है, चैप्टर्स होते हैं, स्टोरीज होती हैं, और सोशल साइंस में यू नो विच इज अदरवाइज अ बोरिंग सब्जेक्ट, पर हिस्ट्री होती है, हिस्ट्री तो आप जानते हैं कहानियों से भरी हुई है। तो किस तरह से उसको समझाना, तो ये मुझे लगता है कि मैं हमेशा ऐसे ही करती थी कि उन शब्दों को, उन कहानियों को फिरो के शब्दों में और इस तरह से बच्चों को समझाती थी कि वो इंतजार करते थे कि कब हमारी इंग्लिश की क्लास आए, कब हमारा सोशल साइंस का पीरियड आए। तो डेफिनेटली मैं कहूंगी कि क्लासरूम स्टोरी टेलिंग ने, क्लासरूम स्टोरी टेलिंग टीचिंग ने मेरी राइटिंग को बहुत बहुत शेप किया है। क्योंकि वहां पे खड़े होना, वहां पे जो कहानियां, किताबी कहानियों को अपने शब्दों में बच्चों तक पहुंचाना, वो बहुत ही खूबसूरत हिस्सा रहा है मेरे जीवन का, और उसने मेरी राइटिंग को बहुत ही सुंदर तरीके से शेप किया।
1: सच है, सच है। जैसे आपने बताया कि हिस्ट्री में इतनी स्टोरीज होती हैं, इंग्लिश में इतनी स्टोरीज होती है, इंग्लिश तो खैर सब्जेक्ट ही ऐसा है, तो आई एम श्योर आपकी टीचिंग ने आपको बहुत शेप किया। और बच्चे सिर्फ इसीलिए वेट नहीं करते होंगे कि आप अच्छा पढ़ाते हैं, जब आप इतने खूबसूरत दिखते हैं, इतनी प्यारी पर्सनैलिटी है, तो आई एम श्योर बच्चे सच में वेट करते होंगे कि सोनल मैम का पीरियड कब आएगा। मैं आपकी स्टूडेंट होती तो मैं तो बस आपको देखती रहती, सुनती तो शायद बाद में। तो बहुत ही प्यारी बातें आपसे हो रही हैं।
2: That's so sweet of you, actually.
1: जी जी बिल्कुल सच में, बस सच है ये बात। खैर आगे चलते हैं मैम, हम आज का हमारा पहला गीत सुनेंगे, तेरी है जमीन तेरा आसमां फ्रॉम द फिल्म बर्निंग ट्रेन।

0: वेलकम बैक मेरे प्यारे श्रोताओं, वेलकम बैक सोनल मैम। आगे चलते हैं सोनल मैम, आपने बताया आपको बहुत सारे अवार्ड्स एंड रिकॉग्निशंस मिले और बहुत ही प्रेस्टिजियस अवार्ड्स एंड रिकॉग्निशंस आपको मिले हैं, जैसे कि रविंद्रनाथ टैगोर ऑनर, प्राइड ऑफ राजस्थान और जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल 2026 में आई थिंक बेस्ट पोइट्री का प्राइज। तो इन सब मोमेंट्स में से आई एम श्योर ये माइलस्टोन इवेंट्स हैं आपके जीवन में और ये सब बहुत ही अच्छे यू नो प्रेस्टिजियस ऑनर्स एंड अवार्ड्स हैं कि कैटेगरीज में आते हैं। किसी भी लेखक के लिए, किसी भी पोएट के लिए ये बहुत बड़ा यू नो एक सम्मान है कि उसका काम इतने स्तर पर और इतने खूबसूरत स्तर पर रिकॉग्नाइज हो रहा है। तो आपके लिए इन सब में से वो कौन सा मोमेंट था जो लाइफ चेंजिंग था, जिसने आपको बहुत कॉन्फिडेंस दिया और आपके दिल के बहुत करीब है? आज भी जब आप उस मोमेंट को याद करते हैं तो आपको लगता है यार कुछ तो बहुत अच्छा किया है जीवन में।
1: जी बिल्कुल, वैसे तो ये तीनों अवार्ड्स ही मेरे लिए बहुत ही खास हैं, बहुत ही स्पेशल है, मेरी जिंदगी के सबसे बड़े अवार्ड्स हैं। पर जो एक अवार्ड है जो मेरे दिल के हमेशा करीब रहता है, जो एक मोमेंट मेरे दिल के हमेशा करीब रहता है, वो है जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल ब्रूइंग पोएट्री का विनर होना। क्योंकि आपको ये जानकर आश्चर्य होगा, आप विश्वास ही नहीं करेंगी कि बीइंग अ जयपुराइट, बीइंग अ लिटरेचर पर्सन माई सेल्फ, बीइंग अ पोएट माई सेल्फ, अ राइटर माई सेल्फ, मैं आज तक जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल में गई ही नहीं थी इससे पहले। मैं हर साल सोचती थी, लोग दूर दूर से आते हैं, पूरी दुनिया से लोग आते हैं, मैं हर साल सोचती थी मुझे यहाँ जाना है, पर कुछ घर की जिम्मेदारियों की वजह से, कुछ बच्चों की जिम्मेदारियों की वजह से ऐसा लगता था शायद ये 3 दिन का समय निकालना थोड़ा आसान नहीं होगा और ठीक है अगले साल सही। और देखिए भगवान की क्या कृपा हुई, माँ सरस्वती की क्या कृपा हुई कि जब मैं गई तो मैं गई एज अ परफॉर्मर और उसे जीत कर आई। तो मुझे लगता है कि अपनी ही सिटी में इतने बड़े स्तर पर, इतने प्रेस्टिजियस फेस्टिवल में, क्योंकि मुझे लगता है इट इज वन ऑफ द मोस्ट आइकॉनिक स्टेजेस इन द वर्ल्ड एंड इट इज ऑफन डिस्क्राइब्ड एज यू नो द ग्रेटेस्ट लिटरेरी शो ऑन द अर्थ, उसे जीत कर आना ये वाकई में बहुत बड़ी बात है और मेरे दिल के सबसे करीब है।
0: बिल्कुल, ये एशिया का बिगेस्ट फेस्टिवल है,
1: एब्सोल्यूट
0: फेस्टिवल है और खैर 2006 से ये इंसेप्ट हुआ था और आज तक इसकी जर्नी इंटरनेशनल क्या ग्लोबल, हर लेवल पर इंटरनेशनल यू नो इट इज अक्लेम्ड। तो उस स्तर का सच में अवार्ड जीतना, उसमें अपनी बेस्ट पोएट्री का अवार्ड जीतना ब्रूइंग पोएट्री कॉम्पिटिशन में, ये शो करता है कि आपकी राइटिंग की पावर, आपके पेन की पावर कितनी अच्छी और कितनी स्ट्रांग है। और अब उसको वैलिडेशन मिल गया है, नॉट जस्ट नेशनल, इंटरनेशनल लेवल पे। तो आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू एंड इस साल से आई प्रोमिस कि मैं आपको लेके चलूंगी, क्योंकि मैं पिछले जितने साल से JLF है उतने साल से मैं जा रही हूँ, तो इस साल से आई मेक श्योर कि हम साथ चलें। और इसी एहसास के साथ मैं अपना अगला क्वेश्चन पूछना चाहूंगी, क्योंकि लिटरेचर फेस्टिवल्स में जब आप जाते हैं तो बहुत सारे यू नो एक एहसास होते हैं आपको, आप बहुत लोगों को सुनते हैं, उनको समझते हैं। आप बनारस लिटरेचर फेस्टिवल की भी आपने बात की है या जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल का भी स्टेज आपने शेयर किया है व्हेन यू वन द अवार्ड, तो वो कौन सा एक इंटरनल इमोशन होता है आपका जो आपको ऑडियंस से एक इंस्टेंट कनेक्ट देता है जब आप स्टेज पर, जब भी आप कहीं भी किसी, नॉट जस्ट दीज स्टेजेस बट एनी वे दैट यू आर परफॉर्मिंग, बिकॉज आपके बहुत सारे परफॉर्मेंसेज स्टेज परफॉर्मेंसेज रहे हैं, स्टोरी टेलिंग रही है, तो विच इमोशन डू यू ऑलवेज कैरी कि ये तो मुझे रखना ही है एक ऑडियंस कनेक्ट मेंटेन करने के लिए? ये मैं इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि मैं चाहती हूँ जो बडिंग स्टोरी टेलर्स हैं, जो बडिंग स्टेज परफॉर्मर्स हैं, वो समझ सकें कि वो कौन सा फैब्रिक होता है व्हेन यू स्टार्ट स्पीकिंग ऑन द स्टेज एंड यू आप एक कनेक्ट बनाना चाहते हैं अपनी ऑडियंस से इंस्टेंटेनियसली, क्योंकि वो कनेक्ट बनेगा तभी आगे आपकी बात आगे चलेगी। तो वो क्या है मैम?
1: सो तनुषा, द थिंग इज फॉर मी वन इंटरनल इमोशन दैट इज ऑलवेज बीन देयर विथ मी, जब मैं स्टेज पर चढ़ती हूँ, जब मैं शुरू करती हूँ बोलना, दैट इज ऑनेस्टी।
0: एब्सोल्युटली,
1: तो आपकी सच्चाई, आपकी ईमानदारी, आप वो आपकी बॉडी लैंग्वेज आपकी आंखों में दिखती है। एंड टूडेज ऑडियंस यू नो वो बहुत स्मार्ट है, यू कांट जस्ट फूल देम। तो जब आप सच्चाई के साथ, जब आपने कुछ लिखा है वो सच्चाई के साथ नहीं लिखा, ईमानदारी के साथ नहीं लिखा, और आप प्रिपेयर्ड नहीं है और आप ऐसे ही बस चले गए और आप यू नो यू आर जस्ट देयर, मतलब आपको आप क्लूलेस हो, तो ऑडियंस पकड़ लेती है, झट से पकड़ लेती है उस बात को। तो ये बहुत ही जरूरी है एज अ परफॉर्मर, when you go on the stage there should be complete honesty, when you stand there and there should be a sync between your mind, your heart and your speech। So for me, this internal emotion that connects me instantly with the very first line that I narrate on the stage is honesty.
0: Absolutely. क्योंकि सच में आपने जैसे बताया कि ऑनेस्टी एकदम कनेक्ट करती है लोगों को और दिखता है कि कौन सा स्पीकर सिर्फ एक यू नो मैनिक्योर्ड वे में बोलने की कोशिश कर रहा है और कौन सा स्पीकर अपने सच को बोल रहा है और आज की ऑडियंस सच सुनना चाहती है और आई थिंक इट इज द बेस्ट कनेक्ट योर ऑनेस्टी सच में इट ट्रांसेंड्स ऑल इमोशंस एंड इट डायरेक्टली रीचेस द ऑडियंस सो इसी एहसास के साथ हम सुनेंगे हमारा अगला खूबसूरत और सच्चाई से भरा हुआ गीत पटाखा गुड्डी फ्रॉम द फिल्म हाईवे.

0: वेलकम बैक मेरे प्यारे श्रोताओं, वेलकम बैक सोनल मैम। मैम, आपकी राइटिंग में इमोशंस की गहराई बहुत महसूस होती है। मतलब जैसे आपने कहा कि ऑनेस्टी, इमोशंस बहुत ज्यादा एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं आपकी राइटिंग में, आपकी स्टोरी टेलिंग में। तो जब आप लिखती हैं और परफॉर्म करती हैं, तो आपकी जो लेखनी है वो क्या पर्सनल होती है, या आप ड्रॉ करती हैं एक्सपीरियंसेस से, अपने आसपास के लोगों से? क्या प्रोसेस होता है, कैसे आप शुरुआत करती हैं किसी भी चीज को लिखने की, या जब आप स्टोरी टेलिंग करती हैं तो कौन से एहसासों से आप ड्रॉ करती हैं फ्रॉम योर सराउंडिंग्स, और जो आपके अंदर है उसमें से किस तरह से आपका वो प्रोसेस होता है? और अगर अंत में, लाइक अभी नहीं, आई थिंक मेरे जो लास्ट सेगमेंट है उसमें अगर आप हमें कुछ सुना सके अपना लिखा हुआ, तो आई विल बी वेरी ग्रेटफुल।
1: एब्सोल्युटली तनुषा। तो यस तनुषा, आई एम अ वेरी वेरी इमोशनल पर्सन विथ लोड्स एंड लोड्स ऑफ सेंसिटिविटी। मुझ में बहुत ज्यादा है, मैं

0: में, जो मैंने पर्सनली, जो मेरे पर्सनल एनेक्डोट्स हैं, जो मैंने खुद अपनी जिंदगी में अनुभव किया है, एक्सपीरियंस किया है, राइट एंड तो वो भाव उस गहराई से आ पाते हैं क्योंकि मैंने उसको महसूस किया है, बहुत गहराई के साथ महसूस किया है. और जो मैं दूसरों की जिंदगी में देखती हूँ, जो जिस तरह से वो अपनी जिंदगी जी रहे हैं, जो उनकी जिंदगी में कुछ ऐसा है जो कि मुझे क्लिक कर जाता है, तो दोनों का एक कॉम्बिनेशन है, दोनों का समावेश आपको मेरी राइटिंग में देखने को मिलेगा.
1: बहुत ही खूबसूरत मैम. और मैं इस एहसास के साथ बिल्कुल इत्तेफाक रखती हूँ क्योंकि मैं भी एक बहुत इमोशनल पर्सन हूँ, मैं भी लिखती हूँ. और सच है कि इमोशनल लोग बहुत उतार चढ़ाव से गुजरते हैं क्योंकि दुनिया उनकी तरह नहीं सोचती, तो वो कई बार अपने शेल में चले जाते हैं, कई बार दुखी हो जाते हैं. और आई थिंक वही एक ट्रिगर होता है. मैं हमेशा कहती हूँ कि पेन इज द ट्रिगर टू एनी राइटर. एटलीस्ट मैंने जितने राइटर्स को, अच्छे राइटर्स को जो बहुत दिल से लिखते हैं, उनको देखा है कि कहीं ना कहीं उनके जीवन में कोई ऐसी घटना घटित हुई है, कोई ऐसा वाक्या रहा है, कोई ऐसा लॉन्ग टर्म पीरियड या शॉर्ट टर्म पीरियड रहा है जिसने उनको इंस्पायर किया है, उनको ट्रिगर किया है टू राइट समथिंग. और वो जब उतर के आता है, वो पेन जब पन्ने पर उतर कर आता है, तो उससे सच्चा, उससे गहरा कोई एहसास नहीं होता. एंड आई थिंक दैट इज द बेस्ट एंड द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ राइटिंग. तो आई रियली एको योर थॉट्स एंड आई कैन इमेजिन कि आप कितना सुंदर लिखते होंगे. हालांकि मैंने अभी तक आपकी कोई पोएट्री पढ़ी नहीं है, बट मैं सुनना जरूर चाहूंगी और अपने श्रोताओं को जरूर सुनाना चाहूंगी टुवर्ड्स द एंड ऑफ द एपिसोड.
0: बिल्कुल बिल्कुल
1: जी. आगे चलते हैं मैम, आजकल के डिजिटल एरा के बारे में बात करते हैं.
0: राइट.
1: जहां पे आप और हम तो उससे आई थिंक आइडेंटिफाई नहीं कर पाते क्योंकि हम एक दूसरे एरा में पैदा हुए थे और बड़े हुए. बट अब जो कंटेंट है, जो सब चल रहा है, वो बहुत फास्ट कंज्यूम होता है, बहुत फास्ट आता है, कंज्यूम होता है और ट्रैश में चला जाता है. कोई उसका एक एहसास आपके ऊपर चढ़ता नहीं है, आपके साथ रहता नहीं है. तो ऐसे समय में जहां सब कुछ इतना क्विक है और इतना आई थिंक कन्वेयर बेल्ट पे चल रहा है, तो ऐसे में आप कैसे मीनिंगफुल राइटिंग को जिंदा रखने की क्या प्रयत्न आप करते हैं? कितना चैलेंजिंग आपके लिए होता है अपना प्रेजेंस मेंटेन करना, चाहे वो सोशल मीडिया हो, चाहे वो ब्लॉगिंग हो, किस तरह से आप इसको अप्रोच करते हैं?
0: सो तनुषा, यू आर एब्सोल्युटली राइट, क्योंकि कंटेंट बहुत जल्दी कंज्यूम हो रहा है. दैट्स ट्रू. लोगों का अटेंशन स्पैन बहुत कम होता जा रहा है, राइट क्योंकि और मुझे लगता है कि हाँ, मुश्किल जरूर है, बट मुझे लगता है फिर भी मतलब ठीक है. और लोगों को कुछ फन थिंग्स और एंटरटेनिंग थिंग्स से ज्यादा कनेक्ट करते हैं, ह्यूमर से ज्यादा कनेक्ट करते हैं, जिसमें बहुत कुछ बहुत सीरियस होता है या कुछ भाव होता है, उससे कम कनेक्ट करते हैं. बट हैविंग सेड दैट, आई स्टिल बिलीव कि अगर आपके कॉन्टेंट ने अगर फर्स्ट टू सेकेंड्स में कनेक्ट एस्टैब्लिश कर लिया, तो कोई भी बिना स्वाइप करे नहीं जाएगा, वो सुनेगा उस चीज को. और जो स्पेशली जो आपके को पोएट्स हैं, स्टोरी टेलर्स हैं, राइटर्स हैं, वो जरूर सुनते हैं. दूसरी चीज मैं ये कहना चाहूंगी कि सी, दिस इज चैलेंजिंग, बट देन व्हाट आई टेल यू इज सी, लाइक वी मिलेनियल्स, जेन एक्स जो है हम लोग, और आजकल जो जेन जी और जेन अल्फा चल रहा है, तो हमारे हम तो ऐसे दौर से हैं जिसमें तो ऑलरेडी इतना मीनिंग था, तो उस मीनिंग को एक्सट्रैक्ट करके क्यों ना आप अपना कंटेंट बनाएं. हमने ज्वाइंट फैमिलीज देखी, हमने दादी नानी की कहानियों से लेकर नो मोबाइल फोन्स वाला जोन देखा है, छतों पर सोना देखा है, रामायण महाभारत देखना टीवी पर, तो इतना कुछ था, हमने इतना कुछ देखा है. एंड एज अ पोएट, एज अ राइटर, इट इज आवर ड्यूटी कि हम उस एरा को आजकल के जनरेशन तक पहुंचाएं. तो यू ऑलरेडी हैव लाइक पीपल लाइक अस ऑलरेडी हैव सो मच मीनिंग विद अस, सो उस मीनिंग को आप शब्दों में पिरोकर आप जब पेश करोगे, तो चीजें चैलेंजिंग रहेंगी नहीं, बहुत आसान हो जाएंगी. बिकॉज वो दौर जो था, वो बहुत ही इंटरेस्टिंग दौर था और उसकी कहानियां हर कोई सुनना चाहेगा.
1: बिल्कुल बिल्कुल. एंड आई थिंक हम वो कंटेंट बहुत देख रहे हैं आजकल आता हुआ.
0: एब्सोल्युटली, यही रीजन है उसका.
1: जी जी, नॉस्टैल्जिया में रिवेल कर रहे हैं. और आई थिंक जेन जी और जेन अल्फा भी उसमें इंजॉय कर रहे हैं क्योंकि वो स्टोरी सुन के उनको लगता है कि अच्छा, ऐसा भी हुआ था, एक ऐसा भी एरा था जहां पे ऐसे भी लोग रहते थे, उनके लिए वो एलियन जरूर है, बट वो उसे आइडेंटिफाई आइडेंटिफाई क्या, उसको इंजॉय कर रहे हैं, उसको उस उन स्टोरीज को यू नो सुन के आई थिंक इट्स गिविंग देम अ गुड फीलिंग, बिकॉज एब्सोल्युटली हमने उनको जिया है उन पलों को और उन डेज को, तो हमें तो पता है कि वो क्या थे वो दिन और क्या सुंदरता थी हमारे बड़े होने में, हमारे बचपन में. बट खैर हाँ, एवरी एफर्ट

0: कैन बी डन एंड राइट यू लाइक यू सेड कि इस तरह से हम जरूर ट्रांसेंड कर सकते हैं और कहीं ना कहीं इस फास्ट कंटेंट की दुनिया में हम एक स्पेस क्रिएट कर सकते हैं जहां लोग स्लो पेस पे स्लो चर्निंग से उन कहानियों को उन स्टोरीज को सुने बुने गुने और शायद उनकी कोई सीख अपने जीवन में अपना सकें।
1: बिल्कुल
0: इसी एहसास के साथ हम सुनेंगे हमारा अगला गीत आवाज दी है फ्रॉम द फिल्म एतबार।

0: तो सोनल जी, आपने नेशनल और इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पर काम किया है, परफॉर्म किया है, जैसे कि हमने पहले भी बात की। अब मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि कोई ऐसी क्वालिटी जो एक परफॉर्मर के लिए, एक राइटर के लिए बहुत इम्पोर्टेंट क्वालिटी है और जिसके बिना आई डोंट थिंक कोई एक अच्छा राइटर, आपके हिसाब से, नॉट आई, आपके हिसाब से कोई एक अच्छा राइटर या परफॉर्मर नहीं बन सकता, अपार्ट फ्रॉम बीइंग ऑनेस्ट, अपार्ट फ्रॉम बीइंग यू नो प्योर विथ योर थॉट्स एंड एवरीथिंग, आपको क्या लगता है वो कौन सी क्वालिटी है जो अगर आपके अंदर नहीं है आप उसको डेवलप करें, बट उसके बिना कोई एक अच्छा स्टोरी टेलर और राइटर नहीं बन सकता?
1: सो तनुषा, फॉर मी देयर आर थ्री क्वालिटीज, नॉट जस्ट वन, देयर आर थ्री क्वालिटीज। When you stand on the stage, the first quality that is a sign of a great and a good performer is confidence. You know, there is a quote that goes that have confidence, even if you don't have, just pretend it. Believe me, nobody will tell the difference.
0: True.
1: So, yeah. So, the moment you step on the stage and you start narrating your piece, confidence is just, it just, you know, it is like you are there, you are just absolutely there. आपको फिर कुछ और सोचने की जरूरत ही नहीं है. Secondly, delivering your 200%, because what I feel when you are standing on a stage,
0: जब आप स्टेज पर,
1: and लोग आपको सुनने के लिए आ रहे हैं, ऑडियंस आ रही है, उन्होंने टिकट खरीदा है, वो आपकी परफॉर्मेंस सुनने के लिए आ रहे हैं, तो इट इज योर फॉरमोस्ट ड्यूटी दैट एज अ परफॉर्मर आप वो 5 मिनट उनके लिए ऐसे बना दें कि वो घर जाके भी आपको याद रखे, राइट फ्रॉम द फर्स्ट लाइन टू द सेकेंड लाइन, आप इस तरह से अपने पीस को नरेट करें. एंड थर्डली, मेमोराइजिंग योर पीस. सी, आई डोंट नो अबाउट अदर्स, बट फॉर मी, इफ यू, इफ फ्रॉम अ राइटर टू अ राइटर, अ पोएट टू अ परफॉर्मर, इफ यू वॉन्ट टू बिकम अ परफॉर्मर, इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप फोन में ना देखकर, डायरी में ना देखकर, पेज में ना देखकर बोले, बिकॉज मेरे लिए लुकिंग इन टू द ऑडियंस आइज एंड वेन दे look into mine is the biggest form of connect. तो और आपने, आप मुझे सोशल मीडिया पर भी देखेंगे, आप तो बहुत कम ऐसा होता है कि मैं अपनी डायरी में देख या फोन में देखकर बोलती हूँ आई मेमोराइज माई पीसेज. और जब आप ऐसा करते हैं, जब आप खुद की रचना पढ़ रहे हैं, आप किसी और की रचना भी पढ़ रहे हैं, तो जब आप उसको कंठस्थ करते हैं तो आप उनके इमोशंस को अपने अंदर बहुत ही खूबसूरती से एब्जॉर्ब करते हैं और बेहतरीन तरीके से आप उसको डिलीवर कर पाते हैं. सो फॉर मी दीज थ्री क्वालिटीज दैट आई पर्सनली फील is a sign of a great performer. Confidence, delivering your 200% and memorizing your piece.
0: बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही सही आपने कहा कि कनेक्ट क्रिएट करने के लिए ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है. और आप कुछ चीजें अपने ऑडियंस को ओ करते हैं, आपकी जिम्मेदारी है कि अगर वो आपको 5 मिनट या 2 मिनट भी सुन रहे हैं तो वो कुछ ऐसा लेके जाएं जो उनका वर्थ एवरी वाइल हो. तो आपके लिए भी और उनके लिए भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप इस तरह से डिलीवर करें और इस तरह से अपने पीस को नरेट करें या लिखें कि वो एक कनेक्ट एस्टैब्लिश कर पाए. एंड ऑफ कोर्स गिविंग योर 200% इज आई थिंक द की टू एवरीथिंग,
1: राइट?
0: तो आगे चलते हैं मैम. मेरा आखिरी सवाल है आज का, जो लिसनर्स हमें सुन रहे हैं और उनके पास एक आउटलेट नहीं है अपने इमोशंस के लिए, वो अपने वर्ड्स को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे क्योंकि सब लोग ना लिख पाते हैं ना, यू नो, बहुत सारे लोग हैं जिनके पास बहुत इमोशंस हैं बट वो उन्हें एक्सप्रेस करने के लिए कोई तरीका ही नहीं ढूंढ पाते, तो वो कहाँ से शुरू कर सकते हैं, कैसे अपनी आवाज पे भरोसा कर सकते हैं, कैसे अपनी सोच पे भरोसा कर सकते हैं कि हाँ ये मेरा इमोशनल आउटलेट हो सकता है, ये मेरा फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन हो सकता है, किस तरह से वो शुरू कर सकते हैं, अगर कोई आप सलाह देना चाहें?
1: डेफिनेटली तनुषा, तो मुझे लगता है कि सबसे पहले बहुत जरूरी है फिगरिंग आउट. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू फिगर आउट क्या आप सच में कवि बनना चाहते हो, एक लेखक बनना चाहते हो, आर यू सीरियस अबाउट इट? मतलब कहीं अभी देखो, अभी क्या हो रहा है ना कि जो भी आई सी मेनी यंगस्टर्स, अब किसी को भी लगता है कि अगर वट एवर दे आर स्टडिंग इन द कॉलेज, वे आर दे आर डूइंग सम पार्ट टाइम जॉब, सबको लगता है कि साइड में पोएट्री कर लो बिकॉज AI इज अवेलेबल, ChatGPT इज अवेलेबल, तो किसी कोई कॉन्टेंट को हल्का सा कॉपी किया, थोड़ा सा उसको ट्विस्ट एंड टर्न किया, ChatGPT में डालो और उसको पेश कर दो. सो this is not the right thing. You have to, firstly you have to figure out, are you really meant for it? Secondly, you have to stay true to your craft. You just copying the content from somewhere, ChatGPT से, AI से आप बोलोगे, इसे हम जैसे लोग तो फटाफट बता देते हैं क्योंकि ह्यूमन टच होता ही नहीं है उस कॉन्टेंट में, आपको बिल्कुल पता चल जाता है. तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू फिगर इट आउट. वंस यू हैव फिगर इट आउट, जस्ट AI और चैट जीपीटी इन सबको या कहीं कॉपी वॉपी करना ये सब साइड में रख दो। दूसरी चीज है अपनी डायरी बनाओ, एक पेन लो और शुरू करो लिखना। अब सवाल आता है कि क्या लिखें, तो सबसे पहले जो मैं हमेशा सबको कहती हूँ कि जब आप शुरू करते हो लिखना तो आप अपने एनेक्डोट्स लिखो, अपनी पर्सनल कहानियां लिखो, क्योंकि हर इंसान के दिल के करीब बचपन बहुत होता है, दिल के करीब माँ बहुत करीब होती है, दोस्त बहुत करीब होते हैं, कॉलेज के दिन बहुत करीब होते हैं, तो बहुत सारे थॉट्स उनमें से निकल के आएंगे। उन थॉट्स को लिखो, जैसा आ रहा है, जैसी लाइंस आ रही है, रॉ आ रही है, उनको लिखो। थॉट्स आने बंद हो रहे हैं, डायरी को बंद कर दो, लेट इट फर्मेंट, लेट इट स्टे देयर ओवरनाइट। अगले दिन जाओ एक ताजा मनस्थिति के साथ, एक ताजा दिमाग के साथ फिर से लिखो और फिर उसको थोड़ा सा पॉलिश करके और अच्छे शब्दों में लिख के, उस शब्दों में आप जरूर हेल्प ले सकते हो, आप थिसॉरस यूज कर सकते हो एंड आप शब्दकोश यूज कर सकते हो, तो इस तरह की जो आप वो भी अगर आप है ना नेचुरली यूज करो, इट्स अ वेरी गुड हैबिट, वो क्योंकि वो डिक्शनरी की खुशबू एंड यू नो इट्स अ ब्यूटीफुल हैबिट, उसमें देखना आजकल बच्चे भूल ही गए।
0: मुझे लगता है नहीं बहुत लोग जानते हैं शब्दकोश और थिसॉरस के बारे में आपकी जनरेशन,
1: तो
0: हम तो पढ़ते ही उससे थे, हमारे साथ हमारे बैग में रहती थी हमेशा थिसॉरस,
1: बैग में रहती थी, राइट राइट। तो अगर ठीक है, अगर वो भी नहीं है तो उसके लिए आप जरूर चैट जीपीटी या एआई की हेल्प ले लो आपको अच्छे वर्ड्स ढूंढने के लिए, दैट देयर इज एब्सोल्युटली नथिंग रॉन्ग इन दैट। और जरूरी नहीं है कि आप फैंसी राइटिंग लिखो, सिंपल राइटिंग्स भी बहुत कनेक्ट करती है लोगों के साथ, जल्दी कनेक्ट करती है। सो फर्स्ट इज फिगरिंग आउट, सेकेंड इज स्टार्ट पेनिंग डाउन, स्टार्ट राइटिंग अबाउट योर एनेक्डोट्स, थर्ड इज कंसिस्टेंसी। जब आपने कुछ लिखा आप मेक श्योर करो कि आप हर रोज लिखो, आप चाहे दो लाइन लिखो पर आप हर रोज लिखो, सो यू हैव टू बी कंसिस्टेंट इन योर आर्ट, राइट। देन फोर्थ इज रीड अलॉट,
0: तो कुछ लिखने नंबर वन,
1: यस, तो कुछ लिखने के लिए आपको बहुत सारा कंज्यूम करना बहुत जरूरी है। आपके जो इफ यू आर अ कंटेम्प्ररी बडिंग राइटर, आपके जो कंटेम्प्ररी राइटर्स हैं उनको पढ़ो, फिर धीरे धीरे जब आपको, क्योंकि वो ईजी होता है रीड करने के लिए, एब्जॉर्ब करने के लिए, फिर जो स्टैब्लिश, जो बहुत पुराने और जो यू नो रिनाउंड ऑल टाइम रिनाउंड पोएट्स हैं उनकी आप पढ़ सकते हो रचनाएं। और इससे क्या होगा ना कि आप बहुत कुछ सीखोगे, आप देखोगे कि किस तरह से एक बहुत ही सिंपल सी चीज को किस तरह से शब्दों के डेकोरेशन से कितने अलग अलग तरीके से कहा जा सकता है। तो ये आर्ट आप उसी से सीखोगे जब आप बहुत सारा पढ़ोगे। एंड लास्ट इज ग्रेटिट्यूड, जस्ट बिकॉज मैं खुद के लिए भी हमेशा कहती हूँ, मैं नहीं लिखती, माँ सरस्वती लिखवाती है, मैं नहीं कहती, माँ सरस्वती कहलवाती है मुझसे, मेरी जुबान से। तो ग्रेटिट्यूड हमेशा एक्सप्रेस करो कि आपके, सो दैट यू गेट दैट ब्लेसिंग कि यस, माँ सरस्वती, माँ शारदा की ब्लेसिंग से आपको ये हुनर मिला कि आप अपने विचारों को इतने खूबसूरती से कह पाओ, लिख पाओ, दुनिया के सामने पेश कर पाओ। तो ये ग्रेटिट्यूड हमेशा रखें।
0: बिल्कुल बिल्कुल, जैसे कि कहते हैं कि सुख वेले अरदास, दुख वेले शुक्राना, और हर वेले भी शुक्राना।
1: तो
0: सच में शुक्र करना तो खैर बहुत बहुत बहुत जरूरी है, जो आपके पास है वो बहुतों के पास नहीं है, तो उसको समझें, देखें। और मैम ने जिस तरह से आपने बहुत खूबसूरती से बताया सोनल मैम कि किस तरह से ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, आई थिंक ये सब चीजें वो हैं जो इनएविटेबल हैं किसी भी राइटर या स्टोरी टेलर के लिए या किसी भी आर्ट फॉर्म के लिए। आपको ट्रू रहना, अपनी कंसिस्टेंसी मेंटेन करना और अपने आप को बेस्ट और बेटर करने के लिए, बेटर और बेस्ट करने के लिए, इनफैक्ट अपने आप को रेजर शार्प करने के लिए रीडिंग करना, क्योंकि जब तक आप रीड नहीं करेंगे आपको थॉट्स आएंगे ही नहीं। आप शायद दो पोइट्री जरूर लिख पाएंगे बट जब तीसरी पोइट्री लिखने बैठेंगे तो आपको लगेगा मेरे पास तो थॉट्स ही नहीं है। तो अगर आप उन पोएट्स को नहीं पढ़ेंगे जिन्होंने इतनी खूबसूरत रचनाएं करी हैं, या उन लोगों को नहीं पढ़ेंगे जिन्होंने इतने खूबसूरत प्रोज लिखे हैं, लिटरेचर में कॉन्ट्रीब्यूशंस दिए हैं, चाहे हिंदी चाहे इंग्लिश चाहे एनी लैंग्वेज जो आप लिखना चाहते हैं, तो आई डोंट थिंक आप अपने बेस्ट पोटेंशियल को कभी भी टैप कर सकते हैं। और कंसिस्टेंसी, लाइक यू सेड अगेन, आई वुड लाइक टू प्रेस ऑन द पॉइंट कि कंसिस्टेंट रहें, चाहे दो ही लाइन लिखें रोज बट लिखें, अगर आप इस जर्नी को पे चलना चाहते हैं, इस पथ पे चलना चाहते हैं और कुछ करना चाहते हैं इस लाइन में। तो थैंक यू सो मच सोनल मैम। आखिर में मैं बस आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर आप हमें कुछ अपने प्यारे शब्दों और अपनी बहुत खूबसूरत आवाज में और प्रेजेंटेशन स्किल्स में कुछ सुना सके।
1: बिल्कुल तनुषा, इट इज प्लेजर, माई प्लेजर कम्प्लीटली। तो मैं जो आज आपको सुनाने जा रही हूँ वो कविता है पुनर्जीवन की उड़ान। तो आपने फिनिक्स सुना है, फिनिक्स के बारे में? तो क्योंकि मुझे 10 साल हो गए हैं लिखते हुए, तो लेट मी टेल यू कि कई भी ये सफर आसान नहीं होता। यू नो, कई बार होता है विचार नहीं आते, कई बार आप बहुत जूझते हो, आपको सही शब्द नहीं मिलते, और कई बार सही रिकॉग्निशन भी नहीं मिलता। कई बार आपको लगता है कि मैंने ये क्यों लिख दिया, ये तो है ही नहीं, ये दिस डजंट मैच माई स्टैंडर्ड। तो बहुत सारी ऐसी चीजें आती है, और बहुत सारी स्टेजेस से गुजरने के बाद आप एक पॉलिश्ड पोएट या राइटर बनते हो। तो उसी पर ये मेटाफर है, उसी पर ये कविता है पुनर्जीवन की उड़ान। एंड इट गोज लाइक दिस। ध्वंस की छाव में चुपचाप फड़फड़ाई, ध्वंस की छाव में चुपचाप फड़फड़ाई, राख से उठी अंगारों में मुस्काई कविता। जलाने के लिए कागज भी कम पड़े, जलाने के लिए कागज भी कम पड़े, मिटकर भी फिर से उठ खड़ी हुई कविता। शब्दों की भीड़ में जब मौन सा छा गया, शब्दों की भीड़ में जब मौन सा छाया, मन की झील में पत्थर बन गिरी कविता। कलम थमी भाव बिखरे रहा भी खो गई, कलम थमी भाव बिखरे रहा भी खो गई, अपने ही साये से डरकर सहमी कविता। आत्मा को चीर कर सिसकी सी जब निकली, आत्मा को चीर कर सिसकी सी जब निकली, वही टीस बनकर दिलों में बहती कविता। तन्हाई की सीलन में जब स्वर भीग गए, तन्हाई की सीलन में जब स्वर भीग गए, आंसुओं की स्याही से ढांढस बांधती कविता। डरती पर उड़ती, डरती पर उड़ती, सूने गगन की रौनक बढ़ाती, टूटे पंखों से भी नभ की ऊंचाइयां नापती कविता। न सरहदे न बंदिशे न ध्रुव तारोप पाई, न सरहदे न बंदिशे न ध्रुव तारोप पाई, दूर दूर तक पहुंची ख्याति पाती कविता। न भाषा की दीवार न लिपियों की कड़ियां, न भाषा की दीवार न लिपियों की कड़ियां, जहां संवेदना पहुंचे वहीं बसेरा करती कविता। सोच के वीरानों में अक्सर भटकती, सोच के वीरानों में अक्सर भटकती, जीवन के अनेक अर्थ रचती कविता। अनकहे दर्द को सलीके से कहती, अनकहे दर्द को सलीके से कहती, घावों पर मरहम का काम करती कविता। जिसकी उड़ान में समय की सांसें बसती, जिसकी उड़ान में समय की सांसें बसती, ऐसे ही खाक से फलक तक का सफर तय करती कविता। और अपने ही कवि की नजरों में, अपने ही कवि की नजरों से जो बह निकली, अपने ही कवि की नजरों से जो बह निकली, सब कुछ कहकर फिर मौन में ढलती कविता, फिर मौन में ढलती कविता। बहुत बहुत धन्यवाद।
0: बहुत ही खूबसूरत सोनल मैम, बहुत ही खूबसूरत। मैं एक इमेजरी इमेजिन कर पा रही थी जब आप जिस तरह से उसको फिनिक्स से कंपेयर कर रहे थे। सच में कितनी खूबसूरती से ट्रांसेंड हुई पोएट्री, और सच में पोएट्री कहाँ से निकल के कैसे अपना सफर तय करती करती और किस तरह से फिर मौन में चली जाती है, अपनी बात सलीके से, उस दर्द को सलीके से कह के। तो बहुत ही सुंदर कविता थी, और बहुत अच्छी एक आपने यू नो मेटाफर ड्रॉ किया बिटवीन द फीनिक्स एंड द पोएट्री। बहुत सुंदर मैम, बहुत ही प्यारा सफर रहा ये आपके साथ। मैं चाहती हूँ ये बातचीत खत्म ना हो, बट देन समय के साथ हमें आगे चलना पड़ेगा और हमारी बातचीत को विराम देना पड़ेगा।
1: बिल्कुल, थैंक यू सो मच तनुषा फॉर हैविंग मी, एंड थैंक यू वंस अगेन एसएन रेडियो। और ये अवसर मुझे हमेशा याद रहेगा, ये पल मुझे हमेशा याद रहेगा, और आपसे बातचीत तो दिल के कोने में हमेशा कहीं बस इंडेंट इंच रहेगी।
0: जी बिल्कुल, आपसे बात करके ऐसा लगा जैसे शब्दों ने आज एक नई रोशनी ले ली हो। बहुत बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आप एसएन रेडियो पर आए और आपने अपने सब शब्द, अपने एक्सपीरियंसेस और अपनी इतनी सुंदर कविता हमारे साथ साझा की।
1: आपका बहुत आभार, थैंक यू सो मच।
0: तो दोस्तों याद रखिए, जिंदगी के रंग तभी खूबसूरत लगते हैं जब हम उन्हें महसूस करते हैं। मैं हूं आपकी आरजे तनुषा, मिलूंगी आपसे फिर से एक नए मेहमान के साथ, एक नई कहानी के साथ, एक नए जिंदगी के रंग के साथ। तब तक के लिए सुनते रहिए जिंदगी के रंग गीतों के संग। नमस्कार।
2: दोस्तों जिंदगी के रंग गीतों के संग के आज के इस प्रोग्राम में बस इतना ही। कल एक और नए सज्जन और महिला हमारे साथ हाजिर होंगे। आपके लिए मजेदार बातें और गीत लेकर, सुनना ना भूलिएगा।

0: यार सच बताऊं, अभी तो गर्मियां शुरू हुई है और 7,000 रुपए का बिजली बिल भी आने लगा। वाइफ कब से बोल रही है सोलर पैनल लगवाने के लिए, बोलती है सरकार सब्सिडी भी दे रही है। मैंने जिनको पूछा सबका बिजली बिल जीरो आ रहा है, इस बार तो लगवा ही देता हूँ। जब बिजली मुफ्त मिलती है तो ले क्यों नहीं रहे भाई, आप भी लगवा ही दो। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
1: दोस्तों ये प्रोग्राम पेश किया जा रहा है रेडियो टांटिया भील, आपके झाबुआ की आवाज से। सुनते रहिए 90.8 FM रेडियो टांटिया भील। पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, जल शक्ति मंत्रालय द्वारा संचालित और कम्युनिटी रेडियो एसोसिएशन द्वारा निर्मित कार्यक्रम स्वच्छ सुजल गांव की कहानी और रेडियो की जमानी। दोस्तों लीजिए, फिर आ गया वो दिन, वही वार जिसका हम बेसब्री से करते थे इंतजार।
2: आप सभी को सच्चिका और सुजल का सादर नमस्कार।
1: क्या है कि स्वच्छ सुजल गांव की कहानी रेडियो की जमानी कार्यक्रम देता है हमको शुद्ध विचार। हर तरफ, हर कोना, हर गांव, शहर में हो रहा है स्वच्छता का प्रचार।
2: दोहराना है हमें ये संकल्प और ये व्यवहार कि स्वच्छता ही है हम सबका अधिकार।
1: रखना है स्वच्छ हर घर का शौचालय इस बार। धोएंगे साबुन से हाथ खाने के पहले और शौच के बाद।
2: करेंगे सफाई से प्यार, करेंगे स्वच्छता की गुहार।
1: केवल मनोरंजन नहीं, उद्देश्य है हमारा।
2: बैठ जाए हर मस्तिष्क में ये संकल्प कि स्वच्छता ही है एकमात्र विकल्प।
1: स्वस्थ तन और स्वस्थ मन में ही वास करते हैं सुविचार।
2: प्रण करें आज ही कि स्वच्छ सुजल करना है हमें पूरा देश।
1: दूर हो जाएगी बीमारी अगर स्वच्छता की होगी वातावरण में बहार।
2: दूषिका भी भाग जाएगी अगर होगी आपके आसपास ऐसी बयार।
1: यही है सुजल स्वच्छ गांव अभियान की पुकार। साथियों इन सब के सहारे ही होगी हमारी नैया पार।
2: आज के इस कार्यक्रम में हम आपको स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण की पूरी जानकारी देंगे, विशेषज्ञ और स्थानीय लोगों की कहानियाँ सुनेंगे और साथ ही आपको ये बताएंगे कि कैसे इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता और शौचालय की सुविधा प्रदान करके ओपन डेफिकेशन फ्री भारत बनाना है। इस मिशन के तहत शौचालय निर्माण, स्वच्छता के प्रति जागरूकता फैलाने और व्यवहार में बदलाव लाने पर जोर दिया जाता है।
1: जल के अधिकार के साथ एक बात और, वो ये कि स्वच्छ भारत अभियान के पहले चरण में सरकार ने हर गांव के हर घर में शौचालय बनवाने का कार्यक्रम किया था। और स्वच्छिका तुमको याद होगा कि कितने ही गांवों ने स्वयं को ODF घोषित किया। अब ये ना कह देना कि ODF गांव होता क्या है।
2: अरे ऐसा कैसे कह दूंगी, मुझे मालूम है ODF का पूरा नाम खुले में शौच मुक्त गांव है। ये एक ऐसा शब्द है जिसका उपयोग उन समुदायों या क्षेत्रों का वर्णन करने के लिए किया जाता है जहां लोग अब खुले में शौच नहीं करते हैं बल्कि शौचालय का उपयोग करते हैं। यह एक महत्वपूर्ण पहल है जो स्वच्छता और सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार लाने के साथ साथ महिलाओं की निजता की रक्षा में भी मदद करती है। सही बताया ना?
1: बिल्कुल बिल्कुल। अब देश ODF से ODF प्लस मॉडल गांव की ओर बढ़ रहा है। एक ODF प्लस मॉडल गांव वो होता है जहां खुले में शौच की आदत पूरी तरह खत्म हो चुकी हो, ठोस और तरल कचरे का प्रबंधन हो गया हो, साफ सफाई का स्तर अच्छा हो, सार्वजनिक जगहों पर कचरा और पानी जमा ना हो।
2: इसमें यह सुनिश्चित करना है कि गांव के सभी घरों के साथ साथ प्राथमिक विद्यालय, पंचायत घर और आंगनवाड़ी केंद्र में शौचालय की सुविधा हो और सभी सार्वजनिक स्थानों और घरों में ठोस और तरल अपशिष्ट का प्रभावी प्रबंधन हो और कूड़ा कचरा और स्थिर पानी कहीं भी जमा न हो।
1: लेकिन सरकार के साथ साथ इसके लिए समुदाय की भागीदारी भी देखिए बहुत जरूरी है। हमारी आवाज आप लोगों तक पहुंच रही है रेडियो के माध्यम से और आप लोगों को ये देखना जरूरी है कि इस मुहिम में कोई भी परिवार छूट ना जाए।
2: अच्छा यह लेकिन मुझे यह पता है कि अब तक 5.67 लाख से अधिक गांवों ने स्वयं को ODF प्लस घोषित किया है जिसमें से 4.81 लाख से ज्यादा गांवों को ODF प्लस मॉडल के रूप में मान्यता दी गई है।
1: देश में स्वच्छता को बनाए रखने के लिए सरकार के प्रयास देखिए जारी हैं। हर घर में स्वच्छ पानी पहुंचाने के लिए जल जीवन मिशन, हर घर नल योजनाएं भी शामिल हो चुकी हैं। और हमारी आपकी सहभागिता इस महाअभियान में बनाकर रखना भी देखिए बहुत जरूरी है। तो सुनते रहिए आपका अपना कम्युनिटी रेडियो और उसमें सुनते रहिए ये कार्यक्रम
2: स्वच्छ सुजल गांव की कहानी, रेडियो की जुबानी, जहां हर घर तक पहुंचेगी हमारी आवाज, हमारी बात। लेकिन फिलहाल इन सारी बातों को विस्तार से बताने के लिए हमारे बीच विशेषज्ञ उपस्थित हो चुके हैं। चलिए पहले सुनते हैं उनकी बात।
3: नमस्कार साथियों, मैं ऐश्वर्या सिंह, संयुक्त सचिव एवं मिशन डायरेक्टर स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण, भारत सरकार के पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, जल शक्ति मंत्रालय से बोल रही हूँ। आज आप सभी से स्वच्छ सुजल गांव की कहानी रेडियो की जुबानी कार्यक्रम के जरिए जुड़कर मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है। आज हम बात करेंगे स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण की, स्वच्छ सुजल गांव की, और हम इन दोनों विषयों में कैसे एक सक्रिय भूमिका निभा सकते हैं। साथियों, माननीय प्रधानमंत्री जी ने 15 अगस्त 2014 को लाल किले से जब स्वच्छता और खुले में शौच का विषय उठाया था तो यह अपने आप में अभूतपूर्व था। उनके मार्गदर्शन में स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण की शुरुआत 2 अक्टूबर 2014 को हुई और हम सब ने मिलकर अपने देश के हर गांव को खुले में शौच से मुक्त यानी ODF बनाने का जिम्मा उठाया। आने वाले वर्षों में यह मिशन और स्वच्छता का विषय एक जन आंदोलन बना और हमें इसमें आप सभी का पूर्ण सहयोग मिला। इस दौरान देश में 11 करोड़ से ज्यादा शौचालयों का निर्माण हुआ और महात्मा गांधी जी की 150वीं जयंती पर 2019 में हमने खुद को ODF घोषित किया। इस अभियान की सबसे बड़ी उपलब्धि और इसकी नींव थी लोगों में आया व्यावहारिक परिवर्तन या बिहेवियरल चेंज। घरों, पंचायतों, स्वयं सहायता समूहों, युवाओं, बच्चों, सभी में स्वच्छता के लिए जागरूकता बढ़ी और सभी ने इसको अपनी जीवन शैली का एक अंग बनाया। लेकिन हम केवल ODF पर नहीं रुके। 2020 से स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के दूसरे चरण यानी फेज 2 पर काम शुरू हुआ। इसमें लक्ष्य था ODF से आगे ODF प्लस की ओर बढ़ना, अपने गांवों को ODF प्लस मॉडल गांव बनाना। ODF प्लस मॉडल गांव का अर्थ है कि गांव न केवल खुले में शौच से मुक्त हो बल्कि वहां का कचरा, गंदा पानी और प्लास्टिक अपशिष्ट या वेस्ट भी सही तरीके से निपटान किया जा सके। इसके तहत सरकार ठोस और तरल अपशिष्ट प्रबंधन पर भी जोर दे रही है। मुझे यह बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि इस दूसरे चरण में आज हमारे 4,85,000 से भी ज्यादा गांव ODF प्लस मॉडल घोषित किए जा चुके हैं और यह काम आप सभी के राज्यों में अभी भी जोर शोर से जारी है। ऐसे ही स्वच्छ सुजल गांव एक ऐसा गांव होता है जहां साफ पेयजल की व्यवस्था हो और हर परिवार के पास बेहतर स्वच्छता की भी सुविधा हो, यानी वह एक ODF प्लस मॉडल गांव भी घोषित किया जा चुका हो। साथियों, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण केवल एक सरकारी योजना नहीं, यह एक जन आंदोलन है जिसमें सरकार के साथ साथ आप सभी की जन भागीदारी बहुत आवश्यक है। इस अभियान के अंतर्गत बन रही सुविधाओं, शौचालयों, कचरा प्रबंधन के केंद्र, प्लास्टिक वेस्ट यूनिट इत्यादि के रख रखाव और इनको सुचारू रूप से चलाने में राज्यों, जिलों, गांवों की हम सबकी अहम भूमिका है। इस भूमिका को भी आप सभी को पूरे मन से निभाना है। और हाँ, आपसे अनुरोध है कि अपने गांव, ब्लॉक, जिले के बच्चों को, युवाओं को भी स्वच्छता के विषय के प्रति जागरूक बनाएं, उनको इस अभियान के अंतर्गत बनी व्यवस्थाएं दिखाएं, जिससे भविष्य में वे भी आगे बढ़कर स्वच्छता का दीप प्रज्वलित रखें। तो आइए हम सब मिलकर ये संकल्प लें, हम राष्ट्र प्रथम सदैव प्रथम की भावना से हर काम करेंगे। हम स्वच्छ भारत विकसित भारत के लक्ष्य में अपना भरपूर सहयोग करेंगे। ना हम कचरा फैलाएंगे, ना दूसरों को फैलाने देंगे। हम अपने गांव को ODF प्लस मॉडल गांव बनाएंगे और जो गांव ODF प्लस मॉडल बन चुके हैं उनकी व्यवस्थाओं को गांव को ODF प्लस मॉडल गांव बनाएंगे और जो गांव ODF प्लस मॉडल बन चुके हैं उनकी व्यवस्थाओं को सुचारू रखने में सहयोग देंगे। इसी संदेश के साथ मैं ऐश्वर्या सिंह आपसे विदा लेती हूँ। स्वच्छ रहिए, स्वस्थ रहिए और जुड़े रहिए स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के इस जन आंदोलन से। धन्यवाद। जय हिंद।
1: हमारे विशेषज्ञ ने कितने अच्छे से ये सारी बातें आप लोगों तक पहुंचाई। याद रखना है आपको और ये आपके क्षेत्र में कार्यान्वित हो, इसके लिए आप लोगों का सहयोग अपेक्षित है।
2: एक मजे की बात बताऊं सुजल, देश भर के 100 सामुदायिक रेडियो के माध्यम से इस कार्यक्रम का पहला एपिसोड ही सुनने के बाद मैं स्वच्छिका और तुम सुजल साथ में दूषिका भी बहुत फेमस हो गए हैं।
1: अच्छा, अरे वाह, ये कैसे हो गया?
2: अलग अलग गांव में नुक्कड़ नाटक के माध्यम से हमारे चरित्र को प्रस्तुत किया जा रहा है।
1: अच्छा, कहाँ?
2: चलो तुमको रामपुर गांव की कहानी सुनाती हूँ। वहाँ पर नुक्कड़ नाटक के रूप में क्या प्रस्तुत हो रहा है वह सुनवाती हूँ। और वहाँ पर एक नाटक हो रहा है जिसका नाम है दूषिका की हार, स्वच्छ भारत की जीत।
1: एक मिनट रुको, दूषिका या प्रदूषिका?
2: सही तो है सुजल, प्रदूषिका तो सिर्फ प्रदूषण फैलाएगी, ये दूषिका ही है जो प्रदूषण के साथ हर स्थान को दूषित करती रहती है। हम भी अब से इसको दूषिका ही कहें तो सही होगा।

0: कहते हैं जब बुराई बढ़ती है तो अच्छाई भी ताकत से खड़ी हो जाती है। ये कहानी है रामपुर गांव की, जहां स्वच्छता को गंदगी ने खुली चुनौती दे दी, जहां प्रदूषिका ने फैलाया अंधेरा और स्वच्छिका ने जलाया स्वच्छता का दीपक, और सुजल कुमार बना उस रोशनी का स्वच्छता दूत। जानेंगे कैसे काम आई बुजुर्ग की नसीहत, आइए सुनते हैं दूषिका की हार स्वच्छ भारत की जीत।
1: आ गई मैं दूषिका गांव की नालियों से निकलकर, शौच के खुले मैदानों में फैलकर, कभी हवा में कभी पानी में मेरा साम्राज्य बढ़ता ही जा रहा है। ठीक हुआ ना, फैला दी ना मैंने गंदगी, जहाँ लोग खुले में शौच करते हैं, जहाँ शौचालय बनते तो हैं, मगर उपयोग ना करने से खराब हो जाते हैं और टूट फूट जाते हैं, वही मैं रहती हूँ। ये तो बहुत ही बढ़िया हो गया, जो कहते हैं ना कल करेंगे साफ, उनको मैं जल्दी से ही बीमार कर देती हूँ। खुला शौच यानी मेरी जीत, टूटी टंकी पानी मेरा ठिकाना, बहुत ठीक हुआ। गंदा शौचालय मेरा आशियाना, मेरा काम सबको बीमार बनाना। घर में शौचालय तो है पर पानी नहीं, गंदा भी है, बिमला के बेटे का तो खुजली हो गई। ऐसे शौचालय का उपयोग से बेहतर तो खेत ही ठीक ठहरा।
2: पिछले महीने 4 बच्चे बीमार पड़े, सरपंच जी कुछ कीजिए।
3: जंगल में जाना अब खतरे से खाली नहीं, सांप और कीड़े।
1: हमारे घर में शौचालय तो है लेकिन बेटा अंदर नहीं जाता, कहता है बदबू आती है। बस ऐसे ही रहो, मुझे तुम सबका लापरवाह रवैया बहुत पसंद है। तुम्हारे बच्चों का बुखार, पेट दर्द और उल्टी, ये सब मेरी ही सौगात ठहरी। तुम सब तो मुझसे रहम की पुकार करो।
0: एक दिन गांव की सीमा पर आ जाता है एक युवक, आत्मविश्वास से भरपूर, हाथ में झोला, आंखों में मिशन लिए, और वो था सुजल कुमार, जो अपने गांव से रोज स्कूल जाता और खूब मन लगाकर पढ़ाई करता। छुट्टी के दिन सुजल कुमार अपने पड़ोस के गांव गया था। सीखा था उसने कि बदलाव घर से शुरू होता है।
4: और राम राम भैया, ये गांव में चारों ओर सन्नाटा सा क्यों है, सब इतने दुखी दिखाई दे रहे हैं, और भैया ये इतनी गंदगी क्यों है यहाँ?
5: लगता है जैसे इसको तो कुछ पता ही नहीं। हाँ नहीं तो, सच कह रही हो बहन, मन तो ऐसे रहा है जैसे इसको कुछ पता ही नहीं हो।
0: मैं सब समझ गया चाची, मैं समझ गया। इस गांव में ये दुख और सन्नाटे का कारण ये गंदगी है ना?
1: मैं ही हूँ इस सब का कारण, मैं। बोलो क्या कर लोगे तुम, बोलो बोलो। मुझे पता है तुम कुछ नहीं कर पाओगे, और कुछ दिनों में मैं तुम्हें भी अपना शिकार बना लूंगी, समझे?
0: अच्छा तो तुम हो दूषिका और ये सब तुम्हारा किया धरा है ना? अब समझ गया मैं। देखो मैं कुछ दिनों में ही तुम्हारा कैसे इलाज करता हूं, देखते रहो। सुजल गांव में नुक्कड़ नाटक करता है, बच्चों को खेल खेल में सिखाता है, बड़ों से मिलकर समझाता है। देखो भाई, शौचालय ना सिर्फ ईंट पत्थर नहीं है, यह है बीमारी से लड़ने का हथियार। गांव वालों सुनिए, खुले में शौच से मिट्टी पानी हवा सब जहरीले हो जाते हैं। अगर तुम अपने बच्चों को सुरक्षित रखना चाहते हो ना भाई, तो बन जाओ होशियार, तो शौचालय का सही उपयोग करो और उसे

0: आप भी तो रखना आप ही का काम हुआ ना। खुद भी स्वस्थ रहो और दूसरों को भी स्वस्थ रखने के लिए स्वच्छता के प्रति जागरूक हमें होना होगा। धीरे धीरे गांव के कुछ लोग प्रेरित होने लगे और शौचालय की सफाई शुरू करते हैं और दूषिका बहुत बेचैन होती है। गांव की गली में छिपकर वो देखती है।
1: ये क्या हो रहा है? लोगों ने नालियां कैसे ढकती? क्या ये शौचालयों पर दरवाजा कब लग गया? दुर्गंध कहाँ गई? अरे मच्छर भी नहीं है। अरे अरे अरे ये सब गांव में क्या हो रहा है? अरे
0: अब गांव में आती है उजली सी रोशनी के साथ स्वच्छिका।
2: गांव वासियों, तुम्हारी जागरूकता ने मुझे यहाँ आने का मौका दिया जहाँ शौचालय का निरंतर उपयोग और सही तरीके से रखरखाव होता है, जहाँ साबुन से हाथ धोना आदत है। मैं वहीं रहती हूँ और मैं हूँ स्वच्छिका।
0: अब गांव में हर घर, गली मोहल्लों में अभियान, दीवारों पर स्वच्छता से संबंधित चित्र, साबुन के साथ बच्चे नल पर हाथ धो रहे हैं, महिलाएं गा रही हैं।
3: शौचालय प्यार।

0: गेले, घर में हो साफ सफाई रोज, तो बीमारी रखो को दूर, मारो सच शौचालय जी, ओ मारो सच शौचालय जी। अरे नहीं, स्वच्छता की ये चमक मेरे प्रदूषण को निगल रही है, मेरा प्रदूषण का साया तो खत्म होता जा रहा है, और इस सुजल की बातें लोगों की आदतें बदल रही है। अब मैं कहाँ जाऊँ, अब मेरा कहाँ ठिकाना होगा, शौचालय में ढक्कन लग गए, नाली साफ कर दी गई, अब खुले में तो कोई शौच जाता ही नहीं।
1: स्वच्छिका, सुजल कुमार और गांव वाले मिलकर रैली निकाल रहे हैं, सब मिलकर नारा लगा रहे हैं। सुजल की बातों को गांव वाले दोहराते हैं, खुले में शौच को ना कहो, बीमारी को दूर भगाओ, शौचालय को साफ रखो, स्वच्छ गांव बनाओ। दूषिका थककर गांव की सीमा पर बैठकर रो रही है।
0: मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम सब सच में बदल सकते हो। तुम सब ने स्वच्छता अभियान में जन भागीदारी के साथ साथ लोगों की सोच को भी बदल डाला। अब तो मुझे जाना ही होगा।
1: गांव की महिलाएं स्वच्छिका को फूलों से सजा रही हैं, बच्चे नाच रहे हैं।
0: तुम सबकी मेहनत ने दूषिका को हराया, लेकिन याद रखो, अगर सफाई की आदत छूटी तो वह लौट सकती है। इसीलिए बहनों, सफाई को आदत बनाओ, मजबूरी नहीं। अरे गांव वालों, शौचालय में रोज रोज सफाई की क्या जरूरत है, गंदा तो होना ही है, छोड़ दो ना, क्या फर्क पड़ता है।
1: फर्क पड़ता है, बहुत फर्क पड़ता है दूषिका, गंदे शौचालय से ही प्रदूषण बढ़ता है, अगर हम रोज सफाई करें तो तुम दम तोड़ दोगी।
0: ये दूषिका फिर से गांव में आके हमारे घरों में बीमारी फैलाना चाहती है, देखो कैसे भूतनी की तरह हंस रही है। गांव वालों, अब से सफाई को ही अपनाओ। औरतें ही तो करती है ये साफ सफाई, पुरुष क्यों हाथ लगाए, अब नहीं बोलोगी। सफाई किसी एक का काम नहीं, ये पूरे परिवार की जिम्मेदारी है, अगर सब मिलकर साफ करें तो किसी पर भी बोझ नहीं पड़ेगा। हमारे घर में शौचालय है, लेकिन बदबू बहुत आती है, बच्चे तो पास भी नहीं जाते।
1: तो समझाइए उनको बहन, शौच के बाद पानी डालना सिखाइए उनको, शौचालय का महत्व बतलाइए उनको।
0: अच्छा, तुम्हारे घर में अब भी सफाई नहीं हुई क्या? चलो चलो, मैं आती हूँ तुम्हारे घर, यही तो है मेरी असली ताकत, चलो आती हूँ। सुनो सब लोग, शौच के बाद हाथ ना धोना बीमारी को न्योता देना है। हाथ साबुन से अच्छे से धोना उतना ही जरूरी है जितना खाना खाना। अरे तब क्या कहोगे सुजल, हर किसी के पास फिनाइल और डिटर्जेंट थोड़ा ही ना होता है।
1: फिनाइल ना हो तो देखिए, नींबू, नमक, राख से भी मदद ले सकते हैं हम। सफाई का तरीका ढूंढा जा सकता है, बस इरादा होना चाहिए कि शौचालय साफ रहेगा।
0: अरे खुले में शौच से तो हवा चलती है, खेत में ताजगी रहती है, ये बंद कमरा कुटन और बीमारी। खुले में शौच से ताजगी नहीं, बीमारी और शन फैलती है। शौचालय में हवा की निकासी हो तो ताजगी भी रहती है और इज्जत भी।
2: हाँ, हम सब समझ गए दूषिका, हम समझ गए, अब तुमसे नहीं डरेंगे। शौचालय को साफ रखेंगे, रोज उपयोग करेंगे, हाथ धोएंगे, अब तुम्हें भगा देंगे।
0: ये तुम सब क्या कर रहे हो, लोगों को मेरे खिलाफ भड़का रहे हो। नहीं दूषिका, हम उनको सिर्फ जागरूक कर रहे हैं।
1: गांव रामपुर अब नहीं रहा पहले जैसा, हर गांव में शौचालय है और उसका रख रखाव भी, बच्चे बीमार नहीं होते, महिलाएं सुरक्षित हैं, और दूषिका वो तो हार चुकी। ये है असली सुजल स्वच्छ गांव की तस्वीर। कहते हैं जब बुराई बढ़ती है तो अच्छाई भी ताकत से खड़ी हो जाती है। ये कहानी है रामपुर गांव की, जहां स्वच्छता को गंदगी ने खुली चुनौती दे दी, जहां प्रदूषिका ने फैलाया अंधेरा और स्वच्छिका ने जलाया स्वच्छता का दीपक, और सुजल कुमार बना उस रोशनी का स्वच्छता दूत। जानेंगे कैसे काम आई बुजुर्ग की नसीहत, आइए सुनते हैं दूषिका की हार स्वच्छ भारत की जीत।
0: आ गई मैं दूषिका, गांव की नालियों से निकलकर शौच के खुले मैदानों में फैलकर, कभी हवा में कभी पानी में मेरा साम्राज्य बढ़ता ही जा रहा है। ठीक हुआ ना, फैला दी ना मैंने गंदगी, जहाँ लोग खुले में शौच करते हैं, जहाँ शौचालय बनते तो हैं, मगर उपयोग ना करने से खराब हो जाते हैं और टूट फूट जाते हैं, वहीं मैं रहती हूँ। ये तो बहुत ही बढ़िया हो गया, जो कहते हैं ना कल करेंगे साफ, उनको मैं जल्दी से ही बीमार कर देती हूँ। खुला शौच यानी मेरी जीत, टूटी टंकी पानी मेरा ठिकाना, बहुत ठीक हुआ। गंदा शौचालय मेरा आशियाना, मेरा काम सबको बीमार बनाना। घर में शौचालय तो है पर पानी नहीं, गंदा भी है, विमला के बेटे का तो खुजली हो गई। ऐसे शौचालय का उपयोग से बेहतर तो खेत ही ठीक ठहरा।
3: पिछले महीने 4 बच्चे बीमार पड़े, सरपंच जी कुछ कीजिए।
4: जंगल में जाना अब खतरे से खाली नहीं, सांप और कीड़े।
0: हमारे घर में शौचालय तो है लेकिन बेटा अंदर नहीं जाता, कहता है बदबू आती है। बस ऐसे ही रहो, मुझे तुम सबका लापरवाह रवैया बहुत पसंद है। तुम्हारे बच्चों का बुखार, पेट दर्द और उल्टी, ये सब मेरी ही सौगात ठहरी। तुम सब तो मुझसे रहम की पुकार करो।
1: एक दिन गांव की सीमा पर आ जाता है एक युवक, आत्मविश्वास से भरपूर, हाथ में झोला, आंखों में मिशन लिए, और वो था सुजल कुमार, जो अपने गांव से रोज स्कूल जाता और खूब मन लगाकर पढ़ाई करता। छुट्टी के दिन सुजल कुमार अपने पड़ोस के गांव गया था। सीखा था उसने कि बदलाव घर से शुरू होता है।
5: और राम राम भैया, ये गांव में चारों ओर सन्नाटा सा क्यों है, सब इतने दुखी दिखाई दे रहे हैं, और भैया ये इतनी गंदगी क्यों है यहाँ?
0: लगता है जैसे इसको तो कुछ पता ही नहीं। हाँ नहीं तो, सच कह रही हो बहन, मन तो ऐसे रहा है जैसे इसको कुछ पता ही नहीं हो।
1: मैं सब समझ गया चाची, मैं समझ गया। इस गांव में ये दुख और सन्नाटे का कारण ये गंदगी है ना?
0: मैं ही हूँ इस सब का कारण, मैं। बोलो क्या कर लोगे तुम, बोलो बोलो। मुझे पता है तुम कुछ नहीं कर पाओगे, और कुछ दिनों में मैं तुम्हें भी अपना शिकार बना लूंगी, समझे?
1: अच्छा तो तुम हो दूषिका और ये सब तुम्हारा किया धरा है ना? अब समझ गया मैं। देखो मैं कुछ दिनों में ही तुम्हारा कैसे इलाज करता हूं, देखते रहो। सुजल गांव में नुक्कड़ नाटक करता है, बच्चों को खेल खेल में सिखाता है, बड़ों से मिलकर समझाता है। देखो भाई, शौचालय ना सिर्फ ईंट पत्थर नहीं है, ये है बीमारी से लड़ने का हथियार। गांव वालों सुनिए, खुले में शौच से मिट्टी पानी हवा सब जहरीले हो जाते हैं। अगर तुम अपने बच्चों को सुरक्षित रखना चाहते हो ना भाई,
5: तो बन जाओ होशियार, तो शौचालय का सही उपयोग करो और उसे साफ भी तो रखना आप ही का काम हुआ ना। खुद भी स्वस्थ रहो और दूसरों को भी स्वस्थ रखने के लिए स्वच्छता के प्रति जागरूक हमें होना होगा। धीरे धीरे गांव के कुछ लोग प्रेरित होने लगे और शौचालय की सफाई शुरू करते हैं और दूषिका बहुत बेचैन होती है। गांव की गली में छिपकर वो देखती है।
0: ये क्या हो रहा है? लोगों ने नालियां कैसे ढक दी? क्या ये शौचालयों पर दरवाजा कब लग गया? दुर्गंध कहाँ गई? अरे मच्छर भी नहीं है। अरे अरे अरे ये सब गांव में क्या हो रहा है? अरे
5: अब गांव में आती है उजली सी रोशनी के साथ स्वच्छिका।
0: गांव वासियों, तुम्हारी जागरूकता ने मुझे यहाँ आने का मौका दिया जहाँ शौचालय का निरंतर उपयोग और सही तरीके से रखरखाव होता है, जहाँ साबुन से हाथ धोना आदत है। मैं वहीं रहती हूँ और मैं हूँ स्वच्छिका।
5: अब गांव में हर घर, गली मोहल्लों में अभियान, दीवारों पर स्वच्छता से संबंधित चित्र, साबुन के साथ बच्चे नल पर हाथ धो रहे हैं, महिलाएं गा रही हैं।
0: शौचालय प्यार।

0: गिरे, घर में हो साफ सफाई रोज, तो बीमारी रखो को दूर, मारो सच शौचालय जी, ओ मारो सच शौचालय जी। अरे नहीं, स्वच्छता की ये चमक मेरे प्रदूषण को निगल रही है, मेरा प्रदूषण का साया तो खत्म होता जा रहा है, और इस सुजल की बातें लोगों की आदतें बदल रही है। अब मैं कहाँ जाऊँ, अब मेरा कहाँ ठिकाना होगा, शौचालय में ढक्कन लग गए, नाली साफ कर दी गई, अब खुले में तो कोई शौच जाता ही नहीं।
1: स्वच्छिका, सुजल कुमार और गांव वाले मिलकर रैली निकाल रहे हैं, सब मिलकर नारा लगा रहे हैं। सुजल की बातों को गांव वाले दोहराते हैं, खुले में शौच को ना कहो, बीमारी को दूर भगाओ, शौचालय को साफ रखो, स्वच्छ गांव बनाओ। दूषिका थककर गांव की सीमा पर बैठकर रो रही

0: ખરાબ કરીને ખાડામાં ડાલવાનું ને એવું પાણી ખરાબ ને એવું જાય એ ખાડામાં ડાલવા નિકાસ કરવાનો ખાડામાં પાણી પેલખા પાણી બી સાફ નહીં હતું સહેડ પરનું સાફ પાણી લાવે છાણી એ રીતના ઢાંકી ઢાંકીને મેળવાનું એક લોટી મેલીને લોટી નીકાળીને ગિલાસમાં નીકાળી પી સાફ ઘેરની સાફ સફાઈ રાખવાથી છોરા ગંદકી નહીં રહે છોરા ના છોરાને સાફ સફાઈ કરવાનું ગંદકી છોરા બીમાર થાય ઘેરમાં બીમારીઓ થાય
1: એ બધી જાણકારી તમને કઈથી મળી
0: એ જાણકારી હું હું ચેતના સમૂહમાં જોડાયો તે ફેર હર મહિને અમારી બેઠકમાં મીટિંગમાં હું બેઠક લીધી ફેર હર મહિને હું સરને બોલાવીને બેઠક લીધી બેઠક લીધી હમણાં તેને બેઠકમાં જાણકારી મળી કે ઘરમાં સાફ સફાઈ રાખવાનું શૌચાલય જાય તો સાબુની હાથ નેવા ધોવાના એ ચેતના સમૂહમાં જોડાયો તે તેનમાં જાણકારી કે મતલબ ઘેરને કેવું રાખવાનું ઘેરમાં કેવી સાફ સફાઈ રાખવાની એવી જાણકારી હમણાં ફેર મળી તો હું ફેર અમારા ઘેરને હમણાં કે કેમ સાફ સફાઈ કરવાનું એ જાણકારી હમણાં સાથે બેઠક હી હમણાં સબ જાણકારી મળી
1: તો દીદી તમારે ઘર શૌચાલય બનાવવા હે કે નહીં હે
0: અમારા ઘેર શૌચાલય બનાવેલું છે
1: તે તમ ઘેરથી બનાવ્યું કે સરકારે મળ્યું
0: સરકારી છે પર સરકારના બી આધા પૈસા અને આધા અમારા ઘેરના પૈસા કરીને અમે એક અસલ બનાવી લીધું શૌચાલય ઘણી ઘણી બનાવી ને તમે અસલ બનાવી લીધું
1: દીદી આપ તો મતલબ ઘર સે નીકળને વાલા કચરા ઉસકો કા એક જગ્હા ઇકઠ્ઠા કરતે કે ફેંક દેતે હો
0: ઘેરમાં કચરો હું એકઠું કરીને ખાડો બનાવીને ખાડામાં કચરો પૂરું નાખી
1: દીદી આપ બતાવ કે જો આપણા ઘર સે નીકળને વાલા પાણી જૈસે બર્તન સાફ કરતે નહાતે ધોતે વો પાણી કો આપ કેસે નિકાસ કરતે
0: તે પાણી બર્તન કરી ઉંગળી ચિત્રા ધોવી એ પાણી સબ હમ એક નાળી બનાવીને એ ખાડો પાડમાં ખોદ મેળે તેના ખાડામાં પૂરું પાણી જાય તે દિનમાં મેં જમીનમાં રંજી જાય પાણી પેલા ખાડામાં તો એવું ફેલાડીની ફેલાડી મચ્છર લેવા પડે ગંદકી હિ ફેર બીમારીઓ થાય કરી એ ખાડો ખોદીને તેના ખાડામાં સબ પાણી જાય તે રંજી જાય મેં
1: દીદી એક બાર આપકા પૂરા પરિચય દેતો
0: મારું નામ સોનિયા વાસ્કેલ છે એ ગામ માછલિયા છે તહસીલ રણમાં જિલ્લા ઝાબવા છે અને ચેતના મહિલામાં હું 2020 જોડાયેલી છું
2: સ્વચ્છતા ચેમ્પિયન સચમુચ સમુદાય મેં સ્વચ્છતા કે સ્થિતિ મેં સુધાર લાને મેં બહોત મદદ કરતે હૈ વો સ્વચ્છતા કે મહત્વ કે બારે મેં જાગરૂકતા ફેલાતે હૈ ઓર લોગો કો સ્વચ્છતા કે પ્રતિ પ્રેરિત કરતે હૈ સ્વચ્છતા ચેમ્પિયન બનકર આપ અપને સમુદાય મેં સ્વચ્છતા કી દિશા મેં બહોત મહત્વપૂર્ણ યોગદાન કર સકતે હૈ
3: મુજે એસા લગતા હૈ કી સુજલ કી સ્વચ્છતા એક સોચ હૈ ઓર યે સોચ હર મન મેં વિકસિત હો સકતી હૈ હમ બચ્ચો કો જબ સિખાતે હૈ કી યહાં પર કાગજ મત ફેંકો યા યહાં પર કેલે કા છિલકા મત ફેંકો ડસ્ટબિન મેં ડાલ કર આઓ ઇસ સમય સે હી બચ્ચો કે મન મેં યે સોચ વિકસિત હોની શરૂ હો જાતી હૈ
2: સહી કહે રહી હો સ્વચ્છિકા જબ મેં છોટા થા ના ગાંવ કે સ્કૂલ મેં જાતા થા તો વહાં પર હમારે ગુરુજી હમકો સ્વચ્છતા કી બહોત છોટી છોટી બાતે ઇસી તરહ સિખાતે થે ઓર બાલમન મેં પડે હુએ પ્રભાવ કે બાદ આજ ભી મેં કહી ગંદગી દેખતા હું ના તો ઉસકો સાફ કરને કી કોશિશ કરને લગતા હું
3: તો ક્યા તુમ ગાંવ કે સ્કૂલ મેં હી પડે હો
2: હા મેરી સારી શરૂઆતી શિક્ષા ગાંવ મેં તો હુઈ ઓર ઇસીલિયે મેં એક સ્વચ્છતા ચેમ્પિયન કી તરહ કામ કરતા હું સ્વચ્છ પેયજલ ઓર સાફ સફાઈ બનાએ રખને મેં લોગો કો જાગરૂક કરને કી કોશિશ કર રહા હું
3: હા સુજલ ઠીક બોલે ઓર આજકલ તો ગાંવ મેં કમ્યુનિટી લેડ ઇનિશિએટિવ બહોત અચ્છે સે કામ કર રહા હૈ
2: અચ્છા સ્વચ્છિકા યે કમ્યુનિટી લેડ ઇનિશિએટિવ ક્યા ચીઝ હૈ
3: યે લો સારી રામાયણ ખતમ હો ગઈ ઓર અબ તુમ પૂછ રહે હો કે રામ કા કિરદાર કોન હૈ
2: અરે બસ પહેલી હી બુઝાઓગી યા કુછ બતાઓગી ભી કે યે કમ્યુનિટી લેડ ઇનિશિએટિવ ક્યા હૈ
3: अरे भाई, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं, बल्कि स्थानीय समुदाय द्वारा एक ऐसा प्रयास है जिसमें गांव के लोग खुद योजना बनाते हैं, निर्णय लेते हैं, श्रम करते हैं और खुद ही निगरानी भी करते हैं।
2: ओहो, अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा, मतलब तुम ये कहना चाहती हो कि हमारा समुदाय ही खुद आगे बढ़कर गंदगी को मिटाने लगता है?
3: हाँ भाई हाँ। अभी तक क्या मैं विदेशी भाषा में बोल रही थी? और इसमें हमारी सरकार समुदाय की मदद भी करती है। इसमें सरकार की भूमिका यहाँ सहायक की होती है, आदेश देने वालों की नहीं।
2: अच्छा, अब समझा। यानी कि तुम ये कह रही हो कि ये मॉडल सबकी भागीदारी, सबकी जिम्मेदारी, इसी पर आधारित है?
3: ऐसे तो तुम बड़े इंटेलिजेंट बनते हो, लेकिन अब आई ना तुम्हें ठीक से अकल? अब तुम बिल्कुल ठीक समझे। इसमें सबकी भागीदारी, सबकी जिम्मेदारी होती है।
2: लेकिन सोचिका, ये समुदाय आधारित पहले काम कैसे करती है? मतलब कुछ तो तरीका होगा ना?
3: ओहो, तुम तो बुद्धू के बुद्धू ही रह गए। देखो, ग्राम स्तर पर स्वच्छता समितियों का गठन किया जाता है और ये समितियां ग्राम पंचायत के अधीन कार्य करती हैं और उसमें महिलाओं को आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के रूप में या युवा शिक्षकों के रूप में या अन्य वर्गों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया जाता है।
2: अच्छा अच्छा, समझा, अब समझ गया। यानी कि तुम उसी समिति की बात कर रही हो जो गांव में शौचालय निर्माण की निगरानी करते हैं, ठीक है ना?
3: बिल्कुल ठीक पकड़े हो सुजल, अब जली है तुम्हारे दिमाग की बत्ती। ग्राम स्तर की स्वच्छता समिति, शौचालय निर्माण की निगरानी, व्यवहार परिवर्तन, अभियान स्वच्छता निधि का उपयोग और ऑडियो सत्यापन की तैयारी जैसे कई दायित्वों का निर्वहन करती है ये।
2: बस बस देवी जी, मैं समझ गया। तुमको बताऊं, वो किरण दीदी जो अभी आई थी ना हमारे नुक्कड़ नाटक में, वो भी ग्राम स्तर पर स्वच्छता समिति की सदस्य हैं।
3: हाँ हाँ, मैं समझ गई, तभी तो तुम्हें इतनी जानकारी है।
4: जिंदगी में हर चीज का विकल्प है, लेकिन पानी का कोई विकल्प नहीं। अब बातें नहीं होंगी, अब मुहिम चलेगी। बारिश का पानी बन सकता है आपकी जिंदगी, हर बूंद में मुस्कुराएगा आपका कल। सोच जो आपका समय बदल दे। आखिरी बूंद।
2: अब हम चलते हैं उस सेगमेंट की तरफ जहां पर श्रोता साथियों के नाम होते हैं, प्रश्न हमारे उनके जवाब होते हैं। तो पिछले एपिसोड में, यानी कि एपिसोड नंबर 1 में, हमने स्वच्छ गांव के लिए कोई बढ़िया सा स्लोगन भेजने के लिए कहा था और साथ ही कहा था कि अच्छे स्लोगनों को इनाम भी दिया जाएगा।
3: अरे तो क्या कुछ अच्छे स्लोगन आए हैं?
2: बिल्कुल आए हैं स्वच्छिका जी, और उनमें हमने 3 अच्छे स्लोगन छांट भी लिए हैं। उन श्रोता साथियों को अब हम इनाम भी देंगे, लेकिन फिलहाल सुनते हैं उन श्रोता साथियों के नाम और उनके भेजे गए स्लोगन्स। पुरुषोत्तम भाई लिखकर भेजते हैं, जल जीवन का अनमोल रतन, इसे बचाने का करो जतन। भाई वाह, क्या स्लोगन दिया है। दूसरा स्लोगन है जिसे भेजा है सत्तार भाई ने, जिसे अब तक ना समझे वो कहानी हूं मैं, मुझे बर्बाद मत करो पानी हूं मैं। भाई वाह साहब, बहुत ही प्यारा लिखा। और लीजिए दोस्तों, तीसरा स्लोगन है जिसे लिखा है सुदर्शन भाई ने, जल है जीवन की धारा, हमें मिलकर है इसे बचाना, बिन जल धरती बेजान, ये बात है सबको समझाना। बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर स्लोगन लिखा दोस्त।
3: वाह, ये तो बड़े अच्छे अच्छे स्लोगन लिखकर भेजे हैं हमारे श्रोता साथियों ने। अब हम उनसे अनुरोध करेंगे कि वे हमारे केंद्र में आकर अपने इनाम लेकर जाएं। आप सभी को बधाई और धन्यवाद।
2: और अब इस अंक का सवाल लीजिए। आरओ का इस्तेमाल करना आज बहुत से क्षेत्रों में मजबूरी बन चुका है। अधिकांश घरों में इसका इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन इससे बहुत सारा पानी बर्बाद भी होता है। दोस्तों, स्वच्छ पानी पीने के लिए आप आरओ का इस्तेमाल करते हैं या नहीं करते हैं, यह जरूरी नहीं है। जरूरी यह है कि आप हमारे प्रश्न का जवाब दें कि आरओ से निकला हुआ पानी कहां कहां इस्तेमाल किया जा सकता है।
3: श्रोता साथियों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, आरओ के लिए एक ग्लास पानी के बदले 3 ग्लास पानी बस यूं ही बहता रहता है। स्वच्छ पानी पीने की चाहत में हम बहुत सारे मिनरल्स को अलग करके इस यंत्र का उपयोग तो करते हैं, लेकिन व्यर्थ बहते पानी को रिसाइकिल नहीं करते और उसका पुनः इस्तेमाल भी नहीं कर पाते हैं। तो आज का हमारा प्रश्न है कि आरओ से निकले हुए व्यर्थ बहते हुए पानी का इस्तेमाल हम कहाँ कहाँ कर सकते हैं और कैसे।
2: चलिए दोस्तों, चलने का वक्त हो गया, लेकिन उससे पहले हम आपको कुछ और भी बता दें। और आप जानते हैं कि हम आपको क्या बताएंगे, है ना? आज आप सुन रहे हैं स्वच्छ सुजल गांव की कहानी रेडियो की जबानी कार्यक्रम का दूसरा एपिसोड। आज के इस एपिसोड में हमने चर्चा की कि हम अपने शौचालय का रख रखाव और उसकी साफ सफाई कैसे करें, स्वच्छता जरूरी क्यों है, स्वच्छ भारत मिशन कार्यक्रम और अब तक की हुई प्रगति की झलक।
3: और साथियों, अगले एपिसोड में हम लेकर आएंगे हर घर जल कार्यक्रम और अब तक हुई प्रगति की झलक के संदर्भ में जानकारी।
2: क्या आप जानते हैं कि जल जीवन मिशन में जल उत्सव या जल अर्पण दिवस क्या होता है? इस जानकारी के साथ ही जल जीवन मिशन के जारी होने से पहले लॉन्च और अब तक के कवरेज सहित मिशन के बारे में, नल जल कनेक्शन की उपलब्धियां, जल परीक्षण में महिलाओं की भूमिका, मिशन के घटक आदि के बारे में अगले एपिसोड में हम आपको बताएंगे।
3: अब आप अपने प्रश्न का जवाब हमको भेजिए, अपने गांव में शौचालय के रखरखाव पर उसके प्रति नजर रखिए, लोगों को बताइए, खुश रहिए, स्वच्छ रहिए, स्वच्छता फैलाइए और अपने देश को स्वच्छ बनाइए, स्वच्छ भारत यानी सुंदर भारत।
2: कार्यक्रम के अगले एपिसोड में दोस्तों हम फिर मिलेंगे, तब तक सुनते रहिए अपना पसंदीदा रेडियो, रेडियो टांटिया भील, आपके झाबुआ की आवाज। फिलहाल स्वच्छता और सुजल को दीजिए इजाजत, नमस्कार।
5: हूँ से आरजे भावना, आप पर हंगला भाइयों नू घरों घरों स्वागत करिए से आपरा झाबुआ ना सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांटिया भील 90.8 FM।

आज समाज में बालिकाओं के प्रति पुरुष तो ठीक, महिलाएं भी परंपराओं का हवाला देकर अपनी फूल सी कोमल बच्चियों को अपनी जिंदगी को ठीक से जीने नहीं देती। हमारे समाज में अनेक बच्चियां रूढ़िवाद एवं सामाजिक प्राचीन परंपराओं के कारण माँ के कोख में ही खत्म कर दी जाती है। यदि जन्म लेती है तो परिवार पर बोझ बन जाती है, यह रूढ़िवादी परंपरा है। बच्चियां अपनी सिसकियां अपने हृदय में संजोकर अपने पिताजी की गोद में शायद यह जरूर अभ्यंतर से कहती होगी,

0: रेडियो स्टेशन 90.8 FM टांटिया भील रोज हांजे 6-8 वागे आपड़ी समस्या अने आपड़ो समाधान आपु रोज करहूं वातें खेती ना बारा मा अने कमाई ना बारा मा एत्रे हमलता रेजो टांटिया भील नो रेडियो स्टेशन 90.8 FM
1: ભાવના

0: આપના આપ પઢંગલા ભાઈઓનો ઘણું ઘણું સ્વાગત કરીએ છે આપરા ઝાબુઆના સામુદાયિક રેડિયો સ્ટેશન રેડિયો ટેન્ટેવિલ 90.8 એફએમ ઝાબુઆની આવાજ પર.
1: एक जमाने में हुकुम सिंह को घर वाले कुरकुरदास बुलाते थे, क्योंकि लाइट पंखे चालू देखते ही वो सब पर चिल्लाने लगते थे,
2: अरे रमुआ ये पंखा क्यों खुला छोड़ा, बिजली का बिल क्या तेरा बापू भरेगा.
1: पर आज उन्हें सब प्यारे लाल बुलाते हैं, क्योंकि जब से उन्होंने सोलर पैनल लगवाया है तब से मीटर की सुई भी चैन से सोती है और हुकुम सिंह भी. पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, आज ही रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर.
3: हर घर सूर्य घर.
4: हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप. मैं हूं आरजे समीर और मैं लाया हूं प्रोग्राम आज के कलाकार. आज के प्रोग्राम में कौन कलाकार हैं? बस अभी पता चलता है.

दोस्तों हेमंत कुमार यानी हेमंत मुखर्जी जी हिंदी और बंगाली फिल्म उद्योग में एक गायक संगीतकार और निर्माता की तरह फेमस हैं। उन्हें 1950 और 1960 के दशक के उनके बॉलीवुड गानों के लिए सबसे ज्यादा जाना जाता है। अपने करियर में उन्होंने लगभग 2000 गाने रिकॉर्ड किए। चलिए सुनते हैं उनका ये गीत।

हेमंत कुमार मुखर्जी जी का जन्म 16 जून 1920 को बनारस यानी वाराणसी में हुआ था। उनके 3 भाई और 1 बहन थी। हालांकि उनका जन्म बनारस में हुआ, लेकिन उनका पूरा परिवार मूल रूप से पश्चिम बंगाल के बहारू का रहने वाला था।

जब वो छोटे थे उनका परिवार कोलकाता में स्थानांतरित हो गया। वहां वो बड़े हुए और भवानीपुर के मित्रा इंस्टीट्यूशन स्कूल में पढ़ाई की। इंटरमीडिएट से स्नातक होने के बाद उन्होंने जादवपुर विश्वविद्यालय में दाखिला लिया और इंजीनियरिंग की पढ़ाई की। आइए सुनते हैं उनका डायरेक्ट किया हुआ ये गीत।

0: संगीत में हेमंत कुमार जी की रुचि जल्द ही शुरू हो गई। उन्होंने अपना पहला गाना 1933 में ऑल इंडिया रेडियो पर गाया। उस समय वो केवल 13 वर्ष के थे। हालांकि ये कभी साफ नहीं हो पाया कि हेमंत कुमार गायक बनेंगे। उनकी बेसिक ट्रेनिंग इंजीनियरिंग में थी, लेकिन अन्य रास्ते अपनाने के लिए उन्होंने विश्वविद्यालय छोड़ दिया। शुरू में उन्होंने लेखन में अपना हाथ आजमाया, यहां तक कि वो एक प्रमुख बंगाली पत्रिका में एक लघु कहानी प्रकाशित करने लगे। लेकिन थोड़ी ही देर बाद उन्हें समझ में आ गया कि उनका बिजनेस संगीत है। आइए सुनते हैं उनका डायरेक्ट किया हुआ ये गीत।
1: जरा नजरों से कह दो जी।

हेमंत कुमार जी के पास संगीत की अच्छी ट्रेनिंग थी, उनके अनेक टीचर्स थे। ऐसा लगता है कि उनकी ट्रेनिंग का बड़ा हिस्सा शैलेश दत्त गुप्ता के अधीन रहा। उन्होंने फणी बनर्जी के अधीन भी अध्ययन किया और कई लोगों से ट्रेनिंग ली। 1937 में उन्होंने अपनी पहली डिस्क रिकॉर्ड की थी। फिल्म पार्श्व गायक के रूप में उनका करियर बंगला फिल्म निमाई संन्यास से शुरू हुआ, जो कि 1941 में रिलीज हुई थी। उसके बाद उन्होंने कई बंगाली फिल्मों के लिए पार्श्व गायन किया। आइए सुनते हैं ये गीत।

वो एक संगीत निर्देशक के रूप में अपनी क्षमताएं दिखाना चाहते थे, तो वो पहली बार 1947 में बंगाली फिल्म अभियत्री में ऐसा करने में सफल रहे।

कई संगीत निर्देशकों ने उनको पहचानना शुरू कर दिया था। 1940 के दशक के अंत में हेमंत ने हेमेन गुप्ता नामक निर्देशक के लिए संगीत रचना शुरू की। बस यहीं से उनका जीवन बदल गया। आइए सुनते हैं उनका डायरेक्ट किया हुआ ये गीत।

हेमेन गुप्ता को हेमंत कुमार का संगीत पसंद आया और उन्होंने उन्हें बॉम्बे बुलाया। बॉम्बे में फिल्म बन रही थी आनंद मठ। यहां हेमंत कुमार को इस फिल्म में संगीत देने का मौका मिला और किस्मत बदल गई।

1960 के दशक में हेमंत कुमार बहुत सक्रिय रहे, फिर 1970 के दशक में उनके प्रोडक्शन में काफी गिरावट आई। उनकी प्रोडक्शन कंपनी गीतांजलि पर 14 लाख रुपए का कर्ज भी हो गया जो चुकाया ना जा सका। उनकी फिल्में बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप भी रही। 1980 के दशक में उनकी तबीयत खराब होने लगी। आइए सुनते हैं उनका ही ये गीत।

हेमंत कुमार यानी हेमंत दा की आवाज सौंधी सौंधी मिट्टी की खुशबू देती थी। सुनते हैं उन्हीं की आवाज में ये गीत।

तो दोस्तों आज के कलाकार प्रोग्राम में इतना ही। मैं आपका दोस्त आरजे समीर बहुत जल्द वापस हाजिर होऊंगा आपके इस पसंदीदा प्रोग्राम के साथ। सुनना ना भूलिएगा आज के कलाकार।

हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं हूं आरजे समीर और मैं लाया हूं प्रोग्राम आज के कलाकार। आज के प्रोग्राम में कौन कलाकार हैं? बस अभी पता चलता है।

दोस्तों आज के कलाकार प्रोग्राम में आज के फनकार हैं रविंद्र जैन। रविंद्र जैन एक प्रसिद्ध गीतकार, गायक, संगीतकार और संगीत निर्देशक थे। भले ही वो जन्म से अंधे थे, फिर भी वो अपनी संगीत प्रतिभा से विश्व प्रसिद्ध हुए। तो लीजिए इस प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं रविंद्र जैन जी द्वारा बनाए हुए इस गीत से।

的钱。

रविंद्र जैन जी का जन्म 28 फरवरी 1944 को अलीगढ़ उत्तर प्रदेश भारत में हुआ था। उनके पिता इंद्रमणि जैन एक संस्कृत पंडित थे और आयुर्वेदिक चिकित्सा के भी चिकित्सक थे। रविंद्र अपने माता पिता की चौथी संतान थे और उनके 7 भाई बहन थे। वो अपने माता पिता और भाई बहनों से बहुत ज्यादा प्रेम करते थे। दोस्तों, उन्हीं का बनाया हुआ ये गीत सुने।

रविंद्र जैन साहब की पैदा होने के एक दिन बाद भी जब आंखें नहीं खुली तो उनके पिता ने उनके लिए ऑपरेशन की व्यवस्था की। हालांकि डॉक्टर उनके पलके खोलने में सफल रहे लेकिन वो देखने में असमर्थ थे। ये जानकर उनके माता पिता को बहुत दुख हुआ, लेकिन उन्हें क्या पता था कि ये नेत्रहीन बच्चा कितना प्रसिद्ध होने वाला है। आइए दोस्तों सुनते हैं उनका बनाया हुआ ये गीत

रविंद्र के पिता ने उन्हें संगीत प्रशिक्षण के लिए ये विश्वास दिलाकर दाखिला दिलाया कि वो बड़े होकर संगीतकार बनेंगे और एक संगीतकार के लिए अंधा होना कोई बड़ी समस्या नहीं होगी। इसलिए बचपन से ही उन्होंने संगीत की शिक्षा लेनी शुरू की और उनके पिता ने उन्हें उपहार के रूप में एक मिनी हारमोनियम दिया था। शुरू में रविंद्र ने घमंडी लाल और फिर जनार्दन शर्मा जी से ट्रेनिंग ली। जनार्दन शर्मा जी ने उन्हें गायन भी सिखाया। उन्हें न सिर्फ गाने का बल्कि गाने लिखने का भी शौक था। लीजिए दोस्तों, सुनते हैं उनका बनाया हुआ ये गीत।

भले ही रविंद्र जी अपनी विकलांगता के कारण पांचवीं कक्षा से आगे की पढ़ाई नहीं कर पाए, लेकिन शिक्षा के प्रति उनकी जिज्ञासा खत्म नहीं हुई। उस समय उनके बड़े भाई डीके जैन साहित्य पढ़ते थे और वो उनसे अपनी किताबें जोर जोर से पढ़ने का रिक्वेस्ट करते थे। इसके कारण भले ही रविंद्र जी की कोई औपचारिक शिक्षा नहीं हुई, फिर भी वो बहुत ज्ञानी बन गए। लीजिए दोस्तों, सुनते हैं उन्हीं का एक गीत।

रविंद्र जैन जी कुछ समय बाद कोलकाता पहुंचे अपने चचेरे भाई के पास। रविंद्र जैन जी टैगोर संगीत से बहुत ज्यादा प्रेरित थे।

कोलकाता में ही रविंद्र जैन ने ऑल इंडिया रेडियो के लिए अपना पहला गाना रिकॉर्ड किया। आइए दोस्तों सुनते हैं उनके द्वारा बनाया हुआ एक और गीत

रविंद्र के मित्र निर्माता राधेश्याम झुंझुनवाला ने उन्हें आश्वासन दिया कि वो उन्हें मुंबई ले जाएंगे और संगीत निर्देशन का अवसर देंगे और आखिर में 19 सितंबर 1969 को वो राधेश्याम के साथ बॉम्बे पहुंच गए। यहां मशहूर अभिनेता और उनके पुराने दोस्त संजीव कुमार ने रविंद्र को मशहूर निर्माता एन एन सिप्पी साहब से मिलवाया। आइए दोस्तों सुने इन्हीं का एक गीत।

रविंद्र जैन ने एनएन सिप्पी के सामने घुंघरू की तरह बजता ही रहा हूं मैं सुनाया, और इसके बाद 1971 से बॉलीवुड में उन्होंने काम करना शुरू किया। सुनते हैं दोस्तों उनका ये गाना।

1973 में आई फिल्म सौदागर ने रविंद्र जैन को लोकप्रिय बना दिया। इस फिल्म में मुख्य अभिनेता अमिताभ बच्चन थे। सुनते हैं दोस्तों उनका ये एक और गीत।

बॉलीवुड में गाना गाने के अलावा, संगीत बनाने के अलावा, रविंद्र जैन ने रामायण, श्री कृष्ण, अलिफ लैला, जय गंगा मैया जैसे कई सारे विषयों पर गाने लिखे। महाभारत सीरियल जो टीवी पे आता था वो किसे न याद होगा, उसका भी संगीत रविंद्र जैन साहब ने दिया। आइए दोस्तों सुनते हैं एक और गीत।

तो दोस्तों आज के कलाकार प्रोग्राम में इतना ही। मैं आपका दोस्त आरजे समीर बहुत जल्द वापस हाजिर होऊंगा आपके इस पसंदीदा प्रोग्राम के साथ। सुनना ना भूलिएगा आज के कलाकार।

0: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं हमारा बहुत ही खास प्रोग्राम जहां शब्दों में एहसास है और हर शेर में दिल की बात। आज की इस महफिल में पेश है कुछ खूबसूरत गजलें जो आपके दिल को छू जाएंगी। आपके साथ हैं आपकी ही मेजबान, आपकी ही रेडियो दोस्त आरती जी। तो आइए शुरू करते हैं गजलों और सुरों का ये प्यारा सफर।
1: एक खामोशी जो सदियों से जहन में सोई थी, एक खामोशी जो सदियों से जहन में सोई थी, आज सुरों का सहारा मिला तो गुफ्तगू करने लगी। नमस्कार, आदाब और एक बेहद मखमली शाम आप सबको मुबारक हो। 90.8 FM पर SN रेडियोज और रेडियो टांटिया भील से मैं हूँ आपकी अपनी दोस्त आरती रॉय। एक बार फिर से हाजिर हूँ लेकर आपका अपना चहेता प्रोग्राम अल्फाज से एहसास तक। दोस्तों, जब दिन भर की मसरूफियात और दुनिया का शोर थमता है तब दिल को किसी सहारे की तलाश होती है जो बिना कुछ कहे हमारी कश्मकश को समझ सके। ऐसे ही लम्हों में मौसीकी यानी संगीत हमारी तन्हाई का हाथ थाम लेता है। आज की इस महफिल का मिजाज कुछ ऐसा ही मुनफरिद यानी अनोखा सा है, क्योंकि आज हम तरानों के इस कारवां को कुछ ऐसे बासलाहियत और बेमिसाल फनकारों के सुपुर्द करने जा रहे हैं जिनकी गायकी का अंदाज सीधे दिलों में उतर जाता है। गजल का हुस्न अल्फाज की संजीदगी और सुरीले जज्बातों की एक नई दास्तान आज हर पड़ाव पर आपको एक बिल्कुल नया रंग मयसर होगा। तो अपनी तवज्जो को समेट लीजिए और दिल के दरवाजों की सांकलें जरा खोल लीजिए। धीमे से ठंडी बयार का झोंका तो आने दीजिए। तो आइए बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं इस खूबसूरत सफर की और रुख करते हैं आज की बेहद खास पहली पेशकश की तरफ। दोस्तों, जिंदगी में कभी कभी ऐसा मोड़ आता है जब इंसान किसी से बेपनाह मोहब्बत करता है और बदले में सिर्फ एक खूबसूरत कल की उम्मीद रखता है, मगर अफसोस कि वक्त का हिसाब कुछ ऐसा कड़ा निकलता है कि वो चाहत एक ऐसे इम्तहान में बदल जाती है जहां पुरानी बातों का बदला चुकाना पड़ता है। जरा इस गजल का ये बेहद हसीन मिसरा मुलाहिजा फरमाएं जहां मिलन के उन छोटे से लम्हों का जिक्र है जो बड़ी मिन्नत के बाद मयसर होते हैं। मिसरा कुछ यूं है, वसल का दिन और इतना मुख्तसर, वसल का दिन और इतना मुख्तसर, दिन गिने जाते थे इस दिन के लिए। वसल यानी मिलन और मुख्तसर यानी बेहद छोटा सा। शायर कहते हैं कि जिस मुलाकात के लिए हमने महीनों तक दिन गिने, जब वो आई भी तो पल भर में खत्म हो गए। अब ये बेबसी अपनी आखिरी हदों को छूती है तो गजल का ये मिसरा सीधे कलेजे के पार उतर जाता है। बकौल शायर, वो नहीं सुनते हमारी क्या करें, वो नहीं सुनते हमारी क्या करें। मांगते हैं हम दुआ जिनके लिए। इस खूबसूरत कलाम को जब हमारे जगजीत जी ने अपनी तिलस्मी अंदाज में गाया तो ये हर एक उस दिल की जुबां बन गई जिसने मोहब्बत में अधूरेपन को सहा हो। तो आइए सुनते हैं जगजीत साहब की आवाज में प्रोग्राम की पहली गजल, तुमने बदले हमसे गिन गिन के लिए। हमने क्या चाहा था इस दिन के लिए, आपकी नजर।

दोस्तों, वक्त की रफ्तार तो अपने ढर्रे पर चलती रहती है, मगर जब कोई दिल के बेहद करीब रहने वाला शख्स हमसे दूर होता है तो हर लम्हा सदियों जैसा भारी लगने लगता है। ये गमजदा दिल महबूब से कोई शिकवा नहीं करता, बल्कि एक मासूम से गुजारिश करता है कि लौट आओ, क्योंकि तुम्हारे बिना ये पूरी कायनात और ये जिंदगी अधूरी है। गजल का मिसरा कुछ यूं है, वादा करके ये कौन आया नहीं, वादा करके ये कौन आया नहीं, शहर में आज रोशनी कम है। और फिर आईना देखकर ख्याल आया, आजकल उनकी दोस्ती कम है। शायर के दिल का हाल तो देखिए, कहता है जाने क्या हो गया मौसम को, जाने क्या हो गया मौसम को, धूप ज्यादा है चांदनी कम है। और फिर कहता है तेरे दम से ही मैं मुकम्मल हूँ, तेरे दम से ही मैं मुकम्मल हूँ, बिन तेरे तेरी आमनी कम है। दोस्तों, और इस बेहद नाजुक और जज्बाती कलाम को सुरों से सजाया है बेहद जहीन और बासलाहियत गुलकार चंदन दास साहब ने। चंदन दास जी की गायकी की सबसे बड़ी खासियत यही है कि वो शास्त्रीय संगीत की बारीकियों को निभाते हुए भी लफ्जों के जज्बात सीधे दिलों तक पहुंचा देते हैं। उनकी आवाज का वो धीमापन इस दर्द को और गहरा कर देता है। जरा इस गजल का एक और बेहद संजीदा मिसरा मुलाहजा फरमाएं, जहां तन्हाई की इंतहा बयान की गई है। कहते हैं तुम मिले तो राज हमने जाना, तुम मिले तो ये राज हमने जाना, पारसाओं में एक हम ही कम है। पारसा यानी बहुत पाक और पाकीजगी का दावा करने वाले लोग। शायर कहते हैं दुनिया तो खुद को बहुत पाक साफ बताती है, मगर तुम्हारी मोहब्बत में डूबने के बाद हमें एहसास हुआ कि इस मतलबी दुनिया के असूलों में बस एक हमारी ही कमी थी। और जब इंतजार अपनी आखिरी हदों को छूता है तो चंदन दास साहब की आवाज में ये मिसरा सीधे कलेजे के पार उतर जाता है। कहते हैं जानता हूँ तुम आओगे जरूर, जानता हूँ तुम आओगे जरूर, फिर भी धड़कन जरा थमी कम है। भले ही दिल को यकीन है कि महबूब लौट आएगा, मगर बिरहा का ये वक्त दिल को एक पल के लिए भी चैन नहीं लेने दे रहा। तो फिर आइए सुनते हैं अल्फाज से एहसास तक के इस मरहले पर चंदन दास जी की आवाज में ये सदाबहार गजल। आ भी जाओ कि जिंदगी कम है, तुम नहीं हो तो हर खुशी कम है। शौक फरमाएं।

दोस्तों, जब मोहब्बत में किसी के हुस्न और उसकी सादगी की तारीफ की जाती है तो लफ्ज़ कम पड़ जाते हैं। तुमसे ज़्यादा हंसी कोई नहीं, दिल ही दिल में वो सोचता होगा। इस मिसरे का ख्याल ज़रा मुलाहिज़ा फरमाएं। यहाँ आशिक सिर्फ अपने महबूब की तारीफ नहीं कर पा रहा, बल्कि वो उस खुदा के तसव्वुर में डूबा हुआ है जिसने इस हुस्न को तराशा है। वो सोच रहा है कि जिसने तुम्हें बनाया वो आईने में तुम्हारी इस मुकम्मल खूबसूरती को देखकर खुद अपने पर ही हैरान होता होगा। और जब इस हसीन कश्मकश को आवाज के सांचे में ढालने का वक्त आया तो हमारे सामने आए एक बेहद ज़हीन और ख़ास लहजे के फनकार विनोद राठौड़ साहब। विनोद साहब के अंदाज़ की खासियत यही है कि उनकी वजनी आवाज़ में जज्बातों की एक बहुत नाजुक नरमी छुपी हुई है। उन्होंने इस कलाम को जिस खूबसूरती के साथ निभाया है वो जहन पर एक अजब सा सुरूर पैदा कर देता है। इस नायाब नज्म का ये दूसरा और बेहद गहरा मिसरा सुनिए, जहाँ दीवानगी अपनी आखिरी हदें पार कर जाती है। कहते हैं, जब भी आती होगी याद मेरी, जब भी आती होगी याद मेरी, काम वक्त सफर रोकता होगा। गौर फरमाइए दोस्तों, जब दूरियों के बीच अचानक यादों का कोई झोंका आता है तो चलते हुए कदम पल भर के लिए थम जाते हैं। जिंदगी की रफ्तार और वक्त का तकाजा चाह कर भी उस याद के साए से आगे नहीं बढ़ने देता। तो आइए इस मरहले पर साथ साथ सुनते हैं विनोद राठौर साहब की इस नायाब और बहुत खूबसूरत पेशकश को। तुम जब आईना देखती होगी, आईना तुमको देखता होगा। तुमसे ज्यादा हंसी कोई नहीं, दिल ही दिल में वो सोचता होगा। मुलाहिज़ा फरमाएं चंदनदास की आवाज़ में ये खूबसूरत सा कलाम।

दोस्तों, जब मोहब्बत अपनी आखिरी हदों को छूती है तो महबूब की दी हुई तकलीफ भी नेमत लगने लगती है। कतील शफाई साहब ने इस ख्याल में वफा के उस ऊंचे मुकाम को पेश किया है जहां आशिक जमाने से कोई शिकवा नहीं करता। अता यानी वो चीज़ जो तोहफे में मिली है। शायर कहते हैं, जब ये जख्म और ये हिजर यानी जुदाई देने वाला ही मेरा अपना महबूब है तो भला दुनिया के सामने जाकर इसका रोना क्या रोना। दोस्तों, जब मोहब्बत अपनी आखिरी हदों को छूती है तो महबूब की दी हुई तकलीफ भी नेमत लगने लगती है। कतील शफाई साहब ने इस ख्याल में वफा के उस ऊंचे मकाम को पेश किया है जहां आशिक जमाने से कोई शिकवा नहीं करता। अता यानी वो चीज़ जो तोहफे में मिली है। शायर कहते हैं, जब ये जख्म और ये हिजर यानी जुदाई देने वाला ही मेरा अपना महबूब है तो भला दुनिया के सामने जाकर इसका रोना क्या रोना। और जब इस बेमिसाल तहरीर को उस्ताद गुलाम अली साहब की रूहानी मौसीकी का साथ मिला तो सुरों को अपनी मखमली बंदिशों में पिरोने के लिए आगे आई हम सब की बहुत अपनी आशा भोंसले जी यानी हमारी आशा ताई। इस पूरे एल्बम में आशा ताई ने क्लासिकी गायकी की नाजुक हरकतों को जिस नज़ाकत और ख़ास सोच के साथ निभाया है वो जहन पर एक अजब सा सुरूर तारी कर देता है। ज़रा इस गज़ल का ये मिसरा मुलाहिज़ा फरमाइए, जहाँ ज़माने की बंदिशों का ज़िक्र है। बकौल शायर, अक्स बहते हुए पानी में दिखाई ना दिया, अक्स बहते हुए पानी में दिखाई ना दिया, आईना टूट गया तो गिला किससे करें। तौबा खुदा, क्या शायरी है। शायर की मुराद इस मिसरे से यूं है कि जब वक्त के थपेड़ों ने वजूद के उस आईने को ही बिखेर दिया जिसमें कभी महबूब का अक्स दिखता था तो अब इस टूटे हुए दिल का शिकवा किससे किया जाए। और इस कश्मकश का अगला सिरा जरा इस मिसरे में महसूस कीजिए। शायर कहता है, हमको अपना ही मुकद्दर ना मयसर आ सका, हमको अपना ही मुकद्दर ना मयसर आ सका, तू अगर हमसे छुटा है तो गिला किससे करें। यानी जब अपनी ही किस्मत का लिखा हमारे हक में नहीं था तो तुम्हारी बेरुखी पर नाराज होने का तो कोई हक ही नहीं बनता। तो आइए सुनते हैं इस पुरअसरार से मकाम पर पूरी तवज्जो के साथ आशा ताई की इस लाजवाब पेशकश को। दर्द जब तेरी अता हो गिला किससे करें। शौक फरमाएं।

दोस्तों, उर्दू अदब के चमकते सितारे खुमार बाराबंकी साहब ने इस कलाम में वक्त और मोहब्बत के उस जादुई एहसास को पिरोया है, जहाँ दिल का सिर्फ एक खूबसूरत लम्हा भी सदियों के जीने का हौसला दे जाता है। एक पल में एक सदी का मजा हमसे पूछिए, दो दिन की जिंदगी का मजा हमसे पूछिए। वो कहते हैं, दुनिया भले ही लंबी उम्र की हसरत रखती हो, मगर जो लोग सिर्फ शिद्दत से जीना जानते हैं, उनके लिए दो दिन का ये छोटा सा सफर भी पूरी कायनात के हुस्न को समेट लेता है। दोस्तों, जब इस नफीस कलाम को सुनने की बात आती है तो एक बहुत ही दिलचस्प नाम हमारे सामने उभरता है, हंसराज हंस जी का। जी हाँ, आपने ठीक सुना। आमतौर पर लोग उन्हें उनके बुलंद और ठेठ पंजाबी लोकगीतों के लिए जानते हैं, लेकिन कड़े शास्त्रीय संगीत की तालीम और सूफियाना रूहानियत उनके वजूद में बचपन से घुली हुई है। जब हंसराज साहब पंजाबी के ऊंचे सुरों से निकलकर उर्दू गज़ल के ठहरे हुए मखमली अंदाज में आते हैं, तो उनकी बुलंद आवाज़ खुमार साहब के एक नई रूहानी ऊंचाई अता कर देती है। फिर शायर कहता है, भूले हैं रफ्ता रफ्ता उन्हें मुद्दतों के बाद हम, भूले हैं रफ्ता रफ्ता उन्हें मुद्दतों के बाद हम, किश्तों में खुदकुशी का मजा हमसे पूछिए। रफ्ता रफ्ता यानी हौले हौले, धीरे धीरे। शायर कहते हैं कि किसी अजीज इंसान को भुलावे की कोशिश में हमें एक लंबा जमाना लग गया, और रोज थोड़ा थोड़ा करके उसकी यादों में मरना मानो किस्तों में अपनी ही जान देने जैसा है। और जब दिल की आंखें अपनी वफा बयां करती हैं, तो वो कहते हैं, वो जान ही गए हैं कि हमें उनसे प्यार है, वो जान ही गए हैं कि हमें उनसे प्यार है, आंखों की मुखबरी का मजा हमसे पूछिए। तो आइए, अल्फाज से एहसास तक के इस आखिरी और शानदार मरहले पर पूरी ईमानदारी से, पूरी तवज्जो के साथ सुनते हैं खालिस पंजाब की मिट्टी से सूफियाना कलाम, हमारे पंजाबी हंसराज हंस की सौंधी सौंधी सुरों से भरी रूहानी आवाज में। उनके बहुत से कलाम सुनने के बाद मुझे आज की शाम के लिए ये मोतबर यानी बहुत एप्रोप्रिएट लगा। तो सुनिए, एक पल में एक सदी का मजा हमसे पूछिए, दो दिन की जिंदगी का मजा हमसे पूछिए। आपकी नजर प्रोग्राम की ये आखिरी पेशकश।

दोस्तों, सुरों, साजों और अनोखे एहसासों की जिस सरजमी पर आज हम सब सफ़र कर रहे थे, अब वहाँ विदाई की शफक यानी शाम की लाली उतर आई है। जगजीत सिंह साहब की यादों के गलियारों से शुरू हुआ अल्फाज का ये कारवां, चंदन दास साहब की पुरकशिश गुजारिश, विनोद राठौड़ जी का हसीन तसव्वुर, आशा ताई की मखमली शिकवों और आखिर में हंस साहब की रूहानी पेशकश तक आते आते एक मुकम्मल इनायत बन गया। शायरी की खासियत ही यही है कि ये हवाओं में घुलकर हमेशा के लिए महफूज हो जाती है। जब रेडियो पर धुनों का ये सिलसिला थम जाएगा, तब भी इन फनकारों की आवाज़ें आपके जहन की खामोशी में कहीं ना कहीं गूंजती रहेंगी। किसी शायर ने इस सुरीले असर को क्या खूब लफ्ज दिए हैं। वो कहता है, बुझ गए दिए तो क्या, एक रोशनी तो रह गई, महफिलें रुखसत हुई, पर दिल में कशिश तो रह गई। इसी दिलकश कशिश को अपने अंदर समेटे हुए अब वक्त हो चला है इस महफिल को समेटने का और आपसे रुखसत होने का। अब मुझे यानी आपकी अपनी रेडियो दोस्त आरती को इस मोड़ पर दीजिए इजाज़त, मगर सुरों का ये साथ यूं ही बना रहेगा। अपनी सेहत का और अपने अपनों का और अपने जज्बातों का बहुत अच्छे से ख्याल रखिएगा। आप सभी चाहने वालों को मेरी तरफ से एक बेहद हसीन शब खैर, शुभ रात्रि, दुआओं में याद रखिएगा, फिर मिलेंगे।

0: तो दोस्तों, आपकी मेजबान आरती जी के साथ आज की हमारी गजलों भरी महफिल बस यहीं खत्म होती है। उम्मीद है ये गजलें, ये अल्फाज आपके दिल को पसंद आए होंगे। इसी तरह जुड़े रहिए हमारे साथ, क्योंकि आरती जी फिर लौटेंगी नई गजलों और नई भावनाओं के साथ। नमस्कार।
1: आप जिनके करीब होते हैं।
2: आजकल भारत के गांव-गांव में छतों का रूप बदल गया है। जहां पहले छतों पर सिर्फ पापड़ और कपड़े सूखते थे, वहां पर अब बिजली बिल जीरो हो रहे हैं। गांव-गांव में लोग सोलर पैनल लगवा रहे हैं। आप भी लगवा लीजिए। 78,000 की सब्सिडी दे रही है भारत सरकार। 30,00,000 से अधिक परिवार तो इसका लाभ उठा चुके हैं। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
1: हर घर सूर्य घर।
3: रेडियो स्टेशन 90.8 FM, टैंटिया भील, रोज हांजे 6 થી 8 વાગે आपड़ी समस्या अने आपड़ो समाधान। आपू रोज करहूं वातें खेती ना बारा मा अने कमाई ना बारा मा। एत्रे हमलता रेजो टांटिया भील नो रेडियो स्टेशन। रेडियो स्टेशन 90.8 FM। किसान साथियों, आप सुन रहे हैं रेडियो टांटिया भील 90.8 FM छावा की आवाज। खेती बाड़ी कार्यक्रम में एक बार पुनः बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका। किसान साथियों, आप खेती बाड़ी कार्यक्रम के माध्यम से अपनी आजीविका को सशक्त बनाने हेतु, हमारी कृषि में नवीनतम बदलाव लाने हेतु, कृषि उपकरणों का, कृषि यंत्रों का सहज उपयोग करने हेतु, उन्नत किस्मों की जानकारी हेतु और हमारी कृषि भूमि की देख रेख हेतु और अन्य महत्वपूर्ण जानकारियों हेतु हम अपने इस कृषि कार्यक्रम के माध्यम से इन सब जानकारियों को लेते हैं और हमारी कृषि को हम सशक्त बनाते हैं।
4: रेडियो स्टेशन 90.8 FM, टांटिया भील, रोज हांजे 6 થી 8 વાગે आपड़ी समस्या अने आपड़ो समाधान। आपू रोज करहूं वातें खेती ना बारा मा अने कमाई ना बारा मा। एत्रे हमलता रेजो टांटिया भील नो रेडियो स्टेशन। रेडियो स्टेशन 90.8 FM।
3: किसान साथियों, आज के कृषि कार्यक्रम के माध्यम से आप जानेंगे कैसे हम चारा प्रबंधन कर सकते हैं, चारा कैसे हमें उसका रखरखाव करना चाहिए, कहाँ इसकी जरूरत पड़ती है, कैसे इसका रखरखाव हम करें और इसको कैसे सड़ने से बचाएं, आदि महत्वपूर्ण जानकारियों को आज के इस कार्यक्रम में हम जानेंगे। साथ ही हम जानेंगे बागवानी के बारे में। जो भी किसान भाई अभी नई नई बागवानी लगाना चाहता है तो कैसे और किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, आदि जानकारियों को भी हम इस प्रोग्राम के माध्यम से जानेंगे। तो आपका ज्यादा वक्त ना लेते हुए चलिए शुरू करते हैं।
5: आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन, रेडियो टांटिया भील 90.8 FM। आपड़ो रेडियो, आपड़ी बातें।
3: किसान साथियों, चर्चा को शुरू करने से पहले हम आपको बता दें कि हमें चारा प्रबंधन करना क्यों आवश्यक है। किसान साथियों, आप सभी जानते हैं हमारे घरों में हम बेल हमारे घर में होते हैं, साथ ही दूध का उत्पादन के लिए हम गाय है, भैंस है, बकरी है, आदि आदि पशुओं का हम इस्तेमाल करते हैं हमारे घरों में, हमारे खेतों में, जिससे उसका खाद बना पाए, आदि जरूरतों के लिए हम हमारे हमारे घरों में पशुपालन करते ही हैं। तो उन सभी के लिए एक पोषण आहार की बहुत बहुत आवश्यकता होती है। तो किसान साथियों, हमें यहाँ पर बहुत ही जरूरी है कि हमारे पशुओं को हम पौष्टिक आहार दें ताकि हमारा पशु जो है वो स्वस्थ रहे और हमारे दूध उत्पादन में भी हमें भरपूर लाभ मिल सके।
5: सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन, रेडियो टांटिया भील 90.8 FM। आपड़ो रेडियो, आपड़ी बातें।
6: किसान भाइयों, जैसे ज्यादातर हमारे किसान भाई जो हैं वो पशुधन भी रखते हैं, और पशुओं में कुछ किसान भाई गाय रखते हैं, कुछ भैंस रखते हैं, कुछ गाय और भैंस दोनों रखते हैं। अगर हम कुल इसकी लागत का देखें, जो हमारी पशुधन में लागत आती है, उसमें 60-70% जो है उसके खान पान का हिस्सा रहता है। अब किसान भाइयों को ये चीज ध्यान रखनी चाहिए कि पशु के स्वास्थ्य को अगर सही ढंग से हमें मेंटेन करना है, वो दूध उत्पादन काफी समय के लिए लेना है, तो हरे चारे की इसके लिए बहुत उपयोगिता है। अभी जैसे बारिश का मौसम है तो हमें ध्यान रखना चाहिए कि हमें खेत का कुछ हिस्सा हमें चारे के लिए भी रखना है। काफी किसान भाई इसका ध्यान रखते हैं, और काफी किसान भाई ऐसे भी हैं जो कि खेत का जो बिल्कुल बेकार हिस्सा है उसको छोड़ देते हैं चारे के लिए। ऐसा नहीं करना चाहिए, हमें कुछ हिस्सा, अच्छा हिस्सा खेत का चारे के लिए पहले से तैयार करके रखना चाहिए। उसमें अच्छी सड़ी हुई गोबर की खाद वगैरह डाल के लगा के रखें। और अभी जो चारे हैं उसमें ज्वार सबसे मुख्य फसल है, और इसमें मल्टीकट ज्वार आती है, आपको बाजार में इसका अच्छा बीज भी मिल जाता है। इसके अलावा जहां पर थोड़ी पानी की कमी है वहां बाजरा लगा सकते हैं, और इसको संतुलित करने के लिए जैसे ये घास खुल के चारे हैं, और फिर आपका दलहनी चारे भी हैं जिसमें लोबिया मुख्य फसल एक है, तो ये दोनों अगर आप लगाते हैं तो जो पशु का जो एक प्रोटीन की जो आपूर्ति है वो भी सही ढंग से होने के लिए लोबिया जो दलहनी चारा है वो भी बहुत जरूरी है। तो हमें ज्वार भी लगाइए, और कुछ में आप लोबिया भी लगा सकते हैं, या दोनों के दो पंक्तियों के बीच में एक पंक्ति आप लोबिया की भी लगा सकते हैं, जिससे पशुओं को संतुलित आहार मिलेगा, उसका रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी अच्छा रहेगा और दूध उत्पादन भी उसका अच्छा होगा।
7: जी, तो चलिए देखते हैं जुड़े हमारी रिपोर्ट।
8: पशुओं का दूध बढ़ाने और वृद्धि दर को बनाए रखने के लिए चारा काफी जरूरी होता है। खासकर हरा चारा पोषक तत्वों का एक किफायती स्रोत है, साथ ही ये पचने में भी आसान होता है। चारे को ज्यादातर हरी अवस्था में पशुओं को खिलाया जाता है। कई बार जरूरत से ज्यादा चारे का उत्पादन हो जाता है, लेकिन वो इस्तेमाल ना होने पर खराब हो जाता है। ऐसे में चारे का प्रबंधन जरूरी है, जिससे पशुओं को साल भर चारा मिलता रहे। हरे चारे का संरक्षण और भंडारण अगर वैज्ञानिक पद्धति से किया जाए तो उनकी पौष्टिकता भी वैसे ही बनी रहती है। दरअसल साल के कुछ महीनों में चारे की ज्यादा उपलब्धता हो जाती है, जबकि कुछ महीनों में चारे की कमी हो जाती है, जिसके लिए चारा प्रबंधन काफी कारगर साबित होता है। इसके अलावा संरक्षित चारा खिलाने से पशु आहार में दाने की मात्रा कम करने में भी मदद मिलती है, और इस तरह पशुपालन में संपूर्ण आहार की लागत भी कम हो जाती है। चारा प्रबंधन करने से पूरे साल उच्च प्रोटीन और ऊर्जा मूल्यों के साथ उच्च सुपाच्य चारे की आपूर्ति उपलब्ध रहती है। हरे चारे के संरक्षण की मुख्यतः दो विधियां हैं। पहली हे बनाना और दूसरी साइलेज बनाना। हे बनाना विधि में घास को जानवरों के चारे के रूप में इस्तेमाल करने के लिए उसे काटा और सुखाया जाता है। सूखी हुई घास को हे कहते हैं। हे में पोषक तत्वों की मात्रा पैरा, भूसी या तुड़ी की तुलना में ज्यादा होती है। वहीं उच्च नमी की मात्रा वाली फसल का नियंत्रित अवायवीय किण्वन करने के बाद बनाए हुए उत्पाद साइलेज कहलाते हैं। साइलेज बनाना चारा संरक्षण का एक प्रभावी और सामान्य तरीका है। साइलेज को साइलेज पिट में तैयार किया जाता है। ऐसी फसलें जिनके तने बहुत मोटे होते हैं और उन्हें सूखने में काफी समय लगता है, उन्हें हे बनाने के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, बल्कि इनका इस्तेमाल साइलेज बनाने के लिए किया जाता है। कुल मिलाकर साल भर चारे की आपूर्ति बनाए रखने के लिए चारा प्रबंधन काफी जरूरी है।
3: किसान साथियों, जैसे कि आपने इस रिपोर्ट में सुना, हमें हमारे पशुओं के लिए एक पौष्टिक चारे की बहुत आवश्यकता होती है। हमारे दुधारू पशुओं के लिए हरा चारा बहुत ही आवश्यक होता है। अगर आप दूध का उत्पादन कर रहे हैं तो हमें कोशिश करनी है कि हरा चारा हम हमारे पशुओं को हरा चारा दे। साथ ही किसान साथियों, अभी जो बरसात का मौसम चल रहा है, हमें अभी भरपूर मात्रा में हरा चारा मिल सकता है, लेकिन समय के साथ फिर ये चारा जो होता है फिर सूख जाता है, तो उस समय हमें बड़ी समस्या होती है हरे चारे को लेकर। इसके लिए हमें पुनः हमारे खेतों में हरे चारे के लिए फिर से हमें फसल का डालना पड़ेगा। लेकिन उससे पहले कि अगर अभी हम जो हमारे आसपास अभी बारिश के समय में जो हरा चारा जो पौष्टिक चारा जो अभी उग रहा है उसे हम उसका प्रबंधन कर ले, जैसे कि हमें इस रिपोर्ट में हमने सुना कैसे दो विधियों के माध्यम से हम चारे को उसका प्रबंधन कर सकते हैं वैज्ञानिक विधि के द्वारा, और ये इस चारे की जो गुणवत्ता है वो बनी रहेगी। ऐसा नहीं है कि हम उसको काटने के बाद इसकी जो गुणवत्ता है वो कम हो जाएगी, लेकिन अगर हम वैज्ञानिक विधि से इसका इसकी कटाई करके उसको हम इसका प्रबंधन करते हैं तो ये इस चारे की जो पौष्टिकता है वो बनी रहेगी, साथ ही हमारे जो पशु है उनके उनको भरपूर पोषण मिल पाएगा।
5: आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांडा भील 90.8 FM, आपड़ो रेडियो आपड़ी बातें।
3: किसान साथियों, चलिए डालते हैं एक नजर बागवानी के ऊपर। हमारा जो किसान है, बागवानी बहुत सारे किसान करते हैं, तो कैसे करना चाहिए, किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और कैसे बागवानी हमारे लिए एक फायदेमंद सौदा बन सकती है, आइए जानते हैं और लेते हैं एक्सपर्ट की राय।
9: नमस्कार किसान भाइयों, जैसा कि आपको पता है कि आजकल किसान भाई अपनी आमदनी बढ़ाने के लिए बागवानी को एक विकल्प के रूप में देख रहे हैं, और बागवानी का जब बगीचा आप लगाने जा रहे हैं तो किसान भाई क्या करते हैं कि जैसे ही बरसात होती है तो आनन फानन में जो पौधे लाते हैं और उनको लगा देते हैं, लेकिन क्योंकि बगीचा लगाना एक लंबे समय का निवेश है और इसमें आपको जो है अपनी लगन और निपुणता के साथ साथ इसमें जो है उन्नत किस्में और क्वालिटी प्लांटिंग मटेरियल लगाना बहुत नितांत आवश्यक है, तो जब आप बगीचा लगाने जा रहे हैं तो उनमें किन किन बातों का मुख्य रूप से ध्यान रखना चाहिए ये आपको जानना बहुत जरूरी है। तो जहां आप बगीचा लगाने जा रहे हैं वहां की जो है मृदा और जल वो कैसा है, क्योंकि इन दोनों के ऊपर बहुत कुछ डिपेंड होता है आपके बगीचे की स्थापना का। तो जैसे कि आपकी अगर मृदा का पीएच मान है, जैसे हम डॉक्टर्स के पास जाते हैं तो सबसे पहले वो हमारी ब्लड टेस्ट में हीमोग्लोबिन देखता है, तो उसी तरीके से किसान भाइयों को पीएच उसी के रूप में काम करता है। अगर आपका पीएच जो है 7 से ऊपर है तो उसमें जो है जो फल वृक्ष है उनका चुनाव अलग होगा, 8 है 9 है तो वो अलग होगा, उसकी विद्युत चालकता कितनी है जल की, उनका जो है उन कौन से फल वृक्ष उसके लिए सुटेबल होंगे वो उनका अलग अलग होगा। अब जैसे आप मान लीजिए कि 5 से 7 के बीच में है आपका पीएच, तो इनमें आप जा सकते हैं, आम हो गया, नींबू हो गया, लेकिन अगर आपका पीएच है मृदा का वो 8 से ऊपर भी जा रहा है तो उन क्षेत्रों पे हम किसान भाई जो है बेर बेल आंवला उस तरीके के फल वृक्षों की स्थापना करेंगे तो उनको आमदनी में बढ़ोतरी होगी।
7: जी, तो चलिए देखते हैं इससे जुड़ी हमारी रिपोर्ट कि कैसे नए बागों की स्थापना की जाए, कैसे हमारे किसान की आय इससे बढ़ सके।
8: ये समय नए फल बाग लगाने के लिए एकदम सही है। ऐसा माना जाता है कि मानसून के मौसम में गर्मी के साथ नमी यानी उमस होती है जो पौधे की जड़ों को अच्छी तरह फैलने में मदद करती है। वैसे तो नए बाग लगाने की तैयारी जून महीने में की जाती है, लेकिन जो किसान उस समय तैयारी नहीं कर पाए वे इस समय सदाबहार फल वृक्षों के बाग लगा सकते हैं। किसान इस समय आम नींबू वर्गीय फल और अमरूद लगा सकते हैं। किसान अपने इलाके को ध्यान में रखकर ही अच्छी किस्मों के पौधे लगाएं। बाग लगाने से पहले कुछ बातों का ध्यान रखना जरूरी है। किसान मिट्टी की जाँच जरूर कराए, मिट्टी बलुई दोमट होनी चाहिए, साथ ही इसमें पानी नहीं रुकना चाहिए। ऐसी मिट्टी का चयन करें जिसकी जल धारण क्षमता अच्छी हो और जिसमें पानी लंबे समय तक नहीं रुकता हो। मिट्टी की जांच कराने के बाद आपको पता चल जाएगा कि आपकी जमीन बाग लगाने लायक है या नहीं। अच्छा बाग लगाने के लिए किसान फलों की उन्नत किस्मों का ही चयन करें। फलों के बाग लगाने के लिए स्वस्थ और बेहतर किस्म की रोपण सामग्री का इस्तेमाल करें। आम के नए बाग लगाने की तैयारी पहली बारिश से ही शुरू कर देनी चाहिए। आम की बागवानी हर तरह की मिट्टी में की जा सकती है। नए बाग तैयार करने के लिए आम की गुठलियों को जून जुलाई में बो दिया जाता है। वहीं अमरूद के बाग लगाने के लिए भी हर तरह की मिट्टी अच्छी होती है। इसके बाग लगाने के लिए कलम तैयार करने के लिए 1 महीने की आयु वाले इकहरे आरोह का चयन किया जाता है। मूल वृंद और कलम को 4 से 5 सेंटीमीटर लंबा काटकर दोनों को जोड़कर अल्काथीन की एक पट्टी से लपेट दिया जाता है। जब कलम से अंकुर निकलने लगे तो मूल वृंद से अलग करके उसे लगा दिया जाता है। इसके अलावा नर्सरी में तैयार पौधों को जुलाई अगस्त में रोपे। नए बागों में नमी बनाए रखने के लिए समय समय पर सिंचाई करें। किसान चाहे तो सिंचाई के लिए टपक विधि का इस्तेमाल भी कर सकते हैं।
3: किसान साथियों, जैसा कि इस रिपोर्ट में आपने सुना, हमें हमारी मृदा और पानी का परीक्षण करवाने की आवश्यकता है और हमें देखना है कि हमारी मृदा और पानी का जो पीएच मान है वो कितना है, उसके हिसाब से हमें हमारे खेतों में हमारी जमीन में पौधों को लगाने की आवश्यकता है। किसान साथियों, जो पौधा अगर हम पीएच और हमारी मृदा का और पानी का जो पीएच लेवल है उसको अगर हम देख के हमारे खेतों में पौधों को लगाएंगे तो उनकी पैदावार, उनकी जो ग्रोथ है, उनकी जो बढ़वार है वो अच्छी होगी और साथ ही हमें जो फल है वो भी अच्छी मात्रा में फल मिल सकेंगे। साथ ही किसान साथियों, हमें यहाँ पर टपक विधि और सिंचाई के कौन कौन से साधन का इस्तेमाल करना चाहिए वो भी हमने, जैसे कि इस रिपोर्ट में सुना कि हमें टपक विधि का

0: इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि हमारा जो पौधा होता है वो समय के साथ उसमें पानी की जो मात्रा है उसे हमें बढ़ाने की आवश्यकता है।
1: आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांडिया भील 90.8 FM। आपरो रेडियो आपरी बातें।
0: किसान साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि अभी जो हम सिंचाई पद्धति का इस्तेमाल कर रहे हैं वो हम हमारे कुओं से, नदी से या जल स्रोतों से, जहां से भी हम पानी अभी ले रहे हैं मोटर के माध्यम से हम लेते हैं और सीधा हमारे खेतों में अनावश्यक रूप से उसको अनावश्यक रूप से वहां पर सिंचाई करना शुरू कर देते हैं, तो इससे कहीं ना कहीं हमारे जल स्रोतों का जो स्तर है, पानी का स्तर है, वो भी कम होता है और जितना अनावश्यक पानी खेतों से बाहर निकल के चला जाता है और यहाँ पर हमको पौधों को उपयुक्त समय पर पानी देने की आवश्यकता होती है, ना कि एक ही बार में ज़्यादा पानी हम डाल देते हैं और एक सप्ताह तक फिर हमें देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो यहाँ पर जो पौधा है उन्हें हमें हर दिन और जितना आवश्यकता अनुसार पानी देने की आवश्यकता होती है। इन्हीं सभी बातों का हमें ध्यान रखकर जो हमारे नए किसान हैं वो अपनी बागवानी को अच्छे से अच्छा बना सकते हैं। किसान साथियों, अभी आपने बागवानी से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण चीजों को जाना है, समझा है, सुना है, तो अभी आइए थोड़ा सा पुनः रुक करते हैं चारा प्रबंधन के ऊपर। कौन कौन सी फसलें हमें लगानी चाहिए चारे के लिए, कौन सी फसलें का हम इस्तेमाल कर सकते हैं, कौन सी ज्यादा पौष्टिक वाली फसलें हैं जिनका हम इस्तेमाल करके उनको प्रबंधन के लिए रख सकते हैं, आदि बातों को आइए जानते हैं और लेते हैं यहाँ पर एक्सपर्ट की राय।
2: जैसे मैंने पहले ही बताया, जो हमारे खेती की जमीन है उसमें चारा फसलों में सीजन के हिसाब से अलग अलग फसलें हैं। जैसे खरीफ की बात करेंगे, जो अभी सीजन खरीफ का सीजन चल रहा है, बारिश का सीजन है अभी, इसमें ज्वार है, बाजरा है, मक्का है, ये फसलें आप चारा फसलों के अंदर ले सकते हैं। जैसे मैंने बताया कि जहां थोड़ा सा पानी की कमी हो वहां बाजरा की फसल लीजिए, और जहां भरपूर पानी है, पानी की अच्छी सुविधा है, वहां पर आप ज्वार की फसल लीजिए, क्योंकि उसमें आपको ज्यादा उत्पादन मिलेगा। अब इसके अंदर जैसे घास कुल की फसलें हैं, जो ज्वार है, बाजरा है, मक्का है, ये घास कुल की फसलें हैं, लेकिन दलहनी चारों में हमारे को लोबिया की फसल इसमें लेनी है। और अगर रबी की बात करें, जब सर्दी का मौसम होता है, तो उसके अंदर मुख्य फसल बरसीम है, और जहां ज्यादा सर्दी पड़ती है वहां बरसीम की फसल ले सकते हैं, जैसे पंजाब है, हरियाणा है, उत्तर प्रदेश है, बिहार है। लेकिन जहां थोड़ा सा टेम्परेचर ज्यादा रहता है, जैसे राजस्थान है, गुजरात है, आपका पश्चिमी राजस्थान का हिस्सा है, आप वहां रिजका की फसल ले सकते हैं, जो दलहनी चारे हैं। लेकिन वहां घास कुल में आप जई की फसल भी ले सकते हैं, जो कि काफी तेजी से इसका एरिया बढ़ रहा है, क्योंकि आपको ज्यादा मात्रा में चारा चाहिए, तो जो रबी की फसल में आप जई की फसल लगा सकते हैं। भारतीय चारागाह अनुसंधान संस्थान झांसी में है, काफी अच्छी किस्में इन लोगों ने निकाली है। इसके अलावा जो हमारे कृषि विश्वविद्यालय हैं वहां से भी किस्में काफी निकली हुई हैं। किसान भाई अपने नजदीक के कृषि विज्ञान केंद्र में संपर्क करेंगे तो उनको अपने क्षेत्र के हिसाब से अच्छी किस्मों का बीज वहां से मिल जाएगा, और वो मेरी उनसे यही प्रार्थना है कि अपने खेत में कुछ हिस्सा, अच्छा हिस्सा चारे के लिए जरूर छोड़ें, क्योंकि जो पशु का स्वास्थ्य है वो हरे चारे पर बहुत ज्यादा निर्भर करता है। ज्यादातर किसान क्या करते हैं, जब पशु दूध नहीं देता है तो उसको हरा चारा खिलाना बंद कर देते हैं, वो बहुत गलत बात है, क्योंकि जब भी आगे गाय वापस से दूध देना चालू करेगी तो वो जो टाइम गैप होगा, जब हरा चारा आपने नहीं खिलाया उसको, तो उसके अंदर आपका पशु का स्वास्थ्य भी बिगड़ेगा और दूध उत्पादन भी अच्छा नहीं होगा। तो उसे हमेशा ध्यान रखना है कि हरे चारे को बिल्कुल खिलाना बंद नहीं करना है, भले आप थोड़ा खिलाइए लेकिन आप पशु को चारा जरूर दीजिए, और दोनों सीजन में आप चारा फसल के लिए अपने खेत को तैयार कीजिए। इसके अलावा बहुवर्षीय घासें भी हैं, अभी काफी तेजी से इनका एरिया बढ़ रहा है, जिसमें हाइब्रिड नेपियर घास है, और आपका जहाँ सिंचित क्षेत्र है वहां पर बाजरा नेपियर हाइब्रिड घास का एरिया काफी तेजी से फैल रहा है पूरे देश।
1: आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांडिया भील 90.8 FM। आपरो रेडियो आपरी बातें।

0: पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांडिया भील 90.8 FM। आपड़ो रेडियो आपड़ी बातें।
1: किसान साथियों, जैसा कि आप और हम में से काफी किसान ऐसे हैं जो फलों की खेती करते हैं और जिसमें अमरूद और पपीता काफी मुख्यतः अपने झाबुआ जिले में इसको किया जाता है, तो हम देखते हैं कि कहीं पर वो पिंकिश कलर का जो अमरूद आता है उसकी कौन सी किस्म है वो जानेंगे। साथ ही हम जानेंगे कि पपीते में कौन कौन सी किस्में आती है, कौन सी किस्म की पपीते हमें लगाने चाहिए। कभी कभी होता है हम आनंद फानंद में ले आते हैं बहुत सारे पौधे, लेकिन कुछ पौधे खराब निकल जाते हैं, तो उसका चुनाव हमें कैसे करना चाहिए और कौन सी किस्मों के पौधों को हमें लेना चाहिए, कौन सी किस्में हैं, उनके नाम आदि सब कुछ जानेंगे और लेंगे यहाँ पर एक्सपर्ट की राय।
2: किस्मों के बारे में जानना चाहा तो अमरूद की जो किस्में हैं वो इलावा सफेदा है, सरदार है, श्वेता है, ललित है। ललित जो कि उसका पिंक फ्लैश होता है और ये श्वेता है उसका एकदम सफेद होता है, तो उस तरीके की किस्मों पे आप जा सकते हैं। और पपीता का रहा सवाल, तो पपीता की जो उन्नत किस्में हैं उसमें आप, क्योंकि पपीता नर और मादा पौधे हैं वो अलग अलग होते हैं, तो आपको जो है उभयलिंगी किस्मों का चुनाव करना बहुत अत्यंत आवश्यक हो जाता है। तो इसके लिए आप जैसे रेड लेडी हो गया, सिंटा, पूसा डिलीशियस, पूसा जायंट, इस तरह की किस्मों का चुनाव करेंगे तो आपको उस तरीके की समस्या नहीं होगी। नहीं तो क्या होता है कभी कभी, क्या किसान भाई बीज तो ले आते हैं और उसके बाद में वो कहते हैं कि इसमें तो हमारे पपीता ही नहीं आ रहे हैं, तो उसमें प्रॉब्लम हो जाती है कि वो नर पौधा है या मादा पौधा है। तो उसमें उभयलिंगी पौधा होगा तो इन किस्मों में जो उभयलिंगी किस्म के पौधे होते हैं जिससे कि उनका फलन और पुष्पन अच्छा होता है, तो इनको आप लगाएंगे तो ज्यादा अच्छा होगा। और पपीता के बारे में जैसे मैं अभी कहूंगा कि जैसे बरसात का मौसम आया हुआ है, तो पपीता अगर आपका क्षेत्र जैसे मध्य प्रदेश से बात कर रहे थे वहां तो पाले की समस्या नहीं होगी, लेकिन जहां जिस एरिया में पाले की समस्या है वहां पे जो है पपीता का आप चुनाव ना करें। और अभी भी बरसात के मौसम में थोड़ा सा रुकेंगे अगर आपके पास सिंचाई की सुविधा है तो, क्योंकि इसमें अभी जो डैम्पिंग ऑफ है, आद्र गलन वाला रोग होता है शुरू में, तो उससे बचाया जा सकता है आपको। तो अभी थोड़ा सा आप पपीता, अमरूद को तो आप सर्वोत्तम समय है लगाने का, लेकिन पपीता को थोड़ा सा और शिफ्ट करेंगे अगस्त के लास्ट में या सितंबर तक, तो ज्यादा अच्छा रहेगा आपके।
1: किसान साथियों, अभी आपने जाना कि जो अमरूद लगाने का ये सर्वोत्तम समय चल रहा है, यह सबसे उचित समय है कि जहां पर हम अपने अमरूद को लगा सकते हैं, और जो पपीते की फसल लेना चाहता है वो थोड़ा सा यहाँ पर उसे सब्र की आवश्यकता है, थोड़ा सा थोड़ा समय और उसको इंतजार की आवश्यकता है, उसके बाद वो भी हम पपीता लगा सकते हैं। तो किसान साथियों, इसी के साथ पुनः हम रुक करते हैं चारा प्रबंधन को लेके। चारा प्रबंधन को लेके हम कुछ महत्वपूर्ण जानकारियों को सुन रहे थे, आइए उसे जारी करते हैं।
3: जो फसलें हैं, जो चारे की फसलें हैं, आप ज्वार लगा सकते हैं वहाँ। और सबसे ज्यादा जो अपने देश में अगर इसका ज्वार का बीज आता है तो हैदराबाद से ही आता है वो, या कहीं भी नजदीक में आपके जो भी कृषि विज्ञान केंद्र है वहां से भी मिल जाएगा। इस सीजन में आप ज्वार लगा सकते हैं, आप मल्टीकट ज्वार लगाइए जिसको कि आप एक बार से ज्यादा बार काट सकते हैं। और दूसरा, अगर आपके पास कोई ऐसी जमीन है जिसके अंदर कि आप अपने खेती के लिए, जो अच्छी जमीन है वो खेती के लिए काम में लेना चाहते हैं, लेकिन थोड़ा बंजर टाइप जमीन है, तो आप उसमें घासें भी लगा सकते हैं। तो घास वाली फसलों में आपका सेनक्रस एक ग्रास है जिसको हिंदी में अंजन बोलते हैं, और स्टाइलो एक घास है, दलहनी घास है। ये दोनों घास के बीज को आप जो थोड़ी बंजर टाइप जमीन है उसके अंदर लगा सकते हैं, तो वो आपके दोनों घास जो है बहुत साल तक चलती हैं, आपकी कम से कम 4-5 साल तक आपको चारा मिलता रहेगा। एक बार शुरू में आप 5-6 महीने तक उसको नहीं काटिए, लेकिन बाद में आप उसको जैसे ही बारिश होगी तो 30-40 दिन के एक अंतराल के बाद में गैप पर आप उसको काट सकते हैं। और अगर बहुत ज्यादा मात्रा में घास अगर हो गई है उसमें तो आप काट के सुखा भी सकते हैं, जैसे अभी चैनल में बताया गया, ज्यादा मात्रा में घास है तो आप काट के सुखा लीजिए, और जब आपके पास चारा नहीं है उसमें आप पशुओं को उसके अंदर दाना मिला के उसको खिला सकते हैं। तो इस तरह से आप जो अपनी अच्छी जमीन है उसका भी उपयोग कर सकते हैं, और थोड़ी बेकार जमीन है उसका उपयोग भी कर सकते हैं। ग्राम सभा में या हर गांव में कुछ ऐसी जमीनें भी होती हैं जो बंजर टाइप की होती हैं और चरागाह के लिए सरकार छोड़ती है, तो उन चरागाह की जमीनों का विकास ही बहुत जरूरी है। हमने ये पाया है कि जहां जागरूक किसान है और ग्राम सभा बहुत एक्टिव है, प्रधान बहुत एक्टिव है, तो आप लोग जागरूक रहिए। उन चरागाह की जमीनों में भी जो पेड़ लगे हुए हैं उसके बीच में जो मैंने घासें बताई ये आपकी अंजन घास है या स्टाइलो घास है, दक्षिण भारत में भी बहुत अच्छी तरह से होती है, वहां के लिए वैरायटीज हैं। इन घासों को लगाने पर आप जोड़ दीजिए और बारिश के सीजन में लगाइए, जिससे इनका बीज जम जाएगा। और आपके पशु का काफी पशु ऐसे भी होते हैं जो चरागाह में चरने जाते हैं, कुछ पशु ऐसे हैं जो घर में ही लोग अपना पशुओं को चारा और दाना देते हैं, लेकिन खास करके जैसे भेड़ है, बकरी है, गाय वगैरह है, इनको लोग चरागाह में चराने ले जाते हैं। और अच्छी वैरायटी अगर घास होगा तो इन पशुओं को भी फायदा होगा। स्पेशली जो गरीब किसान हमारे हैं, भूमिहीन हैं या छोटे किसान हैं, उनके पास में जमीन नहीं होती या बहुत कम जमीन होती है चारे के लिए, जमीन वो छोड़ नहीं पाते हैं। तो चरागाह का अगर अच्छा विकास आप लोग कर लेते हैं, जैसे मैंने बताया दोनों तरह की घास, सेंक्रस घास भी और स्टाइलो भी आप लगाइए, उसके अंदर बहुत अच्छी बाजरा नेपियर हाइब्रिड है, क्योंकि वहाँ बारिश काफी अच्छी होती है मध्य प्रदेश के अंदर। तो इसलिए मैं ये किसान भाई को कहना चाहूंगा, जो हमारे भी एक्सपेरिमेंट किए हैं वहाँ पर और प्रचार किया हम लोगों ने, तो वहाँ बहुवर्षीय चारों में आप ज्यादा से ज्यादा बाजरा नेपियर हाइब्रिड को लगाइए, अगर आपके पास में पानी की सुविधा सिंचाई की है तो। क्योंकि क्या होता है, जैसे बारिश के मौसम में तो ठीक है, बाद में सर्दियों के मौसम में थोड़ा इसका ग्रोथ कम होती है बाजरा नेपियर हाइब्रिड की, थोड़ा आपको संयम रखना पड़ेगा, नहीं तो आपको साल के 10 महीने तक अच्छा चारा इससे प्राप्त होगा। और थोड़ा अगर पानी का जैसे अरेंजमेंट आपका नहीं होता तो गिनी घास है, गिनी घास भी बाजरा नेपियर हाइब्रिड की तरह ही एक बहुवर्षीय घास है, ये आपका बीज से भी हो जाता है और इसकी जड़ें भी लगती हैं। तो आप इसमें 50x50 सेंटीमीटर या 2 फीट के गैप पर जो है खेत अच्छा तैयार करके उसमें आप ये घास की जड़ें लगा दीजिए, आपके कम से कम 30 से 35 हजार जड़ें 1 हेक्टेयर के अंदर लगेंगी और पूरे वर्ष आपको इसे चारा मिलेगा, पूरे वर्ष इसे चारा मिलेगा, आपको बार बार बीज की व्यवस्था करने की जरूरत नहीं है। और ये दोनों बहुवर्षीय घास मैंने बताई, सिंचित क्षेत्र में बाजरा नेपियर हाइब्रिड, और जहां थोड़ा सिंचाई की सुविधा नहीं है, रेनफेड एरिया है, तो गिनी घास, सुडान घास आपने बताया वो भी लगा सकते हैं। तो इससे आपको कम से कम नहीं तो 800 से 1000 क्विंटल चारा जो है पूरे वर्ष में आप इससे ले सकते हैं, 8 से 10 एक 30-40 दिन के गैप पर जो है आप जो है चारा काट सकते हैं।
0: आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांडिया भील 90.8 FM, आप रेडियो आपकी बातें।
3: तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा, जैसे मैंने पहले किसान भाई को बताया, आपके एरिया के अंदर जो बहुवर्षीय चारा जैसे मैंने बताया जो बाजरा नेपियर हाइब्रिड है, ये काफी तेजी से वहां फैल रहा है, आप अपने एरिया को थोड़ा एरिया उसमें डेडिकेट कीजिए, आपके खेत का जो एरिया है उसके अंदर बहुवर्षीय चारा लगाइए बाजरा नेपियर हाइब्रिड, क्योंकि बारिश काफी अच्छी होती है आपके उधर, बारिश काफी अच्छी होती है, पानी की कमी नहीं है वहां पर, तो आपको पूरे वर्ष बहुत अच्छा चारा प्राप्त होगा। इसके अलावा ज्वार, अगर आप अपना खेत को पूरे हर सीजन के लिए एंगेज नहीं करना चाहते, आप ज्वार लगाइए, उसमें एमपी चरी है, मल्टीकट ज्वार की काफी वैरायटीज हैं, उसको लगाइए, और सर्दी के मौसम में बरसीम लगाइए उसके अंदर दलहनी चारों के अंदर, और जई भी वहां अच्छा उत्पादन देती है। इस तरह से आप अपने खेत का हिस्सा बांट लीजिए, कितने हिस्से में आपको बहुवर्षीय चारे लगाने हैं और कितने हिस्से में आपको एक वर्षीय चारे लगाने हैं, क्योंकि कई बार समस्या क्या आती है कि जो खेत खाली होता है तो वहां पूरे गांव में जो जानवर छोड़ दिए जाते हैं, तो काफी किसान इंटरेस्ट नहीं लेते हैं कि हम बहुवर्षीय चारा नहीं लगाएंगे, हमारा खेत नष्ट हो जाएगा। तो आप ज्वार लगाइए खरीफ के मौसम में, और लोबिया लगाइए दलहनी चारे के रूप में, और रबी के मौसम में बरसीम लगाइए और जई लगाइए। लेकिन अगर आपका थोड़ा फेंसिंग वगैरह की व्यवस्था है तो आप बाजरा नेपियर हाइब्रिड भी लगा सकते हैं, जो पूरे वर्ष आपको अच्छा चारा देगा, सिर्फ जब आपको पानी कमी होगी उसमें सिंचाई की व्यवस्था करने की जरूरत है, नहीं तो आपका जो बारिश से जो पानी मिल रहा है उससे भी उसे काम चल जाएगा।
1: इसी से मिलता जुलता एक और सवाल हम यहाँ पर करना चाहेंगे कि जो पानी का जो पीएच लेवल है वो थोड़ा सा ज्यादा है, पानी थोड़ा सा खारा आ रहा है, तो यहाँ पर हमें कौन से चारे का इस्तेमाल करना चाहिए, कौन सा चारा हमें लगाने की आवश्यकता है?
3: देखिए, आपके यहाँ जो पाली में पानी है थोड़ा पीएच ज्यादा है, मेरे को मालूम है सेलाइन वाटर वहां पर है, तो कुछ ग्रासेज हैं, घासें जैसे हैं, जैसे अंजन घास है, आप ये लगा सकते हैं। एक बार आप थोड़ा वहां काजरी एक संस्था है जो पाली में सेंटर भी इसका है, वहां से थोड़ा संपर्क कीजिए, कुछ वैरायटी ऐसी हो जो वहां सस्टेन कर जाए, नहीं तो घास काफी अच्छी होती है सेलाइन वाटर के अंदर। एक समस्या आती है कि जर्मिनेशन में बहुत समस्या आती है, तो अंजन घास वहां काफी अच्छी होती है, उसको आप वहां पर लगा सकते हैं, उससे भी आपको पूरे साल अच्छा चारा मिलेगा।
0: आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांडिया भील 90.8 FM, आप रेडियो आपकी बातें।
3: हाँ किसान भाइयों, अभी जैसे सरकार के काफी प्रोग्राम चल रहे हैं जिसमें हमारा काफी बड़ा क्षेत्र जो है उद्यान की फसलों में जा रहा है, तो इसमें एक समस्या आती है कि जो उद्यान की फसलें हैं, जो पेड़ हैं, वो काफी साल तक चलते हैं। आपका एक पेड़ लगा है 20-25-30 साल तक चलता है। अब एक समस्या आती है कि इस पेड़ों के बीच का जो गैप है, कम से कम 10-12 फीट का गैप रहता है, इसमें हम क्या कर सकते हैं, कौन सी फसलें लगा सकते हैं? तो इसमें सबसे अच्छा मैं कहूंगा, शुरुआत में जब पौधों की हाइट बहुत कम होती है, उसमें आप जो चारे की फसलें जैसे मैंने बताई, आपका ज्वार है या बाजरा है या बरसीम है या आपका सर्दी में रिज़का है, ये फसलें आप लगा सकते हैं। लेकिन क्या होता है, जैसे जैसे पेड़ की हाइट बढ़ती जाती है, उसकी छाया का प्रभाव पड़ता है, तो फसलों के उत्पादन पर भी इसका असर आता है। उसमें हम ये कहेंगे, जैसे पेड़ की हाइट ज्यादा है, पुराने बगीचे हो गए हैं, तो उसके बीच में आप गिनी घास, जो शेड लविंग बोलते हैं, जो छाया में भी अच्छा उत्पादन देती है, आप गिनी घास लगा सकते हैं। जो भी पानी पेड़ों को मिल रहा है उसी पानी से वो हो जाएगी, बारिश के पानी से भी वो सर्वाइव कर जाती है। इसके अलावा आपका राजस्थान के अंदर जैसे फलों के बगीचे हैं, तो आप सेंक्रस अंजन घास है वो लगा सकते हैं, स्टाइलो लगा सकते हैं, या 2-3 लाइन आपकी सेंक्रस के लगाइए, बीच में 2 लाइन आप स्टाइलो के लगा दीजिए, तो इससे आपको दलहनी और जो घास कुल की दोनों घासें आपको मिलेंगी और पशुओं को बहुत अच्छा चारा आपको प्राप्त होगा। एक तरह से आप फलों से आपको आमदनी हो रही है और आपको बीच में जो घास है वो अतिरिक्त आमदनी प्राप्त होगी। न केवल आपका पशुओं का स्वास्थ्य ऐसे सुधरेगा, आपका जो पशुओं का जो बजट खर्चा है उसमें कमी आएगी, आप उसको बेच के अपना अतिरिक्त आमदनी भी कर सकते हैं इससे।
0: सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांडिया भील 90.8 FM, आपड़ो रेडियो आपड़ी बातें।
1: किसान साथियों, हम लगातार चारे को लेकर चर्चा कर रहे हैं। किसान साथियों, हम कौन सा चारा जो होता है जो 12 महीने हमको मिल सकता है, और हाँ बिल्कुल, हमको चारे की बहुत ही आवश्यकता है। हमारे सभी के घरों में अधिकतर पशु मिलते हैं, दूध उत्पादन हम करते हैं, साथ ही उनके गोबर से जो हमारी मृदा है उसका संरक्षण होता है, उससे जो खाद बनाई जाती है उससे हमें जैविक खेती में, प्राकृतिक खेती में बहुत ही उपयोगी साबित होता है। तो कहीं ना कहीं हमें पशुओं की बहुत आवश्यकता है, तो पशुओं के लिए चारे की हमें उतनी ही आवश्यकता पड़ती है। तो किसान साथियों, हम लगातार ये जान रहे हैं कि कौन सी जो घास है वो अति उत्तम होती है, कौन सी घास हमें कौन सी जमीन में हमें लगानी चाहिए, साथ ही कौन सी गुणवत्तापूर्ण घास होती है, और इस घास का हम प्रबंधन कैसे कर सकते हैं। अभी जो मौसम चल रहा है, अभी ऑन सीजन है जहाँ पर हमें अधिकतर चारा मिल सकता है, लेकिन जब ऑफ सीजन होता है उस समय हमें घरे चारे की काफी दिक्कत होती है। जिसके पास मोटर है वह हरे चारे की फसल को डाल के वहां पर अपनी फसल को कर सकता है, लेकिन यहाँ पर जिन किसान भाइयों के पास फसल की पानी का जो प्रबंधन उतना अच्छा से नहीं है, वो किसान भाई कैसे इस समय में चारे का प्रबंधन कर सकते हैं और कैसे इस चारे को लंबे समय तक अपने संग्रहालय में रख सकते हैं, ताकि समय आने पर हमारे पशुओं को एक उपयुक्त और पौष्टिक आहार हम दे सकें। इससे जुड़ी हुई और भी महत्वपूर्ण जानकारियों को जानेंगे, और आइए यहाँ पर हम लेते हैं कुछ एक्सपर्ट की राय, कैसे हम हमारे चारे का और अच्छे से इसका प्रबंध

0: उस करा के वैज्ञानिकों ने एक नया प्लांट टाइप निकाला बाजरा नेपियर हाइब्रिड, और पूरे भारतवर्ष में उत्तर भारत में भी आपका जितनी भी कृषि विश्वविद्यालय हैं और दक्षिण भारत में भी अलग अलग वैरायटीज उन एरिया के हिसाब से निकाली जा चुकी हैं। कोयम्बटूर से भी अच्छी वैरायटी निकली है, हमारा चरागाह अनुसंधान संस्थान झांसी से भी निकली है, धारवाड़ से भी अच्छी वैरायटी निकली है, पंजाब हिसार से भी निकल चुकी है। अपने क्षेत्र के हिसाब से आप लोग वैरायटी का चयन करके और खेत का कुछ हिस्सा आप इसमें बहुवर्षीय चारों के लिए आप दे सकते हैं। इसके अलावा काफी ऐसे भी ट्रायल किए गए हैं जिसके जरूरी नहीं कि आप पूरा क्षेत्र अपना खेत का जो है बहुवर्षीय चारों में दे दीजिए। आप उसमें एक ट्रैक्टर क्रॉस कर जाए 10 फीट का गैप रख के आप कुछ पंक्तियां बहुवर्षीय चारों की लगा सकते हैं, और बीच में सीजन के हिसाब से जैसे आपका खरीफ में ज्वार लगा दीजिए, आप लोबिया लगा दीजिए, और रबी सीजन में बरसीम लगा दीजिए, या आप कुछ एरिया ऐसा भी है जहां ज्यादा ठंड नहीं पड़ती जैसे मैंने कहा राजस्थान या गुजरात का एरिया है, हमारे इसका भी लगा सकते हैं उसके बीच में आप जो है। इसके अलावा जई भी लगा सकते हैं, तो आप बहुवर्षीय चारों का फायदा भी उठा सकते हैं, और जो एनुअल क्रॉप फोटो क्रॉप बोलते हैं, एक वर्षीय चारे बोलते हैं, उसका फायदा भी उठा सकते हैं। पूरे वर्ष भर आप ऐसा प्लान बना सकते हैं जिससे आपको हरा चारा मिलता रहेगा, पोषक तत्व मिलते रहेंगे। और एक बात और है कि अगर आपके यहाँ बहुवर्षीय चारों की फसल लगी हुई है तो आप अपनी लागत जो दूध की लागत आती है जो उत्पादन की पशुओं की उसको भी आप घटा सकते हैं, और पशु का स्वास्थ्य भी इससे काफी बेहतर होता है।
1: सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांडिया भील 90.8 FM। आप रेडियो आपकी बातें।
2: हमारा किसान जो है आम का बहुत ही बड़ा शौकीन है, तो आइए जानते हैं आम से जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण बातों को, कैसे और कहां से हमें पौधा लेना चाहिए और कौन सा पौधा अच्छी किस्म का होता है और किस पौधे से हमें ज्यादा से ज्यादा फल मिल सकते हैं। तो आइए जानते हैं और लेते हैं यहाँ पर एक्सपर्ट की राय।
3: आप बाग लगाना चाहते हैं तो वहाँ आप पहले जैसे मैंने शुरुआत में कहा था वहाँ की जो मिट्टी और जल का आप जो है परीक्षण करवा लें, और उसके बाद में आप जाएं और उसमें जो उन्नत किस्में हैं वो, क्योंकि आम में अनियमित फलन और पुष्पन की समस्या होती है, जो नियमित फलन देती हैं वो जो हाइब्रिड किस्में हैं जैसे आपकी आम्रपाली हो गई, मल्लिका, इस तरह की किस्मों का आप चुनाव करेंगे तो उसमें अच्छा होगा। और क्योंकि जो इनके जब वृक्षारोपण भी आप करने जा रहे हैं तो आम में कुछ किस्में ऐसी हैं जैसे आम्रपाली है, और तो ये जो है इसको सघन बागवानी में भी आप लगा सकते हैं, तो इनकी जो दूरी होगी पौधे से पौधे की वो जो है 2 से 3 मीटर रख सकते हैं। लेकिन जो दूसरी किस्में हैं जो उनका जो छत्रक का विकास है वो ज्यादा क्षेत्र में होता है, तो उनके लिए आपको कम से कम 8x8 मीटर की दूरी रखनी पड़ेगी। और अगर आपने गड्ढे नहीं खोदे हैं तो इस साल एक्चुअली इनका जो आपको लगाने चाहिए बाग, उनका गड्ढों का खोदने का सही समय जून का है, तो जून में जब आप गड्ढे खोदेंगे 1 महीने के लिए उनको खाली छोड़ देंगे, और 1 महीने में जैसे ही आपने वो गड्ढे खोदे हैं तो उसके अंदर जो मिट्टी निकली है उसकी आधी मिट्टी और आपके जो सड़ी अच्छी तरीके से सड़ी गली गोबर की खाद, और अगर आपके वहां कोई दीमक की समस्या है तो दीमक की जो दवा है क्लोरोपाइरीफॉस उसको 100 ग्राम उसमें मिला करके, और इन मिट्टी गोबर की खाद और क्लोरोपाइरीफॉस को अच्छी तरीके से मिला लेंगे, कुछ ट्राइकोडर्मा भी डाल देंगे और उसको भर देंगे आपने जब गड्ढा खोदा है उसके 15 से 20 दिन बाद में, और भरने के बाद में उसको पानी दे देंगे जिससे क्या होगा कि जो इसकी हीट होगी अंदर की वो उससे निकल जाएगी। अदरवाइज जैसे आपने गड्ढा भरा और उसमें तुरंत आपने पौधा लगा दिया तो उसमें जो है पौधे की मोर्टेलिटी की संभावना होगी, तो वो 10 दिन पहले करीब उसको अच्छी तरीके से भर दें, और जब आप ये उन्नत किस्में लें, लेकिन सबसे पहले आप ये बात का भी ध्यान रखें कि ये उन्नत किस्में लेंगे कहाँ से, तो जहां से आप लेने जा रहे हैं या तो आप जो है भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली या फिर आप जो है कोई जो कृषि विश्वविद्यालय है या नजदीकी कृषि विज्ञान केंद्र है वहां से ही कलमी पौधे लें। अगर वहां पे भी आपको सुनिश्चित नहीं हुआ है कि हमें पौधा नहीं मिला है तो जो नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड है राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड उसकी एक्रेडिटेड नर्सरी जो प्रमाणित नर्सरी है जिनकी 3-स्टार रेटिंग है उनसे पौधा लें, तो उससे क्या होगा कि आपका ये सुनिश्चित हो जाएगा कि ये पौधा फला किस्म का ही है। अदरवाइज क्या होता है कि बाहर आनंद फानन में जब हम पौधा खरीदते हैं तो बाहर से जो पौधा लिया उसका कोई पता ही नहीं है कि वो कौन सी किस्म का है, और बाद में जो है वो बीजू पौधे से तैयार होते हैं तो उसमें जो है फलन काफी देर बाद में होता है, तो उसमें किसान को जो है थोड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है।

0: ठीक है,
1: तो इस तरीके की आपको सावधानी रखनी।
2: आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन, रेडियो टांडिया भील 90.8 FM। आप रेडियो आपकी बातें।
3: किसान साथियों, आइए जानते हैं, अगर कोई हमारा किसान भाई है वो बागवानी लगाना चाहता है तो इसमें हमें सरकार द्वारा क्या अनुदान मिल सकता है, क्या इसके लिए किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है, कैसे हमें अनुदान मिलेगा और कहां से क्या प्रोसेस हमें करने की आवश्यकता है, आइए जानते हैं इससे जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण बातों को।
1: तो किसान भाइयों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि राष्ट्रीय बागवानी मिशन के अंतर्गत जो है भारत सरकार, इसमें काफ़ी मदद किसानों को बगीचे स्थापना के लिए दी जाती है। अब इसमें क्या करना होगा, जैसे कि आप उसका क्राइटेरिया क्या है, आपका जो है 0.4 हेक्टेयर से और 4 हेक्टेयर तक आप जो है बगीचा लगा सकते हैं। और इवन जो SC ST के लोग हैं, अनुसूचित जाति जनजाति के लोग, उनके लिए ये जो सीमा है ये 0.2 हेक्टेयर ही है। और इसमें जैसे आप 1 हेक्टेयर के लिए जो आप बगीचा लगाने जा रहे हैं, आम, नींबू, अनार, अमरूद, तो इसके लिए क्या है, अगर आप ड्रिप के साथ लगाने जा रहे हैं तो उसकी अनुदान राशि जो है करीब 30,000 से 40,000 रुपए या जो कॉस्ट आ रही है उसका लगभग 50% अनुदान उसमें दिया जाता है किसान भाई को, और 50% वो अपना लगा सकता है, और बिना ड्रिप के अलग है। तो उनके लिए क्या करना होगा, किसान भाई को अपना जो है जो आवेदन करना होता है, और उनके जो जिस राज्य में जहाँ है वो, उसके जो है कृषि विभाग या जो उद्यान निदेशालय है वहाँ जो कृषि अधिकारी के संपर्क करके, और वो उस तरीके का अपना आवेदन करेंगे तो इस तरीके की वो जो अनुदान राशि है वो ले सकते हैं। क्योंकि ये जो अनुदान राशि है वो उसको क्वालिटी प्लांटिंग मटेरियल खरीदने के लिए और जो स्थापना करने के लिए और जो ये क्या कहते हैं आपके कीटनाशक वगैरह दवा खरीदने में आपको सहायता करेगी और आपको अनुदान राशि दे होगी। तो उससे क्या होगा कि आपके ऊपर एकदम धनराशि का बोझ नहीं पड़ेगा और जैसे ही आप बगीचा लगाएंगे तो आपका निश्चित रूप से आमदनी आगे बढ़ेगी।
2: आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन, रेडियो टांडिया भील 90.8 FM। आप रेडियो आपकी बातें।
1: इसमें जो है आप ये CISH है जो सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ सब ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर, उसने आम की बहुत सारी किस्मों को निजात किया है और उनका क्षेत्रीय केंद्र भी है वहाँ मालदा, तो उसके पास से आप जो है उसकी उन्नत किस्में लेंगे और चाहे आप वहाँ कौन सा जो है प्लांटिंग मटेरियल उपलब्ध है, इसके अलावा नजदीकी जो कृषि विश्वविद्यालय है, कृषि विज्ञान केंद्र है, शाहपुर में भी एक वहाँ केंद्र है और वहाँ एक सबसे पुराना कृषि विद्यालय जो आपके राजेंद्र नगर में है, वहां से भी आप जो है इसके जो उन्नत किस्मों का प्लांटिंग मटेरियल ले सकते हैं। और वो गड्ढों की साइज और स्पेसिंग है उनके लिए आप टेक्निकल जो है डिस्कशन कृषि विज्ञान केंद्र के उद्यान विशेषज्ञ से भी कर सकते हैं। और जो गड्ढे हैं वो किस्म के हिसाब से आप खोदें, जैसे कोई बौनी किस्म है और आप सघन बागवानी करना चाहते हैं तो जैसे आम्रपाली वगैरह है तो 2.5 x 2.5 मीटर पे आप उनकी जो है पौधारोपण करेंगे, और जो दूसरी ओजस्वी किस्म है जिनका जो है छतरक ज्यादा बड़ा होता है तो उनको आप 6 से 8 मीटर की दूरी पर स्थापित करें।
3: किसान साथियों, इसी के साथ यहाँ पर वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, बने रहिए हमारे साथ रेडियो टांडिया भील 90.8 FM के साथ। रेडियो स्टेशन 90.8 FM टांडिया भील, रोज हांजे 6 થી 8 વાગે આપણી સમસ્યા અને આપણો સમાધાન, આપુ રોજ કરું વાતે ખેતીના બારામાં અને કમાઈના બારામાં, એત્રે હમળતા રહેજો ટાંટિયા ભીલનો રેડિયો સ્ટેશન 90.8 FM।

0: रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांडिया भील 90.8 FM। आपड़ो रेडियो आपड़ी बातें।
1: किसान साथियों, आप सुन रहे हैं रेडियो टांडिया भील 90.8 FM झाबुआ की आवाज। किसान साथियों, खेती बाड़ी कार्यक्रम में आप अभी तक लगातार घास प्रबंधन को लेकर काफी चर्चा को आप सुन चुके हैं। साथ ही आपने उन्नत आम की उन्नत किस्मों के बारे में भी सुना। अब ये जो समय चल रहा है, यह बागवानी के लिए उत्तम समय है और जो भी किसान भाई बागवानी में रुचि रखता है उसके लिए ये बहुत ही उत्तम समय है। यहाँ पर आपने बहुत सी उन्नत किस्मों के आम के बारे में जाना है, तो आप आम लगा सकते हैं, साथ ही अमरूद भी आप लगा सकते हैं। तो किसान साथियों, आम और अमरूद के साथ ही साथ घास से संबंधी और कुछ और जानकारियों को जारी करते हैं और आइए सुनते हैं कुछ और एक्सपर्ट की राय।
2: की जो किस्में हैं, इसमें आप जो उन्नत किस्में हैं, इलावा सफेदा, सरदार और जो नई किस्में हैं उनमें श्वेता और ललित है। तो ललित का जो है, उसका जो पिंक फ्लैश होता है, तो उसका प्रोसेसिंग क्वालिटी अलग है और उसकी डिमांड भी अलग है। तो इनका आप एक मिश्रण कर सकते हैं अपने जब पौधा रोपण कर रहे हैं। और इनकी पौध की सामग्री आपको कहाँ से मिलेगी, इसके बारे में मैं आपको जानकारी देना चाहता हूँ कि जो CISH है आपके लखनऊ में, वहाँ पे ये पौधे तैयार किए जाते हैं। और इन पौधों के लिए आपको, जैसे अभी आपने संपर्क कर लिया है तो अच्छा है, नहीं तो वहाँ के जो भी नर्सरी इंचार्ज होंगे उनसे आप फोन के माध्यम से या ईमेल के माध्यम से जुड़ के उनसे संपर्क करेंगे और उनका जो रिक्विजिशन लेटर है उस पे आप जो है लिखेंगे, तो वहाँ से आपको पौधे की सामग्री जरूर मिलेगी। और क्योंकि मैंने शुरू में ही आपको फोकस किया है कि जो इनके जो लगाने की दूरी कितनी रखनी चाहिए, तो आप जो अमरूद को है 6x6 मीटर दूरी पे लगाएंगे। और अगर सघन बागवानी में जाना चाहते तो वो भी आप कर सकते हैं। तो आपकी पहले एक और बात की जो है कि अमरूद में जो समस्या आती है वो उकठा रोग, जिसे विल्ट बोलते हैं, अगर आपके जो मृदा का पीएच है वो 8 से ऊपर है या 8-9 के लगभग है, तो वहां जो ये फ्यूजेरियम एक फंगल होता है वो उसके मतलब इतनी चांस होती है कि वो पौधे के मरने की संभावना ज्यादा हो जाती है कि उस मृदा में जो है विल्ट की समस्या है या उकठा रोग है, वो बहुत ही खतरनाक रोग है। तो अगर इस रेंज में है आपका पीएच तो इसमें जो है आप अमरूद ना लगाएं, और इससे नीचे है तो आप अमरूद लगाएं। ये उन्नत किस्में आप जो है भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के जो CIH इंस्टीट्यूट है, या जो मध्य प्रदेश में कृषि विश्वविद्यालय है, या आपके पास में जो कृषि विज्ञान केंद्र है, उनसे इन किस्मों के जो है चुनाव करके आप इनको लगाएं और 6x6 मीटर पे लगाएंगे तो अच्छा रहेगा आपके लिए।
1: हमारा झाबुआ का किसान जो है अधिकतर जंगल के पास का जो चारा होता है, जो जंगल में जो चारा होता है उसी से, उसी चारे को काटकर उसका प्रबंधन करता है। तो क्या ये चारा हमारे गाय भैंसों के लिए गुणवत्तापूर्ण चारा है या नहीं, और इसका प्रबंधन अगर कोई करना चाहता है तो उसको कैसे करना चाहिए, आइए इसमें लेते हैं एक्सपर्ट की राय।
3: किसान भाइयों, जो हमारा जंगलात की जमीन है, फॉरेस्ट एरिया जो बोलते हैं, इसके आसपास भी काफी लोग निर्भर रहते हैं पशुओं के चराई के लिए। अभी काफी जो फॉरेस्ट एरिया के ऑफिसर्स हैं वो रिसर्च इंस्टीट्यूट से डिस्कस करते हैं चरागाह फसलों के बारे में, तो किसान भाई इसका फायदा उठा सकते हैं। वहां आपस में पार्टिसिपेटिव मेथड से जंगल के विभाग के साथ मिलके आप लोग उसका मैनेजमेंट अच्छा अगर करें, जिसमें आपका अंजन घास है जहां पर जो बारिश है 400 से 500 मिलीमीटर कम से कम बारिश होती है, अंजन घास आप लगा सकते हैं। लेकिन रेगिस्तान का एरिया है जहां पर बारिश बहुत कम होती है, जैसे बाड़मेर जैसलमेर का एरिया है, तो वहां पर आप सेवन घास जो होती है वो 200 मिलीमीटर की बारिश में भी अच्छी हो जाती है और काफी साल तक आपको 8 से 10 साल तक उसको अच्छा चारा मिलेगा। और सेवन घास के तो 50 साल तक की हमने देखे हैं कि पहले भी लगाई हुई घास है उसकी फुटान अच्छी होती है और वो काफी तेजी से उसके बीज फैलते हैं और काफी बड़े एरिया में फैल जाती है। तो जंगल विभाग के आसपास के एरिया या जंगल के अंदर के एरिया जहां तक पशु चरने के लिए जाते हैं, उनको वहां से भी जो बीच का जो खाली स्पेस है पेड़ के बीच का, वो एक चरागाह के रूप में विकसित किया जा सकता है, जिससे कि किसानों को जो चराई पर डिपेंड है, छोटे किसान है, भूमिहीन किसान है, उनको फायदा मिल सके।
1: किसान साथियों, आज के खेती बाड़ी कार्यक्रम में आपने बहुत सी महत्वपूर्ण जानकारियों को जाना, आपने चारा प्रबंधन से जुड़ी हुई बहुत सी महत्वपूर्ण जानकारियों और कौन सी किस्मों का चारा लगाना चाहिए और हमारे पशुओं को कौन सा चारा सबसे ज्यादा फायदेमंद होता है, कैसे पशुओं का देख रेख करना और हमारे चारे चारे की उन्नत किस्में कौन कौन सी है, कौन सा चारा अच्छी किस्म का है आदि जानकारियों को आपने जाना। साथ ही आपने जो किसान बागवानी करना चाहता है वो अभी उनके लिए जो उपयुक्त समय चल रहा है और कौन से आम है, अमरूद है, इनके कौन से अच्छी किस्म के पौधे हैं आदि जानकारियों को आज के इस प्रोग्राम में आपने जाना। इसी के साथ किसान साथियों यहाँ पर वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। आपसे पुनः कल मुलाकात होगी इसी समय इसी वक्त। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ रेडियो टांटिया भील 90.8 FM के साथ। रेडियो स्टेशन 90.8 FM टांटिया भील रोज हांजे 6-8 वागे आपड़ी समस्या अने आपड़ो समाधान आपु रोज करहूं वातें खेती ना बारा मा अने कमाई ना बारा मा एत्रे हमलता रेजो टांटिया भील नो रेडियो स्टेशन 90.8 FM।

0: पीएम फसल बीमा योजना से करीब 2,00,000 करोड़ रुपए क्लेम के रूप में किसानों को मिले हैं।
1: मेरा 20 एकड़ जमीन है और गेहूं धान का खेती करता हूं। नुकसान भी हुआ है ना, बोला बारिश हो गया था तो एक साल भी नुकसान हुआ है। पानी असिंचित के कारण, पानी का भी अभाव के कारण भी नुकसान हुआ है। डीबीटी के माध्यम से 1,44,667 रुपया हमको मिला है। अपना बीमा का राशि जमा करते जाओ, जैसे मुझे को लाभ हुआ है वैसे आपको भी होगा।
2: खरीफ फसल बीमा के लिए शीघ्र पंजीकरण कराएं।
3: बैंक शाखा, बीमा कंपनी, कृषि ऋण समिति, जन सेवा केंद्र से संपर्क करें।
2: फसल बीमा से संबंधित जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर 1-4447 पर कॉल करें।
4: फसल बीमा कराओ, सुरक्षा कवच पाओ।
5: अरे रीमा, सोलर पैनल लगवा ले। कब से मुझे सारे दोस्त बोलते थे, पर मैंने माना जब प्रधानमंत्री जी ने कहा।
6: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
5: मैंने प्रधानमंत्री जी के कहने पर सोलर पैनल लगवाया और मेरा बिजली बिल जीरो आया। आप भी लगवा लो।
7: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आज ही रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
8: सूर्य घर रेडियो स्टेशन 90.8 FM, टैंटिया भील, रोज हांजे 6-8 वागे, आपड़ी समस्या अने आपड़ो समाधान। आपू रोज करहूं वातें खेती ना बारा मा अने कमाई ना बारा मा, एत्रे हमरता रेजो। टैंटिया भील नो रेडियो स्टेशन 90.8 FM।
9: बहुत बहुत स्वागत है आपका किसान साथियों खेती बाड़ी कार्यक्रम में। किसान भाइयों, आशा करते हैं आप खुश होंगे, तंदुरुस्त होंगे और अपने परिवार का ध्यान रख रहे होंगे।
8: रेडियो स्टेशन 90.8 FM, टैंटिया भील, रोज हांजे 6-8 वागे, आपड़ी समस्या अने आपड़ो समाधान। आपू रोज करहूं वातें खेती ना बारा मा अने कमाई ना बारा मा, एत्रे हमरता रेजो। टांटिया भीलनो रेडियो स्टेशन 90.8 FM।
9: किसान साथियों, रेडियो टांटिया भील 90.8 FM छबवा की आवाज आपके लिए खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी महत्वपूर्ण जानकारियों को अब तक आप तक पहुंचाता आया है। किसान साथियों, रेडियो टांटिया भील 90.8 FM का यही प्रयास रहा है कि हमारा किसान जो है खेती बाड़ी से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारियों को जाने, उसे अपने खेतों में उसका प्रयोग करें और जो हमारी किसान साथियों की जो भी समस्याएं हैं उनका हम एक्सपर्ट के माध्यम से उनका समाधान करें, हम केवीकी के माध्यम से उनका समाधान करें और आप तक हमारा नई से नई तकनीकों को आप तक पहुंचाने का हमारा हमेशा से प्रयास रहा है। साथ ही किसान साथियों, जो हमारा जो कृषि विज्ञान है, कृषि विज्ञान के साथ ही साथ जो कृषि शिक्षा है उस पे भी कहीं ना कहीं बहुत जोर दिया जा रहा है। तो हम आशा करते हैं कि हमारा जो यूथ है, हमारा जो युवा है जो अभी एग्रीकल्चर के इस फील्ड में आगे बढ़ रहा है, तो आशा करते हैं कि ये भी हमारे इस प्रोग्राम के थ्रू खेती बाड़ियों से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारियों को जानेंगे, खेती बाड़ी में हो आ रहे नए बदलावों को समझेंगे और कैसे हम बेहतर से बेहतर कृषि कर सकें और हमारा जो किसान है वह सक्षम हो सके, अपनी आजीविका के साधनों को और सशक्त बना सके और इसमें अपनी कृषि से अधिक लाभ ले सके। हम हमेशा से ये भी कोशिश करते रहे हैं कि कम लागत में अधिक पैदावार वाली किस्मों को आप तक पहुंचाए, तकनीकों को आप तक पहुंचाए, ये भी हमेशा से हमारा प्रयास रहा है। तो किसान साथियों, आपका ज्यादा वक्त ना लेते हुए आइए शुरू करते हैं और देखेंगे आज के कृषि कार्यक्रम में हम क्या कुछ नया सीख सकते हैं।
3: आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन, रेडियो टांटिया भील 90.8 FM। आप रेडियो आपकी बातें।
9: किसान साथियों, खेती बाड़ी कार्यक्रम की शुरुआत करने से पहले आइए डालते हैं एक नज़र मंडी भावों के ऊपर। किसान साथियों, बहुत ही आवश्यक है हमारी उपज जो हम तैयार करते हैं उसे सही जगह पर उसे बेचना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि अब जब तक हम उसका सही भाव नहीं जानेंगे तो हो सकता है कि हम उससे कम भाव में कहीं आसपास किसी को बेच दें। उससे अच्छा यह है कि आप अपने अपने बीजों को, अपनी फसल को संभाल कर रखें और जब अच्छा सा अच्छा भाव हमको मिलता है तब हमें इसे निकालना चाहिए। तो किसान साथियों, आइए डालते हैं एक नज़र मंडी के भावों पर।
7: ज्यादातर मंडियों में मजबूती के साथ हुए सरसों सौदे। जयपुर मंडी में आया 135 रुपए का उछाल। और आइए सबसे पहले बात कर लेते हैं यहां सरसों की। हफ्ते के पहले कारोबारी दिन यानी सोमवार को कृषि उपज मंडियों में सरसों के सौदे बढ़त के साथ हुए। इस साल घरेलू स्तर पर सरसों की रिकॉर्ड उपज होने का भी अनुमान है, जिसका असर आगे चलकर कृषि उपज मंडियों में सरसों के भाव पर नजर आ सकता है। फिलहाल इसके बाजार में क्या स्थिति बनी हुई है, आइए जान लेते हैं हमारी इस खास रिपोर्ट में।
10: कृषि उपज मंडियों में सरसों के सौदे ज्यादातर तेजी के साथ हुए। सोमवार को ज्यादातर मंडियों में सरसों बिकवाली के लिए पहुंची। बात इसके हाजिर भाव की करें तो एग्मार्कनेट के अनुसार राजस्थान की जयपुर मंडी में 23 जुलाई को सरसों का भाव रहा 5,650 रुपए, जो कि 25 जुलाई को 135 रुपए बढ़कर 5,785 रुपए हो गया। दूसरी ओर उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी में 23 जुलाई को सरसों का कारोबार 6,250 रुपए पर हुआ। 25 जुलाई को यहां इसका भाव 50 रुपए चढ़कर 6,300 रुपए हो गया। राज्य की लखीमपुर मंडी में 23 जुलाई को सरसों का भाव रहा 6,540 रुपए। 25 जुलाई को यहां इसका भाव 20 रुपए बढ़कर 6,560 रुपए पर हो गया। गुजरात की राजकोट मंडी में भी तेजी के साथ कारोबार हुआ। 23 जुलाई को सरसों का भाव 5,850 रुपए था, जो कि 25 जुलाई को 50 रुपए की बढ़त के बाद भाव 5,900 रुपए हो गया। देश में इस साल सरसों की रिकॉर्ड उपज होने का अनुमान जताया गया है। कृषि मंत्रालय की ओर से हाल ही में जारी तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2021-22 के दौरान घरेलू स्तर पर रबी सरसों की पैदावार में 15,44,000 टन की बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है, जिसका असर कृषि उपज मंडियों में सरसों के भाव पर पड़ सकता है। साल 2021-22 के दौरान रबी सरसों की उपज 1,17,54,000 टन होने का अनुमान है, जबकि बीते साल इस दौरान पैदावार 1,02,10,000 टन ही रही थी।
7: तो जाना आपने सरसों के बाजार में फिलहाल क्या स्थिति बनी हुई है, इसके साथ साथ जो उपज है उसमें भी इजाफा हो सकता है इस बार। फिलहाल बाजार की स्थिति आगे कैसी रहेगी, इस पर और जानकारी के लिए आइए रुक कर लेते हैं बाजार के जानकार शिव श्रीवास्तव जी का, जो हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। शिव जी, बहुत बहुत स्वागत आपका मंडी खबर में। जानना चाहेंगे आपसे आने वाले समय में क्या स्थिति देख पाएंगे सरसों के बाजार में।
11: सरसों की बात की जाए तो सरसों की कीमतों पर कुछ दबाव दिखना शुरू हो गया है। मांग सामान्य है, आवक में हल्की नरमी देखने को मिली है। जहां तक तृतीय अग्रिम अनुमान की बात की जाए, इस साल अपने देश में लगभग 1,18,00,000 टन सरसों उत्पादन होने का अनुमान है, जो पिछले साल की तुलना में अधिक है। आने वाले समय की अगर बात की जाए तो आने वाले समय में कुछ उतार चढ़ाव के बावजूद सरसों की कीमतों में मजबूती का रुख बना रहेगा।
7: जी, एक मजबूती जो है वो नजर आ सकती है, और ऐसे में किसानों को क्या सलाह देना चाहेंगे आप?
11: जिन किसानों के पास सरसों का स्टॉक है, मेरे विचार से उनको थोड़ा इंतजार करना चाहिए। हमने देखा है कि कीमतों पर अभी थोड़ा दबाव दिखना शुरू हो गया है, लेकिन अगर आने वाले समय की बात की जाए तो आने वाले समय में मांग में मजबूती से फिर से सरसों की कीमतों में अच्छी तेजी का रुख देखने को मिलेगा।
9: जी हाँ किसान साथियों, जैसे कि आपने सुना अभी मंडी में थोड़ी सी नरमी चल रही है, इसके चलते हो सकता है कि आने वाले समय में इसमें उछाल देखा जाए, और साथ ही अगर आप थोड़ा सा और सब्र कर लेंगे तो आपको आपकी फसल का जो है अच्छे से अच्छा मूल्य मिल सकता है। तो किसान साथियों, यहाँ पर हमें जरूरत है थोड़ा सा और सब्र करने की। आइए जानते हैं कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों को।
3: सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांडिया भील 90.8 FM। आपड़ो रेडियो आपड़ी बातें।
7: उतार चढ़ाव के साथ हुए बाजरे के सौदे। राजकोट मंडी में आई 250 रुपए की तेजी। और मिला जुला रहा मूंग का बाजार। राजस्थान की कोटा मंडी में 350 रुपए प्रति क्विंटल की भारी गिरावट।
12: और आइए मंडी खबर में अब बात करते हैं मूंग के बाजार की भी। सोमवार को ज्यादातर मंडियों में मूंग के सौदों में मिला जुला रुख रहा। बात मूंग की आवक की अगर की जाए तो आपको बता दें अधिकतर मंडियों में मूंग बिकवाली के लिए पहुंची। फिलहाल इसके बाजार में क्या स्थिति बनी हुई है आइए जान लेते हैं इस खास रिपोर्ट में।
10: कृषि उपज मंडियों में मूंग की आवक सामान्य है। सोमवार को ज्यादातर मंडियों में मूंग के सौदों में घटत बढ़त देखने को मिली। बात मूंग के हाजिर भाव की करें तो एग्मार्कनेट के अनुसार उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी में मूंग के भाव में 50 रुपए की बढ़त देखी गई। 23 जुलाई को मूंग का भाव 5,850 रुपए था जो 25 जुलाई को 5,900 रुपए हो गया। राज्य की लखनऊ मंडी में बीते दो दिनों के दौरान मूंग के भाव स्थिर रहे। यहां 23 और 25 जुलाई को मूंग का भाव रहा 7,400 रुपए। गुजरात की राजकोट मंडी में 23 जुलाई को मूंग का भाव रहा 6,575 रुपए। 25 जुलाई को इसके सौदों में 25 रुपए की मामूली तेजी आई और भाव हो गया 6,600 रुपए। जबकि राजस्थान की कोटा मंडी में 23 जुलाई को मूंग का कारोबार 6,350 रुपए पर हुआ। 25 जुलाई को इसमें 350 रुपए की भारी गिरावट आई और भाव 6,000 रुपए हो गया। हाल ही में केंद्र सरकार ने खरीफ सीजन 2022-23 की फसलों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य में भारी बढ़ोतरी की है। साल 2021-22 में मूंग का न्यूनतम समर्थन मूल्य 7,275 रुपए क्विंटल था जिसमें साल 2022-23 के लिए 480 रुपए की भारी बढ़ोतरी की गई है। इसके बाद मूंग का न्यूनतम समर्थन मूल्य 7,755 रुपए क्विंटल हो गया। बता दें कि इस साल घरेलू स्तर पर मूंग की पैदावार में कुछ कमी देखने को मिल सकती है। देश में मूंग की पैदावार बीते साल के मुकाबले 2,40,000 टन कम होने का अनुमान जताया गया है। इसका असर कृषि उपज मंडियों में मूंग के बाजार भाव पर पड़ सकता है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक मूंग की पैदावार 28,50,000 टन हो सकती है जबकि बीते साल इस दौरान मूंग की उपज 30,90,000 टन रही थी।
12: मंडी की अगर बात की जाए तो भाव रहा 3,500 रुपए क्विंटल। उत्तर प्रदेश की आगरा मंडी की अगर बात करें तो यहां भाव रहा 4,200 रुपए क्विंटल जबकि उत्तर प्रदेश की ही गाजियाबाद मंडी यहां भाव रहा 3,550 रुपए क्विंटल। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार। और
9: किसान साथियों अभी आपने भिन्न भिन्न प्रदेशों के मंडी भावों को जाना। मंडी भावों के इन भावों से आपको कहीं ना कहीं यह अनुमान आप लगा सकते हैं कि कैसे और क्या भाव होने वाला है आने वाले समय में। तो किसान साथियों आप भी अपनी जो नजदीकी मंडी है वहां पर ले जाके अपना अच्छे से अच्छा मूल्य ले सकते हैं और साथ ही आप ये भी अनुमान लगा सकते हैं कि आने वाले समय में कौन सी फसल करनी चाहिए और कौन सी फसल नहीं। इससे जुड़ी और भी जानकारियों को जानेंगे। उससे पहले यहाँ पर वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का।

0: आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांडिया भील 90.8 FM। आपड़ो रेडियो आपड़ी बातें।
1: किसान साथियों, एक बार पुनः बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका खेती बाड़ी कार्यक्रम में। किसान साथियों, आप सुन रहे थे अलग अलग प्रदेशों के मंडी भावों को। तो इसी के साथ जानकारी को आगे बढ़ाते हुए आइए लेते हैं कुछ और महत्वपूर्ण जानकारी और सुनते हैं कुछ और मंडी के भावों के बारे में।
2: सोमवार की अगर बात करें तो अलग अलग मंडियों में बाजरे के सौदे घटत बढ़त के साथ हुए। वहीं कृषि मंत्रालय की ओर से हाल ही में जारी तीसरे अग्रिम अनुमान के अनुसार बाजरे की उपज 94 लाख टन रहने का अनुमान है, जो बीते साल के मुकाबले करीब 14 लाख टन कम है। ऐसे में जो बाजार है वहां पर क्या स्थिति बनी हुई है और आने वाले समय में क्या स्थिति होगी, आइए जान लेते हैं हमारी इस खास रिपोर्ट में।
3: इन दिनों ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में बाजरे की आवक सामान्य बनी हुई है। सोमवार को ज्यादातर मंडियों में उतार चढ़ाव के साथ कारोबार हुआ। एग्मार्क नेट के अनुसार देश की अलग अलग मंडियों में बाजरे के भाव इस प्रकार रहे। गुजरात की राजकोट मंडी में 23 जुलाई को बाजरे का भाव था 1,750 रूपए। 25 जुलाई को इसमें 250 रूपए की तेजी आई और भाव 2,000 रूपए पर हो गया। उत्तर प्रदेश की हाथरस मंडी में बाजरे के भाव में 10 रुपए की मामूली गिरावट देखी गई और ये 1,860 रुपए से गिरकर 1,850 रुपए हो गया। यहीं के अलीगढ़ मंडी में 23 जुलाई को बाजरे का भाव रहा 1,800 रुपए, जो 25 जुलाई को 20 रुपए की मामूली बढ़त के बाद 1,820 रुपए हो गया। घरेलू स्तर पर इस साल बाजरे की पैदावार में कमी देखने को मिल सकती है। साल 2021-22 के दौरान देश में बाजरे की उपज 14,40,000 टन कम होने का अनुमान जताया गया है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक देश में बाजरे की पैदावार 94,20,000 टन होने का अनुमान है, जबकि बीते साल इस दौरान बाजरे की उपज 1,08,60,000 टन रही थी।
2: तो जाना आपने बाजरे के बाजार में क्या स्थिति बनी हुई है, आइए इसको और बेहतर ढंग से जानने के लिए रुक कर लेते हैं शिव जी का। लगातार अब हमारे साथ जुड़ चुके हैं शिव जी। शिव जी, क्या जानकारी देना चाहेंगे बाजरे के बाजार की अगर बात की जाए, क्या स्थिति इसमें आप देख पाएंगे आने वाले समय में?
4: बाजरा की बात की जाए तो कीमतों में मजबूती का रुख देखने को मिल रहा है। मांग सामान्य है, आवक में हल्की नरमी देखने को मिली है। जहां तक तृतीय अग्रिम अनुमान की बात की जाए, इस साल अपने देश में लगभग 94 लाख टन बाजरा की उपज होने का अनुमान है, जो पिछले साल की तुलना में कम है
2: जी।
4: आने वाले समय की बात की जाए तो आने वाले समय में भी मांग में मजबूती के कारण कुछ उतार चढ़ाव के बावजूद बाजरा की कीमतों में मजबूती का रुख ही बना रहेगा।
0: आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांडिया भील 90.8 FM। आपड़ो रेडियो आपड़ी बातें।
4: जिन किसानों के पास बाजरा का स्टॉक है, मेरे विचार से उनको इंतजार करना चाहिए। आने वाले समय में मांग में बढ़ोतरी से बाजरा की कीमतों में वर्तमान स्तर से भी थोड़ा मजबूती का रुख देखने को मिलेगा।
2: चलिए, बिल्कुल शिव जी का मानना यही कि थोड़ा इंतजार आप करेंगे तो आने वाले समय में तेजी जो है वो कहीं ना कहीं बाजरे के बाजार में आ सकती है और इस वक्त किसानों को और ज्यादा लाभ मिल सकता है। अब आइए आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं यहाँ पर केले के बाजार भाव की भी। अलग अलग मंडियों में क्या भाव दर्ज किया गया, ये आपको बता दें। सबसे पहले अगर बात करें केरल की मंजेरी मंडी की, तो यहां केले का भाव रहा 4,850 रुपए क्विंटल। पंजाब की गढ़शंकर मंडी, यहां भाव रहा 2,800 रुपए क्विंटल। तो राजस्थान की बीकानेर मंडी में भाव रहा 2,000 रुपए क्विंटल। वहीं उत्तर प्रदेश की आगरा मंडी की बात करें तो भाव रहा 2,510 रुपए क्विंटल। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार। अब आइए केले के बाद आपको बताते हैं मौसम्बी का भाव क्या दर्ज हुआ अलग अलग मंडियों में। सबसे पहले अगर बात करें हरियाणा की गोहाना मंडी की, तो यहां मौसम्बी का भाव रहा 2,700 रुपए क्विंटल। वहीं पंजाब की मोरिंडा मंडी की बात करें तो भाव रहा 4,000 रुपए क्विंटल। उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी की बात करें तो भाव रहा 2,950 रुपए क्विंटल। और उत्तर प्रदेश की आगरा मंडी, यहां भाव रहा 3,070 रुपए क्विंटल। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार। अब आइए मंडी खबर में नजर डालते हैं धान के बाजार पर भी। कृषि उपज मंडियों में धान की आवक सामान्य बनी हुई है। एग्मार्क नेट के अनुसार हाजिर भाव की अगर बात की जाए तो उत्तर प्रदेश की लखीमपुर मंडी में भाव रहा 1,790 रुपए क्विंटल। यहीं की गोंडा मंडी में भाव रहा 1,550 रुपए क्विंटल, जबकि राजस्थान की कोटा मंडी में भाव रहा 3,550 रुपए क्विंटल। भारत दुनिया के सबसे बड़े चावल निर्यातकों में से एक है। वैश्विक बाजार में भारतीय चावल का दबदबा बना हुआ है। भारत दूसरे देशों के मुकाबले अच्छी गुणवत्ता और सस्ता चावल वैश्विक बाजार में उपलब्ध कराता है। यही वजह है कि दुनिया भर में भारत के चावल की मांग लगातार बढ़ रही है। एपीडा की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार भारत से साल 2021 और 22 में अप्रैल से फरवरी महीने के दौरान ही कुल चावल का निर्यात 1,91,1,545 टन का हो चुका है। ये बीते साल के मुकाबले लगभग दो गुना है। आंकड़े आप देख सकते हैं। वहीं बासमती चावल के निर्यात पर अगर नजर डालते हैं तो साल 2021 और 22 के अप्रैल से फरवरी महीने के दौरान बासमती चावल का कुल निर्यात 34,87,563 टन का हुआ है, जबकि बीते साल इस दौरान निर्यात 41,52,464 टन का ही रहा था। वहीं गैर बासमती चावल के निर्यात में साल खासी बढ़त देखने को मिली है। बीते 12 महीनों के दौरान गैर बासमती चावल का निर्यात बीते साल के मुकाबले 44 लाख टन से ज्यादा बढ़ा है। साल 2021 और 22 में देश से गैर बासमती चावल का निर्यात 1,56,13,982 टन का हुआ, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान आप देख सकते हैं आंकड़ा निर्यात 1,11,77,992 टन का ही हो पाया था। आपको बता दें केंद्र सरकार ने भारत में कृषि को बढ़ावा देने के लिए लगातार कई कदम उठाए हैं। इन कदमों में किसानों की आय बढ़ाने से लेकर कृषि उत्पादों के निर्यात को आसान बनाना भी शामिल है। तो निर्यात की बात की जाए या लगातार गुणवत्तायुक्त उत्पाद की, यहाँ आप देख सकते हैं जो हमारे किसानों को मिल रहा है और इसमें क्या फायदा हो सकता है या नहीं, ये जान लेते हैं शिव जी से। शिव जी, जानना चाहेंगे आपसे धान के बाजार की अगर बात की जाए, जो उसका भाव है वो किस दिशा में जाता नजर आ रहा है आपको?
4: धान की बात की जाए तो धान की कीमतों में मजबूती का रुख देखने को मिल रहा है
2: जी।
4: मांग अच्छी निकल कर आ रही है, आवक जारी है। जहां तक आने वाले समय में धान के कीमतों की बात की जाए
2: जी,
4: आने वाले समय में भी मांग में मजबूती से धान की कीमतों में तेजी का रुख बना रह सकता है। हमने देखा है कि चावल के मांग में बढ़ोतरी देखने को मिली है। कुछ उतार चढ़ाव के बावजूद निर्यात मांग भी अच्छी बनी हुई है। न सिर्फ बासमती बल्कि गैर बासमती चावल के भी निर्यात मांग में तेजी देखने को मिल रही है
2: जी।
4: आने वाले समय में मांग में मजबूती से धान की कीमतों में तेजी का रुख बना रहेगा
2: जी, बिल्कुल। लेकिन ऐसे में जो किसान है, क्या अभी बाजार का रुख करें या कुछ रुक कर बाजार का रुख करें तो और बेहतर रहेगा?
4: जिन किसानों के पास धान का स्टॉक है, मेरे विचार से इंतजार कर सकते हैं। आने वाले समय में घरेलू और निर्यात मांग में बढ़ोतरी से धान की कीमतों में मजबूती का रुख कायम रहेगा।
2: चलिए, बिल्कुल। तो शिव जी का मानना यही कि आने वाले समय में जो तेजी है वो हम देख पाएंगे, ना सिर्फ घरेलू मांग बल्कि निर्यात मांग जो है वो भी निकलते हुए नजर आएगी, जिसका फायदा किसानों को फिलहाल हो सकेगा।
0: झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांडिया भील 90.8 FM, आपड़ो रेडियो आपड़ी बातें।
2: खासतौर से अगर देखा जाए तो सोमवार को अधिकतर मंडियों में मसूर बिकवाली के लिए पहुंची। वहीं इसके हाजिर भाव पर नजर डालें तो एक मार्केट के अनुसार उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी में मसूर का भाव रहा 7,050 रुपये क्विंटल। यहीं की लखीमपुर मंडी की बात करें तो मसूर का कारोबार 6,730 रुपये क्विंटल पर हुआ, जबकि सहारनपुर मंडी में इसके सौदे 7,550 रुपये क्विंटल पर हुए। वहीं मसूर की पैदावार की बात की जाए तो घरेलू स्तर पर इस साल मसूर की उपज में कमी देखने को मिल सकती है, जिसका असर कृषि उपज मंडियों में मसूर के भाव पर पड़ सकता है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2021 और 22 के दौरान रबी मसूर की पैदावार 14,40,000 टन रहने का अनुमान जताया गया है, जबकि बीते साल इस दौरान आप देख सकते हैं रबी मसूर की उपज 14,90,000 टन रही थी। यानी इस साल रबी मसूर की पैदावार में करीब 50,000 टन की कमी आ सकती है। लेकिन 50,000 टन की कमी के बाद क्या जो बाजार है वहां पर किस तरह की जो स्थिति है वो नजर आ सकती है, अपने आप में देखना महत्वपूर्ण। लगातार जो जिस तरीके का अनुमान आता है, उपज की बात आती है, तो असर हम देख पाते हैं अलग अलग बाजारों में पड़ता हुआ नजर आता है, ना सिर्फ बाजार भाव पर बल्कि इसके साथ साथ जो दूसरी चीजें हैं उस पर भी इसका सीधा असर हम देख सकते हैं आने वाले समय में। अब आइए आगे बढ़ते हैं और खासतौर से यहां बात कर लेते हैं लौकी के बाजार भाव की। अलग अलग मंडियों में क्या भाव दर्ज किया गया ये आपको बता देते हैं। गुजरात की राजकोट मंडी की बात करें तो लौकी का भाव रहा 2,000 रुपये क्विंटल। वहीं पंजाब की मोरिंडा मंडी, यहां भाव रहा 2,000, यहां भी 2,000 रुपये क्विंटल। तो उत्तर प्रदेश की नोएडा मंडी की बात करें, भाव रहा यहां पर 1,400 रुपये क्विंटल, जबकि यहां की हसनपुर मंडी की बात की जाए तो भाव रहा 1600 रुपए क्विंटल। सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार। और आइए अब लौकी के बाद नजर डालते हैं खीरे के बाजार भाव पर भी। सबसे पहले बात करते हैं गुजरात की सूरत मंडी की, तो यहाँ पर खीरे का भाव रहा 2025 रुपए क्विंटल। जबकि पंजाब की गढ़शंकर मंडी की बात करें तो भाव रहा 2500 रुपए क्विंटल। उत्तर प्रदेश की गाजियाबाद मंडी में ये भाव रहा 1760 रुपए क्विंटल। और यहीं की नोएडा मंडी की अगर बात की जाए तो भाव रहा 1800 रुपए क्विंटल। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार। अब आइए मंडी खबर में आगे बढ़ते हैं और नजर डालते हैं लहसुन के बाजार पर, क्या स्थिति बनी हुई है ये आपको बता दें। सोमवार की अगर बात की जाए तो कृषि उपज मंडियों में लहसुन की आवक सामान्य दर्ज की गई। खासतौर से इसके हाजिर भाव पर अगर नजर डालें तो आपको बता दें एक मार्क नेट के अनुसार उत्तर प्रदेश की गाजियाबाद मंडी में लहसुन का भाव रहा 4250 रुपए क्विंटल। उत्तर प्रदेश की आगरा मंडी, यहां भाव रहा 3540 रुपए क्विंटल। जबकि पंजाब की मोरिंडा मंडी में भाव रहा 4500 रुपए क्विंटल। वहीं राजस्थान की सूरतगढ़ मंडी, यहां लहसुन का भाव रहा 3600 रुपए क्विंटल। इस साल लहसुन की उपज में खासी बढ़त का अनुमान जताया गया है। कृषि मंत्रालय के बागवानी फसलों के लिए जारी दूसरे अग्रिम अनुमान के अनुसार साल 2021 और 22 में लहसुन की पैदावार 32,77,000 टन रह सकती है। जबकि बीते साल उपज का जो आंकड़ा है वो आप देख सकते हैं, ये महज 31,90,000 टन रहा था। वहीं साल 2020 और 21 के दौरान देश से लहसुन का जो निर्यात है इसमें कुछ कमी दर्ज की गई है। भारतीय मसाला बोर्ड की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार साल 2020 और 21 के दौरान लहसुन का कुल निर्यात महज 17,950 टन का हो पाया था, जबकि 2019 और 20 में इसका निर्यात 22,280 टन का हुआ था। तो उपज में बढ़ोतरी जबकि निर्यात के आंकड़े देखें तो थोड़ी बहुत जो कमी है वो यहां नजर आती है। ऐसे में बाजार में स्थिति क्या होगी ये जानना बेहद जरूरी, और इसके लिए आइए एक बार फिर इसे यहां रुक करते हैं बाजार के जानकार शिव श्रीवास्तव का। शिव जी, जानना चाहेंगे आपसे लहसुन के बाजार में क्या स्थिति देख पा रहे हैं।
4: लहसुन की बात की जाए तो लहसुन की कीमतों में थोड़ा मजबूती दिखना शुरू हो गया है
2: जी।
4: मांग अच्छी निकल कर आ रही है, आवक जारी है
2: जी।
4: जहां तक आने वाले समय की बात की जाए, आने वाले समय में भी मांग में मजबूती से लहसुन की कीमतों में तेजी का सिलसिला बना रहेगा
2: जी। बिल्कुल, तेजी जो है उसकी आप उम्मीद जता रहे हैं, तो ऐसे में किसानों को क्या सलाह देना चाहेंगे, इंतजार करें अभी?
4: जिन किसानों के पास लहसुन का स्टॉक है और अच्छी भंडारण क्षमता है वो इंतजार कर सकते हैं। आने वाले समय में मांग में मजबूती से लहसुन की कीमतों में और भी ज्यादा तेजी का रुख देखने को मिल सकता है।
2: चलिए, बिल्कुल, अगर भंडारण क्षमता है आपके पास तो शिवजी का मानना यही कि आने वाले समय में तेजी मिल सकती है और उस वक्त आप अपना जो स्टॉक है निकाल सकते हैं। फिलहाल शिवजी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, इतनी महत्वपूर्ण जानकारी आपने हमारे दर्शकों के साथ साझा की। और आइए अब मंडी खबर में नजर डाल लेते हैं बैंगन के बाजार भाव पर भी। अलग अलग मंडियों में क्या भाव दर्ज किया गया। सबसे पहले गुजरात की राजकोट मंडी की अगर हम बात करें तो यहां भाव रहा 2600 रुपए क्विंटल। जबकि पंजाब की अगर अलूरू मंडी की अगर हम बात करें तो भाव रहा 2500 रुपए क्विंटल। मध्य प्रदेश की धार मंडी की अगर बात की जाए तो भाव रहा 1550 रुपए क्विंटल। और उत्तर प्रदेश की गाजियाबाद मंडी, यहां भाव रहा 1960 रुपए क्विंटल। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार। और इसी के साथ आज के लिए मंडी खबरों में बस इतना ही। हम उम्मीद है किसानों को अपनी उपज का सही भाव लेने में मंडी खबर से मदद मिल रही होगी।
0: सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांडिया भील 90.8 FM। आपरो रेडियो आपरी बातें।
1: किसान साथियों, खेती बाड़ी कार्यक्रम में हम जानेंगे खेती से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण बातों को, लेकिन उससे पहले हम आपसे मिलवाने चाहते हैं एक ऐसे शख्स से जिनके पास न खेत है न ही कोई ट्रैक्टर, बल्कि उन्होंने अपने ही घर की छत के ऊपर उन्होंने हाइड्रोपोनिक फार्मिंग के माध्यम से कैसे उन्होंने अपनी छत पे अलग अलग सब्जियां उगाई है और कैसे उन सब्जियों को उन्होंने बड़ा किया है, पूरी जानकारी हम आज के इस प्रोग्राम में लेंगे। तो आइए सुनते हैं उन्हीं की जवानी।
5: नमस्कार, मेरा नाम अभिनव उक्सा है। अभी आप हमारे टेरेस पर हैं और इस टेरेस पर आपको बहुत सारे प्लांट्स दिखाई दे रहे हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि ये सारे प्लांट्स जो हैं हमने हाइड्रोपोनिक्स के तरीके से ग्रो किए हैं। हमारे बालकनी में, हमारे इंडोर में, हमारे छत पर, हमने हर जगह हाइड्रोपोनिक्स की टेक्निक को यूज किया है। हाइड्रोपोनिक्स बिना मिट्टी के खेती होता है। हमने इसमें किसी भी तरह की मिट्टी का इस्तेमाल नहीं किया है और इसमें जो मीडियम होता है वो पानी होता है। पानी में न्यूट्रिएंट्स का सॉल्यूशन मिला करके हम अपनी छत पर एक हमने छोटा सा बाग बनाया हुआ है। जिसमें हमने बहुत सारे सब्जियां ग्रो किए हैं। हमने भिंडी ग्रो किया हुआ है, हमने टमाटर ग्रो किया हुआ है, हमने मिर्ची ग्रो की है, हमने शिमला मिर्च ग्रो किया है। हमारे यहां अगर आप देख रहे हैं तो पीछे बेसिल लीव्स लगा हुआ है, इसके बहुत सारे मेडिसिनल बेनिफिट हैं। तो ये सब कुछ आप अपने एक छोटे सी जगह में, क्योंकि हाइड्रोपोनिक्स के बारे में ये कहा जाता है कि बहुत महंगा है, कैसे करेंगे हम, कहां करेंगे हम, तो मैं इसका जीता जागता प्रमाण हूं कि आप हाइड्रोपोनिक्स को छोटी सी जगह में काफी अच्छे तरीके से कर सकते हैं। अब मैं आपको दिखाता हूं कि ये टेक्नोलॉजी किस तरीके से कार्य करती है। आप इधर देख रहे हैं, ये एक सिस्टम लगा हुआ है। इस सिस्टम में NFT, ये जो चैनल्स लगे हैं इनको हम NFT चैनल्स बोलते हैं। हम जो यूज करते हैं ये सारा का सारा HDPE मटेरियल का है, हाई डेंसिटी पॉलीइथाइलिन, जो फूड ग्रेड होता है। इस सिस्टम में एक टैंक होता है और पानी एक तरफ से आता है इन पाइप्स के थ्रू और वो पानी वापस कलेक्ट हो जाता है। तो सबसे पहला फायदा हाइड्रोपोनिक्स का होता है कि इसमें पानी का कंजर्वेशन हो रहा है, पानी वेस्ट नहीं जाता है। दूसरा फायदा, क्योंकि इसमें मिट्टी नहीं है तो इसमें कोई किसी भी तरह का इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल नहीं किया जाता है और जो भी वेजिटेशन होता है वो काफी अच्छा होता है क्योंकि इसमें कोई भी केमिकल्स और पेस्टिसाइड्स नहीं होते हैं जो हमारे शरीर के लिए भी काफी ज्यादा बेनिफिशियल होते हैं। और सबसे बड़ी बात, आप अपनी छोटी सी जगह में अपने छत पर फार्म बना करके अपने बालकनी में ज्यादा से ज्यादा सब्जियां ग्रो कर सकते हैं और उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बेसिल लीव्स है जो मैंने छत पर लगा रखा है हाइड्रोपोनिक्स के तरीके से। कितने इजीली मैं इसको निकाल रहा हूं और कितने अच्छे तरीके से, कितना हेल्दी ये ग्रो किया हुआ है। इतना अगर हम नॉर्मली ग्रो करते हैं तो शायद इतना ग्रोथ नहीं मिल पाता। हाइड्रोपोनिक्स में सारी चीजें उनको आसानी से अवेलेबल हो जाती हैं। इसी तरह से मैंने ये बैम्बू प्लांट लगा रखा है। यहां पे ये पूरा सेक्शन प्याज का है। इस सेक्शन में हमने पालक

0: देख रहे हैं कि किस तरीके से लोग आते हैं, इसको जानते हैं और सोचते हैं कि वो इस नई तकनीक को अपने घर पे भी यूज करें। हाइड्रोपोनिक्स को आप कहीं पर भी किसी भी तरीके से कैसे भी इंडोर में आउटडोर में कर सकते हैं।
1: हम यहाँ पर हाइड्रोपोनिक्स फार्मिंग के बारे में सीखने आए हैं, जो हमारे ट्रेडिशनल फार्मिंग थे सोयल के, सोयल में जिसे हम ग्रो करते थे, बट यहाँ पर हम लोग सोयललेस फार्मिंग के बारे में सीखने आए कि कैसे हम लोग छत पे इंडोर में ग्रो कर सकते हैं किसी भी प्लांट को, किसी भी सीजन में क्लाइमेट को कंट्रोल करके।
2: यहाँ मैं रेगुलर विजिट के लिए आती हूँ, मुझे यहाँ आके बहुत अच्छा लगता है क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लीफी वेजिटेबल्स, ऑर्नामेंटल्स, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हम लोग लगाते हैं और उसका हार्वेस्ट करते हैं।

0: हाइड्रोपोनिक्स में हम डिफरेंट मीडियाज यूज कर सकते हैं, कोकोपीट, क्ले बॉल्स, वर्मी प्लेट एक्सेट्रा, बहुत सारे यूज करा। आप मेरे पीछे भी देख सकते हो भिंडी है, तो वहां पे भी हमने कोकोपीट यूज किया है, क्ले बॉल्स यूज किया है, एंड उसके लिए पानी की अवेलेबिलिटी के लिए एक बकेट रखा हुआ है नीचे, और पाइप के थ्रू वो पानी अब्सॉर्ब करता है प्लांट्स। तो उसमें हम लोग जितना भी मतलब प्लांट्स के लिए न्यूट्रिएंट्स चाहिए होता है हम उतना ऐड करते हैं पानी में, डिजोल्व करते हैं। इट्स बीन लाइक 1 month हो गए हैं इसको, आप देख सकते हैं फ्रूट्स ऑलरेडी आ गए हैं, वेजिटेबल्स आ गए हैं, बिटरगार्ड सब कुछ आ गए हैं। आप यहाँ देख सकते हैं ये मेरी पॉली हाउस है, पॉली हाउस में मैंने ग्रीन चिल्लीज ग्रो किया हुआ है डच बकेट में। यहाँ पे आप देख सकते हैं 8 feet की है ग्रीन चिल्लीज, क्योंकि इसमें ये होता है रूट सिस्टम और शूट सिस्टम होते हैं, जो कि ट्रेडिशनल फार्मिंग है। जब हम सॉइल में करते हैं तो उसमें क्या होता है, उसमें रूट्स को न्यूट्रिएंट्स के लिए सर्च करना पड़ता है, पर यहाँ पे क्या है डच बकेट में हम लोग न्यूट्रिएंट्स, आप देख सकते हैं टैंक है मेरे पीछे, टैंक में वाटर और न्यूट्रिएंट्स हम इसमें ऐड करते हैं, और यहाँ से पाइप कनेक्टेड है सारे डच बकेट में, और उसमें से प्लांट्स को न्यूट्रिएंट्स और जितना भी उनको वाटर चाहिए सफिशियंट वाटर मिलती है। आप अभी देख सकते हैं ब्यूटीफुल बैकग्राउंड है, ये मेरे वन ऑफ माई फेवरेट स्पॉट है यहाँ मेरे फार्म में, और मैं मोस्ट ऑफ द टाइम यही स्पेंड करती हूँ, क्योंकि यहाँ बहुत अच्छी शेड है और आप देख सकते हैं सीनरी भी बहुत अच्छी है यहाँ की। तो मैंने ये यहाँ पे मस्कमेलन और बिटरगार्ड मैंने ग्रो किया है थ्रू सेम प्रोसेस, हाइड्रोपोनिक्स थ्रू ही मैंने ग्रो किया है। आपने मस्कमेलन और करेला देख लिया होगा, अब आप देख सकते हैं टोमेटोज। मैंने पहले स्टार्ट किया था बालकनी में स्टार्ट किया था मैंने, फिर मैंने सोचा कि क्यों नहीं मैं अपने फार्म को थोड़ा बड़ा कर दूं, तो मैंने अभी स्टार्ट किया। ये मेरी पॉली हाउस है, यहाँ पे मैंने बहुत सारे वाइन क्रॉप्स लगाए हैं। वाइन क्रॉप्स वो होते हैं जो क्लाइम करती है, तो इसको हम एक सपोर्ट के थ्रू ग्रो करते हैं। जब वो बड़े हो जाते हैं तो ऐसे रॉप्स बने हुए ऊपर इसको टाई कर देते हैं प्लांट्स को इस पे, तो ये सपोर्ट मिलती है उसको। तो आप देख सकते हैं बहुत सारे टोमेटोज अभी हार्वेस्ट हो गए हैं, 1 round अभी फ्लावरिंग हुई है इसकी, फ्लावरिंग स्टेज पे है अभी। तो इसके जितने भी न्यूट्रिएंट्स चाहिए वो अभी टैंक से कनेक्टेड है, और मेन चीज ये डच बकेट की ये है, बेनिफिट ये है कि अगर कोई भी एक क्रॉप अगर हमारी खराब होती है तो इट्स इजीली रिप्लेसेबल। हम यहाँ से इसको ये पाइप जो कनेक्टेड है इसको निकाल के हम रिप्लेस कर सकते हैं दूसरे अच्छे प्लांट्स के साथ।
1: ये हमारा बालकनी एरिया है मेरे घर का, यहाँ पे मेरे 60 डच बकेट्स लगे हुए हैं और इसमें मेरे लगभग 60 प्लांट्स हैं। इसमें हमारे कैप्सिकम है, एक प्लांट है, चिलीज है, और NFT चैनल्स का एक पूरा सेटअप है। इससे पहले भी हम यहाँ छत अपनी बालकनी में गार्डनिंग करते थे, और गार्डनिंग में हम यूज करते थे अपना सोइल के थ्रू। उसमें प्रॉब्लम्स क्रिएट होने लगी, क्योंकि अगर हम घर पर नहीं है और आउट ऑफ स्टेशन गए हुए हैं तो उसके अंदर वाटरिंग कैसे करेंगे, अगर टेम्परेचर हाई है तो प्रॉब्लम्स क्रिएट होने लगी, जिससे हमारा सिस्टम जो उसके अंदर फ्लावरिंग लगे हुए या प्लांट्स कोई भी क्रॉप लगा हुआ वो सब डेड हो जा रहा था। आफ्टर दैट हमने सोचा कि हम ऐसा कुछ किया जाए जिससे कि हमारे प्लांट्स डेड ना हो, तब हमने सोइललेस फार्मिंग के बारे में पता चला, तब हमने उस पर स्विच किया। अभी हमारा यहाँ पे आप देख रहे हैं पूरा ग्रीन्स है। ये मेरा जो एक प्लांट है इसकी एज हो गई है 5 months, इसको मैं एक बार पूरा हार्वेस्ट कर चुका है, अब नई क्रॉप आ रहा है, नए फ्रूट्स आ रखे हैं इसके ऊपर। एक प्लांट का वेट रहता है 400 के अराउंड, एक प्लांट में से निकल जाता है, एक वेट होता है। और जो पूरा सिस्टम है हमारा ये थ्रू रन होता है हमारे एक न्यूट्रेंट्स के ऊपर। ये हमारा न्यूट्रेंट्स टैंक है जहाँ पे हम सप्लाई करते हैं इसको फीड,

के हम अंदर न्यूट्रिएंट्स पुट करते हैं, ये वाटर के अंदर हम उसको मिक्स करते हैं, जो हमारे एक प्लांट के लिए फूड का वर्क करता है। तो इसमें हम टू टाइप्स का न्यूट्रिएंट्स मिक्स करते हैं, न्यूट्रिएंट्स ए न्यूट्रिएंट्स बी। एक्चुअली वो मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं आपके एनपीके, और बाकी जो आपके कैल्शियम मैग्नीज कॉपर हुआ वो सब मिक्स करते हैं। उसको हम चेक करते हैं कि हमें किसी प्लांट की रिक्वायरमेंट कितनी है, उसको हम मेजर करते हैं उस प्लांट के लिए क्या रिक्वायरमेंट है इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी के थ्रू। तो हम अपने इस मीटर के थ्रू जब हम इसको मिक्स करते हैं पानी के अंदर अपने न्यूट्रिएंट्स को, तो चेक करते हैं कि उसका रिक्वायरमेंट प्लांट का जो इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी है वो कंप्लीट हुई या नहीं, तो उसके अकॉर्डिंग हम इसमें न्यूट्रिएंट्स मिक्स करते हैं। तो जैसा हमारा एक प्लांट्स रहता है उसकी रिक्वायरमेंट रहती है 2.0 मिली सिलिकॉन से लेके 4 मिली सिलिकॉन तक, इसी की रहती है। तो हम चेक कर लेते हैं, जो एक प्लांट की रिक्वायरमेंट होती है वो हमारा 1.5 से 4 पॉइंट तक हम इसको इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी या न्यूट्रिएंट सप्लाई है वो करते हैं। एक्चुअली जब फ्लोटिंग होता है तो उसको हाई न्यूट्रिएंट्स हम फीड करते हैं अपने एक प्लांट्स को, हाई न्यूट्रिएंट्स फिक्स करना होता है एक प्लांट्स के लिए। तो उससे क्या होता है, उसका फ्रूटिंग जो है वो हैवी होता है और जो उसका क्वालिटी होती है वो अच्छा होता है। मेरे बालकनी एरिया में मैंने एक अपना सिस्टम्स लगाया है हर्ब्स के लिए, ये मेरा NFT सिस्टम्स है पूरा है। इसके अंदर मैंने अपने बेसिल्स उगाया, अभी मैं यहाँ पर अपना मिंट कोरिएंडर्स जो मुझे एक घर के लिए रिक्वायरमेंट होती है मैं पूरा यहाँ पे ग्रो कर सकता हूँ। अभी मेरा इसमें बेसिल्स है, इस बेसिल्स की जो है लाइफ हो गई है, जो साइकिल है अभी इसको 2 मंथ्स हो गए हैं। मैं इसको 2 टाइम्स हार्वेस्ट कर चुका हूँ और ये फिर से हार्वेस्ट करने के लिए रेडी है। मैं इसकी क्लिप्स को हार्वेस्ट करता हूँ, फिर मैं इसको जो होता है इसे क्लिप्स को हार्वेस्ट करने से क्या होता है, इसकी न्यू ब्रांचेस यहाँ से निकल जाएंगी और मुझे नेक्स्ट टाइम जो इसके क्रॉप आएगी वो और ज्यादा हैवी रहेगा। और ये जिसके अंदर है लगा हुआ ये सिस्टम, ये इसको NFT चैनल बोलते हैं, ये HDPE का मैन्युफैक्चरिंग होता है। और मुझे क्या होता है इसमें, ये मेरे पास नेटपोर्ट्स हैं जो इसको सपोर्टिंग और होल्डिंग करने, प्लांट को होल्ड करने के लिए यूज करते हैं। ये मैंने निकाला, ये इसकी रूट्स हैं जो मेरा वाटर है उसके अंदर डीप रहती है, जो यहाँ से अपना न्यूट्रिएंट्स जो इसको रिक्वायर होता है वो फीड यहाँ से लेता है। और जनरली जो प्लांट के बीच का डिस्टेंस रहता है वो 6 इंच रहता है एक प्लांट टू दूसरे प्लांट्स के बीच में, और हम इसको नेटपोर्ट्स बोलते हैं। और इस नेटपोर्ट्स में हम इसको ट्रांसप्लांट करते हैं, फर्स्टली हम जो इसका सीड्स होता है उसको सोइंग करते हैं, ट्रे आता है कोकोपीट के अंदर, उसको हम सीड्स को सोइंग करते हैं आफ्टर द जर्मिनेशन 10 to 12 days बाद हम प्लांट को ट्रांसप्लांट कर देते हैं अपने मेन सिस्टम के अंदर। यहाँ पे हम इसको फीड करते हैं न्यूट्रिएंट सप्लाई, जो ये लीफी ग्रीन्स जो हमारा हर्ब्स है उसकी रिक्वायरमेंट होती है न्यूट्रिएंट्स की वो हार्डली 1 से लेके 1.2 होता है। अभी जो इसका इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी है वो हम मेजर कर लेते हैं, जो हमारा कंटेनर है इसको हम फिल कर देते हैं, टॉप अप करते हैं वाटर से। फर्स्ट टाइम टॉप अप करने के बाद हम इसमें इसी मिक्स कर सकते हैं, जो हमारा न्यूट्रिएंट हम सॉल्यूशन इसके यूज करते हैं वो 5 ml पर लीटर होता है। मींस अगर मेरे टैंक का साइज अगर 20 लीटर है तो हम इसमें 5 ml पर लीटर के हिसाब से, यानी कि 100 ml इसमें न्यूट्रिएंट ए और 100 ml न्यूट्रिएंट बी मिक्स करता हूँ। उसके बाद क्या होता है, इसमें जो पंप लगे हुए हैं जो इरिगेशन होता है इसका वो एक टाइमर्स के थ्रू होता है, ये हमेशा इरिगेशन नहीं होता, ये 1 hour में 10 मिनट्स ऑन रहता है और ये 50 मिनट्स ये सिस्टम ऑफ रहता है। ये हमारा 24 hours भी रन नहीं करता, हम इसको मॉर्निंग 6 AM ऑन करते हैं और 7 AM ये ऑफ हो जाता है। एक्चुअली पूरा ऑटोमेशन पे वर्क करता है, जो हमारे टाइमर होते हैं उसमें हम टाइम फिक्स कर देते हैं, वो 6 AM पे ऑन होता है और 7 PM पे ऑफ हो जाता है। जो इरिगेशन पाइप्स होते हैं जहाँ से इसका पानी इनलेट होता है वो ये है, जब ये ऑन होता है तो यहाँ से वाटर इसका रन स्टार्ट हो जाता है और ये यहाँ से पूरे चैनल्स के थ्रू पानी वहां तक जाएगा और फिर जो ये दूसरे होल्डिंग पाइप है उनके थ्रू ये नीचे आ जाता है और फिर वापस से ये पूरा सर्कुलेशन होने के बाद हमारे न्यूट्रिएंट्स टैंक में वापस से कलेक्ट हो जाता है। और ऑलमोस्ट मेरे यहाँ पे इतना प्रोडक्शन हो जाता है क्रॉप का, मैं अपने आप यूज करने के बाद जो मेरे पड़ोसी हैं उन सबको डिस्ट्रीब्यूट कर देता हूँ। और ये इनकी जो क्वालिटी है इस हाइड्रोपोनिक्स के थ्रू जो प्रोड्यूस हमारा हो रहा है उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है कंपैरिजन टू सोइललेस फार्मिंग, और उसका क्रॉप प्रोडक्शन भी बहुत ज्यादा होता है। और मुझे सबसे अच्छा बेनिफिट्स ये मिला है, अगर मैं घर पर नहीं हूँ और तो मेरा जो सिस्टम है वो मेरे बिना भी चलता रहता है, क्योंकि ये ऑटोमेशन के थ्रू रन होता है। जो इसको वाटर रिक्वायरमेंट होती है, न्यूट्रिएंट्स रिक्वायरमेंट होती है, वो एक टैंक के थ्रू रन होता रहता है इरिगेशन सिस्टम में, तो मुझे बार बार चेक करना नहीं पड़ता है कि उसमें वाटरिंग की जरूरत है या नहीं है, ये अच्छे से अपना रन करता रहता है। और जो कभी प्रॉब्लम्स आती है तो हो सकता है कि इलेक्ट्रिसिटी की वजह से हो सकता है, लेकिन बाकी बहुत अच्छे से रन करता है।

अभी हमने आपको अपना रूफटॉप फार्मिंग दिखाया और बालकनी में जो गार्डन था वो दिखाया। मेरे पास अभी हॉल में भी कुछ स्पेस बचा हुआ था, यहाँ पे भी मैंने अपने हाइड्रोफोनिक्स के थ्रू अपना एक पूरा सेटअप लगाया हुआ है जो पूरा रन होता है हाइड्रोफोनिकली। अब मैं आपको बताता हूँ कि हम लोग इसमें कैसे सोइंग करते हैं, उसके बाद जर्मिनेशन होने के बाद अपने जो सीडलिंग रेडी होता है उसको कैसे ट्रांसप्लांट करते हैं अपने मेन सिस्टम के थ्रू। हम क्या करते हैं, जो हमारा ये ग्रो ट्रे है इसमें हम सोइंग करते हैं, हम यूज करते हैं कोकोपीट।

ये मेरे पास बेसिल्स के सीव्स हैं जिसको मैं अभी सोइंग करना है मुझे अपनी प्रो ट्रे के अंदर। मैं एक हॉल में 2 से 3 सीड्स यूज करूंगा सोइंग के लिए। मैं इसमें सोइंग करूंगा अब 2 से 2 से 3 सीड्स, और सोइंग करने के बाद मैं इसे कोकोपीट को थोड़ा पुश करने के बाद सीड्स डाल रहा हूं, और जब मैं पूरी ट्रे को इसको सीड से फिल कर दूंगा उसके बाद फिर से मैं इसको ऊपर हल्का सा स्प्रिंकलर करूंगा अपना कोकोपीट। अब मेरा सोइंग रेडी है। अब मैं इस सोइंग हुए ट्रे को ड्रॉक में रख दूंगा। मैं इसको यूज करता हूं अपने सिस्टम में, यहां पे रख दूंगा। अभी जा तो मेरे सोइंग सीड्स जो हैं वो 2 दिन बाद जर्मिनेट हो जाएंगे। मैं इसको फिर हार्डनिंग के लिए बाहर निकालूंगा। जब वो मेरे सीड्स जर्मिनेट हो जाते हैं तो मैं हार्डनिंग के लिए उसको फर्स्ट स्टेज में यहाँ पे जैसे मेरे दूसरे सीड्स रखे हुए हैं यहाँ पे रखता हूँ इस तरीके से। यहाँ पे मेरे पास नेचुरल लाइट नहीं है, मैं यहाँ पे मैंने हार्डनिंग के लिए आर्टिफिशियल लाइट्स यूज की है जो यहाँ पे लगे हुए हैं। इस जो पर्टिकुलर स्पेक्ट्रम रिक्वायर्ड होता है तो किसी भी क्रॉप के लिए वो हमने यहाँ पे यूज किया हुआ है। तो हम हार्डनिंग इसको ट्रे के लिए हम यहाँ पे फर्स्ट स्टेज होता है यहाँ पे इसको हम हार्डनिंग के लिए रख देते हैं। आफ्टर 2 से 3 डेज हम इसको ट्रांसप्लांट करते हैं नर्सरी में। आफ्टर हार्डनिंग 4 से 5 डेज हमारा जो सीडलिंग है वो रेडी हो जाता है ट्रांसप्लांट के लिए हमारे नर्सरी सिस्टम में। क्या होता है, हम उसको स्टार्ट करते हैं न्यूट्रिएंट्स देना। तो उसको हम पहले हैबिचुअल बनाते हैं कि उसको न्यूट्रिएंट्स का हैबिचुअल हो जाए। तो हम उसमें फर्स्ट को जो हमारी सीडलिंग रेडी है उसको ट्रांसप्लांट करते हैं अपने नर्सरी सिस्टम में। ये मेरा रेडी हो चुका है ट्रांसप्लांट के लिए। अब मैं आपको दिखाता हूं इसको हम ट्रांसप्लांट कैसे करते हैं नर्सरी सिस्टम में। मेरा सीडलिंग रेडी है, ये लेटस का सीडलिंग है, रेडी है। मैं इसको ट्रांसप्लांट कर रहा हूं अपने नर्सरी सिस्टम के अंदर। अभी मैं क्या करता हूँ, यहां से इसको क्लिप करता हूँ उस प्लांट को। ये कोकोपीट में है, इसका कोकोपीट में रिमूव कर लेता हूँ। इसको मैंने मूव किया कोकोपीट को, और ये मेरा नेट कप है। और उसके बाद मैं इसको सपोर्टिंग मीडिया के लिए यूज करता हूँ क्ले बॉल्स। ये मेरा क्ले बॉल्स है। ये मैंने अपना प्लांट इसके अंदर पुट किया है। मैं अब क्ले बॉल्स इसके अंदर डाल दे रहा हूं। अभी मेरा प्लांट रेडी है नर्सरी सिस्टम में ट्रांसप्लांट करने के लिए। मैं अब इस प्लांट को जो मेरा ये नर्सरी सिस्टम है यहाँ पे ट्रांसप्लांट करता हूँ। यहाँ पे मैंने इसको ट्रांसप्लांट कर दिया है। अभी यहाँ पे इसको क्या है, हम न्यूट्रिएंट देना स्टार्ट करते हैं। अभी ये क्या न्यूट्रिएंट्स पे नहीं था, अभी सिंपल इसको हम आरओ वाटर यूज कर रहे थे। अभी हम इसको न्यूट्रिएंट देना स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे हम इसको इस सिस्टम के अंदर 5 से 6 डेज रखेंगे, फिर उसके बाद ये ट्रांसप्लांट हो जाएगा हमारा मेन सिस्टम, जहां से हम इसको 10 डेज बाद हार्वेस्ट कर देंगे। मैंने सीडलिंग को ट्रांसप्लांट कर दिया है अपने नर्सरी सिस्टम के अंदर। यहाँ पे हम उसको जो हमारे सीडलिंग है उसको न्यूट्रिशन देना स्टार्ट करते हैं। इनिशियल स्टेज में उसको हम बहुत कम न्यूट्रिएंट्स देते हैं, तो मैं आपको अभी दिखाता हूँ। उसका बहुत लो लेवल का EC रहेगा। उसके बाद 4 से 5 दिन के बाद हम इस जो हमारी सीडलिंग है उसको ट्रांसप्लांट करते हैं मेन सिस्टम के अंदर, जहां पे उसका EC थोड़ा हाई रहता है। अभी मैं जो ये सिस्टम है इसका आपको चेक कराता हूँ कि कितना इसका इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी है। ये न्यूट्रिएंट वाटर लिया है मैंने उसके टैंक से। हमने यहाँ पे ये EC मीटर है इसके थ्रू तो इसको चेक कर रहे हैं। अभी इसका EC 461 है, तो हम इसका EC इनिशियल स्टेज पे इतना ही रखते हैं 0.2 से 0.5 तक। अभी ये स्टार्ट हुआ है। अब इसको 4 से 5 डेज बाद जब हम इसको यहाँ से ट्रांसप्लांट करते हैं अपने मेन सिस्टम के अंदर, वहां पे EC इसका हम रखते हैं 0.8 से 1.2 तक। तो अभी इसको यहाँ पे न्यूट्रिएंट का हैबिचुअल हो जाएगा ये। मेन सिस्टम में प्लांट को ट्रांसफर करने के बाद इसकी एज जो होती है 16 डेज होती है, लेकिन जब हम नर्सरी से यहाँ ट्रांसफर किया इसको 4 डेज हुआ है, तो अभी इसका रूट डेवलपमेंट स्टार्ट हो गया है यहाँ पर। ये मेरे वॉल माउंटेड सेटअप में जिसमें 32 प्लांट्स लगाए हैं मैंने अपने लिए लगाया। यहाँ पे मुझे थोड़ा सुंदर दिखाना है तो मैंने यहाँ पे कॉलेज के फ्लावरिंग प्लांट लगाए हैं, तो मैं आपको दिखाता हूँ। ये बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे लगने के बाद। ये मेरा कॉलेज का प्लांट है। ये यहाँ पे अगर मुझे इसका डेड हो जाता है तो मैं इसके लिए होता है क्या, मैं इसकी ब्रांचेस को भी ऐसे यूज कर सकता हूँ नई सीडलिंग के लिए। ये मेरी ब्रांचेस हो गई है, मैं इसको अपने कोकोपीट या अपने नेट कप में भी ऐसे ही लगा दूंगा। तो कुछ दिन बाद इसका रूट डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाता है, फिर से मैं इसको एज ए न्यू प्लांट यूज कर सकता हूँ। मैं पहले सोइल फार्मिंग कर रहा था,
तो सोइल से मैंने गार्डनिंग भी किया है, मुझे उसमें जो प्रोड्यूस लेता था उसकी क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं थी एज कम्पेयर टू हाइड्रोफोनिक्स। जब मैं हाइड्रोफोनिक्स यूज कर रहा हूँ तो मेरी क्वालिटी जो है प्रोड्यूस की बहुत अच्छी है, जो प्रोडक्शन है उसका बहुत ज्यादा होता है कम्पेयर टू मेरे गार्डनिंग जो मैं सोइल में करता था। हम छोटे स्पेस में बहुत ज्यादा प्लांट ग्रो कर सकते हैं और वाटर कंजर्व होता है उसके अंदर, लेस वाटर रिक्वायर होता है, और सबसे अच्छा हम बहुत कम पेस्टिसाइड यूज करते हैं इसको रन करने के।

0: सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांडिया भील 90.8 FM। आपड़ो रेडियो आपड़ी बातें।
1: जब आप छत पर जाएंगे बागवानी करने के लिए और परंपरागत तरीके से करेंगे तो जैसे मिट्टी में आप क्या करेंगे, मिट्टी किसी गमले में भरेंगे या ट्रे में भरेंगे या कोई बेड बनाएंगे, उसका अपना वजन बहुत ज्यादा होगा। तो उन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए अगर हमारे जो लोग हैं अगर अपने छत पर बागवानी करना चाहते हैं तो एक मृदा रहित खेती, ये हमारी सब्जी उत्पादन की एक नई तकनीक है। इस तकनीक में हम मिट्टी की जगह विभिन्न चीजों का मिश्रण प्रयोग करते हैं। इसके प्रयोग से ये होगा कि जो मिट्टी में अपनी जनित बीमारियां हैं वो आपके फसलों तक नहीं जाएंगी, और दूसरा आपकी छत पर अलग से लोड नहीं पड़ेगा, और तीसरा है कि आपको जो मिट्टी ढोनी पड़ रही है इधर से उधर वो भी काम नहीं करना पड़ेगा।

0: भारत में जो सब्जियों का हम इस्तेमाल करते हैं, जैसे गांठ गोभी है, गांठ गोभी के अलावा मेथी है, लाल पत्ता गोभी है, मूली है, मटर है, अजवाइन है और चुकंदर है, ये इस तरह की सारी सब्जियां हैं जो हम इनका भी इनको छत पे अपनी उगा सकते हैं या बालकनी है आपकी बालकनी में उगा सकते हैं। ये जो विदेशी सब्जियां हैं अधिकतर आजकल फैशन में आ गई हैं और काफ़ी महंगी मिलती हैं। आप दिल्ली के INA मार्केट में जाएं या खान मार्केट में जाएं तो वहां पे मिल जाती हैं, लेकिन इनकी जो उपलब्धता है एक तो वो ताज़ी नहीं होती है और जो उपलब्ध भी होती हैं वो काफ़ी महंगी प्राइसेस पे आपको मिलती हैं। तो यहां पे आप देखिए स्विस चार्ड है जो एक तरह का पालक ही है, विदेशी पालक कई रंग में आता है, लाल, पीला, हरा, सफ़ेद, तरह तरह के पौधे होते हैं और इसमें जो न्यूट्रिशन है, जो पोषण क्षमता है, वो जो हमारी सामान्य पालक है उससे कई गुना ये ज़्यादा होता है। दूसरा आप देख रहे हैं कि ये लेट्यूस है जो इसी तरह आप उगा सकते हैं चाहे अपनी छत पे या बालकनी पे और इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो लेट्यूस जो है, लेट्यूस भी काफ़ी महंगा आता है आजकल, चाहे पिज्जा हो, बर्गर हो, हर जगह लेट्यूस लोग पसंद करते हैं। ये पाकचोई है तो पाकचोई भी आप उगा सकते हैं और इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि वैसे तो ये एक कोरियन वेजिटेबल है और एक जो किमची एक डिश बनती है जिसका कि ये मुख्य अवयव होता है, तो इसको जो लोग पसंद करते हैं वो अपने किचन गार्डन में उगा सकते हैं। इसके अलावा भी हमारे पास केल है, इसकी पोषण जो क्षमता है, पोषक तत्व जिसमें है, वो भी पालक से या दूसरी जो हरी सब्जियां हैं उनमें बहुत ज़्यादा होती है केल के अंदर। इसके अलावा जो लीफ चिकोरी है, लीफ चिकोरी को आप उगा सकते हैं, पासले उगा सकते हैं, सेलरी उगा सकते हैं, किसी भी आप जो विदेशी सब्जियां हैं उनमें से किसी का भी आप नाम लीजिए, उस सब्जी को आप अपने छत पर अपनी बालकनी में उगा सकते हैं। जैसे जिन लोगों के पास जगह बहुत ही कम है, अगर उनके पास, मैं कह रहा हूँ कि अगर 3x3 की बालकनी है और उस तरह की बालकनी जिसमें कि वो अपना उगाना चाहते हैं, धूप आती है, तो वहाँ पे वो इस तरह की ट्रे का इस्तेमाल कर सकते हैं। ट्रे में चाहें तो वो सीधे ही मीडिया भर के और उसमें पौधे लगा दें या फिर छोटे गमलों का इस्तेमाल कर सकते हैं। ट्रे के अंदर 4 इंच के गमले आप रख दीजिए और उन ट्रेज को आप बाहर बालकनी में रख दीजिए, उसमें आप कोई भी चाहे पालक हो, लाल चौलाई है, हरी चौलाई है, लेट्यूस है, सेलरी है, पाकचोई है, जो भी आप लगाना चाहें उसको ट्रे में लगा दीजिए और फिर आप बाहर रख दीजिए। और ट्रे में ये सुविधा होगी कि आप जैसे अगर कोई बहुत तेज बारिश हो जाती है तो आप उस ट्रे को सही थी, गमले तो उठाने में दिक्कत होगी अलग अलग, तो आप सीधे ट्रे के साथ ही आप उसको अंदर ले जा सकते हैं। और अगर जो आप खाद या पानी इस्तेमाल करते हैं तो वो भी आप ट्रे में डाल देंगे तो ट्रे से ही वो गमले के माध्यम से पौधे को प्राप्त हो जाएगी। तो इससे बाहर जो है वो, क्योंकि बालकनी छोटी है तो कीचड़ भी नहीं होगा और आपके जो पौधों की जो ज़रूरत है वो भी पूरी हो जाएगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो पुदीना की है लगा हुआ है जो आपको अधिकतर गर्मियों में उपलब्ध होता है, लेकिन अगर आप छत पे बागवानी कर रहे हैं और वो सॉइललेस में कर रहे हैं तो आप पुदीना जो है उसकी चटनी आप सर्दियों में भी खा सकते हैं। तो बस थोड़ी सी आपको सहूलियत ये बरतनी होगी कि आप जो पुदीना की है वो थोड़ा सा छाया में कर दें, छाया का मतलब जहाँ पे जो पाले का असर ना हो, तो अगर वहाँ पे ठंडक उतनी नहीं रहेगी तो पुदीना जो है आपको मिल सकता है। यहाँ पे दूसरी आप देख सकते हैं ये जो हमारी लाल मूली होती है, गोल वाली मूली, फ्रेंच ब्रेकफास्ट टाइप की, वो मूलियाँ लगी हुई हैं, इनको भी आप अपने उसमें उगा सकते हैं, छत पे उगा सकते हैं, क्योंकि ये 30 दिन में तैयार हो जाती है। तो आप किसी भी, चाहे आप ट्रे में लगाएं या पॉट में लगाते हैं, तो आप उसके बाद 30 दिन में आप इसको निकाल लीजिए, उसके बाद आप दूसरी फसल लगा सकते हैं। तो आप इसको लगभग साल भर आप इस तरह की मूलियां जो हैं वो इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे चुकंदर भी है, शलजम भी है और मटर भी लगी हुई है। तो आप अगर मटर अपने घर पर उगाना चाहते हैं तो आप मटर भी अपने घर पर उगा सकते हैं, लेकिन मटर में एक थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए क्योंकि मटर को ज़्यादा पानी की आवश्यकता नहीं होती है, तो इसलिए इसको पानी थोड़ा कम दें। ज़्यादा पानी देने से इसमें जो जड़ गलन होती है वो रोग आ जाता है, तो उससे वो पौधे मर जाते हैं, इसलिए पानी का एहतियात बरतें। अगर आप लोग घर में अपने औषधीय पौधे या मसाले वाले पौधे भी लगाना चाहते हैं तो आप उनको भी लगा सकते हैं। जैसे आप देखिए यहाँ पे अजवाइन लगी हुई है, सौंफ है, तो सौंफ और अजवाइन को भी आप अपने घर में लगा सकते हैं, या मेथी लगा सकते हैं, या कुछ और भी मसाले वाले पौधे हैं जो कि हमारे जलवायु में हो सकते हैं उनको आप लगा सकते हैं। अब जैसे ये अजवाइन है, जिन लोगों ने अजवाइन का पौधा नहीं देखा होगा, शहरों में रहते हैं, उन्हें तो पता नहीं होगा कि इसमें अजवाइन कहाँ से लगती होगी। तो जब ये पौधा अभी छोटा है, अभी जब पौधा पूरा बढ़ेगा उसके बाद फूल आने लग जाएगा, फूल आएगा तो फिर जैसे गाजर में फूल आते हैं उसी तरह का अम्बल इसमें आएगा, उसके गाजर की तुलना में वो छोटा होता है और उसी के अंदर एक छतरी जैसी, उल्टी छतरी जैसी बनती है और उसी में किनारे किनारे वो बीज लगते हैं, तो वो इसके अजवाइन के बीज होते हैं। इसी तरह सौंफ भी होती है, सौंफ में भी उसी तरह पौधा आगे बढ़ेगा और उसमें जो है वो बीज लग जाते हैं ऊपर की तरफ। तो इस तरह आप अपने यहाँ हर तरह के पौधे, चाहे वो सब्जियाँ हों या जो मसाले हैं या औषधीय जो हर्ब्स हैं, आप उन किसी की भी तरह की भी खेती जो है आप अपने छत पे कर सकते हैं और उससे फायदा उठा सकते हैं।
1: मृदा रहित खेती, ये हमारी सब्जी उत्पादन की एक नई तकनीक है। इस तकनीक में हम मिट्टी की जगह विभिन्न चीज़ों का मिश्रण प्रयोग करते हैं, जैसे एक नारियल का बुरादा है जिसको कोकोपीट कहते हैं, एक वर्मी कुलाइट है, एक परलाइट है। इन तीनों चीज़ों को विभिन्न अनुपात में मिलाते हैं और अनुपात में मिलाकर इसको गमले में या ट्रे में भरकर आप छत में रख सकते हैं और विभिन्न प्रकार की सब्जियों को पैदा कर सकते हैं।
0: जो है हाइड्रोपोनिक्स या जल में खेती जिसको कहते हैं, उस पर भी अनुसंधान कार्य कर रहे हैं और इसमें जो है कि फसल जो सामान्य बाहर जो हम फसल लगाते हैं उससे कई गुना ज़्यादा उत्पाद हमें प्राप्त होता है, लेकिन इस पर अभी अनुसंधान कार्य ही चल रहा है और निकट भविष्य में ये संभव होगा कि हम जितनी भी तरह की पत्तेदार सब्जियाँ हैं जैसे लेट्यूस है, पाकचोई है, सेलरी है या इस तरह की जो दूसरी भी सब्जियां हैं उनको हम जो है कि हाइड्रोपोनिक्स में ही पैदा कर सकते हैं और एक बहुत अच्छी संभावना होगी कि जो आप किचन गार्डन करने वाले लोग हैं या छत पर जो लोग खेती करते हैं, बागवानी करते हैं, तो वो लोग छोटा सा हाइड्रोपोनिक्स का मॉडल जो है वो अपने किचन गार्डन में रख सकते हैं और उससे उनकी ज़रूरत की चीज़ें जो हैं वो उनको प्राप्त हो सकती हैं। यहाँ पर ये जो हाइड्रोपोनिक्स यूनिट है इसमें आप देख सकते हैं हम लोगों ने पाइप का इस्तेमाल किया हुआ है और पाइप में जो है जगह जगह पर लगभग एक 30-30 सेंटीमीटर की दूरी पर कुछ छेद काटे गए हैं। इसमें हमने पाइपों का इस्तेमाल किया है, कुछ 60 सेंटीमीटर के हैं, कुछ 75 सेंटीमीटर के हैं, कुछ 90 सेंटीमीटर के भी पाइप हैं और उनमें जो छेद करे हुए हैं आप देख सकते हैं कि उनमें किसी में हमने कप का इस्तेमाल किया हुआ है।

0: कप के अंदर एक फोम है, फोम को इस्तेमाल किया गया है, फोम के अंदर पौधे को लगा देते हैं और उसके बाद वो फोम जो है वो कप में रख देते हैं ताकि इसको पौधे को सहारा मिलता रहे और पौधा इधर उधर नहीं जाए। और इन पाइप्स में हम पहले पानी का इस्तेमाल करते हैं और फिर पानी में ही जो हॉगलेट सॉल्यूशन होता है जिसमें पौधे के जो ज़रूरत के सभी पोषक तत्व होते हैं उन पोषक तत्वों को हम इसमें प्रवाहित करते हैं पाइप के अंदर। जल जितना भी हम इसमें इस्तेमाल करते हैं ये हम इसको दोबारा रिसाइकल करते हैं, इसलिए यहाँ पे पानी की भी बचत होती है आपकी और आपको उत्पाद जो है वो ज़्यादा मिल जाता है।
1: किसान साथियों, आज के खेती बाड़ी कार्यक्रम में जैसा कि आप लोगों ने आज पूरी तरीके से एक विपरीत कृषि के बारे में जाना, यहाँ पर हमें ना ही मिट्टी की आवश्यकता पड़ी ना हमें किसी खेत की आवश्यकता पड़ी। जी हाँ किसान साथियों, यहाँ आज के इस प्रोग्राम में आपने सुना कैसे हम हाइड्रोपोनिक फार्मिंग की सहायता से बिना मिट्टी के कृषि कर सकते हैं। हम पानी का इस्तेमाल करके उस पानी में उपयुक्त तत्वों को, उपयुक्त खनिजों को डालकर कैसे हम बिना मिट्टी के भी अच्छी से अच्छी और तंदुरुस्त फसल को उगा सकते हैं और अपने अपने छत पर ही, अपने टेरेस पर ही, अपनी बालकनी में ही इस फार्मिंग को आसानी से कर सकते हैं और अपने रोज दिन की जो सब्जियां हैं उसे अपने टेरेस से, अपने बालकनी से हम ले सकते हैं। तो इसी के साथ किसान साथियों, यहां पर वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। आपसे पुनः कल मुलाकात होगी इसी समय इसी वक्त। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ रेडियो टांट्याबिल 90.8 FM के साथ, छबवा की आवाज।
2: सुनिए, क्या आपने पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के बारे में सुना है?
3: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
2: इससे आपका घर सूर्य घर बन जाता है, माने बिजली बिल जीरो, और अतिरिक्त बिजली पैदा हुई तो बिजली ग्रिड को बेचकर पैसे भी कमा सकते हैं। तो बैठे क्यों हो, अभी रजिस्टर करो पीएम सूर्य घर .gov.in पर।
4: हर घर

कभी हमने

0: अच्छा कौन है।
1: आज के कलाकार के इस तेजी से बढ़ते हुए मंच पर आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत है। हम स्वागत करते हैं उन सिंगर्स का, उन टैलेंट्स का, उन गायकों का, उन गायिकाओं का जो अपने टैलेंट का मजा ले रहे हैं और हम भी उनको पूरा पूरा प्रोत्साहित करने की कोशिश में लगे हैं। चलिए शुरू करते हैं और मिलते हैं आज एक और टैलेंट से। मैं समीर और मेरे दोस्त नितिन राज आपका स्वागत करते हैं।
0: हरगिज न यकीन था हमको अनहोनी बात होगी।
1: आइए दोस्तों, एक और टैलेंट, एक और गायक हमारे आज के कलाकार के इस बहुत ही खूबसूरत मंच पर। गणेश बालिका जी हमारे साथ हैं। गणेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है, आपका आभार कि आप आए हमारे सुनने वालों के लिए, हमारे श्रोताओं के लिए। अपना परिचय दीजिए, आप कहाँ से हैं, क्या करते हैं?
2: हाँ, मेरा नाम है डॉक्टर बी गणेश बालिका। मैं मैंगलोर के पास बंटवाड़, एक छोटा शहर, मैं आयुर्वेदिक वैद्य हूँ और मेरा क्लिनिक भी है इधर, और मैं एक गायक भी हूँ। बचपन से गाना मेरा शौक रहा है और अभी 2 बरस से मैं सरगम म्यूजिक स्कूल, एक म्यूजिक स्कूल रन कर रहा हूँ और बच्चों को संगीत की शिक्षा दे रहा हूँ।
1: बहुत खूब, अरे वाह। दोस्तों, आपने सुना हमारे पास जो टैलेंट है गणेश जी, वो एक आयुर्वेद डॉक्टर हैं, तो वो संगीत के प्रभाव से हमारे स्वास्थ्य का ख्याल रखते हैं। और मजेदार बात है कि नेचर से जुड़े होते हुए बहुत सारी नेचुरल चीजों से भी हमारे स्वास्थ्य का ख्याल रखते हैं। बहुत बहुत अमेजिंग, ये तो बहुत अच्छी बात हुई कि एक आयुर्वेदाचार्य आज हमारे बीच में है। हम सब लोग संपर्क में रह सकते हैं गणेश जी से, उनसे सलाह ले सकते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। चलिए फिर शुरू करते हैं इस प्यारे से प्रोग्राम को गणेश जी के ही गाए हुए इस बेहद बेहद खूबसूरत गीत से।

0: बहुत खूब, क्या शुरुआत है गणेश जी, शानदार। गणेश जी, अगर कोई व्यक्ति आयुर्वेद की क्षेत्र में, आयुर्वेद के एरिया में, चाहे वो पैरामेडिकल स्टाफ बने, चाहे वो डॉक्टर बने, अगर कोई आना चाहे प्रभावित होके, तो उस बच्चे को, उस व्यक्ति को क्या सलाह देना चाहेंगे आप?
1: संगीत के क्षेत्र में लगातार रियाज करना बहुत जरूरी होता है, और जो आयुर्वेदिक एक फील्ड है ना, ये एलोपैथिक से भी बहुत ऊंचा है, क्योंकि ये नेचुरल है, इसमें कोई केमिकल्स नहीं है। और ये फॉरेन में भी और दूसरे कंट्रीज में भी आयुर्वेदा अभी बहुत तरक्की कर रहा है। सो मैं ये कहना चाहता हूँ कि आयुर्वेदा को बहुत फॉलो कीजिए।
0: क्या बात कही है, बिल्कुल ठीक। दोस्तों, हम यूं तो सब जानते हैं आयुर्वेद के बारे में, लेकिन जब हमें कुछ ज्यादा तकलीफ होती है तो फौरन हम एलोपैथिक की तरफ भाग जाते हैं। आयुर्वेद एक ऐसी विधा है हमारे देश की कि जिस पर भरोसा करना बहुत ज्यादा जरूरी है। भरोसा रखिए, ट्रस्ट कीजिए,
1: और उसमें साइड इफेक्ट्स भी नहीं है।
0: और मजेदार बात यह कि उसमें साइड इफेक्ट्स भी नहीं है। क्या बात है, बहुत बढ़िया बात। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच। तो आगे बढ़ते हुए एक प्यारा सा गीत हो जाए डॉक्टर गणेश जी का।

0: बहुत बढ़िया। गणेश जी मुझे ये बताइए कि क्या लोग आपके बारे में कुछ गलतफहमी रखते हैं क्या? कुछ गलतफहमी हो जाती है क्या उनके बारे में? वो क्या है?
1: हाँ, लोगों को लोगों का क्या काम है, माने कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। ये गीत तो आपने सुना ही होगा।
0: जी हाँ जी
1: लोगों
0: हाँ
1: को
0: जी हाँ
1: गलतफहमी ये लोगों को गलतफहमी ये रहती है कि जो मैं सोशल मीडिया में कुछ पोस्ट करता हूँ अपने बारे में, तो कुछ लोग बोलते हैं कि वो पोस्ट नहीं करने का ऐसा कुछ करते हैं, और कुछ लोग ऐसा बोलते हैं कि मैं ठीक ठाक नहीं गाता हूँ और मैं ये क्लिनिक और अपना संगीत दोनों कैसे निभाता हूँ। तो ये सब लोग बातें करते रहते हैं, लेकिन मैं अपना काम करता रहता हूँ, मैं दोनों को भी बैलेंस करता हूँ।
0: आपने बिल्कुल बिल्कुल बहुत ही प्यारी बात कही गणेश जी। सबसे पहली बात जो मुझे आपकी बहुत अच्छी लगी कि कई कई लोग कहते हैं कि साहब आप अच्छा नहीं गाते या सोशल मीडिया पर कुछ
1: हाँ
0: गलत पोस्ट करते हैं। ठीक है, हम थोड़े से केयरफुल रह सकते हैं, लेकिन फिर भी हम किसी और को अपने आप को जज करने की इजाजत नहीं दे सकते। हम कैसा भी
1: वही
0: गाते
1: वही
0: हैं, हम
1: यस
0: कैसा भी बोलते हैं,
1: हाँ
0: वो मुझे पसंद है, हमें पसंद है और हमारे भगवान को पसंद है। बस बात खत्म हो
1: हाँ
0: गई।
1: वही तो, हम जो कुछ भी करते हैं भगवान के लिए करते हैं,
0: बस हमें किसी को खुश
1: लोगों को
0: करने की
1: हमें हाँ लोगों का हमें खुश करना नहीं है, क्योंकि एक एक तरह के लोग होते हैं, उनकी मानसिक स्थिति भी अलग अलग होती है।
0: जी, आपने बिल्कुल बिल्कुल सही फरमाया। सब तरीके के लोग होते हैं, अलग अलग लोग होते हैं, सबको खुश करने का हमारा काम नहीं है। कुछ लोग नाराज भी हो जाएंगे इस प्रोसेस में, कोई बात नहीं, हमने अपनी तरफ से कोई गलती नहीं की। आपने बिल्कुल
1: वही
0: बिल्कुल ठीक फरमाया। तो दोस्तों, अगर ऐसा कभी कुछ आपके साथ भी होता है तो दिल से मत लगाइए, बुरा मत मानिए, क्योंकि कोई बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है कि हम उन्हें हर व्यक्ति को 100% व्यक्ति को खुश करके रखें, हो नहीं पाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और एक प्यारा सा गीत सुनते हैं गणेश जी की ही आवाज में।

0: गणेश जी मुझे बताइए ना, आपके बचपन की कोई सबसे पसंदीदा याद, मेमोरी?
1: हाँ, बचपन में मैं मेरे नाना के घर जाया करता था और हमें अप्रैल में छुट्टियां मिलती थी। सो अप्रैल और मई 2 महीने पूरे हम वही गुजारते थे। और वो मेरे पहले संगीत गुरु हैं, मेरे नाना देवदास नायक जी, वो पुत्तूर से हैं। और छुट्टियों में हम वहाँ टेंपल, एक वेंकटरमणा टेंपल भी है, वहाँ जाके हम जगराता भजन सब करते थे। और मेरी नानी वो मछली की रसम बहुत अच्छी और स्वादिष्ट बनाती थी। सो वो खाने के लिए हम बच्चे लोग वहाँ जाते थे, 2 महीने तक वहाँ रुकते थे, मजे करते थे अपने नाना के घर।
0: अमेजिंग, दैट्स वेरी नाइस। ये बहुत ही प्यारी सी क्यूट सी याद हम सभी के जहन में कहीं ना कहीं होती ही है। दोस्तों, आपने सुना तो आपको भी याद आ गए होंगे अपने बचपन के दिन। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं और सुनते हैं गणेश जी की आवाज में ये खूबसूरत सा गीत।

0: बहुत खूबसूरत, बहुत ही प्यारी गायकी। गणेश जी, आपकी आज तक की जिंदगी में सबसे बड़ी असफलता, फेलियर क्या रही और आपने उससे क्या सीखा?
1: हाँ, मेरी सबसे बड़ी असफलता ये थी कि मैं ऑडिशंस में जाता था। बहुत सारे ऑडिशंस मैंने दिए हैं सिंगिंग शोज में, तो कुछ ऑडिशंस में मैं फर्स्ट राउंड तक आता था, फिर एलिमिनेट हो जाता था। कुछ बार सेकंड राउंड तक आया हूँ और फिर एलिमिनेट हो गया हूँ। सो मुझे बहुत बुरा लगता था कि ये शो सब क्यों जाने का छोड़ दूं ऐसे, लेकिन बाद में मुझे पता चला कि हारना ही जीत की सबसे पहली सीढ़ी है। उस सफलता से आज मैं इस मुकाम तक पहुंचा हूं, तो वो मेरे लगातार परिश्रम से है। और कुछ लोग बंटवाड़ में जब मैं गाता था स्टेज पे तो चिढ़ाते थे, वो सब करते थे, सो वो सब मुझे बहुत बुरा लगता था, लेकिन आज मेरी सफलता से वो लोग भी मुझे बहुत चाहने लगे हैं मेरे गाने को।
0: आपने बहुत बढ़िया बात कही गणेश जी, बहुत बढ़िया बात कही, बिल्कुल ठीक कहा आपने। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और एक और बहुत खूबसूरत सा गीत हो जाए गणेश जी की ही आवाज में।

0: बहुत बढ़िया। गणेश जी, दिस इज फन। आप खुशी खुशी मुझे ये बताइए कि अगर आपको किसी भी एक बात के लिए याद किया जाए तो वो क्या होनी चाहिए?
1: ऑब्वियसली वो संगीत ही है, क्योंकि बचपन से ही मैं गाता रहता था और मुझे संगीत में ही बहुत सफलता मिली है। सो आज मुझे लोग एक संगीतकार के नाम से और एक आयुर्वेदिक वैद्य के नाम से भी जाना जाते हैं, और लोग ये कहते हैं कि

आप गायक भी हैं, बहुत हाँ। बहुत बढ़िया। तो चलिए दोस्तों सुनते हैं अगला गीत गणेश जी का। हमारे कलाकारों में सारे उपस्थित, सारे प्रेजेंट डॉक्टर्स के नाम।

0: बहुत बढ़िया, बहुत ही प्यारी गायकी। मुझे ये बताइए गणेश जी, आज तक की जिंदगी में आपको सबसे अच्छी प्रशंसा एप्रिसिएशन क्या मिली है?
1: सबसे अच्छी प्रशंसा तो मेरे सारे फैन फॉलोवर्स जो मेरे गाने पे फिदा है, और फेसबुक लाइव जब मैं करता था तब भी बहुत सारे फैन फॉलोवर्स थे मेरे, सो वो मेरे सारे गाने सुन के उनको बहुत अच्छा लगता था और उनको मन को भी शांति मिलती थी। सो यही फैन फॉलोवर्स मेरी सफलता के कारण है, मैं ये कहना चाहता हूँ।
0: बहुत बढ़िया, अमेजिंग, इजंट दैट वेरी नाइस क्यूट। दोस्तों आपने सुना, सबसे अच्छी अप्रिसिएशन गणेश जी को उनके संगीत के लिए ही मिली है। बहुत खूब। चलिए आगे बढ़ते हुए एक प्यारा सा गीत सुनते हैं गणेश जी की आवाज में।

0: बहुत बढ़िया। तो चलिए गणेश जी आगे बढ़ते हैं। मुझे अपने जीवन के सबसे प्रभावशाली तीन लोगों के बारे में बताइए जिन्होंने आपको मोटिवेट किया हो, प्रभावित किया हो।
1: हाँ, सबसे पहले मेरी माँ। मेरी माँ पहले जो हमेशा मेरे संगीत के सफर में मेरा साथ देती आई है बचपन से, वो मुझे सपोर्ट करके आई रही है और मेरे हर इवेंट्स और प्रोग्राम्स में भी वो हमारे साथ आती है, सुनती है। मुझे बहुत सफलता मिली है मेरी माँ से। और दूसरा मेरा गुरु माने डॉक्टर SP बालसुब्रमण्यम जी, जो एक बहुत बड़े गायक हैं। उनके गानों को सुन के ही मैं बड़ा हुआ हूँ और उनके कई लाइव शोज भी मैंने देखे हैं। वो मेरे सबसे माने आइडल बोल सकते हैं उनको, डॉक्टर SP बालसुब्रमण्यम। और तीसरे मेरे फैन फॉलोअर्स हैं जिन्होंने मुझे और मेरे संगीत को सपोर्ट किया है, और फेसबुक लाइव में भी बहुत सारे फॉलोअर्स मुझे हैं और उन सबसे मुझे सफलता मिली है। सो पहली मेरी माँ, और दूसरे मेरे गायक डॉक्टर SP भी, और तीसरे मेरे फैन फॉलोअर्स। ये मेरे जीवन के सबसे बड़े प्रभावशाली लोग हैं।
0: बहुत अमेजिंग, क्या बात है। तो दोस्तों आपने सुना किन लोगों से गणेश जी इंस्पिरेशन लेते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो हम भी आगे बढ़ते हैं गणेश जी से इंस्पिरेशन लेके, और सुनते हैं उन्हीं की आवाज में एक बहुत प्यारा सा गीत।

0: कन्हैया जी, अपने आप को फिट और सक्रिय रखने के लिए, एक्टिव रखने के लिए आपके पसंदीदा तरीके, मेथड्स क्या हैं? आप अपने आप को कैसे फिट रखते हो?
1: एज अ डॉक्टर, एक डॉक्टर होने के नाते फिट रहने के लिए, मन को अच्छा रखने के लिए एक्सरसाइजेस करना जरूरी है, योगा प्राणायाम वो सब करना जरूरी है। और मन में अगर कोई भी दिक्कत हो तो परेशान नहीं होने का, शांत रहने का और 7 घंटे सोने का और पौष्टिक आहार का सेवन करना चाहिए और संगीत सुनते ही रहना चाहिए, क्योंकि संगीत से मन को बहुत शांति मिलती है। जब आप दुख में होते हैं तो संगीत को सुनिए, आपको बहुत आनंद लगता है। सो फिट रहने के लिए मैं तो म्यूजिक को ही अपना फिटनेस मानता हूँ।
0: बहुत बढ़िया दोस्तों, देखिए ये बात बार बार वैलिडेट हो रही है हमारे हर कलाकार से, इवन आयुर्वेदाचार्य से, एलोपैथिक डॉक्टर से, सबसे, कि संगीत एक बहुत ही प्यारा सा टेंशन बस्टर्स है। सभी लोगों से बहुत रिक्वेस्ट है सुनने वालों से कि संगीत को अपनाइए, जिससे कि आपका गुस्सा शांत हो जाए, जिससे कि आपकी फ्रस्ट्रेशन शांत हो जाए, आप दूसरे लोगों पर गुस्सा करना बंद कर दें तो आपकी जिंदगी भी शांत हो जाएगी, सुधर जाएगी। क्या बात है
1: जी, जी बिल्कुल,
0: बहुत बढ़िया, अमेजिंग। तो चलिए दोस्तों, सुनते हैं अगला गीत फिटनेस के नाम।

0: बहुत बढ़िया गणेश जी, सोशल मीडिया की दुनिया में कुछ बदलना चाहेंगे आप? मैं आपको अधिकार देता हूं बदल दीजिए।
1: सोशल मीडिया एक ऐसा नशा है जो अच्छा भी है और बुरा भी है, क्योंकि लोग इसमें अच्छे विचार भी डालते हैं और बुरे विचार भी डालते हैं। मेरा मानना यह है कि सोशल मीडिया में आप बुरे विचार ना डालें, केवल अच्छे विचारों को ही पोस्ट करें और परिचित लोगों से ही अपना स्नेह बना लें। अपरिचित लोगों को आप फेसबुक रिक्वेस्ट ना भेजें और उनका एक्सेप्ट ना करें, क्योंकि

0: आजकल अपना सोशल लाइफ और अपने सोशल मीडिया में पोस्ट करने के लिए बहुत अंतर है, क्योंकि वो रिस्की भी हो सकता है। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि सारे जो बुरे ये आइडियाज है वो सब फेसबुक पे ना डालें।
1: बिल्कुल ठीक कहा आपने, बिल्कुल ठीक कहा, बहुत बढ़िया। मुझे भी ऐसा लगता है कि अपने आप को बहुत ज्यादा एक्सपोज करने की कुछ खास आवश्यकता नहीं है। हम
0: हाँ
1: अपने को अपने लिए और अपने भगवान के लिए जिम्मेदार हैं,
0: वही
1: आंसरेबल
0: तो वही
1: हैं,
0: तो
1: तो बस उसी को करते हैं। आइए दोस्तों आगे बढ़ें और एक प्यारा सा गीत सुने गणेश जी की ही आवाज में।

0: बहुत बहुत प्यारा गीत गणेश जी, थैंक यू सो मच। अब हम वहां आ गए हैं जहां पर मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे सुनने वालों के लिए कुछ मैसेज दीजिए, कुछ बात कीजिए उनसे।
1: हाँ, मेरे गाने सुनने वालों को, सभी लोगों को मैं धन्यवाद कहना चाहूंगा और सारे लोगों को ये बताना चाहूंगा कि कलाकार सभी एक जैसे हैं, उनको सुनिए, समझिए और उनका लगातार मान सम्मान कीजिए। कोई भी कलाकार हो, छोटा बड़ा नहीं है, क्योंकि संगीत सरस्वती की देन है वो। सो सभी लोगों को एक नजरिए से देखिए, देखिए सब लोगों को सुन लीजिए और लगातार रियाज कीजिए और संगीत में सफलता और मन की शांति पाइए।
0: बड़ी ही प्यारी बात कही, बहुत खूब। चलिए दोस्तों, विदा लेते हैं। गणेश जी, आपका बहुत बहुत आभार, थैंक यू सो मच। आप हमारे प्रोग्राम में आए, आपसे बहुत प्यारी बातें की, आपके बहुत प्यारे गीत हमने सुने।
1: धन्यवाद, और आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद।
0: थैंक यू सो मच सर।
2: अब हमको खबर थी ऐ दिल, रंगीन शहर भी होगी।
0: तो कैसा लगा दोस्तों आज के टैलेंट से मिलकर? हमें अपने फीडबैक जरूर दें, और आप भी अगर किसी टैलेंट को जानते हैं तो हमें संपर्क करें। हम समीर और नितिन आपसे विदा लेते हैं, शुभ रात्रि। कभी हम

0: नमस्कार दोस्तों, कला सिर्फ रंगों, सुरों या शब्दों का नाम नहीं है, बल्कि ये उन भावनाओं की भाषा है जो सीधे दिल तक पहुंचती है। और जब एक कलाकार अपनी कला के माध्यम से दुनिया से संवाद करता है, तो वो सिर्फ मनोरंजन नहीं करता, बल्कि प्रेरणा भी देता है। इसी प्रेरणा और रचनात्मकता के सफर में आपका स्वागत है आज के एक कलाकार के इस प्रोग्राम में। आइए ना, मिलते हैं उन प्रतिभाओं से जो अपने हुनर, मेहनत और सपनों से आज की दुनिया को और खूबसूरत बना रहे हैं। मैं हूं आपका दोस्त समीर और आप सुन रहे हैं आज के कलाकार। आज के कलाकार का एक और बेहद खूबसूरत एपिसोड लेकर मैं हाजिर हूं दोस्तों, आपका रेडियो दोस्त समीर। और आज जो गायक, जो टैलेंट, जो प्रतिभा हमारे साथ हैं, आपको उनकी गायकी सुन के, उनकी बातें सुन के मजा आ जाएगा। मेरे साथ हैं आसिफ शेख भाई। उनका स्वागत करते हुए मैं आसिफ भाई से ही रिक्वेस्ट करूंगा, प्रार्थना करूंगा, गुजारिश करूंगा कि चलिए ना, जो भी आज के कलाकार मेंबर की फैमिली है, वो आज आपकी गायकी सुनने के लिए इकट्ठा हुए हैं, थोड़ा उनसे बात कर लीजिए। बताइए ना, कौन हैं आप, कहाँ हैं आप, क्या करते हैं आप?
1: जी बहुत शुक्रिया आपका समीर भाई, एसएन से जुड़ने में मुझे बहुत खुशी हो रही है। मेरा नाम आसिफ शेख है, मैं मुंबई से हूँ और मैं पुलिस डिपार्टमेंट में हूँ। मुंबई के पुलिस डिपार्टमेंट में मैं सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर हूँ, जहाँ पे मेरा अभी प्रमोशन हुआ है। और मैं एक म्यूजिक लवर हूँ, म्यूजिक में बहुत दिलचस्पी रखता हूँ। अब ये सोच लीजिए कि पुलिस डिपार्टमेंट के लोगों को इतना वक्त नहीं मिल पाता होगा, लेकिन म्यूजिक की वजह से मेरा अच्छा खासा वक्त काम के साथ विदाउट टेंशन गुजर जाता है। और म्यूजिक के साथ मैं ड्यूटी के साथ साथ ड्यूटी से भी काफी लगाव रखता हूँ और म्यूजिक से भी काफी लगाव रखता हूँ। और मैं रफी साहब और एसपी बालसुब्रमण्यम सर का बहुत बड़ा फैन हूँ और म्यूजिक सुनना मेरा पैशन है। और उस वजह से मैं उम्र की, मतलब बचपन से तो मेरी आदत है, मुझे सुनने का, गाने का शौक है, उस शौक को अभी तक बरकरार रखा हूँ। और 19-20 साल की उम्र से जैसा मौका मिला उस तरीके से स्टेज शो भी करता रहा हूँ और आगे भी इंशाल्लाह करता रहूंगा। और अपने फैंस को और आप जैसे हमारे जो आइकॉन्स है, उनको मैं सुनाने की जरूर कोशिश करूंगा, गाना सुनाने की कोशिश करूंगा। और उम्मीद रखूंगा और आशा रखता हूं कि आपको मेरी गायकी जरूर पसंद आएगी।
0: बिल्कुल बिल्कुल शेख भाई, आप बिल्कुल बेफिक्र रहें, हम भी आपकी गायकी सुनने के लिए बेताब हैं। जाहिर सी बात है, आज जो आज का आपका जो कुनबा, आपका जो परिवार इतना बड़ा हुआ है, आप हमारे बीच में शामिल हुए हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत सारे गीतों का हम आनंद उठाने वाले हैं। चलिए दोस्तों, आसिफ भाई को तो आपने जाना, अब उनकी गायकी का लुत्फ उठाते हैं। पेश करने दीजिए मुझे ये बहुत खूबसूरत से गीत।

0: बहुत खूब, बहुत ही सुंदर शुरुआत। चलो आसिफ भाई, आपने काफी कुछ तो अपने म्यूजिक के बारे में बताया कि आप रफी साहब और एसपी बाला सुब्रमण्यम साहब के मुरीद हैं, उन्हें बेहद बेहद पसंद करते हैं। बड़ी खूबसूरत बात हुई। अब जो सवाल मेरे दिमाग में आ रहा है और बहुत सारे हमारे जो भी फैमिली मेंबर्स हैं ना, उनके भी दिमाग में ये चीज आ रही होगी, आप जिस तरीके के प्रोफेशन में हैं वहां पर ड्यूटी बहुत हार्ड होती है, बहुत वक्त जो है उसका कोई लिमिट्स नहीं है, मतलब कभी भी आपको बुलावा आएगा, कभी भी आपको ड्यूटी पे जाना होगा, या रिस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत भारी भारी होती हैं, जिसमें आप ये नहीं कह सकते हैं कि साहब 9 बजे से 6 बजे तक का टाइम है मेरा, और फिर उसके बाद जो प्रोफेशन में हैं आप उसकी अपनी जो डिफिकल्टीज हैं या जो टेक्निकलिटीज हैं वो भी हैं। तो सवाल जो आपने वैसे कुछ तो जवाब दिया उसका, लेकिन सभी लोगों के दिमाग में अभी भी अटका हुआ होगा वो सवाल कि इतनी कठिन परिस्थितियों में, इतनी टफ कंडीशंस में भी, जबकि मतलब पुलिस का काम काफी हार्ड होता है, संगीत जैसी बहुत ही मुलायम, बहुत ही सोफिस्टिकेटेड, सेंसेशनल, इतनी प्यारी सी चीज के लिए वक्त कब निकालते हैं आप? आफ्टरऑल आपके दिल का जो बहुत ही खूबसूरत सा एक कोना है जो संगीतमय है, संगीत में बिल्कुल डूबा हुआ है, उसको कब वक्त देते हो आप?
1: जी समीर भाई, अब ऐसा अगर देखा जाए तो ड्यूटी आवर्स ऐसा कुछ कह नहीं सकते कि 8 घंटा हो सकती है, 10 घंटा हो सकती है, ड्यूटी आवर्स का कोई लिमिट नहीं है
0: जी।
1: काम का प्रेशर रहता है, लेकिन काम मैं बड़ी खुशी से करता हूँ, इसलिए वो काम में भी मुझे काफी खुशी मिलती है
0: जी।
1: अच्छे से काम करने मिलता है, और मुझे ये पता होता है कि जब भी मैं काम मेरा खत्म करूंगा या उससे थोड़ा दूर हो जाऊंगा, तो मैं शाम के वक्त या रात के वक्त 1 घंटा निकालता हूँ मेरी म्यूजिक, मेरा गाने की प्रैक्टिस करने के लिए
0: जी।
1: और उसके बाद में मेरे पास एक कराओके सिस्टम है, जिसमें मैं गाने कराओके सिस्टम के जरिए से मैं गाना, मेरे पास माइक है, उस जरिए से मैं अपने गाने को मैं वो गाने जो मैंने बिठाए हैं उसको गाता हूँ। कोशिश करता हूँ कि हर गाना ज्यादा से ज्यादा परफेक्ट किस तरह से किया जा सकेगा मेरे पास से, वो कोशिश मैं करता हूँ, और मुझे उसमें बहुत आनंद मिलता है। ड्यूटी का भी प्रेशर म्यूजिक के वजह से काफी कम हो जाता है।
0: ओके।
1: और ऐसा, हाँ जी जी बिल्कुल, म्यूजिक लवर्स के लिए ये बहुत खुशनसीबी की बात है। और मैं ये भी बोलता हूँ कि ये जो हमारा डिपार्टमेंट है, ऐसा नहीं, उसके पास से बहुत कुछ सपोर्ट भी मुझे मिलता है हमारे वरिष्ठों की तरफ से। अगर आप कलाकार है तो उस जरिए से भी पुलिस डिपार्टमेंट में भी काफी सपोर्ट करने वाले ऑफिसर्स भी है।
0: बहुत खूब भाई, वाह। बस यही तो बात थी कि जो हम लोग जानना चाह रहे थे कि इतनी कड़क, जो वही नारियल की तरह ऊपर से कड़क और अंदर से बिल्कुल मुलायम। चलिए दोस्तों, तो आपको आज एक ऐसी शख्सियत से मिलने का मौका मिला है जो, जिसको कहते हैं ना, वही नारियल वाली ही बात कि इतना सख्त ऊपर से दिखते हैं लेकिन उतने ही मुलायम अंदर से हैं, कलाकार हैं, गायक हैं। आइए ना उनके ही गाए हुए इन बहुत ही खूबसूरत से नगमों का आनंद उठाएं और फिर वापस आएं।

0: बहुत खूब, अमेजिंगली ब्यूटिफुल। तो शेख साहब, आगे बढ़ते हुए, आप चूज कैसे करते हो गाने, कैसे आपको चूज कैसे करते हो कि भाई ठीक है ये वाला गाना मेरी आवाज पे ठीक बैठेगा, या उसके बोल, या उसकी मेलोडी, या उसका म्यूजिक या फिल्म, मतलब हाउ डू यू चूज अ सॉन्ग कि जो इस गाने को मुझे परफॉर्म करना है, ये गाना है, रिकॉर्ड करना है, कैसे चूज करते हो आप?
1: जी समीर भाई, आप मुझे आसिफ कहोगे तो और भी खुशी होगी।
0: जी आसिफ भाई।
1: और जी मैं ये कहता हूँ कि जैसा मेरे हमारे वाली साहब मेरे यानी मेरे पिताजी को एक शौक था गाने का, उनकी आवाज भी काफी अच्छी थी, और ये समझ लीजिए कि गॉड गिफ्टेड पर्सन थे वो भी, और उनके जरिए से मुझ में ये चीज आ गई है, और इस वजह से मेरे मतलब वो गुनगुनाते थे उस वजह से मैं भी गुनगुनाता था, और मेरे काफी गाने बचपन से ही

0: कि बहुत हद तक ये गॉड गिफ्टेड है। मैं कोई बहुत, मैं डाउन टू अर्थ हूँ, बहुत छोटा हूँ, समंदर में एक झाग के मुताबिक मेरी हैसियत है, लेकिन मैं एक हमेशा सोचता हूँ कि मैं म्यूजिक की दुनिया में एक क्या कहते हैं, विद्यार्थी दशा में हूँ, एक विद्यार्थी हूँ मैं, जिसे हर वक्त कुछ ना कुछ सीखना है। और म्यूजिक तुम्हें इतना कुछ सिखाता है, म्यूजिक के बारे में भी, दुनिया के बारे में भी, और हर चीज के बारे में।
1: तो जो मैंने पूछा आसिफ भाई की, कोई भी गीत गाने के लिए आप कैसे चुनते हो उसको, उसकी मेलोडी से, उसकी लिरिक्स से, उसके म्यूजिक से, उसके सिंगर से, या आपकी आवाज़ पे वो सूट करेगा? मैंने ये चीज़ जाननी चाहिए।
0: जी सर, मैं एक्चुअली मैं मेलेडी से ज्यादा ये करता हूँ, धुन जो पसंद आती है उसके अल्फाज या उसके वर्ड्स भी, लिरिक्स भी मुझे भा जाते हैं, तो मैं वो गाने को ज्यादा से ज्यादा ये कर, और उसकी मैं मतलब उसकी मेलेडी, मतलब उसके अंदर की जो हरकतें हैं गाने में, रोमांटिक, मतलब अगर वो गाना रोमांटिक है तो उसको किस तरीके से ट्राई करना चाहिए, अगर वो सीरियस गाना है, अगर वो भावुक गाना है, तो अलग अलग इसमें ये समझ लीजिए कि मेरी आवाज थोड़ी सी मोल्ड हो जाती है उस टाइप में, इसलिए मैं वो गाने में मुझे वो आसानी हो जाती है मोस्टली। एक्चुअली मैं वर्सेटैलिटी रखता हूँ सिंगिंग के बारे में भी, लेकिन रफी साहब के गाने जब मैं गाता हूँ तो इस वजह से मेरे आवाज की थोड़ी सी पॉलिश और ज्यादा हो जाती है, और मैं गाने भी चॉइस करते वक्त उसी टाइप की चॉइस करता हूँ कि जिसमें मुझे मुझे खुशी मिले, मेलेडी हो, मिठास हो, ये सब बातें थोड़ी सी मैं गौर करता हूँ।
1: बहुत खूब, बिल्कुल ठीक। तो दोस्तों, आपने जाना कि वो किस तरीके से अपने गीतों को चुनते हैं, कि उन्हें कौन से गाने हैं। आइए आगे बढ़ते हुए इन गीतों का लुत्फ उठाएं जो आसिफ भाई ने हमारे लिए तैयार किए।

0: बहुत खूब। तो चलिए आसिफ भाई, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हुए आपके बारे में थोड़ा और जानने की कोशिश करते हैं। तो जब आप बचपन में थे, छोटे थे, तो आप क्या बनना चाहते थे? और उस सवाल का दूसरा पार्ट ये है कि अगर आप पुलिस में ना होते तो आप कौन से प्रोफेशन में होते?
1: जी, अगर ऐसा देखा जाए तो सबसे पहले मैं बचपन में तो ये कोई चॉइस रहता नहीं था। मैं पढ़ाई में काफी मतलब होशियार था एज पर माय फादर्स ओपिनियन, और पढ़ाई अच्छे से करता था और मार्क्स भी अच्छे से मिल जाते थे, तो इसलिए पिताजी चाहते थे कि मैं कुछ इंजीनियर वगैरह बन जाऊं। और उस हिसाब से मैं फिर मेरा दसवीं के बाद में मैंने फिर अच्छे मार्क्स आने के बाद फिर मैंने गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज ज्वाइन किया। 11th 12th में मैं साइंस साइड में था, साइंस विभाग में, तो वहां से मैंने ए ग्रुप चूज करके मुझे मैकेनिकल मेंटेनेंस मिला। और मैंने अपना एजुकेशन अपना उस तरीके से मेरा चालू हुआ था, लेकिन दरमियान के पीरियड में फिर मेरे पिताजी चल बसे, तो उस वजह से थोड़ा सा एक चेंज आया थोड़ा लाइफ में। तो फिर वो जिम्मेदारी, जो कि मैं बड़ा लड़का था, वो जिम्मेदारी मुझ पर आ गई थी, तो थोड़ा फिर मैं साइड चेंज कर लिया। आर्ट साइड से मैंने फिर ग्रेजुएशन कंप्लीट किया। ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद में मैंने फिर महाराष्ट्र पब्लिक सर्विस कमीशन की एग्जाम दी, और वो एग्जाम मैंने क्रैक की, और उस बदौलत मुझे फिर सब इंस्पेक्टर की जॉब मिली, पुलिस सब इंस्पेक्टर की। इस तरीके से वो चेंजेस होते गए सब आगे।
0: जी बहुत खूब। तो अगर जस्ट इनके साथ पुलिस फोर्स में ना होते तो किस प्रोफेशन में होते आप?
1: जी, अगर मैं पुलिस डिपार्टमेंट में नहीं होता तो डेफिनेटली मैं मेरा अपना मैकेनिकल मेंटेनेंस का डिग्री कंप्लीट करके मैकेनिकल इंजीनियर होता।
0: बहुत खूब, अमेजिंगली ब्यूटीफुल। तो दोस्तों, ये हैं हमारे आसिफ भाई। अब इनके गाए हुए गीतों का आनंद उठाइए जरा। चलिए पेश करता हूं ये प्यारे से गीत।

0: बहुत खूब आसिफ भाई, हम अपने प्रोग्राम की उस जगह आ गए जहां पर अब आप, आपके नया परिवार जुड़ा है, नए सुनने वाले जो जुड़े हैं, जो आपकी गायकी के मुरीद हुए हैं, उनसे कुछ बात कीजिए, उनसे कुछ कहिए।
1: जी, मैं ये कहना चाहता हूँ कि हर चीज लगन से कीजिए। म्यूजिक में या गाने को थोड़ा रियाज बहुत जरूरी है। उसका रियाज हर दिन तुम्हें एटलीस्ट 15 to 20 minutes ओनली आपको रियाज एटलीस्ट करना चाहिए
0: जी।
1: और रियाज करके, अभी मैं तो कुछ क्लासिकल सीखा नहीं हूँ, जो भी मेरे गले से हरकत निकलती है वो एक कोशिश कर करके, मेहनत कर करके करता हूँ। और रियाज बहुत अहम चीज है, जिसको अगर म्यूजिक में दिलचस्पी हो उसने रियाज करके ही आगे से आगे बढ़ना चाहिए, तो उसकी गायकी में निखार आएगा, पॉलिश होते रहेगी, और साथ ही साथ में उसने अपने तलफ्फुज अल्फाजों पे बहुत गौर करना चाहिए। जैसा कि अभी हिंदी है और उर्दू है, जैसा हिंदी के अल्फाज थोड़े अलग होते हैं, उर्दू के अल्फाज थोड़े अलग होते हैं, तो इसलिए उसके ऊपर गौर करते हुए, उसको मद्देनजर रखते हुए उस तरीके से कोशिश करते रहनी चाहिए कि हमें वो हिंदी उर्दू अच्छे से सीखते रहनी चाहिए। हालांकि मैं मराठी सॉन्ग्स भी गाता हूँ, मेरी मराठी भी अच्छी है, मराठी सॉन्ग